0: शुभ संध्या। मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलो हर्ट्ज एवं FM 102.9 मेगा हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। वंदे मातरम।
1: वंदे मातरम सुजला सुफला मलयज शीतला

lumina, drumada la șopini. Suhasini, sumădura mașini.

सुप्रभात। मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलो हर्ट्ज एवं FM 102.9 मेगा हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। आज गुरुवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ माघ की 11वीं तिथि, तदनुसार 2 जुलाई सन 2026। प्रातःकाल में 5:58 हुए हैं। मीडियम वेव और एफएम के मीटर्स पर आकाशवाणी रामपुर से हमारी आज की प्रथम सभा के प्रसारण अब आरंभ हो रहे हैं।

0: ये आकाशवाणी रामपुर है। 6 बजने वाले हैं। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।
1: समाचार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जापान की प्रधानमंत्री सनाई तकाइची के साथ वार्ता करेंगे। ये वार्ता दोनों पक्षों को आपसी हित के मुद्दों की समीक्षा तथा द्विपक्षीय सहयोग मजबूत बनाने का अवसर प्रदान करेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वार्ता के बाद कुछ सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए जाने की भी संभावना है।
3: पूर्वोत्तर भारत में संपर्क और विकास को बढ़ावा देने के लिए भारत और जापान मिलकर काम कर रहे हैं। दोनों देश बुनियादी ढांचे, शहरी विकास, ऊर्जा, कृषि, पर्यटन और कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में सहयोग कर रहे हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र जापान की स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र की परिकल्पना में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि यह दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच एक सेतु का काम करता है। 2025 से अब तक जापान और पूर्वोत्तर राज्यों के बीच कई उच्च स्तरीय दौरे हुए। इसी वर्ष फरवरी में जापान के विदेश मामलों के राज्य मंत्री इवाओ होरी ने भारत का दौरा किया था। इस दौरान उन्होंने मेघालय और असम के मुख्यमंत्रियों से मुलाकात की। इस वर्ष अप्रैल में मेघालय के मुख्यमंत्री जापान गए थे। इस यात्रा के दौरान एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जिसके तहत अगले 5 वर्षों में मेघालय के 5,000 युवाओं को जापान में कौशल प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: प्रधानमंत्री तकाइची कल शाम भारत की 3 दिन की यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। ये भारत की उनकी पहली आधिकारिक यात्रा है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज जापान की प्रधानमंत्री सनाई तकाइची के साथ व्यापक विचार विमर्श से दोनों देशों की साझेदारी को और प्रगाढ़ बनाने में सहायता मिलेगी। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और जापान हिंद प्रशांत तथा अन्य क्षेत्रों में भी शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए साझा प्रयास जारी रखेंगे। सरकार ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की 2 बड़ी राजमार्ग सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इसमें दिल्ली में द्वारका एक्सप्रेसवे को वसंत कुंज से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 148 AE के लिए 6 लेन की सड़क सुरंग का निर्माण शामिल है। देश में पहली बार आंध्र प्रदेश के उंडवल्ली हेलीपोर्ट पर हेलीकॉप्टर उड़ान के लिए पहली निजी पॉइंट इन स्पेस यानी पिंस व्यवस्था को मंजूरी दी गई है। इस व्यवस्था में उन्नत उपग्रह तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। इससे उन हेलीपोर्ट पर हेलीकॉप्टर के सुरक्षित संचालन में सहायता मिलेगी जहां लैंडिंग के लिए पारंपरिक व्यवस्था नहीं है। नागर विमानन मंत्रालय ने कहा कि पिंस प्रक्रिया खराब मौसम और जमीनी नेविगेशन सहायता उपलब्ध ना होने की स्थिति में विशेष रूप से उपयोगी है। इसका विकास भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने किया है। झारखंड ने पूर्वी सिंहभूम जिले में मलेरिया से 4 लोगों की मृत्यु के बाद पूरे राज्य में अलर्ट जारी किया है। सरकार ने सभी उपायुक्तों को वेक्टर जनित बीमारियों की रोकथाम के लिए तत्काल कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने प्रभावित क्षेत्रों में बुखार का सर्वेक्षण, मलेरिया की त्वरित जांच और मरीजों के समय पर इलाज के निर्देश जारी किए हैं। श्री अमरनाथ जी तीर्थ यात्रा आज से शुरू हो रही है। तीर्थयात्रियों का पहला जत्था जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर पहुंच चुका है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और आवास सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। 57 दिनों की ये यात्रा 3 जुलाई से नुनवान, पहलगाम और बालतल मार्गों से कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू होगी। पुरुष क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच चेस्टर ली स्ट्रीट में खेला गया T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच कल बारिश के कारण रद्द हो गया। 5 मैचों की श्रृंखला में दोनों टीम 0-0 से बराबरी पर हैं। बारिश के कारण इंग्लैंड अपनी पारी शुरू नहीं कर सका। श्रृंखला का दूसरा मैच शनिवार को मैनचेस्टर में खेला जाएगा। और डूरंड कप फुटबॉल का 135वां संस्करण 25 जुलाई से कोलकाता में शुरू होगा। ये प्रतियोगिता 23 अगस्त तक चलेगी। मैच रांची, इम्फाल, शिलोंग और गुवाहाटी में खेले जाएंगे। ये पहला मौका है जब डूरंड कप के मैच झारखंड की राजधानी रांची में भी रखे गए हैं। इसके अलावा फीफा फुटबॉल विश्व कप में इंग्लैंड ने डीआर कांगो को 2-1 से हराकर अंतिम 16 में जगह बना ली है। अटलांटा में खेले गए मुकाबले में कप्तान हैरी केन ने मैच के अंतिम 15 मिनट में 2 गोल दागकर इंग्लैंड को रोमांचक जीत दिलाई। अंतिम 16 में इंग्लैंड का मुकाबला 6 जुलाई को सह मेजबान मैक्सिको से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलो हर्ट्ज एवं FM 102.9 मेगा हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना।

खजरे हो मन एक तारा, जब हर श्वास बने ईश्वर का नाम, सुरों में घुल जाए श्रद्धा की मिठास, तो जीवन बन जाए मधुर धाम। भक्ति का संगीत शब्दों से नहीं, हृदय की गहराइयों से गूंजता है। आइए इस भाव को सुनते हैं, तन खजरी मन एक तारा।

मस्तक पर विराजे चंद्र, जटाओं में बहती पावन गंगा, जिनके डमरू की ध्वनि से सृष्टि का अनादि संगीत गूंजता है, जो भक्तों के हर कष्ट को हर लेते हैं, वे हैं हमारे भोलेनाथ महादेव।

श्री राम आस्था और मर्यादा का आधार हैं। उनका स्मरण मन को शांति और जीवन को नई दिशा देता है। जिस हृदय में श्री राम बसते हैं, वहां प्रेम, धैर्य और विश्वास का वास होता है।

भक्ति की यही सरल राह मन को परमात्मा से जोड़ देती है और इसी के साथ प्रेम प्रार्थनाओं और आशीर्वाद के साथ आज की वंदना अब यही संपन्न हो रही है।

आज वंदना में कलाकार थे अनूप जलोटा, ओम व्यास, इख्तियार अहमद और साथी, आशा भोसले, साथी में मन्ना डे। वंदना, ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

0: अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना। हम आकाशवाणी रामपुर से बोल रहे हैं। 6:30 हुए हैं। प्रस्तुत है आज का चिंतन। सुनिए लोकमंगल इस विषय पर आज का चिंतन।
1: लोक शब्द अत्यंत प्राचीन है और इसकी अवधारणा भी बहुआयामी। भारतीय परंपरा से लोक और वेद का विभेद रेखांकित हुआ है। महाभारत और भगवद गीता में लोक और वेद का अंतर स्पष्ट किया गया है। वह यदि लोक में है तो लोक का है, अर्थात लौकिक है। इसी तरह से उसमें मंगल की अवधारणा लौकिक है। पाश्चात्य जगत में लोक शब्द फ्रेंच शब्द पार्ले से निर्मित है अथवा व्युत्पन्न माना जा सकता है, जिसका अर्थ है जन सामान्य के भाव या विचार। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि लोक मंगल जन सामान्य के प्रति अभिव्यक्त कल्याणोन्मुख भावधारा है। लोक मंगल, लोक कल्याण, लोक संग्रह, लोक समन्वय आदि अपने मूल में जन साधारण की हित चिंता से अनुप्राणित हैं। लोक मंगल मानवोत्थान की विचारधारा को निरंतर अभिव्यक्ति देते हैं। इस दृष्टि से हिंदू और मुसलमानों में भावात्मक समन्वय स्थापित करने वाले महात्माओं में सूफी संत अग्रगण्य हैं। सूफी साधकों ने प्रेम को भारतीय भक्ति भाव के समान ही विशेष महत्व प्रदान किया है। माधुर भाव से ईश्वर उपासना करना, पवित्रता का जीवन यापन करना और इसी तरह हिंदू मुसलमानों में पारस्परिक सौहार्द स्थापित करना सूफी संतों की प्रमुख विशेषता रही है। वस्तुतः हिंदुओं की आदर्श प्रेम कथाओं द्वारा सूफी विचारों को भारतीय जनमानस तक पहुंचाना तथा ईश्वर उपासना, पवित्र जीवन, हिंदू मुस्लिम एकता आदि विचारों को संपोषित करने का सूफी संतों का यह उपक्रम लोक मंगलाशा से ही अनुप्राणित है। लोक मंगल प्रेम के मंत्रदाता संत कबीर केवल शासन व्यवस्था के दोषों, सामाजिक सांस्कृतिक विसंगतियों और धार्मिक पाखंड, अंधविश्वास तथा जातिगत भेदभाव आदि से संबंधित विडंबनाओं, विद्रूपताओं पर ही प्रहार नहीं करते, वरन इन सब से मुक्ति का मार्ग भी सुझाते हैं। और वो मार्ग है भक्ति का, ज्ञान का, उपासना का और सर्वोपरि प्रेम और लोक मंगल का। प्रेम को ही मानव जीवन का सार मानने वाले ढाई आखर प्रेम का पढ़े सुपंडित होए कबीर लोक मंगल के उत्कट अभिलाषी हैं। वे निर्लिप्त भाव से सर्वजन हिताय का उपदेश देते हैं, सभी के कल्याण की कामना करते हैं। कबीरा खड़ा बाजार में मांगत सबकी खैर, ना काओ की दोस्ती ना काओ सो बैर। इस संसार सागर में जो कुछ है वो सब ईश्वर का निवास है। उपनिषदों की इसी भावधारा को कबीर जीते थे। यही कारण है कि इस अनुभूत की आनंदमयी व्यक्ति की ऐसी मधुर धारा संसार में प्रवाहित है जो लोक मंगल के द्वारा मानव प्रेम और लोक विधायी मानव धर्म को निरंतर संसिक्त करती रहती है और अपनी अंतर दृष्टि से भवसागर का सूक्ष्म निरीक्षण करता हुआ मनुष्य संदेश देता है कि जाति, संप्रदाय, धन, वैभव और शक्ति के बाह्य उपादानों के आधार पर मनुष्य मनुष्य में भेद करना अनुचित और अकारत है। मनुष्य सब समान है क्योंकि सभी में ईश्वर का वास है। अतएव किसी का अपमान अपकार करना ईश्वर का अपमान अपकार करना है और मानव मात्र को प्रेम करना, उसका उपकार करना ईश्वर का प्रेम और उपकार करना है। यही लोक दर्शन है और यही प्रेम दर्शन है। जिहि घट प्रीति न प्रेम रस, उनि रसना नहीं राम, ते नर इस संसार में उपजी भये वे काम। समय समय पर लोक मंगलकारी भावधारा सतत प्रवाहित होती रही। लोक मंगल विश्लेषक चिंतन करते रहे, कीरति भनति भूति भल सोई, सुर सरि सम सब कह हित होई। मानव यश, काव्यवाणी और धन वैभव वही मूल्यवान है जो देव नदी गंगा की भांति सर्व कल्याणकारी होवे। गहन मानवीय वेदना और कारुणिक अनुभूति ही लोक मंगल है।
0: लोक मंगल इस विषय पर अभी आप सुन रहे थे आज का चिंतन। मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलो हर्ट्ज एवं FM 102.9 मेगा हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी रामपुर है। 6:35 हुए हैं। आइए अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम स्वास्थ्य संदेश। कार्यक्रम के अंतर्गत जानकारी का विषय होगा लहसुन का प्रयोग गुणकारी। जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं डॉक्टर रामस्वरूप गंगवार।
2: आमतौर पर हम लहसुन का इस्तेमाल खाने में तड़का लगाने या ग्रेवी बनाने के लिए करते हैं। लहसुन किसी भी बेजान सब्जी के स्वाद को जानदार बना देता है, लेकिन लहसुन में ऐसे गुणकारी तत्व मौजूद होते हैं जो आपको कई बीमारी से दूर रखते हैं। लहसुन एक वंडरफुल फूड है। आयुर्वेद में तो लहसुन को औषधि माना गया है। हालांकि आपको किसी न किसी रूप में लहसुन को अपनी डाइट में जरूर शामिल करना चाहिए, लेकिन सुबह सुबह खाली पेट लहसुन खाने से आपको सबसे ज्यादा फायदा होगा। यहां पर हम आपको इन्हीं फायदों के बारे में बता रहे हैं। लहसुन दिल संबंधी समस्याओं को भी दूर करता है। लहसुन खाने से खून का जमाव नहीं होता और हार्ट अटैक का खतरा कम हो जाता है। लहसुन और शहद के मिश्रण को खाने से दिल तक जाने वाली धमनियों में जमा वसा निकल जाता है, जिससे ब्लड सर्कुलेशन ठीक तरह से दिल तक पहुंचता है। लहसुन खाने से हाई बीपी में आराम मिलता है। दरअसल लहसुन ब्लड सर्कुलेशन को कंट्रोल करने में काफी मददगार है। हाई बीपी की समस्या से जूझ रहे लोगों को रोजाना लहसुन खाने की सलाह दी जाती है। पेट से जुड़ी बीमारियों जैसे डायरिया और कब्ज की रोकथाम में लहसुन बेहद उपयोगी है। पानी उबालकर उसमें लहसुन की कलियां डाल लें। खाली पेट इस पानी को पीने से डायरिया और कब्ज से आराम मिलता है। यही नहीं, लहसुन शरीर के अंदर मौजूद जहरीले पदार्थों को बाहर निकालने का काम भी करता है। लहसुन में आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करने की ताकत होती है। खाली पेट लहसुन की कलियां चबाने से आपका डाइजेशन अच्छा रहता है और भूख भी खुलती है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि लहसुन टेंशन को भगाने में भी मददगार है। कई बार हमारे पेट के अंदर ऐसे एसिड बनते हैं जिससे हमें घबराहट होने लगती है। लहसुन इस एसिड को बनने से रोकता है। लहसुन खाने से सिर दर्द और हाइपरटेंशन में काफी आराम मिलता है। लहसुन में एंटीबैक्टीरियल और दर्द निवारक गुण मौजूद होते हैं। अगर आपके दांत में दर्द है तो लहसुन की एक कली पीसकर दर्द वाली जगह पर लगा लें। कुछ ही

0: में आपको दांत दर्द से आराम मिल जाएगा। यही नहीं, खाली पेट लहसुन का सेवन करने से नसों में झंझनाहट से भी आराम मिलता है। लहसुन सांस से संबंधित बीमारी की रोकथाम में भी सहायक है। सर्दी, जुकाम, खांसी, अस्थमा, निमोनिया, ब्रोंकाइटिस आदि के इलाज में प्राकृतिक दवा की तरह काम करता है। तो इस तरह आप समझ गए होंगे कि लहसुन कितना गुणकारी है। इसका आप जरूर सेवन करें, नियमित रूप से सेवन करें। हर घर में लहसुन उपलब्ध है, बाजार में भी आसानी से लहसुन मिल जाता है। तो जरूरी है कि हम लहसुन को अपने भोजन का अहम हिस्सा बनाएं। आज तो अपनी बात यहीं समाप्त करते हैं।
1: लहसुन का प्रयोग गुणकारी, इस विषय पर आपको जानकारी दे रहे थे डॉक्टर रामस्वरूप गंगवार। स्वास्थ्य संदेश, ये कार्यक्रम अब समाप्त हुआ।

हम आकाशवाणी रामपुर से बोल रहे हैं। श्रोताओं, 6:40 हुए हैं, ये समय है हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों का एक संक्षिप्त विवरण की जानकारी का। अब से थोड़ी ही देर में यानी 6:45 पर आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस गान में आज का प्रसंग। सुबह 7 आपको सुनवाएंगे लोकगीतों पर आधारित कार्यक्रम लोक रंग। कलाकार होंगे मुन्नालाल यादव और साथी। 7:31 पर सुनना ना भूलें फिल्मी गीतों का इंफोटेनमेंट प्रोग्राम सुबह सवेरे। 8:45 पर 102.9 मॉर्निंग हिट्स, इस कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुनेंगे नए फिल्मी गीत। उर्दू प्रोग्राम की पेशकश होगी 9:30 पर। फरमाइशी फिल्मी गीत आप तक पहुंचेंगे 10 आपके अनुरोध पर। और 10:30 पर हम आप तक पहुंचाएंगे सुनहरा दौर फिल्मी गीतों का ये कार्यक्रम। इसके अंतर्गत आप सुनेंगे 90 के दशक के कुछ फिल्मी गीत।

धरोहर कार्यक्रम का प्रसारण होगा पूर्वाह्न 11 बजे। इन दिनों आप सुन रहे हैं नाटक पापा मैं तो तारा बन गई। इस नाटक के लेखक हैं गुडविन मसी, सह प्रस्तुति होगी असीम सक्सेना की और कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं विक्रांत चौधरी। 11:30 पर श्रोता साथ ही जुड़ना ना भूलें कार्यक्रम मन भावन के साथ। कार्यक्रम में आपके लिए होगा श्रोताओं की शब्दावलियों पर आधारित ये कार्यक्रम। 12:10 पर ईमेल व व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित फरमाइशी कार्यक्रम। आप तक पहुंचेगा गीत आपके नाम। 1:15 पर आप सुनेंगे धरती गाती है ये कार्यक्रम। आंचल कार्यक्रम का प्रसारण होगा 1:30 पर। आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT उमंग। 2 आरंभ होगी फिल्म कंपेयर के प्रोग्राम के साथ आज शाम 5:00। 5:15 पर युवा साथी सुनेंगे अपना दैनिक कार्यक्रम युववाणी। कृषि जगत का कार्यक्रम का प्रसारण होगा 6:20 पर। इसके अलावा विविधा कार्यक्रम आप सुनेंगे संध्या 7:00। विषय होगा सहकारिता में सहयोग की शक्ति। वार्ताकार होंगे श्री महिपाल सिंह। 7:31 पर आप सुनेंगे सुगम संगीत ये कार्यक्रम। कलाकार होंगी शमा जौहरी। फरमाइशी फिल्मी गीत आप सुनेंगे रात्रि 8:00। 9:30 पर हम आप तक पहुंचाएंगे सबरस ये कार्यक्रम। लोकगीतों पर आधारित होगा हमारा ये कार्यक्रम। श्रोताओं ये थी एक जानकारी हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों की।

0: हम आकाशवाणी रामपुर से बोल रहे हैं। 6:45 होने वाले हैं। अब आप सुनिए श्री रामचरित मानस गान में भाग संख्या 346,
1: एपिसोड नंबर 346।

युद्ध समाप्ति पर विभीषण का राजतिलक हो चुका है। श्री राम ने वानर भालुओं को साधुवाद दिया, कहा, तुम्हारे ही बल पर रावण जैसे प्रबल शत्रु का वध हुआ और विभीषण ने लंका का राज्य पाया। वानर भालू ऐसा वचन सुन कृत कृत्य हो गए। जनक नंदिनी का कुशल समाचार ले आने का प्रभु का आदेश पाकर हनुमान एक बार फिर अशोक वाटिका में पहुंचते हैं। उन्हें रावण तथा अन्य राक्षसों के वध का समाचार सुनाते हैं। हनुमान को आशीष कर सीता जी स्वामी के दर्शनों के लिए अपनी आकुलता प्रकट करती हैं। कहती हैं, अब कुछ ऐसा उपाय करो कि मुझे प्रभु के दर्शन अविलंब प्राप्त हों। वापस लौटकर हनुमान ने श्रीराम लक्ष्मण को जनक नंदिनी का कुशल समाचार सुनाया। लंकापति विभीषण तथा अंगद को आदेश मिला कि हनुमान के साथ जाकर वे शीघ्र सीता को सादर लिवा लावें। उधर राक्षसियों ने सीता का अद्भुत श्रृंगार किया, विभीषण द्वारा प्राप्त वस्त्र आभूषणों से उन्हें सजाया और सुंदर पालकी में बिठाया। किंतु श्रीराम की आज्ञा है कि जनक नंदिनी पांव पैदल चलकर आवे ताकि वानर सेना माता को भली भांति देख सके।

0: भाग संख्या 346। अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान में। कलाकार थे सुरेश वाडेकर और अनुराधा पटवाल। संगीत था सतीश भाटिया का। 6:55 होने को है। हिंदी में समाचार अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे।
1: एम आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयंताम प्रवाचिका ऋचा झा। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य नवदिल्ल्यां स्वीय समकक्षया सानेताकारी शीत्यनया सह वार्षिक शिखर सम्मेलन स्तरीयां वार्तां करिष्यति। शिखर सम्मेलनमिदं उभाभ्यां पक्षाभ्यां द्वैपाक्षिक सहयोगं समीक्षितुं सुदृढीकर्तुं सहैव पारस्परिक हिताय क्षेत्रीय वैश्विक विषयेषु विचाराणां आदान प्रदानं कर्तुं अवसरं प्रदास्यति। द्वयोः प्रधानमन्त्रिणोः मध्ये संवादानन्तरं नैकेषां सन्धिपत्राणाम् आदानप्रदानं भविष्यति। जापानस्य प्रधानमन्त्री भारतस्य त्रिदिवसीय यात्रायै ह्यः सायं नवदिल्ल्यां सम्प्राप्ता। प्रधानमन्त्री ताकाइची इति तस्याः इयं भारतस्य प्रथमा आधिकारिक यात्रा वर्तते। विदेशमन्त्रालयेनोक्तं यत् इयं यात्रा भारत जापानयोः मध्ये विशेष रणनीतिक वैश्विक सहमतिम् अग्रे वर्धनदिशि महत्वपूर्णा वर्तते। सामाजिक सञ्चारपटले एकस्मिन् सन्देशे श्रीमोदिना लिखितं यत् असौ जापानस्य प्रधानमन्त्रिणा सह व्यापक चर्चायाः आशां करोति यया भारत जापानयोः विशेष रणनीतिक वैश्विक सहमतिम् इतोऽपि गहनं भविष्यति। दिल्ल्यां वसन्तकुञ्ज क्षेत्रस्य नेल्सन मण्डेला मार्गेण सह द्वारका द्रुतमार्गं संयोजयन् दिल्ली नगरे 48.1 AE राष्ट्रिय राजमार्गस्य कृते 6-मार्गीय सुरंगस्य निर्माणाय ह्यः प्रशासनेन अनुमतिः प्रदत्ता। राष्ट्रिय राजधान्यां वार्ताहरान् सम्बोधयन् सूचना प्रसारण मन्त्री अश्विनी वैष्णवः अवदत् यत् उत्तरप्रदेशे राष्ट्रिय राजमार्ग चतुस्त्रिंशत् इत्यस्य 17.7 किलोमीटर मितस्य सुदीर्घस्य कानपुर कबराई खण्डस्य चतुर्मार्गीय अभिगमन नियंत्रित मार्गस्य निर्माणमपि प्रशासनेन अनुमोदितम् अस्ति, यत्र संरचनाः 6 मार्गाणि यावत् सुलभतया विस्तारयितुं परिकल्पिताः सन्ति।
2: पहला प्रोजेक्ट 6-लेन द्वारका टनल दिल्ली के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगी। 8 किलोमीटर की ये टनल एक तरीके से कंप्लीट ये एक नया कॉरिडोर बन जाएगा। ये रिज है, इस रिज को बिना डिस्टर्ब किए सारा काम करना है। इस रिज को, रिज हमारे दिल्ली की एक तरीके से लंग्स ऑफ दिल्ली है, इसलिए उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब किए बिना इसके नीचे से ही टनल लेके जाने का है, ये प्रपोजल है।
1: विकसित भारत जी रामजी अधिनियमस्य 25.2 अंतर्गतं वर्धितानि पारिश्रमिक मूल्यानि ह्यः आरभ्य समग्र देशे कार्यान्वितानि। ग्रामीण विकास मंत्रालयेन प्रसारितायाः अधिसूचनायाः अनुसारं सर्वेषु राज्येषु केन्द्र शासित प्रदेशेषु च पारिश्रमिक अनुपातेषु

0: श्लाघनीया वृद्धि कृता। मंत्रालय प्रोक्त यत प्रथमवार प्रतिदिन त्रिशत रूप्यकाण कशन पारिश्रमिकानुपात निर्धारित अनेन सुनिश्चित भविष्य यत देश से कस्मिन्नपि भागे अधिसूचितः न्यूनतम पारिश्रमिकः अस्मात् स्तरात् अल्पं न भवेत्। ग्रामीण विकास मंत्रालयेन प्रतिपादितं यत् अयम् अधिनियमः प्रत्येकं वित्तीय वर्षे पञ्चविंशत्युत्तरैकशत दिनानां सवेतन वृत्तेः प्रतिभूतिं प्रदाय ग्रामीण भारतस्य सशक्तीकरणं विधास्यति। दिल्ल्याः मुख्य निर्वाचनाधिकारिणः कार्यालयेन संसूचितं यत् ह्यः पर्यन्तं राष्ट्रिय राजधान्यां 32,000+ गणना प्रपत्राणाम् अंकीकरणं सम्पूर्णम्। दिल्ल्यां मतदात्री सूच्याः विशेष गहन संशोधनस्य भागरूपेण प्रायः 99,000+ प्रपत्राणि वितरितानि। सम्प्रति दिल्ल्यां नैर्वाचनिक गणना प्रपत्राणां प्रतिगृहं वितरणं प्रचलति। विश्वस्य प्रमुखा कंदुक क्रीडा प्रतियोगिता ड्यूरन कप इत्यस्य 35,100+ संस्करणं मासस्यास्य 25 दिनांकात् कोलकातायां आरप्स्यते। इति वार्ताः।
1: मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्ज़ एवं FM 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। प्रातःकाल में 7 बजे हैं। प्रस्तुत है लोकगीतों पर आधारित कार्यक्रम लोकरंग।

भजन है।

पाई भजन मना।

आकाशवाणी रामपुर से आप सुन रहे हैं लोकगीतों पर आधारित कार्यक्रम लोक रंग। आपको सुनवा रहे हैं मन्नालाल यादव व साथियों के स्वर में लोकगीत। सुनिए कार्यक्रम का ये अंतिम लोकगीत।

इन्हीं लोकगीतों के साथ लोकगीतों पर आधारित लोक रंग ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आज इस कार्यक्रम के अंतर्गत कलाकार थे मन्ना लाल यादव व साथी। अभी आप सुन रहे थे लोक रंग ये कार्यक्रम।

0: आज की सबसे पहली जरूरत ERSS
1: यानी इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम,
0: और ये उपलब्ध है हेल्पलाइन नंबर 112 पर।
1: आपातकाल में साथ निभाए,
0: तुरंत सहायता उपलब्ध कराए
1: 112।
0: सवाल चाहे महिला सुरक्षा का हो
1: या सार्वजनिक स्थानों पर आत्मरक्षा का,
0: यदि चाहिए पुलिस सहायता
1: या फिर अग्निशमन सेवा की हो आवश्यकता,
0: बुलाना हो एम्बुलेंस को,
1: मिटाकर हर सस्पेंस को
0: डायल 112।
1: कोई भी राज्य हो कोई भी इलाका,
0: 112 सच्चा हम सफर है आपका।
1: कॉल 112, SMS करें या पैनिक बटन दबाएं,
0: या फिर भेजें ईमेल ऑलवेज यूज 112 इंडिया मोबाइल ऐप।
1: जब घेरे कोई भी आपदा,
0: तुरंत मिले सहायता
1: डायल 112।
0: चिंता से पाए छुटकारा,
1: पुष्पा झुकेगी नहीं,
2: 112 की सेवा रुकेगी नहीं।
3: पानी, पानी
4: कहाँ से लाऊं? पानी एक बूंद भी पानी नसीब नहीं।
3: पानी
4: कई दिन हो गए, पानी हलक से नहीं उतरा।
3: पानी
5: ये तस्वीर है आने वाले कल की। अगर अब भी नहीं सोचा तो बहुत देर ना हो जाए। पानी बचाने के प्रयास आज से, अभी से शुरू कीजिए।

0: प्लास्टिक चलन में आई लकड़ी और कागज के बेहतर, सस्ते और
1: मैं दुनिया में किसी से नहीं डरूंगा, केवल भगवान से डरूं। मैं किसी के प्रति बुरा भाव न रखूं, मैं किसी के अन्याय के समक्ष झुकूं नहीं, मैं असत्य को सत्य से जीतूं और असत्य का विरोध करते हुए मैं सभी कष्टों को सह सकूं। महात्मा गांधी।

0: प्रतिफल देने की साजिश करता है। एपीजे अब्दुल कलाम। निरंतर विकास जीवन का नियम है और जो व्यक्ति खुद को सही दिखाने के लिए हमेशा अपनी रूढ़िवादिता को बरकरार रखने की कोशिश करता है वह खुद को गलत स्थिति में पहुंचा देता है। महात्मा गांधी।
1: मानव का दानव होना उसकी हार है, मानव का महामानव होना उसका चमत्कार है और मनुष्य का मानव होना उसकी जीत है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन।
0: कोई त्रुटि तर्क वितर्क करने से सत्य नहीं बन सकती और ना ही कोई सत्य इसलिए त्रुटि बन सकता है क्योंकि कोई उसे नहीं देख रहा है। महात्मा गांधी।
2: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 118 किलोमीटर लंबे एक्सेस कंट्रोल्ड कानपुर कबराई खंड के निर्माण को दी मंजूरी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जताया आभार, कहा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और कानपुर रिंग रोड को निर्बाध कनेक्टिविटी प्रदान करेगा यह प्रोजेक्ट। मुख्यमंत्री ने सहारनपुर में 613 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास, कहा एयर कनेक्टिविटी से जुड़ेगा शहर। अयोध्या के श्रीराम मंदिर दान प्रकरण की जांच कर रहे विशेष जांच दल एसआईटी की समय सीमा बढ़ाई गई। और आज से शुरू हो रही है उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपीटीटी 2026। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कल हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 34 के करीब 118 किलोमीटर लंबे एक्सेस कंट्रोल्ड कानपुर कबराई खंड के निर्माण को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद मीडिया को कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस परियोजना की अनुमानित लागत 7,145 करोड़ रुपए है।
3: जो अप्रूव हुआ है 242 किलोमीटर का, ये कानपुर से कबराई 242 किलोमीटर का है। ये एक्सेस कंट्रोल रहेगा, कंप्लीट एक्सप्रेसवे की तरह का है। 2.5 इयर्स में कंस्ट्रक्शन करेंगे इसको। कानपुर, हमीरपुर, महोबा तीन जिले इमीडिएटली इससे कवर होंगे। बीओटी टोल मोड पे इसको डेवलप किया जाएगा। अभी जो 3.5 घंटे लगते हैं कानपुर से कबराई, वो मात्र 1.5 घंटे रह जाएगा।
2: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस फैसले के लिए प्रधानमंत्री का आभार जताया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री ने कहा कि भोपाल कानपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर का यह महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के अनुरूप बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और कानपुर रिंग रोड को निर्बाध कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल सहारनपुर में 613 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में सहारनपुर को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा जो यहां के विकास को और गति देगा।
4: मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, रोड की कनेक्टिविटी, रेलवे की कनेक्टिविटी के साथ अब सहारनपुर अपना एयर कनेक्टिविटी के लिए भी तैयार हो रहा है। अपना स्वयं का एयरपोर्ट सहारनपुर के पास होगा। ये उड़ान सहारनपुर के नए विकास का आधारशिला बनेगी।
2: इससे पहले मुख्यमंत्री ने सहारनपुर के उच्च प्राथमिक कंपोजिट विद्यालय इस्माइलपुर से राज्यव्यापी स्कूल चलो अभियान के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने स्कूल चलो अभियान को जन आंदोलन बनाने की अपील की।
5: पिछले 9 वर्ष में 60 लाख से अतिरिक्त बच्चे बेसिक शिक्षा परिषद में पढ़े और ड्रॉप आउट रेट जो पहले 19-20% था घट करके आज 3-4% तक रह गया है। स्वस्थ समाज के लिए कोई भी बच्चा स्कूल में जाने से वंचित न रहे। अगर कोई बच्चा शिक्षा से वंचित है और केवल परिवार की क्षति नहीं, समाज की भी है, राष्ट्र की भी है। यही बच्चे आगे बढ़ेंगे। हमें ऐसी फौज खड़ी करनी है जो राष्ट्र के कर्तव्यशील नागरिक के रूप में अपने दायित्वों का निर्वहन कर सके।
2: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल सहारनपुर से प्रदेशव्यापी डीजी रोवर विशेष भूमि पैमाइश अभियान

0: का भी शुभारंभ किया। यह अभियान 15 अगस्त तक चलेगा। एक रिपोर्ट।
1: अभियान के दौरान सभी तहसीलों में सीमांकन एवं पैमाइश से जुड़े लंबित मामलों का निस्तारण अत्याधुनिक डीजी रोवर GNSS तकनीक के माध्यम से किया जाएगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रत्येक नागरिक को भूमि से संबंधित सभी सेवाएं सरल, पारदर्शी, समयबद्ध और तकनीक आधारित व्यवस्था के माध्यम से उपलब्ध कराना प्रदेश सरकार का संकल्प है। उन्होंने कहा कि लंबे समय तक भूमि की पैमाइश पारंपरिक जरीब जैसी विधियों से होती रही, लेकिन बदलते समय और बढ़ते भूमि विवाद को देखते हुए अब आधुनिक तकनीक को अपनाना आवश्यक हो गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि डीजी रोवर तकनीक के माध्यम से भूमि की पैमाइश पहले की तुलना में अधिक सटीक, पारदर्शी और विश्वसनीय होगी। इससे सीमांकन संबंधी त्रुटियों में कमी आएगी, भूमि विवादों और अनावश्यक मुकदमेबाजी पर प्रभावी नियंत्रण होगा तथा नागरिकों को समयबद्ध राजस्व सेवाएं उपलब्ध हो सकेंगी। समाचार कक्ष से विवेक सिंह।
0: उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कल लखनऊ से प्रदेश व्यापी विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने संचारी रोगों से बचाव के लिए जागरूकता रैली को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके साथ ही उन्होंने 11 से 31 जुलाई तक संचालित होने वाले दस्तक अभियान का भी शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इस अभियान की सफलता के लिए सरकारी प्रयासों के साथ ही जन भागीदारी भी जरूरी है। प्रदेश के वाराणसी, गोरखपुर, चंदौली, देवरिया और अंबेडकर नगर सहित लगभग सभी जिलों में कल जन जागरूकता रैलियां निकालकर लोगों के बीच संचारी रोगों से बचाव का संदेश दिया गया। गोरखपुर में अभियान का उद्घाटन करने के बाद महापौर डॉ. मंगलेश श्रीवास्तव ने मीडिया से बात की।
2: पूरे महीने में जो है इस तरह का कार्यक्रम संचालित रहेगा। विभिन्न मलिन बस्तियों में कार्यक्रम होने हैं, वार्ड वाइज भी कार्यक्रम होने हैं। तो इस महीने हम एक सघन अभियान चलाकर इस संचारी रोगों के प्रति जागरूक बनाने का और साथ ही साथ उनको शिक्षित करना है कि इससे क्या क्या हमें फायदे हैं।
0: गोरखपुर में विशेष संचारी रोग नियंत्रण माह के दौरान हॉस्टल्स और मलिन बस्तियों में डेंगू से बचाव के लिए विशेष सफाई अभियान भी चलाया जाएगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। प्रदेश सरकार ने अयोध्या के श्रीराम मंदिर में चंदे के गबन के आरोपों की जांच कर रहे विशेष जांच दल SIT को 15 दिनों का अतिरिक्त समय दिया है। 15 जून को गठित SIT को 7 दिनों के भीतर प्रारंभिक रिपोर्ट और 15 दिनों के भीतर अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था, जिसकी समयावधि 30 जून को समाप्त हो गई। सर्वोच्च न्यायालय ने कल मोटर दुर्घटना में मृतक व्यक्तियों या घायल दावेदारों की वार्षिक आय का निर्धारण आयकर रिटर्न के आधार पर करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए। मोटर दुर्घटना मुआवजे में एकरूपता लाने के लिए शीर्ष न्यायालय ने कहा कि वेतनभोगी व्यक्तियों के मामले में वार्षिक आय दर्शाने के लिए केवल पिछले वर्ष का आयकर रिटर्न ही पर्याप्त होगा। स्वरोजगार व्यक्तियों के मामले में न्यायालय ने कहा कि पिछले 3 वर्षों तक के ITR में घोषित औसत आय को सामान्यतः संदर्भ बिंदु के रूप में माना जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा UPTET 2026 आज से 4 जुलाई तक प्रदेश के 60 जिलों में 955 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। एक रिपोर्ट।
3: TET परीक्षा कुल 5 पालियों में आयोजित होगी। परीक्षा में करीब 19,94,661 अभ्यर्थी सम्मिलित होंगे। इनमें लगभग 17,67,000 अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश के हैं, जबकि 2,27,481 अभ्यर्थी अन्य राज्यों से परीक्षा देने आएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा के दौरान कहा कि प्रत्येक जनपद में स्थापित कंट्रोल रूम प्रभावी ढंग से सक्रिय कार्य करें। उन्होंने सोशल मीडिया पर भी कड़ी निगरानी रखने और प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। समाचार कक्ष से तनवीर फातिमा।
0: इसी क्रम में पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ मंडल आज से 4 जुलाई तक गोरखपुर और लखनऊ के बीच एक जोड़ी अनारक्षित परीक्षा स्पेशल ट्रेन का संचालन कर रहा है। इस गाड़ी में 12 अनारक्षित कोच लगाए जाएंगे। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 118 किलोमीटर लंबे एक्सेस कंट्रोल्ड कानपुर कबराई खंड के निर्माण को दी मंजूरी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जताया आभार। कहा, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और कानपुर रिंग रोड को निर्बाध कनेक्टिविटी प्रदान करेगा यह प्रोजेक्ट। मुख्यमंत्री ने सहारनपुर में 613 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, एयर कनेक्टिविटी से जुड़ेगा शहर। अयोध्या के श्रीराम मंदिर दान प्रकरण की जांच कर रहे विशेष जांच दल एसआईटी की समय सीमा बढ़ाई गई। और आज से शुरू हो रही है उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टीटी 2026। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
4: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। एपीजे अब्दुल कलाम।
5: यदि युवा को है रोजगार पाना तो होगा उसे कौशल बढ़ाना। अपने कौशल का विकास कीजिए, अपने भविष्य को संवारिए। वृद्धों का सम्मान करें, मर्यादा का ध्यान रखें। बड़े बुजुर्गों की करे मदद, आशीर्वाद मिले वही बड़ी दौलत। जो सिखाएं हमें व्यवहारिक ज्ञान, करें ज्येष्ठ लोगों का सम्मान।
4: असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
6: मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलो हर्ट्ज एवं FM 102.9 मेगा हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। 7:31 हुए हैं। प्रस्तुत है फिल्मी गीतों का इंफोटेनमेंट प्रोग्राम सुबह सवेरे।

सुबह सवेरे जब सूरज की पहली किरण धरती को छूती है तो हर ओर एक नई उम्मीद जन्म लेती है। हवाएं जैसी कहती हैं, बीती बातों छोड़ो और फिर आज जीने की नई वजह ढूंढो। हर नई सुबह हमें ये सिखाती है कि जिंदगी हर दिन एक नया अवसर देती है। बस विश्वास बनाए रखिए, क्योंकि उगता सूरज हमेशा ये संदेश देता है, नई शुरुआत करने के लिए आज से बेहतर कोई दिन नहीं। और आज के दिन की शुरुआत में साथ हैं आप अपने रेडियो पार्टनर आकांक्षा के। स्वीकार कीजिए बहुत प्यारा सा नमस्कार। श्रोताओं, सुबह सुबह ये बात कहना थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन सुबह ही तो होती है जिनमें हम पूरे दिन की सभी बातों को मन में बिठाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए, मान लीजिए कि अगर आपको पता चल जाए कि जिस प्लेन से आप यात्रा करने वाले हैं वो प्लेन क्रैश होने वाला है, जिसकी टिकट आपके पास पहले से है, जो कि आपने बहुत महंगी खरीदी है, तो क्या आप तब भी उस प्लेन में बैठेंगे? नहीं ना। तो मेरे दोस्त, मेरे मित्र, मेरे साथी, काहे वो काम करना जिसमें आपको पता है कि आप नहीं जीत पाएंगे? यही तो गलती करते हैं ना हम सब अपने जीवन में। कभी कभी हम उन कामों में अपने आप को, अपने पैसे को, अपनी ऊर्जा को एक बहुत लंबे समय तक लगाए रहते हैं, जिनके परिणाम अंत में हमें शून्य ही लगते हैं। शायद तभी एक बहुत पुरानी कहावत है कि जिसका काम उसी को साझे। इसीलिए काम वो कीजिए, पढ़ाई वो पढ़िए, जिसमें आपको थोड़ा भी लगता है कि आप जीत सकते हैं। और ये बात खास

तौर पर उन बच्चों के लिए है जो अपने भविष्य में बहुत सफल होना चाहते हैं। क्योंकि आपके बच्चों ने 12वीं की परीक्षा पास कर ली है, तो उन्हें वही पढ़ाई पढ़ाइए, वही क्रिएटिव चीज़ें कराइए जिनमें उनका रुझान है। क्योंकि जीवन बहुत छोटा है, बेहतर हो कि हम दूसरों की गलतियों से ही सीख ले लें। क्योंकि रुझान और उत्सुकता ही हमें सफल जीवन जीने की ओर अग्रसित करती है।

श्रोताओं, कहा जाता है कि कुछ कहानियां जमीन पर इतिहास बनाती हैं तो कुछ आसमान में रहस्य छोड़ जाती हैं। 2 जुलाई, जी हाँ, आज ही का दिन 2 जुलाई हमें ऐसे ही दो अलग अलग प्रेरणादायक विषयों से रूबरू कराता है। एक ओर है खेलों की दुनिया की सच्ची और प्रेरक कहानियां, तो दूसरी ओर अंतरिक्ष के अनसुलझे रहस्यों के प्रति मानव की जिज्ञासा। सबसे पहले बात करते हैं विश्व खेल पत्रकारिता दिवस की। इसकी शुरुआत वर्ष 1994 में हुई थी। खेल पत्रकार केवल मैच का परिणाम नहीं बताते, बल्कि खिलाड़ियों के संघर्ष, अनुशासन और सफलता की प्रेरक यात्रा से भी दुनिया को रूबरू कराते हैं। उनकी कलम और आवाज खेलों को समाचार नहीं बल्कि प्रेरणा का माध्यम बनाती है। वहीं विश्व UFO डे भी हर वर्ष 2 जुलाई को मनाया जाता है। इसकी प्रेरणा 2 जुलाई 1947 को अमेरिका में हुए चर्चित रॉजवेल घटना से जुड़ी मानी जाती है। ये दिन हमें याद दिलाता है कि ब्रह्मांड अभी भी अनगिनत रहस्यों से भरा हुआ है और विज्ञान की सबसे बड़ी ताकत है जिज्ञासा, खोज और सत्य की निरंतर तलाश। एक ओर खेल पत्रकारिता हमें धरती पर लिखे जा रहे इतिहास से जोड़ती है, तो दूसरी ओर UFO डे हमें आसमान की अनंत संभावनाओं की ओर देखने का निमंत्रण देता है।

जी हाँ श्रोताओं, यदि आप आगे आगे चलेंगे तो इतिहास पीछे पीछे अपने आप ही बनता चला जाएगा। फिलहाल अब कार्यक्रम में आगे बढ़ रहे हैं आज के इतिहास की ओर। आज 2 जुलाई का इतिहास कहता है कि 1995 में ऑड्रे ग्रोमिक सोवियत संघ के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे। वर्ष 2004 में भारत और पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने जकार्ता में आपसी बातचीत की थी और 2006 में इंग्लैंड फुटबॉल टीम के कप्तान डेविड बेकहम ने अपना पद छोड़ा था। आज 2 जुलाई के दिन जन्म लेने वाले तूफानी सरोज का जन्म 1956 में हुआ। आप भारत के प्रसिद्ध पार्श्व गायकों में से एक थे। लोक साहित्य के क्षेत्र में जाना माना नाम विद्या इंदु सिंह का है, जिनका जन्म 1945 में आज के दिन हुआ था। वर्ष 1925 में भारतीय योगाचार्य स्वामी राम जी जन्मे थे और आंध्र प्रदेश के पहले राज्यपाल चंदूलाल माधव त्रिवेदी का जन्म 1893 में आज के दिन हुआ था। इनके अलावा श्रोताओं, यूसुफ मेहर अली और असित भट्टाचार्य का निधन आज ही के दिन हुआ। आप दोनों ही भारत के महान क्रांतिकारियों और समाज सुधारकों में से एक थे। श्रोताओं, ये था कार्यक्रम में आज का इतिहास और अब चल रहे हैं आज की कुछ प्रमुख सुर्खियों की ओर। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी UPTET जिले में बृहस्पतिवार से यानी आज से 4 जुलाई तक आयोजित की जाएगी। 3 पालियों में उच्च प्राथमिक और 1 पाली में प्राथमिक शिक्षा की ये परीक्षा होगी। UPTET 2 भागों में होगी। उच्च प्राथमिक विद्यालय के लिए अभ्यर्थियों की परीक्षा 2 और 3 जुलाई को 2-2 पालियों में होगी, जबकि प्राथमिक विद्यालय की परीक्षा 4 जुलाई को प्रथम पाली में होगी। अकेलेपन दूर करेंगे इंसान जैसे दिखने वाले रोबोट। जी हाँ, यही कहना है चीन की कंपनी यूबीटेक के शेंजेन में U1 नाम का एक बेहद खास ह्यूमनॉइड रोबोट लॉन्च किया गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI से लेंस इस एंड्रॉइड रोबोट की सिलिकॉन से बनी त्वचा इंसानों की त्वचा जैसी नजर आती है और इसकी आवाज़ बेहद ही सुकून देने वाली है। कंपनी ने इसे भविष्य में इंसानों के अकेलेपन को दूर करने और एक सच्चे साथी की कमी को पूरे करने के लिए बेहतरीन उपाय के तौर पर पेश किया है। अब देखते हैं ये रोबोट हम जैसे व्यक्तियों के लिए कितना लाभदायक होता है। इसी के अलावा 3 दिन दौरे पर भारत पहुंची हैं जापानी प्रधानमंत्री तकाइची। जापान की प्रधानमंत्री साइना तकाइची बुधवार शाम 3 दिवसीय दौरे पर पहुंची हैं। हवाई अड्डे पर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने उनका स्वागत किया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के न्योते पर तकाइची की ये पहली भारत यात्रा है। इस दौरान वो 16वें भारत जापान विश्व शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। श्रोताओं, अभी हमने जानी आज के दिन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण सुर्खियां और अब कार्यक्रम में इस छोटे से अंतराल के लिए रुक रहे हैं।

आकाशवाणी रामपुर से आप इस समय सुन रहे हैं कार्यक्रम सुबह सवेरे आकांक्षा के साथ। श्रोताओं, कुछ आवाजें समय की सीमाओं में नहीं बंधती, वो गीतों के रूप में पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों के दिलों में जीवित रहती हैं। ऐसे ही एक सशक्त और भावपूर्ण आवाज थी हिंदी सिनेमा के लोकप्रिय गायक मोहम्मद अजीज की। 2 जुलाई 2018 को संगीत जगत ने इस अनमोल स्वर को हमेशा के लिए खो दिया, लेकिन उनकी आवाज़ आज भी उतनी ही जीवंत है जितनी अपने दौर में थी। 2 जुलाई 1954 को पश्चिम बंगाल के अशोकनगर में जन्मे मोहम्मद अजीज का संगीत से बचपन से ही लगाव था। उन्होंने 1980 के दशक में हिंदी फिल्म संगीत में अपनी अलग पहचान बनाई थी। उनकी दमदार और भावपूर्ण गायकी ने उन्हें उस दौर में सबसे लोकप्रिय गायकों में शामिल कर दिया था। उन्होंने कई प्रसिद्ध संगीतकारों के साथ काम किया और अपनी गायकों के लिए विशेष रूप से सराहे गए। माय नेम इज़ लखन, मर्द तांगे वाला, आजकल याद कुछ रहता नहीं, दिल दे दिया जान तुझे देंगे जैसे अनेक गीतों में आज भी श्रोताओं की जबान पर ये गीत हमेशा याद रह जाते हैं। मोहम्मद अजीज़ केवल हिंदी ही नहीं बल्कि बंगाली, उड़िया और कई अन्य भारतीय भाषाओं से भी हजारों गीत गाकर अपनी बहुमुखी प्रतिभा का परिचय देते चले गए। आज उनकी पुण्यतिथि पर हम उस अमर स्वर को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं जिसने भारतीय संगीत को अनगिनत यादगार गीतों की सौगात दी है।

श्रोताओं, समय अपनी गति से आगे बढ़ता रहता है। हर नई सुबह अपने साथ नई उम्मीदें, नए अवसर और नई प्रेरणाएं लेकर आती है। आशा है कि आज का ये साथ आपके दिन की शुरुआत को और भी सुखद बना पाया होगा। इसी विश्वास के साथ अब सुबह सवेरे कार्यक्रम से चलने की अनुमति दीजिए। आप मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने और अपनों का साथ और प्रकृति का सम्मान बनाए रखिए। जीवन के हर पल में सकारात्मक सोच और अच्छे कर्मों का प्रकाश यूं ही बनाए रखिए। कार्यक्रम से अब अनुमति दीजिए। आकांक्षा को नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कंपेयर्ड प्रोग्राम सुबह सवेरे आकाशवाणी रामपुर से। हम आकाशवाणी रामपुर से हैं, 8 बजने वाले हैं। अब से कुछ ही पलों में होगा हमारा अगला प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाची के साथ आज नई दिल्ली में वार्षिक शिखर वार्ता करेंगे। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए ब्याज दर 8.25% रखने की घोषणा की। केंद्र सरकार ने भारत में व्हाट्सएप पर नए यूजर नेम फीचर को लेकर मेटा को नोटिस जारी किया, 3 दिन के भीतर स्पष्टीकरण मांगा। दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण रोकने के लिए एक स्थायी शीतकालीन प्रदूषण मास्टर प्लान की अधिसूचना जारी की। फीफा फुटबॉल विश्व कप के रोमांचक मुकाबले में बेल्जियम ने सेनेगल को 3-2 से हराया और पुरुष क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच पहला T20 मैच बारिश के कारण रद्द। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाची के साथ वार्षिक शिखर वार्ता करेंगे। ये वार्ता दोनों पक्षों को आपसी हित के मुद्दों की समीक्षा तथा द्विपक्षीय सहयोग मजबूत बनाने का अवसर प्रदान करेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वार्ता के बाद कुछ सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए जाने की भी संभावना है।
1: नवंबर 2024 में टोक्यो में आयोजित पहले आर्थिक सुरक्षा संवाद के दौरान भारत और जापान ने रणनीतिक सहयोग के लिए 5 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान की थी। इनमें सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज, फार्मास्यूटिकल्स, स्वच्छ ऊर्जा और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी शामिल है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन के दौरान जापान के प्रधानमंत्री से मुलाकात की थी। भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी के एजेंडे को आगे बढ़ाने का प्रमुख मंच बना हुआ है। वर्ष 2025 में आयोजित वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान जापान भारत मानव संसाधन आदान प्रदान एवं सहयोग कार्य योजना शुरू की गई। इसके तहत अगले 5 वर्षों में दोनों देशों के बीच 5,00,000 लोगों के दो तरफा आदान प्रदान का लक्ष्य रखा गया है। इसमें भारत से जापान जाने वाले 50,000 कुशल और अर्ध कुशल कर्मी भी शामिल हैं। दोनों देशों के बीच विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री और अन्य वरिष्ठ स्तरों पर भी नियमित रूप से बैठकें और उच्च स्तरीय आदान प्रदान होते रहते हैं। सुपर्णा सैकिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री तकाई जी भारत की 3 दिन की यात्रा पर कल शाम नई दिल्ली पहुंची। ये भारत की उनकी पहली आधिकारिक यात्रा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज जापान के प्रधानमंत्री के साथ व्यापक विचार विमर्श से दोनों देशों की साझेदारी को और प्रगाढ़ बनाने में सहायता मिलेगी। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारत और जापान हिंद प्रशांत तथा अन्य क्षेत्रों में भी शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए साझा प्रयास जारी रखेंगे। भारत और मलेशिया ने कल नई दिल्ली में आपसी सैन्य सहयोग की समीक्षा की। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि बैठक में दोनों पक्षों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और मुक्त आवाजाही को लेकर प्रतिबद्धता दोहराई। 12वीं उपसमिति की बैठक में दोनों देशों के बीच मौजूदा रक्षा पहलू, सैन्य संपर्क, द्विपक्षीय अभ्यास, प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण, समुद्री तथा अन्य उभरते क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा हुई। केंद्र सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफओ योजना 2026 को अधिसूचित कर दिया है। ये योजना 29 जून से प्रभावी हो गई है। नई योजना 1952 की कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम का स्थान लेगी। इस योजना का उद्देश्य डिजिटल अनुपालन को मजबूत करना, प्रशासनिक दक्षता में सुधार करना, खातों के स्थानांतरण को आसान बढ़ाना और भविष्य निधि ढांचे को नए श्रम कानून के अनुरूप बनाना है। नई योजना में अनिवार्य ईपीएफ अंशदान कर्मचारी और दोनों के वेतन का 12% बना रहेगा। केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित प्रतिष्ठानों पर मौजूदा 10% की दर लागू रहेगी। योजना में आंशिक निकासी के नियमों को भी अद्यतन किया गया है। योजना में पारदर्शिता में सुधार और भविष्य निधि प्रबंधन को अधिक कुशल बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग, ऑनलाइन दावों, ई पासबुक और यूनिवर्सल खाता संख्या से जोड़ने पर जोर दिया गया है। देश में पहली बार आंध्र प्रदेश के उंडवल्ली हेलीपोर्ट पर हेलीकॉप्टर उड़ान के लिए पहली निजी पॉइंट इन स्पेस यानी पिंस व्यवस्था को मंजूरी दी गई है। इस व्यवस्था में उन्नत उपग्रह तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। इससे उन हेलीपोर्ट पर हेलीकॉप्टर के सुरक्षित संचालन में मदद मिलेगी जहां लैंडिंग के लिए पारंपरिक व्यवस्था नहीं है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने भारत में व्हाट्सएप पर यूजर नेम फीचर की शुरुआत करने के मामले में मेटा को नोटिस जारी किया है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार सरकार ने विस्तृत जानकारी 3 दिन के भीतर उपलब्ध कराने को कहा है। एक रिपोर्ट।
2: सूत्रों के अनुसार मंत्रालय ने मेटा को यह भी निर्देश दिया है कि इस मामले पर परामर्श पूरा होने तक यूजर नेम फीचर शुरू न किया जाए। मंत्रालय ने व्हाट्सएप द्वारा की गई एक सार्वजनिक घोषणा पर संज्ञान लिया है। इस घोषणा में व्हाट्सएप ने भारत सहित वैश्विक स्तर पर चरणबद्ध तरीके से अपने यूजर नेम फीचर को लागू करने की बात कही थी। व्हाट्सएप ने बताया कि एक बार ये फीचर सक्रिय हो जाने पर पहली बार संपर्क करने वाले व्यक्ति को प्राप्तकर्ता का फोन नंबर दिखाई नहीं देगा और एक वैकल्पिक यूजर नेम को अतिरिक्त नियंत्रण के रूप में लगाया जा सकता है। ऐसी आशंकाएं हैं कि इस फीचर से ऑनलाइन धोखाधड़ी, डिजिटल अरेस्ट और साइबर धोखाधड़ी की घटनाएं बढ़ सकती हैं। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
0: ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एकीकृत रक्षा स्टाफ के प्रमुख रहे एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने कल नए वाइस चीफ ऑफ द एयर स्टाफ का कार्यभार संभाल लिया है। उन्होंने अवकाश प्राप्त एयर मार्शल नागेश कपूर का स्थान लिया है। श्री नागेश कपूर 4 दशक से वायुसेना में हैं। उनके पास 3,500 घंटे से अधिक का उड़ान अनुभव है। उधर लेफ्टिनेंट जनरल संदीप जैन ने थलसेना उप प्रमुख का पदभार संभाल लिया है। सरकार ने विदेश सचिव विक्रम मिश्री का कार्यकाल 14 जुलाई 2027 तक के लिए बढ़ा दिया है। श्री मिश्री 1989 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं। दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए एक स्थायी शीतकालीन प्रदूषण मास्टर प्लान अधिसूचित किया है। यह हर साल 1 नवंबर से 28 फरवरी तक लागू रहेगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस अधिसूचना में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के संशोधित दिशा निर्देश और सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश शामिल हैं। एक रिपोर्ट।
3: नई व्यवस्था के अंतर्गत केवल वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र वाले वाहनों को ही पेट्रोल, डीजल, सीएनजी और एलपीजी पंपों से ईंधन मिलेगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि दिल्ली के बाहर पंजीकृत BS6 से निचले स्तर के सभी मोटर वाहनों के राजधानी में प्रवेश और संचालन पर रोक रहेगी। वहीं सीएनजी और इलेक्ट्रिक वाहन, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, पुलिस वाहन और पर्यावरण विभाग द्वारा विशेष रूप से छूट प्राप्त श्रेणियों के वाहनों को इस प्रतिबंध से बाहर रखा गया है। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि सर्दियों के दौरान अधिकृत पार्किंग स्थलों पर शुल्क दोगुना किया जाएगा। उन्होंने बताया कि निर्माण गतिविधियों, धूल प्रदूषण और खुले में कचरा या पत्तियां जलाने पर भी कड़े प्रतिबंध लगाए गए हैं। समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्यव्यापी विशेष भूमि मापन अभियान डीजी रोवर की शुरुआत की है। यह अभियान 15 अगस्त तक चलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल सहारनपुर में इस अभियान की शुरुआत की। झारखंड सरकार ने पूर्वी सिंहभूम जिले में मलेरिया से 4 लोगों की मृत्यु के बाद राज्य में स्वास्थ्य अलर्ट जारी किया है। सरकार ने रक्त संक्रमण से फैलने वाली बीमारियों की रोकथाम के लिए सभी उपायुक्तों को तत्काल कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। इधर स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कल दिल्ली में डेंगू की तैयारियों पर एक समीक्षा बैठक की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि राज्य और नगर निकाय डेंगू के मामलों में संभावित वृद्धि से निपटने के लिए तैयार हैं। जयपुर में 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन आज राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कारों के वितरण के लिए समाप्त होगा। ये पुरस्कार केंद्र और राज्य सरकारों तथा अन्य संगठनों द्वारा ई गवर्नेंस संबंधी उत्कृष्ट पहलों के लिए प्रदान किए जाते हैं। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज सुबह जम्मू से श्री अमरनाथ जी यात्रा के पहले जत्थे को रवाना किया। कश्मीर घाटी के बालतल और पहलगाम दोनों आधार शिविरों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु बम बम भोले के नारे लगाते हुए एकत्रित हुए। 57 दिन की ये वार्षिक तीर्थयात्रा कल से कश्मीर के दोनों मार्गों पर आधिकारिक रूप से शुरू हो रही है और 28 अगस्त तक चलेगी। ये यात्रा अनंतनाग जिले के नुनवान पहलगाम मार्ग और गांधरबल जिले के बालतल से होकर गुजरती है। तीर्थयात्रियों को केवल जम्मू श्रीनगर

0: राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर ही यात्रा करनी होगी। मुगल रोड और धार रोड जैसे वैकल्पिक मार्गों पर तीर्थयात्रा का आवागमन वर्जित है। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से पंजीकरण जारी है और यात्रा से पहले लगभग 4 लाख तीर्थयात्रियों ने पंजीकरण करा लिया है। खेलों में फीफा विश्व कप के रोमांचक मुकाबले में बेल्जियम ने सेनेगल को अतिरिक्त समय में 3-2 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश कर लिया है। यूरी टेलीमेंस ने 125वें मिनट में पेनल्टी से गोल दागकर बेल्जियम को 3-2 की रोमांचक जीत दिलाई। राउंड ऑफ 32 के मैच में सह मेजबान अमरीका ने आज सुबह बोस्निया और हर्जेगोविना को नॉकआउट राउंड में 2-0 से हराकर अपनी पहली जीत दर्ज की। इस जीत के साथ ही अमरीका ने राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली है। अब अमरीका का मुकाबला बेल्जियम से होगा। वहीं एक अन्य मैच में कल इंग्लैंड ने कांगो को 2-1 से हरा दिया। अब 6 जुलाई को राउंड ऑफ 16 में इंग्लैंड का मुकाबला मैक्सिको से होगा। पुरुष क्रिकेट में भारत इंग्लैंड के बीच T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच कल बारिश के कारण रद्द हो गया। 5 मैचों की श्रृंखला में दोनों टीमें 0-0 से बराबरी पर हैं। बारिश के कारण इंग्लैंड अपनी पारी शुरू नहीं कर सका। श्रृंखला का दूसरा T20 मैच शनिवार को मैनचेस्टर में खेला जाएगा। वहीं ड्यूरेंट कप फुटबॉल का 135वां संस्करण 25 जुलाई से कोलकाता में शुरू होगा। ये प्रतियोगिता 23 अगस्त तक चलेगी। मैच रांची, इम्फाल, शिलांग और गुवाहाटी में खेले जाएंगे। 2 क्वार्टर फाइनल, 1 सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबले कोलकाता में होंगे। ये पहला मौका है जब ड्यूरेंट कप के मैच झारखंड की राजधानी रांची में भी रखे गए हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने सामाजिक न्याय के अग्रदूत डॉक्टर सोनूलाल पटेल की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि डॉक्टर सोनूलाल ने असमानता और अन्याय के खिलाफ संघर्ष का सशक्त संदेश दिया। केंद्र सरकार ने असम में हाल ही में बाढ़ से निपटने के लिए पूरे सहयोग का आश्वासन दिया है। केंद्रीय कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कल गुवाहाटी में राज्य सरकार के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में सबसे ज्यादा प्रभावित धेमाजी जिले सहित पूरे राज्य में बाढ़ से हुए आरंभिक नुकसान का जायजा लिया। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2 दिन में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान पहुंचने की संभावना है। कर्नाटक के तटीय भाग, गुजरात, कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में अगले 2 दिन में मूसलाधार बारिश का अनुमान है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की सुबह बारिश के साथ हुई। शहर के कई हिस्सों में बारिश हुई, इससे दिल्लीवासियों को भीषण गर्मी से राहत मिली। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: धन्यवाद फरहत। कमर्शियल गैस ATF में राहत, पेट्रोल, डीजल और LPG पर इंतजार। जुलाई के पहले सप्ताह ही जेब पर पड़ेगा अच्छा असर, राजस्थान पत्रिका की खबर है। प्रदूषण हो या ना हो, 1 नवंबर से वर्क फ्रॉम होम, दिल्ली में ग्रैब की पाबंदियां 4 महीने तक स्वतः लागू रहेंगी। हिंदुस्तान सहित सभी अखबारों की आज सुर्खी बनी है। मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में SIT का कार्यकाल बढ़ा, उत्तर प्रदेश सरकार ने 15 जुलाई तक बढ़ाई समय सीमा, वीर अर्जुन की खबर है। दोहा में मध्यस्थों के जरिए अमरीका और ईरान में बातचीत, देश बंधु की सुर्खी है। भारत पहुंची जापान की PM, रणनीतिक संबंधों पर जोर, PM मोदी के साथ शिखर वार्ता आज, दैनिक जागरण के विदेश पन्ने की खबर है। आयात के दम पर GST संग्रह 14% बढ़ा, वृद्धि की रफ्तार 13 माह में सबसे तेज। चुनौतियों के बावजूद विदेशी उत्पादों के बंपर आयात में जून में भरी सरकार की झोली, अमर उजाला के कारोबार पन्ने की ये खबर ध्यान खींचती है। आज और कल भी कभी भी NCR में दस्तक दे सकता है मानसून, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में प्रवेश के बाद अगली मंजिल NCR, हरियाणा और पंजाब, दैनिक जागरण ने यह खबर सचित्र दी है। अमर उजाला लिखता है, उत्तराखंड में भारी बारिश से केदारनाथ हेली सेवा स्थगित, उड़ाने डायवर्ट, चारधाम यात्रा में कुछ ही दिनों में अंतर दिखने का समाचार दैनिक भास्कर ने आंकड़ों सहित प्रकाशित किया है। 20 दिन में बदली तस्वीर दर्शनार्थियों की दौड़ में, केदारनाथ से आगे निकला बद्रीनाथ। छोटे शहरों में ऑनलाइन खरीदारी का क्रेज, कंपनियां बढ़ा रही हैं निवेश, नवभारत टाइम्स की सुर्खी है। वीर अर्जुन ने ग्राम सभा पर अपना संपादकीय प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, गांव की लोकतांत्रिक आत्मा क्या कागजों पर सिमट रही है, ग्राम सभाएं। लेख में कहा गया है कि ग्राम सभा को विकास कार्यों के सोशल ऑडिट का वास्तविक अधिकार मिलना चाहिए। जब लोगों को दिखेगा कि उनके द्वारा किए गए ऑडिट से भ्रष्टाचार पर रोक लग रही है तो उनकी भागीदारी स्वतः बढ़ेगी।
0: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।

0: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं जमीर रजवी। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जापान की अपनी हमनसब सनाए ताकाइची के साथ सरबरा सतह के सालाना मुज़ाकरात करेंगे। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ईपीएफओ ने माली साल 2025-26 के लिए ईपीएफ डिपॉजिट पर 8.25% शरह सूद का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। मरकज ने भारत में व्हाट्सएप पर नए यूजर नेम फीचर शुरू करने से मुतालिक मेटा को नोटिस जारी किया है और 3 दिन के अंदर यूजर नेम फीचर से मुतालिक तफसीली वजाहत देने की हिदायत दी है। दिल्ली हुकूमत ने कौमी राजधानी में मौसमियाती फिजाई आलूदगी पर मुस्तकिल तौर पर काबू पाने के लिए मौसम सरमा की फिजाई आलूदगी से मुतालिक मास्टर प्लान नोटिफाई कर दिया है। फीफा आलमी कप में बेल्जियम ने एक सनसनीखेज मैच में सेनेगल को 3-2 से हरा दिया, जिसके बाद बेल्जियम नॉकआउट मरहले में पहुंचने के साथ ही प्री क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर गया है। और मर्दों के क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के दरमियान पहला टी20 बैन अलाकवामी मैच बारिश की वजह से मुलतवी कर दिया गया। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जापान की अपनी हमनसब सनाए ताकाइची के साथ सरबरा सतह के सालाना मुज़ाकरात करेंगे। सरबरा सतह के मुज़ाकरात दोनों फरीकों को इस बात का मौका फराहम करेंगे कि वो अपने तमाम बाहमी तआवुन का जायजा लें और उन्हें मुस्तहकम करें। साथ ही साथ आपसी मफादात के इलाकाई और आलमी उमूर पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। तवक्को है कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी और वज़ीर-ए-आज़म ताकाइची के दरमियान बातचीत के बाद कई मफाहमत नामों पर दस्तखत किए जाएंगे। जापान की वज़ीर-ए-आज़म भारत के 3 दिन के दौरे पर कल नई दिल्ली पहुंची हैं। वज़ीर-ए-आज़म ताकाइची का भारत का ये पहला दौरा है। वज़ारत खारजा ने कहा कि ये दौरा भारत और जापान के दरमियान खसूसी कलीदी और आलमी शराकतदारी को आगे ले जाने में अहम कदम है। हमारे नामा निगार ने इतला दी है कि इक्तसादी सलामती के ताल्लुकात का एक कलीदी सुतून समझा जा रहा है। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
1: नवंबर 2024 में टोक्यो में हुए पहले इक्तिसादी सलामती मुज़ाकरात के दौरान दोनों मुल्कों ने कलीदी इश्तराक के लिए तरजीह शोबों के तौर पर 5 शोबों की निशानदेही की थी। इन शोबों में सेमी कंडक्टर्स, अहम मादनियात, दवासाजी, साफ तवानाई और इतलात व मवासलाती टेक्नोलॉजी शामिल हैं। इन आला सतही सियासी मुसफियात से भारत जापान ताल्लुकात की अक्कासी होती है। हाल ही में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने फ्रांस में G7 समिट के दौरान जापानी वजीर आजम के साथ गुफ्तगू की थी। इससे पहले दोनों रहनुमाओं ने गुज़श्ता साल नवंबर में जोहान्सबर्ग में G7 समिट के मौके पर मुलाकात की थी। बाहमी सतह की सालाना सरबरा मीटिंग शराकतदारी के कलीदी एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए एक अहम प्लेटफार्म है। 2025 में सालाना समिट के दौरान जापान भारत के दरमियान इंसानी वसाइल के तबादले और तवाउन के लिए एक एक्शन प्लान शुरू किया था, जिसमें दोनों मुल्कों की तरफ से भारत से जापान के लिए 50,000 हुनरमंद और नीम हुनरमंद अमले समेत 5 साल में 5 लाख अमले का तबादला का मंसूबा है। सालाना समिट के अलावा वजीर खारजा, वजीर दिफा, NSA, खारजा सेक्रेटरी और दीगर सतहों पर भी आला सतह के तबादले और मीटिंगें बाकायदा तौर पर होती रहती हैं। नई दिल्ली से सुपर्णा साइकिया की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर।
0: इस दौरान वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वो जापान की वज़ीर-ए-आज़म सनाए ताकाइची के साथ आज वसीतर उमूर पर तबादला ख्याल के मुंतजर हैं, जिससे भारत और जापान के दरमियान खसूसी कलीदी और आलमी शराकतदारी को मजीद वसत मिलेगी। सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि जापान की वज़ीर-ए-आज़म के भारत दौरे पर उनकी मेज़बानी करना उनके लिए बायस मसरत होगा। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि मोहतरमा ताकाइची की मुश्तरक कोशिशों के जरिए भारत और जापान भारत बहरुल काहल और उससे आगे भी अमन इस्तेकाम और खुशहाली को आगे बढ़ाने के लिए कोशिशें जारी रखेंगे। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ईपीएफओ ने माली साल 2025-26 के लिए ईपीएफ डिपॉजिट पर शरह सूद 8.25% रखने से मुतालिक सरकारी नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। ईपीएफ स्कीम 1952 पर मेहनत और रोजगार की वजारत की जानिब से मंजूरी मिलने के बाद इस शरह सूद का ऐलान किया गया है। ईपीएफओ ने अपने इलाकाई और जोनल दफातर को हिदायत दी है

मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलो हर्ट्ज एवं FM 102.9 मेगा हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। 8:45 हुए हैं, सुनिए 102.9 मॉर्निंग हिट्स।

0: नमस्ते बहन और भाइयों, बड़े ही कम शब्दों में आपको सुनाना चाहता हूँ उस साल का लोकप्रिय गीत ये
1: 102.9 मॉर्निंग हिट्स। सुन रहे हैं आप आकाशवाणी रामपुर से। प्रोग्राम का ये पहला गाना आपके रेडियो सेट पर होगा फिल्म बद्री की दुल्हनिया। इस फिल्म से
0: सलाम ले जाता हुआ उड़न खटोला और तीन बजाती हुई

बप्पी लहरी और अनुराधा पौडवाल को अभी आप सुन रहे थे फिल्म बद्री की दुल्हनिया में। 102.9 मॉर्निंग हिट्स में अब आपको सुनवा रहे हैं बैंग बैंग इस फिल्म का गीत, और आवाज होगी हर्षदीप कौर और बनी दयाल की। शब्द लिखे हैं अवंतिता दत्त ने और संगीत है विशाल शेखर का।

विक्रम की आवाज में अभी आप सुन रहे थे वेलकम टू द जंगल, इस फिल्म का गाना। 102.9 मॉर्निंग हिट्स आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रामपुर से। अब सुनिए बचना ए हसीनो, इस फिल्म का गाना किशोर कुमार, सुनीत कुमार और विशाल की आवाज में।

अब सुनवाएंगे आपको धूम 3 इस फिल्म का गीत। आवाज होगी सिद्धार्थ महादेवन और शिल्पा राव की। शब्द लिखे हैं समीर अंजान ने और संगीत है प्रीतम का।

102.9 मॉर्निंग हिट्स अभी आप सुन रहे थे। हम आकाशवाणी रामपुर से हैं। 9:15 होने को हैं। अगला प्रसारण आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से।

बेसिक शिक्षा अधिकारी राहुल सिंह ने बताया कि प्राथमिक विद्यालय दोतरा विकास क्षेत्र महाराजगंज जनपद रायबरेली ने राष्ट्रीय स्वच्छ एवं हरित विद्यालय रेटिंग SHVR प्रतियोगिता 2025-26 में विजेता बनकर एक नया इतिहास रच दिया है। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के निर्देशन में शैक्षिक सत्र 2025-26 हेतु देश के कक्षा 1 से 12 तक के कुल 14,75,000 समय सरकारी एवं प्राइवेट विद्यालयों में से यह प्रतियोगिता निर्धारित मानकों पर जनपद राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर आकलन कर अंतिम रूप से पूरे देश के कुल 191 विद्यालयों को इस पुरस्कार हेतु विजेता घोषित किया गया है, जिसमें उत्तर प्रदेश के प्राथमिक विद्यालय दोतरा विकास क्षेत्र महाराजगंज जनपद रायबरेली ने प्रत्येक स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए अब राष्ट्रीय स्तर पर भारत में 91वीं रैंक प्राप्त कर इस प्रतियोगिता का राष्ट्रीय विजेता बन चुका है। उन्होंने बताया कि भारत सरकार द्वारा इस प्रतियोगिता के प्रत्येक विजेता हेतु जुलाई माह में नई दिल्ली में सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा, जिसमें प्रत्येक विद्यालय को प्रशस्ति पत्र के साथ 1,00,000 रुपए की अतिरिक्त अनुदान राशि भी प्रदान की जाएगी। हेडमास्टर को शैक्षिक एक्सपोजर विजिट पर भी भेजा जाएगा। उन्होंने बताया कि प्राथमिक विद्यालय दोतरा की इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर समस्त विद्यालय परिवार, ग्राम समुदाय एवं जनपद रायबरेली को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि जनपद दोतरा से दिल्ली तक गूंजा नाम राष्ट्रीय जीत ने रायबरेली व उत्तर प्रदेश का सम्मान बढ़ाया है। इस अवसर पर जिला शिक्षा अधिकारी राहुल सिंह ने बताया कि ज्येष्ठ पूर्णिमा के पावन अवसर पर दलमऊ स्थित VIP गंगा घाट पर आयोजित भव्य गंगा महाआरती कार्यक्रम में जनपद के प्रभारी मंत्री एवं उत्तर प्रदेश सरकार के खादी एवं ग्रामोद्योग, रेशम उद्योग, हथकरघा तथा वस्त्रोद्योग विभाग के मंत्री ताकेश अचान ने मुख्य अतिथि के रूप में सहभागिता करते हुए माँ गंगा का विधिवत पूजन अर्चन किया। कार्यक्रम में बड़ा मठ के देवेंद्रानंद जी महाराज की गरिमा में उपस्थित रहे। प्रभारी मंत्री ने उपस्थित श्रद्धालुओं से माँ गंगा की निर्मलता एवं अविरलता बनाए रखने का संकल्प लेने का आह्वान करते हुए कहा कि प्रत्येक नागरिक का दायित्व है कि वह गंगा सहित सभी जल स्रोतों को स्वच्छ बनाए रखने में सक्रिय योगदान दें। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण एवं जल संरक्षण के लिए जन भागीदारी को और अधिक सशक्त बनाए जाने की अपील की। महागंगा आरती के दौरान वैदिक मंत्रोच्चार, शंखनाद, दीपों की अलौकिक आभा एवं भक्ति रस से ओतप्रोत भजन कीर्तन ने पूरे वातावरण को आध्यात्मिक ऊर्जा से सरोबार कर दिया। इस अवसर पर आपदा एवं बाढ़ नियंत्रण में सराहनीय योगदान देने वाले नाविकों व गोताखोरों को सम्मानित भी किया गया। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत जनपद में 100 दिवसीय टीबी मुक्त भारत अभियान संचालित किया जा रहा है। अभियान के तहत टीबी रोगियों की शीघ्र पहचान, समय पर उपचार तथा जन जागरूकता बढ़ाने के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा व्यापक स्तर पर गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। इसी क्रम में सांसद KL शर्मा ने जनपदवासियों से टीबी उन्मूलन अभियान में सक्रिय भागीदारी करने की अपील करते हुए कहा कि टीबी मुक्त जनपद का सपना जन भागीदारी से ही साकार होगा। उन्होंने कहा कि यदि किसी व्यक्ति को 2 सप्ताह से अधिक समय तक लगातार खांसी, बुखार, लगातार वजन कम होना, रात में अत्यधिक पसीना आना अथवा बलगम के साथ खून आना जैसे लक्षण दिखाई दे तो उसे नजरअंदाज न करें। ऐसे व्यक्ति को तत्काल अपने निकटतम सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर टीबी की जांच करानी चाहिए। जनपद न्यायाधीश अमित पाल सिंह, जिलाधिकारी सरनीत कौर ब्रोका व पुलिस अधीक्षक रवि कुमार ने जिला कारागार का निरीक्षण कर वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने सभी बैरकों का भ्रमण किया तथा कारागार की पाकशाला में बंदियों को दिए जाने वाले भोजन की गुणवत्ता, साफ सफाई, पेयजल और प्रकाश व्यवस्था का अवलोकन किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी व्यवस्थाएं नियमानुसार दुरुस्त रखी जाएं और बंदी गृह में रह रहे मरीजों के लिए समुचित चिकित्सा सुविधा सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि जेल की सभी व्यवस्थाएं जेल

0: लगाई गई विकास प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। प्रदर्शनी में 41 विभागों द्वारा केंद्र एवं प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं एवं उपलब्धियों को प्रदर्शित किया गया। उत्तर प्रदेश की पहचान बन चुकी आध्यात्मिक स्थलों के विकास, कानून व्यवस्था एवं आंतरिक सुरक्षा के सुदृढ़ मॉडलों को पहले और अब की थीम में प्रदर्शित किया गया। प्रदर्शनी में सूचना विभाग द्वारा लगाई गई विकास प्रदर्शनी विशेष आकर्षण का केंद्र रही, जिसमें केंद्र सरकार एवं प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को चित्रों एवं जानकारियों के माध्यम से प्रदर्शित किया गया। कार्यक्रम में प्रभारी मंत्री ने प्रधानमंत्री सूरघर मुफ्त बिजली योजना, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, विकास अभियान योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना आदि के लाभार्थियों को अनुदान चेक और आवास स्वीकृत पत्र वितरण किए गए। प्रभारी मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीते 12 वर्षों में भारत में विकास, सुशासन, आत्मनिर्भरता और जन कल्याण के क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की हैं। उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाओं का उद्देश्य अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक लाभ पहुंचाना है और आज करोड़ों गरीब किसान, महिला, युवा एवं वंचित वर्ग के इन योजनाओं से लाभान्वित होकर आत्मनिर्भर बन रहे हैं। केंद्र में एनडीए सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में जनपद जालौन के युवाओं को स्वरोजगार एवं उद्यमिता के क्षेत्र में प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से एक विशेष औद्योगिक भ्रमण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडे ने कलेक्ट्रेट परिसर में 100 युवा उद्यमियों को लेकर जाने वाली बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जिलाधिकारी ने कहा कि सरकार युवाओं को रोजगार देने वाला बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। यह भ्रमण कार्यक्रम युवाओं को उद्यमियों की वास्तविक कार्य प्रणाली से परिचित कराने एवं उन्हें स्वयं का उद्योग स्थापित करने के लिए प्रेरित करने का उद्देश्य से आयोजित किया गया। भ्रमण के दौरान युवाओं के राजकीय औद्योगिक संस्थान कालपी स्थित हथकरघा, हाथ कागज उद्योग की इकाइयों तथा खादी ग्रामोद्योग प्रशिक्षण संस्थान का अवलोकन किया गया। जिले में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की पूर्ण सुबह पर जनपद मुख्यालय उरई में योग के प्रति अभूतपूर्व जन उत्साह देखने को मिला। पहली बार इतनी बड़ी संख्या में नागरिक स्वयं सड़कों पर उतरकर दूसरों को योग के प्रति जागरूक करते नजर आए। लगभग 4000 लोगों ने टाउन हॉल के चौक, घंटाघर और रेलवे स्टेशन मार्ग होते हुए करीब 5 किलोमीटर लंबी भव्य जागरूकता रैली निकालकर स्वस्थ जीवन के लिए योग अपनाने का संदेश दिया। रैली को सदर विधायक गौरी शंकर वर्मा, जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडे एवं मुख्य विकास अधिकारी के सिंह ने टाउन हॉल परिसर में हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली में उरई के सभी वार्डों से 100 से अधिक लोगों ने सहभागिता रखी। शहर के मुख्य चौराहों और मार्गों पर नागरिकों ने रैली का स्वागत किया तथा योग के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए प्रयास की सराहना की। सदर विधायक गौरी शंकर वर्मा ने कहा कि योग भारत की संस्कृति विरासत ही नहीं बल्कि स्वास्थ्य और संतुलित जीवन का आधार है। जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडे ने कहा कि इसकी बड़ी संख्या में लोगों की सहभागिता यह दर्शाती है कि जनपद में योग के प्रति जागरूकता लगातार बढ़ रही है।
1: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
2: आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से अभी आप सुन रहे थे जिले की हलचल।
3: मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलो हर्ट्ज एवं FM 102.9 मेगा हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। 9:25 हुए हैं। सुनिए प्रेरक प्रसंग। आज आपको सुनवा रहे हैं सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती के जीवन पर ये प्रसंग।

0: मोइनुद्दीन चिश्ती, जिन्हें ख्वाजा गरीब नवाज के नाम से भी जाना जाता है, एक प्रमुख सूफी संत थे। उनका जन्म 1141 ईस्वी में सिस्तान प्रांत ईरान के गांव में हुआ था। मोइनुद्दीन चिश्ती ने चिश्तिया सूफी सिलसिले की स्थापना की और उनकी शिक्षाएं इस्लाम और मानवता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहीं। मोइनुद्दीन चिश्ती का पूरा नाम ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती था। उनके पिता का नाम सैयद गियासुद्दीन और माता का नाम बीबी माहनूर था। उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव में ही प्राप्त की। बचपन में ही माता पिता के देहांत के बाद वे खेती करने लगे। एक दिन एक दरवेश ने उनकी जीवन दशा को बदल दिया और मोइनुद्दीन चिश्ती ने सूफी मार्ग अपनाया। मोइनुद्दीन चिश्ती ने कई सूफी संतों से शिक्षा प्राप्त की। उनके गुरु ख्वाजा उस्मान हारूनी थे, जिन्होंने उन्हें आध्यात्मिकता का मार्ग दिखाया। उन्होंने वर्षों तक ध्यान साधना और आत्मज्ञान की खोज में समय बिताया। 1191 ईस्वी में मोइनुद्दीन चिश्ती भारत आए और अजमेर में बस गए। यहाँ उन्होंने अपने सूफी मिशन का प्रचार प्रसार किया। उनकी शिक्षाओं का मुख्य आधार धार्मिक एकता और मानवता की सेवा था। मोइनुद्दीन चिश्ती की शिक्षाएं मानवता, प्रेम, करुणा और सेवा के उच्चतम आदर्शों पर आधारित हैं। उनकी शिक्षाओं ने न केवल उनके अनुयायियों बल्कि समग्र समाज को गहरे रूप से प्रभावित किया। उनका मानना था कि सभी प्राणियों से प्रेम करना और करुणा दिखाना सबसे महत्वपूर्ण है। वे कहते थे, प्रेम सबसे बड़ा धर्म है। उन्होंने ये भी सिखाया कि हमें सभी इंसानों के साथ समान व्यवहार करना चाहिए, चाहे उनका धर्म, जाति या सामाजिक स्थिति कुछ भी हो। वे कहते थे, जो दूसरों की सेवा करता है वह भगवान की सेवा करता है। उनका मानना था कि हर धर्म का मूल उद्देश्य मानवता की सेवा और प्रेम का प्रचार करना है। उन्होंने सिखाया कि हमें हमेशा अपने अहंकार को नियंत्रित करना चाहिए और विनम्र रहना चाहिए। मोइनुद्दीन चिश्ती ने समाज में एकता और भाईचारे का संदेश दिया। उन्होंने सिखाया कि हमें जाति, धर्म और भाषा के भेदभावों को दूर करके सभी को एक समान दृष्टि से देखना चाहिए। उनका मानना था कि एकता में ही शक्ति है और समाज की उन्नति के लिए आपसी सहयोग और समझ आवश्यक है। उन्होंने गरीबों, बेसहारा और जरूरतमंदों की सेवा की। उनकी दरगाह पर आने वाले हर व्यक्ति को भोजन और आश्रय मिलता था। उनके चमत्कारिक कृत्यों और समाज सेवा ने उन्हें समाज में एक प्रतिष्ठित स्थान दिलाया। 1236 ईस्वी में मोइनुद्दीन चिश्ती का निधन अजमेर में हुआ। उनकी दरगाह आज भी अजमेर में स्थित है और यह एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। हर साल लाखों लोग उनके उर्स पर आते हैं। उनके अनुयायी उन्हें गरीब नवाज, गरीबों का संरक्षक के रूप में याद करते हैं और उनकी शिक्षाओं का पालन करते हैं। उन्होंने धार्मिक एकता और सहिष्णुता का संदेश फैलाया और समाज के हर वर्ग को समान दृष्टि से देखा। उनका जीवन एक प्रेरणा स्रोत है और उनकी विरासत हमें हमेशा सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है।
1: सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती के जीवन से अभी आप सुन रहे थे प्रेरक प्रसंग।

मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलो हर्ट्ज एवं FM 102.9 मेगा हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। पूर्वाहन के 10 बजे हैं। प्रस्तुत हैं फरमाइशी फिल्मी गीत आपके अनुरोध पर।

आपके अनुरोध पर कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को आकांक्षा की ओर से बहुत प्यारा सा नमस्कार। श्रोताओं, चूंकि आज है मोहम्मद अजीज गायक कलाकार की पुण्यतिथि, इसलिए कार्यक्रम में शामिल किए हैं आज हमने इन्हें गायक कलाकार को। आज आप सुनेंगे मोहम्मद अजीज के गाए हुए कुछ फिल्मी गीत। कार्यक्रम का पहला गीत सुनवाएंगे आपको खतरों के खिलाड़ी। इस फिल्म से आवाज होगी अनुराधा पौडवाल और मोहम्मद अजीज की। कार्यक्रम की ये गीत की फरमाइश की है आप सभी ने। छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरेंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और जावेंद्र कुमार वर्मा। सरगुजा मैनपाट से सोनिया थापा, सोनम थापा, रेशमा थापा, आदिबा थापा। बिहारी कॉलोनी लोनी से परवीन डोम, सरफुद्दीन डोम, कुमारी वली डोम, कुमारी डब्लू डोम। जेल रोड मथुरा से वसीम आसमा बेलदार, अक्रम आसमा बेलदार और उल्हा आसमा बेलदार। पंडित नगला बाईपास कोहिनूर तिराहा के पास से डॉक्टर अख्तर हुसैन बहरूनिशा, असलम हुसैन, मकसूद हसन। बीबीपुर से मकसूद हुसैन और नाजिम अली। डाबर तालाब लोनी से रजा अहमद, आरिश हुसैन, ईशान हुसैन, मरियम और बुशरा। परी महल कासगंज से हमारे श्रोता हैं आबाद खान, नबील खान, आरफा खान, इल्मा खान, आफरीन खान और जमीर खान। जर्डू वर्डू महाराष्ट्र से बाबा साहब वाड़ोदे, मीनाक्षी चरपे, रजनी और युवराज। गांधी समाधि रोड रामपुर से गफार खान, रजिया खान, सिमरन खान, रूमा खान, बॉबी खान, शमा खान, बिक्की खान, बुशरा खान और आसिम खान। जिला अस्पताल के पास से गजन खान, शमा परवीन, शमशद अली आजमगुल अफशा, शहनाज बाबू अंसारी, रजिया गफार और हबीब अहमद इदरीसी। मोहल्ला हलवाईयान शेरकोट बिजनौर से ये खत भेजा है मोहम्मद वक़ार फरीदी, इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजिदा रानी और हिना कौसर ने। आइए सुनते हैं आप सभी के लिए खतरों के खिलाड़ी इस फिल्म का गीत। गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

खतरों के खिलाड़ी इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। कार्यक्रम का अगला गीत होगा 20 साल बाद इस फिल्म से। कार्यक्रम के इस गीत की फरमाइश की है आप सभी ने। कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार राय और हैप्पी राय। दुबिहा निवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, रोशनी राय और प्रांजल राय। शेरपुर कला गाजीपुर से अवधेश रॉय, प्रीति रॉय और नवनीत रॉय। गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर बैग, जैतेक बिर्ग और मीका बैर्ग। जातुका किशनपुर से आलम दिलकश, शबाना नाज, रिस्वान राही, इमरान राजा, शबाना आलम, चांदनी नाज। सिराजपुर गणेशपुर से हिना कौसर और मोहम्मद वकील राही। पाकिजा रेडियो श्रोता संघ वैष्णव कॉलोनी सनावद मध्य प्रदेश से हमारे श्रोता हैं मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद चाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अल्तमश खत्री, रमेश गढ़ और मोहम्मद शादाब खत्री। एंड्रोम थाना लक्ष्मीबाई, अनाज मंडी रोड, वंदना नगर, इंदौर से राम लक्ष्मण, भरत शत्रुघ्न खर्जे, ललिता नारायण खर्जे, गणेश कार्तिक खर्जे, संजना परी खर्जे, मालती स्वाति प्रयाग चौधरी और कुमारी देविका चौधरी। लेवाखेल मोहनला चांदर बिस्वा से नारायण भाव विठल, ललिता नारायण खर्जे, परी संजना खर्जे, गणेश कार्तिक खर्जे, ब्रोनो ऊषा सोरना, स्वाति प्रयाग चौधरी और मालती चौधरी। इसी गीत की फरमाइश की है छत्रपति संभाजी नगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और शीतल राजेश। रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा। आइए सुनते हैं आप सभी के लिए आनंद बख्शी का लिखा गीत मोहम्मद अजीज और सारिका कपूर की आवाज में। फिल्म का नाम है 20 साल बाद।

में वी और एफएम के चैनल्स पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी रामपुर। इस समय आप सुन रहे हैं आकांक्षा के साथ कार्यक्रम आपके अनुरोध पर। आज आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद अजीज की पुण्यतिथि पर उनके गाए हुए कुछ फिल्मी नगमे।

नीतू वैद, बठिंडा रोड डबवाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग और मोहित नारंग, जिला मुरादाबाद पस्तौर से अतर सिंह सैनी, मुन्नी पवित्रा, अजय आंचल, आकाश सैनी, मानवी दक्ष, विकी रुद्र, छवि काव्या खमानी और इन्हीं के साथ मंझोली से हीरावती देवी और सभी सैनी परिवार के सदस्य हैं। मेहरनगर उमड़खेर महाराष्ट्र से अभिजीत गवाड़कर, सरिता गवाड़कर, सिद्धांत और एकांश गवाड़कर, आकार हाइट्स बहादुरा नागपुर से शैलेश, वैशाली, सुमित और ध्वनि गवाड़कर, सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से कमरला ठेकेदार, नसीम बेगम, आयशा खान, हादिया खान, आसपास हुए सालिया शुएब खान, मुश्तबा खान, राउफ भाई और शाहिद भाई, गांधीबाग अकोला से रमेश कटनकर और वैशाली कटनकर, महादेव घाट अमलेश्वर से डोमेन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश तारनी, सूरज ज्योति और बाबू रेयांश ठाकुर, खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलकराज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन और अंकुश अरोड़ा, डोंगरगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजबिये, राधिका गजबिये, अनिष्का और तन्मय गजबिये, बेरेडी से राजेश सोनी, कंचन सोनी, गायत्री वैष्णवी, चंचल, अर्जुन और धीरज, इंदिरा विहार रायगढ़ से अक्रम नूरजहां, डब्लू नूरजहां, सईद नूरजहां, वसीम नूरजहां और वलीउल्ला नूरजहां, राजनांदगांव से याकूब आसमा, यूसुफ, इमरान और इरफान आसमा, जेल रोड रायगढ़ से रेशमा तिवारी, सोनम और आदिबा तिवारी, जर्डू वर्डू महाराष्ट्र से बाबा साहब बड़ौदे, मीनाक्षी चरपे, रजनी और युवराज, नाज मंजिल महसौर, सीतामढ़ी बिहार से अक्रम हुसैन प्रिंस, वसीम अक्रम, आरिस वसीम, शमीम अक्रम, ममता रानी शर्मा, बच्चू शेख, बेगम इशरत अक्रम, रुबीना वसीम, नदीम अक्रम, अमन अक्रम, पूनम कुमारी शर्मा और चीना शेख, कुआउथ बिहार से हैं शेख जफर हसन और नरगिस जफर, नूर महल महसौर से हुमैरा नाज, सुमैरा नाज, अबीहा नाज, अरहन बाबू, हमजा बाबू और मुजम्मल बाबू, अफजलपुर पट्टी तहसील सदर जिला रामपुर से राहुल गौतम, दिलीप सिंह, विशाल, चमनलाल मिश्री, रूमा, मंजू, प्रियंका, शीतल, पूजा और कविता के साथ हैं अंश गौतम, जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज रिफाकत, शमीम, शमरीन परवीन, मोहम्मद रिहान और माहिरा नूर, आइए सुनते हैं आप सभी के लिए बीवी हो तो ऐसी इस फिल्म का गीत।

इसी गीत के साथ फरमाइशी पत्रों पर आधारित आपके अनुरोध पर कार्यक्रम संपन्न करने की अब आकांक्षा को दीजिए अनुमति। आज आपके अनुरोध पर कार्यक्रम में आपने सुने मोहम्मद अजीज के गाए हुए कुछ फिल्मी नगमे। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे फरमाइशी फिल्मी गीत। आपके अनुरोध पर हम आकाशवाणी रामपुर से बोल रहे हैं। 10:30 हुए हैं। अब आपको सुनवाते हैं सुनहरा दौर, ये कार्यक्रम।

सुनहरा दौर। श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं 90 के दशक के कुछ फिल्मी गीत। आनंद लीजिए कार्यक्रम के इस पहले गीत का, जिसे गाया है लता मंगेशकर और कुमार सानू ने। शब्द लिखे हैं आनंद बख्शी ने और संगीत है नुसरत फतेह अली खान का। फिल्म का नाम है कच्चे धागे।

हम हैं राही प्यार के। इस फिल्म का गीत होगा अब आपके रेडियो सेट पर। आवाज है कुमार सानू और अलका याग्निक के। आज सुनहरा दौर। इस कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं 90 के दशक के कुछ फिल्मी गीत।

सुनहरा दौर, अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। कार्यक्रम के अंतर्गत आपने सुने 90 के दशक के फिल्मी गीत। हम आकाशवाणी रामपुर से बोल रहे हैं।

मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्ज़ और FM 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये रामपुर केंद्र है। हमारे श्रोता सुन रहे हैं हमारी प्रथम सभा के कार्यक्रमों को। हमारा अगला कार्यक्रम धरोहर, आज इसमें सुनिए नाटक पापा मैं तारा बन गई, जिसके लेखक हैं गुडविन मसी, सह प्रस्तुति है असीम सक्सेना की और प्रस्तुति है विक्रम चौधरी की।

0: रात का 1 बज रहा है और मुझे नींद नहीं आ रही है। सुना है अगर रात को नींद ना आए तो समझ लो तुम्हें कोई ख्वाब में देख रहा है, पर मुझे ख्वाब में कौन देखेगा? पापा कहते थे कभी रात को नींद ना आए तो कोई अच्छी किताब पढ़ना, नींद आ जाएगी। लेकिन मुझे तो किताबें पढ़ने का भी शौक नहीं है। एक काम करता हूं, भूमिका को जगा देता हूं, उसके साथ बात करके समय गुजर जाएगा। नहीं नहीं नहीं, रहने दो, बेचारी सुबह से रात तक घर के कामों में खटती रहती है, थक जाती है, इसे सोने देते।
1: पापा क्या हुआ, नींद नहीं आ रही?
0: अरे ये तो चांदनी की आवाज है।
1: अरे ऐसे क्यों चौंक रहे हैं पापा, मैं आपकी लाडली बेटी चांदनी ही बोल रही हूँ।
0: चांदनी?
1: हाँ चांदनी। और ये इधर उधर क्या देख रहे हो? इधर देखो, मैं यहाँ हूँ आसमान में, आपकी खिड़की के ठीक सामने। जो तारा आपकी खिड़की के सामने दिख रहा है वो मैं हूँ।
0: तारा मतलब हमारी बेटी चांदनी? तो
1: सॉरी पापा, मैं आपको बताना भूल गई कि मैं तारा बन गई। याद करो पापा, मैं आपसे कहा करती थी ना, मैं बहुत जल्दी तारा बनके आपकी खिड़की के सामने चमका करूंगी और आप मुझे देखकर खुश हुआ करना। पापा आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज आपको और मम्मी को देखती हूँ। पापा यहाँ मेरे बहुत सारे तारे दोस्त हैं, मैं उनके साथ खेलती हूँ, उनके साथ दौड़ती भागती हूँ, मैं यहाँ बहुत खुश हूँ, मुझे यहाँ बहुत अच्छा लगता है। लेकिन पापा मुझे आपकी और मम्मी की बहुत याद आती है, मैं आपको बहुत मिस करती हूँ।
0: याद तो मुझे भी तुम्हारी आती है बेटा, तुम्हारी वो मासूम किलकारियां, चिड़िया की तरह चहकना, तुम्हारा हंसना बोलना इतराना इठलाना, सब कुछ आज भी मेरे कानों में तुम्हारी आवाज बनकर गूंजता है। सब कुछ तुम्हारी आवाज बनकर गूंजता है, आवाज बनकर गूंजता है। भूमिका यूं ही खामोश बैठी रहोगी, कुछ बोलोगी नहीं?
2: क्या बोलूं आर्यन, 7 साल हो गए हमारी शादी को, मगर अब तक मैं माने। अब तुम ही बताओ आर्यन, इतनी जिल्लत उठाकर किसका मन करेगा हंसने को?
0: तुम्हें क्या लगता है भूमिका, तुम्हारे माँ ना बनने का दुख मुझे नहीं है? बे औलाद होने के ताने तो मुझे भी सुनने को मिलते हैं भूमिका। घर से ऑफिस तक लोग तरह तरह की बातें बनाते हैं, लेकिन तुम भूमिका, मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है, वो हमारी जरूर सुनेगा।
2: पता नहीं कब सुनेगा, सुनेगा भी या नहीं।
0: अरे
3: यहाँ भीड़ क्यों लगी है भाई? क्या हुआ भैया?

0: भीड़ कैसी लगी है?
1: अरे होता क्या, कोई एक दिन की बच्ची को यहाँ फेंक गया।
0: एक दिन की बच्ची को?
1: हाँ, पता नहीं किसने ये पाप किया है।
2: अरे जब पालने की औकात नहीं थी तो किसी बेऔलाद को दे देते, या कूड़े के ढेर पर मरने को क्यों फेंक दिया?
1: अरे बेटे की चाहत में बेटी पैदा हो गई होगी, इसीलिए यहाँ फेंक दिया।
2: अब किसी को क्या पता बेटे की चाहत थी या
3: लगता है भगवान ने हमारी सुन ली, ये बेटी उसने हमारे लिए ही दी है। मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगा, इसकी परवरिश करूंगा, इसे पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा और काबिल इंसान बनाकर समाज में इसे मान सम्मान दिलवाऊंगा। अभी तो इसने दुनिया में कुछ देखा भी नहीं है, किसी अच्छाई बुराई को जाना भी नहीं है। अरे पाप तो उन्होंने किया है जिसने इसे जन्म देकर यहां लोगों के ताने खाने के लिए फेंक दिया। ये बच्ची जिसकी भी है, जैसी भी है, मैं इसे पाल लूंगा। भूमिका भी इस बच्ची को पाकर बहुत खुश होगी, बहुत खुश होगी।
4: भूमिका, अरे ओ भूमिका, अरे कहाँ हो, अरे जल्दी आओ भाई।
5: अरे अरे ये किसका बच्चा है?
3: वो सब बाद में बताऊंगा, पहले तुम इसे गोद में तो लो।
5: हाँ, लाओ आर्यन लाओ।
3: अरे वाह, ये तो तुम्हारी गोद में जाते ही चुप हो गई।
5: बहुत प्यारी बच्ची है। किसकी है?
3: हा? हमारी।
5: हमारी मतलब?
3: मतलब अंधेरी पुलिया के पास जो कचरे की पेटी है ना, उसी में बेचारी को कोई निर्दयी फेंक गया। लोग इसे लेकर अजीब अजीब बातें कर रहे थे, मैं पुलिस से कहकर और सारी लिखा पढ़ी करके इस बच्ची को ले आया।
5: ये तूने बहुत अच्छा किया आर्यन।
3: देखो ना, चींटियों ने काट काट कर बेचारी को कैसे लाल कर दिया है। पता नहीं किसने इसके साथ ऐसा किया जो इस नन्ही सी जान को इस तरह मरने के लिए छोड़ गया।
5: जो भी हो, अब यह हमारी बच्ची है, हम इसका नाम चांदनी रखेंगे।
3: हाँ, बहुत प्यारा नाम है चांदनी। बहुत प्यारा नाम।

0: अरे क्या कर रही हो भूमिका, जल्दी करो।
1: आ रही हूं, बस 2 मिनट और लगेंगे।
0: 2 मिनट? 2 मिनट करके तुम देर करवा दोगी।
1: आर्यन, क्यों परेशान हो रहे हो? आ तो गई, बस चलो।
0: बात परेशान होने की नहीं है भूमिका, आज हमारी चांदनी का स्कूल में पहला दिन होगा और पहले ही दिन हमारी चांदनी देर से स्कूल पहुंचेगी, तो बोलो स्कूल वाले क्या कहेंगे?
1: ओफो, अब क्यों बात का बतंगड़ बना रहे हो? चलो ना।
0: अब चांदनी को लेकर जल्दी से बाइक पर बैठ जाओ, चलो बैठो।
1: आर्यन, चांदनी का स्कूल 2 घंटे का है और 2 घंटे ऐसे ही गुजर जाते हैं।
0: मतलब?
1: मेरा मतलब है, हम लोग घर ना जाकर अगर चांदनी की छुट्टी होने तक यहीं रुककर उसका इंतजार करें तो।
0: तो क्या यहाँ और भी पेरेंट्स रुके हुए हैं, हम भी रुक जाते हैं।
1: हाँ क्या बात है आर्यन, ऐसे क्यों देख रहे हो?
0: भूमिका, मैं देख रहा हूं चांदनी के आते ही हमारे घर की खुशियां भी लौट आई हैं। तुम भी पहले की तरह हंसने बोलने लगी हो, वरना तो तुम बीमार सी दिखाई देने लगी थी। तुमने मेकअप करना, सजना संवरना भी छोड़ दिया था।
1: आर्यन, हमारा समाज कितना भी शिक्षित और समृद्ध क्यों ना हो, मगर महिलाओं के प्रति इस समाज की सोच वही दकियानूसी और रूढ़वादी रहेगी। भले ही हमारे समाज में महिलाओं की स्थिति कितनी भी मजबूत क्यों ना हो जाए,

0: महिलाएं कितनी भी कामयाबी के आसमान पे क्यों ना उड़ने लगें, लेकिन सच्चाई यही है कि हमारे देश में महिलाओं को पूर्ण महिला होने का अधिकार तब ही दिया जाता है जब वो माँ बनती है, वरना जो औरत दुर्भाग्यवश माँ नहीं बन पाती है उसे इसी समाज में मानसिक, शारीरिक और नैतिक तौर पर इतना अपमानित और प्रताड़ित किया जाता है कि वो घुट घुट कर मर जाती है।
1: छोड़ो भी भूमिका, उन बुरे दिनों को याद करके अपने आज को खराब मत करो।
0: हाँ,
1: अब तो हम दोनों को मिलकर हमारी चांदनी के कल को संवारना है भूमिका। अब हमारी चांदनी तेजी से बड़ी हो रही है, कल को हमें उसकी शादी भी करनी होगी, इसलिए उसे पढ़ाई के साथ साथ किचन का काम भी सिखाया करो भूमिका।
0: ये सब तुम्हें ना मुझे बताने की जरूरत नहीं है आर्यन, माँ होने के नाते मैं सब कुछ सिखा रही हूँ।
1: अच्छा,
2: जल्दी करो पापा, खाना टेबल पे लग गया है, आकर खाना खा लो।
1: क्या बात है, आज हमारी बिटिया रानी हमसे खाने के लिए इतनी जिद क्यों कर रही है?
0: क्योंकि आज तुम्हें खाने की टेबल पर एक सरप्राइज जो मिलने वाला है।
1: अच्छा, अगर ये बात है फिर तो खाने के लिए मुझे एक मिनट भी देरी नहीं करनी चाहिए, फटाफट खाना चाहिए। भूमिका, लगता है आज तुम्हारे खाने का गणित कुछ बिगड़ गया है, तभी आज तुम्हारी रोटियां टेढ़ी मेढ़ी बनी है।
0: ये रोटियां मैंने नहीं, तुम्हारी लाडली बिटिया ने बनाई हैं।
1: व्हाट ए सरप्राइज, ये रोटियां चांदनी ने बनाई हैं?
0: क्यों, हो गए ना सरप्राइज?
1: फिर तो मैं दो रोटियां ज्यादा खाऊंगा और कल अपने ऑफिस में सबको बताऊंगा कि हमारी बिटिया बड़ी हो गई और रोटियां बनाने लगी है।
2: ओहो पापा, आप भी। अच्छा मम्मी, अब आप ना पापा के लिए रोटियों की चिंता मत करना। अब आपको जब भी नानी के घर जाने का मन करे तो बेफिक्र होके चले जाना।
0: उफ़ो।
2: पापा के लिए खाना मैं बना दूंगी।
0: देखो तो जरा सी बड़ी क्या हो गई, इन्होंने तो मेरी लाइन ही काट दी।
1: आखिर लाडली किसकी है?

0: चांदनी, तुम मेरे पास क्यों सोती हो? अपनी मम्मी के पास क्यों नहीं सोती?
1: क्योंकि पापा, मुझे आपके पास सोने में मजा आता है। आप अच्छी अच्छी बातें करते हैं, कहानियां सुनाते हैं, और मम्मी मम्मी तो खुद भी जल्दी सो जाती है और मुझे भी जल्दी सोने के लिए कहती है।
0: बस इतनी सी बात है?
1: बात इतनी सी नहीं है पापा, आपके पास सोने से मैं खिड़की में से आसमान को भी तो देखती हूँ। और आपको मालूम है ना, मुझे आसमान देखना अच्छा लगता है। आसमान में झिलमिलाते तारे और दूधिया रोशनी बिखेरता चांद मुझे बहुत पसंद है।
0: हाँ, वो तो है। बादलों के साथ खेलते हुए चांद सितारे तो मुझे भी अच्छे लगते हैं बेटा। मैं इन्हें देखकर रोमांचित हो जाता हूँ। देखो,
1: हाँ,
0: कभी बादल चांद सितारों को ढांप लेते हैं तो कभी चांद सितारे बादलों से बाहर निकलकर ऐसे चमकते हैं जैसे इनके बीच कोई प्रतियोगिता हो रही हो।
1: अच्छा अच्छा पापा, आपने एक बात नोट करी है
0: क्या?
1: ध्यान से देखिए, जब ये बादल चलते फिरते हैं ना, तो तरह तरह के चित्र बनते हुए नजर आते हैं। कभी ये भालू बन जाते हैं तो कभी ये बादल बंदर बन जाते हैं।
0: हाँ, बात तो तुम्हारी सही है, बादल चित्रकार भी होते हैं।
1: पापा, मेरा नाम भी तो चांदनी है, और चांदनी का काम होता है चमकना। एक दिन मैं भी इन तारों की तरह तारा बनके पूरे संसार में चमकूंगी। लोग मुझे देखकर कहा करेंगे कि ये आर्यन मेहता की बेटी चांदनी है। पापा, तब

0: को ना अपने ऊपर बहुत गर्व महसूस होगा। आप खुशी से फूले नहीं समाएंगे। मेरी चमक को देखकर ना ये आसमान में सारे तारे मुझसे चिढ़ा करेंगे और चिड़चिड़ के ना धीरे धीरे सब गायब हो जाएंगे। बस मैं अकेली ही यहाँ चमकूंगी।
1: ये गंदी बात है चांदनी, ऐसी बात कभी मत बोलना। कोई तारा किसी तारे से छोटा या बड़ा नहीं होता है, ना किसी तारे की चमक कम या ज्यादा होती है। सबका कद और सबकी चमक एक सी होती है।
0: सॉरी पापा, अब ना कभी ऐसी बात नहीं बोलूंगी।
1: अच्छा ठीक है, रात बहुत हो चुकी है, अब तुम सो जाओ।
0: ओके पापा, गुड नाइट।
2: हाँ आर्यन, बोलो क्या बात है?
3: भूमिका, तुम्हारे लिए खुशखबरी है।
2: खुशखबरी? तो जल्दी बताओ ना।
3: भूमिका, हमारी चांदनी की बेंगलुरु में बीटेक के लिए सीट कंफर्म हो गई है और अभी अभी बेंगलुरु से मेरे पास फोन आया है।
2: अरे वाह, ये तो सचमुच हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी की खबर है। इस खबर को सुनकर चांदनी भी खुश हो जाएगी।
3: अरे चांदनी है कहाँ, उससे मेरी बात तो करवाओ।
2: वो अभी अभी अपनी सहेली के यहाँ गई है, आते ही मैं तुमसे उसकी बात करवा दूंगी।
3: ठीक है ठीक है, वो जब आ जाए तो उससे मेरी बात करवा देना।
2: हाँ
3: हाँ भूमिका, तुम चांदनी के साथ उसकी पैकिंग करवा देना, हमें कल सुबह बेंगलुरु के लिए निकलना है।
2: हाँ हाँ ठीक है, तुम भी ऑफिस से जल्दी आ जाना।
3: ओके
2: ओके। आर्यन, तुम यहाँ चांदनी के कमरे में अकेले क्या कर रहे हो, और वो भी अंधेरा करके? लाइट क्यों नहीं जलाई?
1: नहीं भूमिका, लाइट मत चलाना। भूमिका, मुझे चांदनी की बहुत याद आ रही थी, इसलिए यहां उसके कमरे में आकर बैठ गया। पता नहीं वो अपने हॉस्टल में कैसी होगी।
2: अरे तो कमरे की लाइट तो जला लेते। अच्छा रुको, मैं जलाती हूं।
1: कहा ना लाइट मत चलाना। लाइट चलाते ही ऐसा लगता है जैसे चांदनी की भलाई ये पेंटिंग्स, टेडी बियर, फ्लावर पॉट्स, उसका कंप्यूटर, उसका बिस्तर, सब कुछ घूर घूर कर देखने लगते हैं और मुझसे पूछने लगते हैं कि हम इनकी चांदनी को कहां छोड़ाए। देखो ना, चांदनी के बिना ये सब खामोश हो गए हैं। देखो देखो
2: आर्यन, तुम भी ना पागल हो जाओगी। हमारी चांदनी बढ़ने गई है। तुम्हारा सपना था ना कि हमारी चांदनी इंजीनियर बने, तो वो चली गई। आर्यन, मैं तुम्हें तो समझा रही हूं, लेकिन मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि चांदनी की बातें मुझे भी याद आती है। उसका रूठना, नाराज होना, सब याद आता है, सब बहुत याद आता है।
0: मम्मी, आप रोज रोज अपनी पसंद की ये सब्जियां क्यों बना लेते हो?
2: चांदनी, तुम्हें कोई सब्जी पसंद भी आती है? जब खाने के लिए बैठती हो तब सब्जी को देखकर अपनी नाक भौं सिकोड़ लेती हो और कहती हो आज ये बना लिया, आज वो बना लिया, मुझे नहीं खाना, मुझे वो नहीं खाना। आखिर तुम कुछ खाओगी भी या नहीं?
0: नहीं, मुझे कुछ नहीं खाना, आप ही खाएं अपना खाना।
1: बस कर दिया ना उसे नाराज।
2: तो जाओ, जाकर मनाओ अपनी लाड़ी को, उठाओ उसके नखरे।
1: भूमिका, कैसी बातें कर रही हो? अरे मनाऊ नहीं तो क्या उसे भूखा सो जाने दूं?
2: अरे तो जाओ ना, मना कर ले आओ। इन्हीं नखरों की वजह से तो वो सूख सूख कर कांटा हो रही है।
1: भूमिका, भूमिका, बच्चे ऐसे ही होते हैं।

0: ये बात नहीं है भूमिका। पता नहीं हमारी चांदनी ने खाना खाया होगा या नहीं, यहां तो बड़े नाज नखरों से खाना खाती थी। वहां हॉस्टल में क्या करती होगी, कैसे खाती होगी खाना? अरे खाती भी होगी या नहीं?
1: आर्यन, तुम पागल तो नहीं हो गए हो? अरे हमारी चांदनी अपनी पढ़ाई करने गई है, वो वहां पर अच्छे से है, खाना भी खूब खाती है। फिर भी अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि उसने खाना नहीं खाया होगा, तो मैं चांदनी को फोन लगा लेती हूँ, तुम उससे पूछ लेना कि उसने खाना खाया या नहीं।
0: नहीं भूमिका, चांदनी को फोन मत लगाना। देखो अगर फोन लगाया तो वो परेशान हो जाएगी।
1: तो फिर क्यों बेकार की बात कर रहे हो, चलो चलकर खाना खा लो।
0: ठीक है चलो।

0: हेलो
1: हेलो पापा।
0: चांदनी बेटा, कैसी हो?
1: पापा मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? कहाँ हैं आप?
0: अरे मैं भी अच्छा हूँ, ऑफिस में हूँ।
1: अच्छा, और मम्मी कैसी
0: अरे
1: हैं?
0: तुम्हारी मम्मी भी ठीक है?
1: पापा आपके लिए गुड न्यूज़ है,
0: क्या?
1: अगले हफ्ते मैं घर आ रही हूँ।
0: अच्छा,
1: हाँ, हमारी छुट्टियां पड़ रही हैं।
0: अरे वाह, आ जा बेटा, आ जा। इन 7 महीनों में हमने तुम्हें बहुत मिस किया है।
1: हाँ पापा, तो ऐसा लग रहा है कि मैं जल्दी से उड़ के आपके पास पहुंच जाऊं। पापा मुझे ना आपसे ढेर सारी बातें करनी है।
0: हाँ बेटा, बातें तो मुझे भी तुमसे बहुत सारी करनी है।
1: ओह पापा, मेरी ना नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया है, मैं जा रही हूं, मैं फिर फोन करूंगी आपको।
0: ओके बेटा, बाय बाय।

0: अरे इतना सारा सामान, वो भी चांदनी की पसंद का।
1: अब चांदनी आ रही है तो सामान भी उसी की पसंद का होगा ना।
0: क्या हमारी चांदनी आ रही है?
1: हाँ, अगले हफ्ते आ रही है। आज दोपहर ही उसका फोन आया था।
0: उसका फोन आया और तुमने मुझे बताया तक नहीं।
1: कहो कैसा लगा मेरा
0: यू चीटर।
1: सरप्राइज।
0: आर्यन, गहरी सोच में डूबे हो, चांदनी के बारे में सोच रहे होगे?
1: हाँ भूमिका,
0: हाँ।
1: समय कितनी तेजी से भाग रहा है। देखो ना, हमारी चांदनी कब आई कब चली गई कुछ पता ही नहीं चला।
0: सच्ची।
1: अच्छा भूमिका, तुमने कुछ नोट किया?
0: क्या?
1: हमारी चांदनी इस बार कुछ बदली बदली सी नहीं लग रही थी।
0: हाँ,
1: ना वो हमसे ज्यादा भोली चाली और ना ही वो हमारे साथ ज्यादा बैठी उठी।
0: आर्यन, समय के साथ सब बदल जाता है। हमारी चांदनी को बेंगलुरु गए पूरे 4 साल हो गए, तो उसमें कुछ तो चेंज आएगा ही। और वैसे भी अब बड़ी हो गई है, पहले जैसी छोटी बच्ची नहीं रही, समझे?
1: इसका मतलब अब हमें अपनी चांदनी के लिए एक अच्छा सा लड़का भी देखना पड़ेगा।
0: और क्या। हाँ, जाहिर सी बात है, जब उसकी शादी करनी है तो लड़का तो देखना ही पड़ेगा। वैसे भी आजकल अच्छे लड़के बहुत मुश्किल से मिलते हैं।
1: तो ठीक है, इस बार जब चांदनी छुट्टियों पर घर आएगी तो उससे भी इस बारे में बात कर लेंगे।
0: बिल्कुल, चांदनी से तो बात करनी ही पड़ेगी, बिना उसकी पसंद के तो हम उसकी शादी भी नहीं करेंगे। हेलो।
2: हेलो मम्मी।
0: हेलो चांदनी बेटी, कैसी हो?
2: अम्मा मैं अच्छी हूँ, आप कैसी हैं?
0: मैं भी अच्छी हूँ।
2: अच्छा,
0: आर्यन, आर्यन, चांदनी का फोन है, जल्दी आओ।
1: हाँ हाँ आता हूँ।
0: चांदनी, लो अपने पापा से बात करो।
2: हाँ
1: हाँ चांदनी बेटा, कैसी हो?
2: मैं अच्छी हूँ पापा, आप कैसे हो?
1: मैं भी बहुत अच्छा हूँ।
2: पापा, आज ना मेरे एग्जाम्स खत्म हो गए, इसलिए

0: एकदम रिलैक्स महसूस हो रहा है। पापा, अब आप ना चांदनी के पापा नहीं,
1: क्यों?
0: बल्कि इंजीनियर चांदनी के पापा हो गए हो।
1: हाँ बेटा, मुझे तुम पर बहुत गर्व है। अच्छा, तुम घर कब आ रही हो?
0: ओहो, मैंने अभी तो मम्मी को बताया था, मेरी ना ट्रेन कल शाम को है।
1: ठीक है, तुम जल्दी से घर आ जाओ, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं बेटा।
0: ओके पापा, सी यू सून।
2: किसका फोन है?
1: भूमिका, चांदनी के हॉस्टल से है।
2: देखो क्या बात है।
1: हेलो,
3: हेलो, मिस्टर आर्यन बोल रहे हैं?
1: हाँ, आर्यन बोल रहा हूँ।
3: मिस्टर आर्यन, मैं चांदनी के हॉस्टल से मैनेजर गर्ग बोल रहा हूँ।
1: हाँ, बोले।
3: मिस्टर आर्यन, आपकी बेटी चांदनी सीरियस है,
1: हाँ,
3: प्लीज आप जल्दी से बेंगलोर आ जाइए।
1: क्या चांदनी सीरियस है? पर क्यों, क्या हुआ उसे?
3: जी, चांदनी हॉस्टल की सीढ़ियों से गिर पड़ी है
1: हाँ,
3: और वो इस समय हॉस्पिटल में है।
2: क्या गया मेरी बच्ची को? कैसे गिर गई?
1: भूमिका, भूमिका, थोड़ी तसल्ली रखो भूमिका। देखो, हमें बेंगलुरु को लिए निकलना पड़ेगा, चलो जल्दी चलो।
3: आइए मिस्टर आर्यन, हम लोग आप ही का इंतजार कर रहे थे।
1: मिस्टर गर्ग, आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? चांदनी ठीक तो है ना?
2: चांदनी,
1: कहाँ है वो? कौन से हॉस्पिटल में है?
3: सॉरी मिस्टर मेहता, आपकी चांदनी।
1: क्या
2: चांदनी,
1: क्या क्या हुआ हमारी चांदनी को? मिस्टर गर्ग, आप खामोश क्यों हो गए? बताते क्यों नहीं क्या हुआ हमारी चांदनी को?
2: चांदनी
3: मिस्टर मेहता, सीढ़ियों से गिर जाने की वजह से चांदनी के दिमाग की नस फट गई थी। डॉक्टर ने उसे बहुत बचाने की कोशिश की, लेकिन अब वो
1: चांदनी, चांदनी,
2: क्या हुआ आर्यन?
1: चांदनी
2: क्या हुआ आर्यन, इतनी रात को क्यों चीख रहे हो?
1: भूमिका, हमारी चांदनी।
2: आर्यन, हमारी चांदनी अब इस दुनिया में नहीं है, वो काफी समय पहले मर चुकी है।
1: नहीं भूमिका, नहीं, हमारी चांदनी मरी नहीं है, वो जिंदा है, वो जिंदा है। और देखो, वो तारा बन गई, वो देखो भूमिका, वो जो दो तारे दिखाई दे रहे हैं ना, उनमें से एक तारा हमारी चांदनी है। ये बात अभी अभी चांदनी ने मुझे बताई है भूमिका, चांदनी ने मुझे बताई। हमारी चांदनी मरी नहीं है, वो तारा बन गई है, वो तारा बन गई है।

अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे धरोहर कार्यक्रम के अंतर्गत नाटक पापा मैं तारा बन गई। इस नाटक के लेखक थे गुडविन मसी, सह प्रस्तुति थी अक्सीन सक्सेना की और प्रस्तुति थी विक्रांत चौधरी की। आकाशवाणी का ये रामपुर केंद्र है। श्रोताओं, अब प्रस्तुत है मनभावन कार्यक्रम और आज का मनभावन केंद्रित है आप श्रोताओं की शब्दावलियों पर।

श्रोताओं, शब्दावलियों का आज का कार्यक्रम लेकर हाजिर हो गए हैं हम। स्वीकार कीजिए सुरेंद्र कौर का प्यार भरा नमस्कार, और आप सभी श्रोताओं का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आज के इस कार्यक्रम में। और कार्यक्रम की पहली शब्दावली पढ़ने जा रहे हैं हम। कुंज निवास राधा कुंज इज्जत नगर बरेली के हमारे श्रोताओं की, आप हैं बी के जौहरी और अर्पित जौहरी, साथ में हैं शीला ठाकुर और शाइना बी। बहुत खूबसूरत सी आप बात लिख रहे हैं कि शादी दो अनजान दिलों दो आत्माओं के पवित्र रिश्ते का नाम है। शहनाई की गूंज में दो पवित्र दिल दो मन दो तन विवाह के बंधन में बंधकर एक हो जाते हैं। एक बंधन में बंधकर जीवन भर साथ निभाने की कस्में खाई जाती हैं। हमारे देश में एक शादी उत्सव की तरह मनाया जाता है, और परिवार या दोस्त किसी की भी शादी की जो खुशी की सौगात लेकर आती है, उस दिन घर में शादी ब्याह होता है, हंसी मजाक भी होता है और खुशी उल्लास का माहौल बना रहता है। वहाँ चारों तरफ जिस लड़के या लड़की की शादी हो रही होती है तो वो परिवार तो खुश होता ही है, साथ ही साथ में पड़ोस में भी हंसी खुशी का माहौल बना रहता है। शाम होते ही नाच गाना और महिला संगीत का प्रोग्राम माहौल को और ज़्यादा रोमांचक बना देता है। शादी बराती जो नाचते हैं वो शादी में नाचते हैं, गाते हैं, बारात में नाचते हैं, गाते हैं, और दोस्त यही सोचते हैं कि हम तो फंस चुके हैं और अब तेरी बारी है। चिरपरिचित से ऐसे मुलाकात का अवसर भी मिल जाता है ऐसे मौके पर। और आप लिख रहे हैं कि शादी की खबर सुनकर हर किसी के दिल में तार खुशियों से झंझना उठते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा खुशी एक दोस्त को होती है। अपने दोस्त की खुशी में वो पागल हो उठता है। जब उसके दिल की खुशी संभाले नहीं संभलती तो अपने दिल की खुशी का पैगाम एकाएक होठों पर बिखेर देता है और कुछ इस तरह से कह उठता है।

बिल्कुल, हम दुआ करेंगे कि जिसकी शादी नहीं हुई है वो भी शादी इस साल कर ले। ये अगली शब्दावली हमें प्राप्त हो रही है बीसलपुर मेहंदी वाले घर से। आप हैं पूनम सक्सेना और विनोद गोबल वाली जी। आप लिख रहे हैं कि एकल परिवार की प्रबल इच्छा धारणा के चलते शादी के बाद पति पत्नी अक्सर अकेले रहना पसंद करते हैं, लेकिन अचानक लड़के के परिवार का कोई सदस्य साथ साथ रहने आ जाए तो प्यार और रोमानियत की मिठास पति पत्नी के रिश्ते से काफूर हो जाती है, जो कि आगे चलकर दाम्पत्य जीवन में खटास पैदा कर देती है। दाम्पत्य जीवन में मधुरता आपसी रोमांस पर टिकी होती है और जब आपस में प्रेम नहीं रहता तो सारी चीज़ें बेकार लगने लगती हैं। रोमांस की कमी से इंसान के मन में अकेलेपन का गुबार भरने लगता है और खामोशी सन्नाटे में बदल जाती है। हम अपने आप में डूबने लगते हैं और भूल जाते हैं कि हम अकेले प्राणी दो प्राणी हैं जिनके साथ साथ चलने का वादा जिन्होंने किया था और एक दूसरे का साथ देने का वादा किया था। अगर आपस में विश्वास और वैवाहिक जीवन के मूल्यों में वफादारी और वचनबद्धता को नज़रअंदाज ना किया जाए तो आपस में प्यार की ताजगी हमेशा महसूस की जा सकती है। बढ़ती चकाचौंध और धन जोड़ने की अंधी दौड़ में इंसानी व खून के रिश्ते भी तार तार हो रहे हैं। बहुत एक अच्छी सी बात आपने लिखी है जो कि हम समाज में देख भी रहे हैं और उसको निभा भी रहे हैं। शब्दावली के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से आप सुन रहे हैं सुरेंद्र कौर के साथ मन भावन कार्यक्रम के अंतर्गत आप श्रोताओं द्वारा भेजी हुई शब्दावलियों का ये कार्यक्रम। अगली शब्दावली हमें प्राप्त हुई है तौफीक अहमद सिद्दीकी साहब की, आपके साथ हैं अतीका है। कभी टूट कर बिखरना भी पड़ता है, खुद को फिर से संवरना भी पड़ता है, सिर्फ मंजिल ही नहीं मिलती, यूं ही रास्तों में से भी गुजरना पड़ता है। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो दिखते नहीं, कुछ आंसू ऐसे होते हैं जो गिरते नहीं, लोग समझते हैं सब ठीक है मगर कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो भरते नहीं। तेरी यादों का दिया जलता रहा, दिल रात भर तुझसे मिलता रहा, तू दूर होकर भी दूर ना रहा, ख्यालों में हल पर चलता रहा, मोहब्बत नाम है दिल से निभाने का, किसी के लिए हर हद से गुजर जाने का, ये दौलत से नहीं खरीदी जाती, हुनर है बस किसी को अपना बनाने का, ज़िंदगी की राहों में ठहराव भी ज़रूरी है, हर मोड़ पर एक बदलाव भी ज़रूरी है, सिर्फ जीत ही नहीं मंजिल ही नहीं, हार का एहसास भी हो, कुछ घाव मिले तो उन

से सीखने का विश्वास भी हो। धूप में चलकर ही इंसान मजबूत बनता है, संघर्षों की आग में उसका व्यक्तित्व निखरता है, पर हर वक्त तपना भी तो कोई जीवन नहीं होता। थोड़ी छांव तो मिले, सफ़र और सुहाना होता। धूप ने जो सिखाया वही तजुर्बा बन गया, हर मुश्किल का सामना करने का हौसला बन गया। वो ज़िंदगी ही क्या जो आराम से ढल जाए, असली जीवन तो वही है जो धूप छांव संग चल जाए। ज़िंदगी में सुख दुख लगे रहते हैं, हमें इन सब चीज़ों से घबराना नहीं चाहिए। आप लिख रहे हैं, क्योंकि जब अच्छे दिन नहीं ठहर सकते तो फिर गम की क्या औकात। इसलिए अपने आप पर पूरा भरोसा रखें और ये ज़िंदगी एक दिन चांद सितारों की तरह चमकेगी, बिल्कुल चमकेगी ज़रूर।

अब भी तुम्हारी फुरकत में एक सावन कोई लिखता है, क्या अब भी तुम्हारे होठों पर एक चुंबन कोई धरता है, क्या अब भी तुम्हारे शानों से मलमल का दुपट्टा गिरता है, क्या अब भी तुम्हारी बाहों में एक दिल सा कोई रहता है।

0: कुछ ऐसी ही शब्दावली हमें प्राप्त हुई है ईदगाह गेट मुरादाबाद से शफी अहमद अंसारी साहब और साथ में है रईस दूसला अंसारी साहब की। आप लिख रहे हैं कि नसीब आज मनाने की फुर्सत नहीं है, अब उस दिल को गम से शिकायत नहीं है। बहुत रोए बैठे हैं तन्हाइयों में हम, मगर अब तो रोने की आदत नहीं है। ये जिससे बंधेगी कह रही है वो कुछ भी हो मोहब्बत नहीं है। अंधेरों ने घेरा है चारों तरफ से, कहीं भी उजालों की सूरत नहीं है। हर रात तेरे ख्वाब सताते हैं मुझे, मगर ये हाल किसी को सुनाया नहीं जाता।
1: मेरे ध्यान की दुनिया की एक सुंदर सी शहजादी हो,

कार्यक्रम की अगली शब्दावली हमें प्राप्त हुई है ग्राम करेली पुरानी मस्जिद बरेली के हमारे श्रोता हैं लाल मोहम्मद अंसारी साहब। आप समाज के विषय पर एक बात लिख रहे हैं कि आज समाज में बहुत सी बातें चल रही हैं मगर समाज को एक अलग सी नाम दे दिया गया है, मगर ये हम भूल रहे हैं कि समाज में हम ही लोग रहते हैं। आज हमारे अंदर के लोगों के लिए मोहब्बत कम होती जा रही है, किसी का दर्द हम अपनाने को तैयार नहीं हैं, किसी की मदद करने को हम तैयार नहीं हैं, रिश्ते निभाने को भी हम तैयार नहीं हैं, दिल में किसी के लिए भी प्यार नहीं है। हम कहते हैं कि समाज बदल गया है मगर हम ये भूल गए हैं कि समाज में हम ही लोग रहते हैं, समाज हम ही लोगों से बना हुआ है, हम ही समाज को चलाते हैं। होना तो ये चाहिए था कि हमें अपनों से मोहब्बत होनी चाहिए, हमें एक दूसरे के साथ अपनापन होना चाहिए, एक दूसरे के हमें काम आना चाहिए, लोगों की मदद करते रहना चाहिए, बिना दहेज की शादियां करें और किसी पर भी जुल्म ना करें, बुज़ुर्गों का सम्मान करें, माँ बाप की इज्जत करें। हम लोग ऐसा करेंगे तो समाज खुद ब खुद बदल जाएगा, समाज खुद ब खुद ठीक होता चला जाएगा। हमें चाहिए कि हम अपने समाज को ठीक करें और अपने समाज को साफ़ सुथरा रखें ताकि हम ठीक रहें और हमारा समाज तरक्की करे। जी हाँ, बिल्कुल सही बात आपने की है, समाज तरक्की करेगा तो हमारा हम भी तरक्की करेंगे और हमारा देश भी तरक्की करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया शब्दावली के लिए।

ये अगली शब्दावली हमें प्राप्त हुई है निकट विद्युत सब स्टेशन नैनीताल रोड बरेली के हमारे श्रोता अर्चना जौहरी जी की। आप लिख रहे हैं गर्मी के ऊपर, भीषण गर्मी और तपती धूप के बाद बरसात का सुखद आगमन सबके मन को मोह लेता है। जो सूरज अपनी भीषण गर्मी से पृथ्वी को तपा रहा था, अब मन भावन सावन गिराने के लिए अपने नैनों पर बादलों के टुकड़े जमा कर रहा है। कभी तपती धूप है तो कभी बादलों की गजरारी छाओ, ऐसे में प्रीत की नवल नवयुगल जोड़ी मस्त हो उठती है। ऐसे मौसम में किसी सजनी का साजन कहीं दूर हो तो दिल से उसे याद करने लगता है। जब अतीत के दिन याद आते हैं तो मन के आकाश पर स्मृतियों की वर्षा से मन और भी गहरे से भीग जाता है। प्यार में बीते दिनों की हर बात जिंदगी का सहारा बन जाती है। जब खूबसूरत शाम हो बहारें हों, ऐसे में बीते दिनों की याद कर मन देर तक महकता रहता है। मन की बात जुबां पर कुछ इस तरह से आ जाती है, बरसे गगन से प्यार पिया है, बरखा का सत्कार किया है, आओ कि सूना सूना सा लगता है और बरसा दो रसधार पिया।

कार्यक्रम की अगली शब्दावली हमें प्राप्त हुई है सिंधौली मीरगंज बरेली के हमारे श्रोता जिशान वारसी इमरान शेख करूला से आपके साथ हैं, मुरादाबाद से अयूब खान और इरम गुड़िया। आप लिख रहे हैं कि कार्यक्रम मन भावन आकाशवाणी रामपुर की एक बेहद सराहनीय और दिलों को छू लेने वाली प्रस्तुति है। इसकी सकारात्मक सोच, प्रेरणादायक संदेश और मधुर प्रस्तुति श्रोताओं के मन में नई ऊर्जा और उत्साह भर देती है। ऐसे कार्यक्रम समाज को बेहतर दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अपने अंदर की आदतों को कैसे हम बदल सकते हैं? आप लिख रहे हैं कि इंसान को सबसे बड़ी जीत दूसरों पर नहीं बल्कि अपने आप पर होती है। बुरी आदतें एक दिन में नहीं बनती बल्कि उसे बदलने में धैर्य, विश्वास और निरंतर प्रयास की आवश्यकता होती है। हर सुबह स्वयं से एक नया संकल्प कर लें, अपनी कमियों को स्वीकारें और अपनी ताकत में बदलाव बदलने की कोशिश करें और उसे अपनी ताकत से बदलने की कोशिश करें। याद रखिए कि छोटी छोटी अच्छी आदतें ही जीवन में बड़े और सकारात्मक परिवर्तन लाती है। जब सोच सकारात्मक होती है तो व्यवहार बदलता है और जब व्यवहार बदलता है तो पूरा जीवन सवर जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया।

कार्यक्रम में ये शब्दावली हमें प्राप्त हुई है अनु बड़जात्या, शमशुल खान और अनुराज बेनारा जी की। आप लिख रहे हैं ये हमें मुंबई से, और महिलाओं की भूमिका सेना और पुलिस में आप लिख रहे हैं। कुछ महिलाओं के ऊपर बात, सेना और पुलिस में महिलाएं अब सिर्फ सहयोगी नहीं हैं बल्कि अगली पंक्ति में खड़ी होकर देश की रक्षा कर रही हैं। सेना में मेजर ध्यानचंद रे खेल रत्न विजेता कैप्टन तान्या शेरगिल परेड की कमान संभालती हैं, तो फ्लाइट लेफ्टिनेंट शिवानी सिंह राफेल उड़ाने वाली पहली महिला पायलट बनी। कर्नल सोफिया कुरेशी ने अंतर्राष्ट्रीय सैन्य अभ्यास में भारत का नेतृत्व किया। और आप बहुत खूबसूरत सी एक लाइनें भी लिख रही हैं शायरी के तौर पर। बदली वर्दी बदली जब नारी ने, दहशत मिट गई अंधेरे की, तान्या शिवांगी किरण जैसी बेटियों ने बदली तस्वीर देश की। न डर है गोली बारूद का, न रात के सन्नाटे का, महिला पर्वतारोही और सिनेमा, भारत की महिलाओं ने एवरेस्ट फतेह कर इतिहास रच दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया। इतना समय नहीं है कि मैं आपकी शब्दावली को पूरा पढ़ सकी, बाकी शब्दावलियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।

0: मन भावन कार्यक्रम से अब सुरेंद्र कौर को दीजिएगा इजाजत। अगले कार्यक्रम में फिर से बात होगी, मुलाकात होगी। अब कुछ ही पलों में दिल्ली केंद्र से होंगे हिंदी में समाचार।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय नई दिल्ली में जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची के साथ वार्ता कर रहे हैं। वार्ता के बाद कुछ सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए जाने की भी संभावना है। आज सुबह प्रधानमंत्री तकाइची का राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में औपचारिक स्वागत किया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उपस्थित थे। जापान की प्रधानमंत्री कल शाम 3 दिन के भारत दौरे पर नई दिल्ली पहुंची। प्रधानमंत्री तकाइची का ये भारत का पहला आधिकारिक दौरा है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि ये दौरा भारत और जापान के बीच विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज जापान की प्रधानमंत्री तकाइची के साथ व्यापक विचार विमर्श से दोनों देशों की साझेदारी को और प्रगाढ़ बनाने में सहायता मिलेगी। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारत और जापान हिंद प्रशांत तथा अन्य क्षेत्रों में भी शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए साझा प्रयास जारी रखेंगे। भारत ने अपने संकल्प को दोहराते हुए कहा है कि आतंकवाद को किसी भी परिस्थिति में उचित नहीं ठहराया जा सकता है। भारत ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मानदंडों की कड़ी आलोचना करते हुए एक मजबूत और एकजुट वैश्विक कार्रवाई का आह्वान किया। संयुक्त राष्ट्र की वैश्विक आतंकवाद विरोधी रणनीति की 9वीं समीक्षा में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने ये बात कही। श्री हरीश ने कहा कि भारत दशकों से सीमापार आतंकवाद का शिकार होता रहा है और इसलिए मानता है कि आतंकवाद के सभी रूपों की स्पष्ट रूप से निंदा की जानी चाहिए। केंद्र सरकार ने असम में बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए पूरे सहयोग का आश्वासन दिया है। कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कल गुवाहाटी में राज्य सरकार के साथ समीक्षा बैठक की। श्री चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार असम और अरुणाचल प्रदेश में बाढ़ के हालात को लेकर बेहद गंभीर है। असम के मुख्य सचिव रवि कोटा ने बताया कि बाढ़ से 13 जिलों के करीब 72,000 लोग प्रभावित हुए हैं। केंद्र सरकार ने कर्मचारी

0: भविष्य निधि ईपीएफ योजना 2026 को अधिसूचित कर दिया है। ये योजना 29 जून से प्रभावी हो गई है। नई योजना 1952 की कर्मचारी भविष्य निधि योजना का स्थान लेगी। इस योजना का उद्देश्य डिजिटल अनुपालन को मजबूत करना, प्रशासनिक दक्षता में सुधार करना, खातों के स्थानांतरण को आसान बनाना और भविष्य निधि ढांचे को नए श्रम कानून के अनुरूप बनाना है। नई योजना में अनिवार्य ईपीएफ अंशदान कर्मचारी और नियोक्ता दोनों के वेतन का 12% बना रहेगा। केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित प्रतिष्ठानों पर मौजूदा 10% की दर लागू रहेगी। दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ ने आईएसआई प्रायोजित अंतर्राज्यीय आतंकी और हथियार नेटवर्क पर कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी आईएसआई हैंडलर शहजाद भट्टी और उसके साथियों के निर्देश पर राष्ट्रीय राजधानी में आतंकी गतिविधि को अंजाम देने की योजना बना रहे थे। आज जम्मू में भगवती नगर आधार शिविर से कड़ी सुरक्षा के बीच उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए 4,822 तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे को रवाना किया। इस पवित्र यात्रा में शामिल होने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से तीर्थयात्री जम्मू पहुंच रहे हैं। यूक्रेन के कीव में रूस के ड्रोन और मिसाइल हमले में 11 लोग मारे गए और कई लोग घायल हो गए। स्थानीय समाचार एजेंसियों ने बताया कि आज शहर के कई हिस्सों में विस्फोटों की आवाजें सुनी गईं। ये हमले इस सप्ताह की शुरुआत में यूक्रेन द्वारा मॉस्को पर किए गए ड्रोन हमलों के बाद हुए हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून आज दिल्ली के सभी इलाकों सहित गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के ज्यादातर हिस्सों और राजस्थान के कुछ इलाकों में आगे बढ़ गया है। राजधानी में बारिश से गर्मी और उमस से भरे मौसम से काफी राहत मिली है। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिन में मानसून के उत्तर भारत के कई और इलाकों में आगे बढ़ने की संभावना व्यक्त की है। फीफा विश्व कप के रोमांचक मुकाबले में बेल्जियम ने सेनेगल को अतिरिक्त समय में 3-2 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश कर लिया है। यूरी टिलमैंस ने 125वें मिनट में पेनल्टी से गोल दागकर बेल्जियम को 3-2 की रोमांचक जीत दिलाई। राउंड ऑफ 32 के मैच में सह मेजबान अमरीका ने आज सुबह बोस्निया और हर्जेगोविना को नॉकआउट राउंड में 2-0 से हराकर अपनी पहली जीत दर्ज की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Prime Minister Narendra Modi is holding annual summit-level talks with his Japanese counterpart Sanae Takaichi in New Delhi. The summit is an
2: आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। 12:05 और 44 सेकंड हो रहे हैं। आइए अब सुनते हैं कुछ गुमशुदा व्यक्तियों के संबंध में आवश्यक सूचनाएं और जरूरी संदेश।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
4: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

गुमशुदा व्यक्तियों के संबंध में कुछ सूचनाएं सुनिए। प्रभारी निरीक्षक थानागंज जनपद रामपुर हमें सूचित करते हैं कि मोहम्मद हारिस

उम्र 19 वर्ष, आप 16 जून 2026 को 11 बजे से अपने घर से बिना बताए लापता हैं। आपकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है और आपका हुलिया इस तरह से है, लंबाई करीब 5 फीट, शरीर पतला और दुबला है, रंग गेहुआ है, बाल काले हैं और टी शर्ट पीले रंग की और लोअर ग्रे रंग का पहना हुआ है। पैरों में आपने हवाई चप्पल पहनी हुई है। किसी भी व्यक्ति को गुमशुदा के संबंध में कोई जानकारी मिलती है तो कृपया इन फ़ोन नंबरों पर सूचित करने का कष्ट करें। श्री इस्माइल पुत्र श्री हफीज़, निवासी मोहल्ला पंजाबियान, निकट मस्जिद मर्दान खान, थानागंज जनपद रामपुर। मोबाइल नंबर है 7906664231। और एक और फ़ोन नंबर आप नोट कर सकते हैं, थानागंज जनपद रामपुर का उप निरीक्षक का आप दूरभाष नोट कर लीजिए, 7983701819। और इस फ़ोन नंबर पर भी आप सूचित कर सकते हैं 9454404161। सूचना समाप्त हुई।

थाना हजरतगढ़ी जनपद संभल हमें सूचित करते हैं कि रीना उम्र 24 वर्ष जो कि 24 मई 2026 से अपने घर से ही लापता हैं। आपका हुलिया इस प्रकार है, लंबाई आपकी 5 फीट है और रंग गेहुआ है, शरीर की बनावट सामान्य, चेहरा गोल, आंखें काली हैं, बाल काले हैं, आपने सूट सलवार पहन रखा है और आपके पति का नाम है राजेश कुमार, मिलक थाना हजरत नगर गढ़ी ज़िला संभल। मोबाइल नंबर आपका नोट कर लीजिए 7814819730। किसी को भी इनके संबंध में कोई सूचना प्राप्त होती है तो कृपया इस फ़ोन नंबर पर भी आप सूचित कर सकते हैं, थाना हजरतगढ़ी ज़िला संभल 9807711118। गुमशुदा के संबंध में सूचनाएं समाप्त हुईं।

मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलो हर्ट्स और एफएम 102.9 मेगा हर्ट्स पर आकाशवाणी का ये रामपुर केंद्र है। इस समय हमारे श्रोता आनंद ले रहे हैं हमारी प्रथम सभा के कार्यक्रमों का। कार्यक्रमों की श्रृंखला का हमारा अगला कार्यक्रम आप सभी का पसंदीदा लोकप्रिय फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत आपके नाम।

आप सभी श्रोताओं का स्वागत है, अभिनंदन है। आज का कार्यक्रम लेकर हाजिर है आपकी रेडियो साथी सुरिंदर कौर। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। साथियों, कंप्यूटर स्क्रीन पर आप सभी की फरमाइशें फ्लैश हो रही हैं लगातार और कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं। जमनिया गाजीपुर यूपी के हमारे श्रोताओं के साथ सुरेश जायसवाल, उर्मिला जायसवाल, दीपक जायसवाल, स्वाति जायसवाल और गमरिया जमशेदपुर से आप फरमाइश कर रहे हैं। कार्यक्रम के पहले गीत के लिए आप हैं विपिन जायसवाल, स्वाति जायसवाल, देव कुमार जायसवाल और आर्य कुमार जायसवाल जी। और ये अगला मैसेज हमें प्राप्त हुआ है रेलवे रोड गंज डुंडवारा के हमारे श्रोताओं का। आप हैं मोहम्मद कलीम जख्मी, भुवन प्रकाश गौतम, डॉक्टर दबीरुल हसन और साथ में हैं बेगम शबनम अनवार, नाजमा बेगम नाज और आपके साथ हैं सरिता गौतम। और ये अगला मैसेज बोरखेड़ा पित्रामल जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से हमें प्राप्त हुआ है विनोद मुड़त, नेहा जैन, दीपक मयंक मुड़त, चेतन नाटा और आपके साथ हैं दीक्षा और कुश मुड़त जी। पूना जंक्शन मस्तानपुरा से आप हैं अनंता भगत, अरुणा भगत, सुलोचना भगत, चेतन भगत। और ये मैसेज हमें प्राप्त हुआ है शास्त्री नगर बीड शहर के हमारे श्रोताओं का। आप हैं किशन सपकाल, आशा सपकाल, सोनिया सपकाल और विशाल सपकाल जी का नमस्कार के साथ आपने हमें मैसेज किया है। और अगला मैसेज फ्रेंड्स कॉलोनी करनाल से हमें प्राप्त हुआ है गुरविंदर सिंह पांधा, इंद्रजीत कौर, बेबी मनमीत, मरविंदर सिंह पांधा और जीएस रामगढ़िया का। ग्राम तंगौरी जिला मोहाली पंजाब के आप हैं श्रोता गुरप्रीत सिंह तंगौरी, जसवीर कौर, महकप्रीत कौर और सहज प्रीत सिंह। स्टेशन रोड जमशेदपुर से आप हैं हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजिल भाटिया, सोनू भाटिया और पप्पी भाटिया। आप प्रेम और के साथ नमस्कार करते हुए आज के दिन की शुभकामनाएं भी हमें प्रेषित कर रहे हैं। बेरिडी मध्य प्रदेश से आप हैं हुकुम करमरकर, सुनीता करमरकर, हार्दिक करमरकर, प्राची और तनु करमरकर हमें ये मैसेज नमस्कार के साथ भेज रहे हैं। ये अगला मैसेज ग्राम करेली पुरानी मस्जिद बरेली से हमें प्राप्त हुआ है लाल मोहम्मद अंसारी, लालू मिस्त्री अंसारी, मोहम्मद मुनाजिर अंसारी साहब का। आपके साथ हैं अबरार हुसैन अंसारी, मुन्ना भाई अंसारी, आशिक हुसैन अंसारी और अल्ताफ हुसैन साहब। ज़िला मुरादाबाद ग्राम दुल्लापुर उत्तर प्रदेश से नमस्कार के साथ आप हैं मुकेश कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल पंकज, काजल सीमा, मानवी तन्वी, लक्ष्य सोनी, मोहनी ऋतिक और साथ में हैं बलवीर सिंह। ये मैसेज ग्राम पजौनिया जिला जालौन से हमें प्राप्त हुआ है सतेंद्र कुमार चांसौलिया, आदर्श सार्थक अलौकिक चांसौलिया जी हमें ये मैसेज कर रहे हैं। नमस्कार के साथ लाल कुर्ती रुड़की कैंट के हमारे श्रोता राजेश वर्मा, मंजू वर्मा, निशांत वर्मा, कौशिकी वर्मा, युवान और आर के राजा जी हमें ये मैसेज कर रहे हैं। ग्राम फरासी से हिसार से जुड़े हैं राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी और पुष्पेंद्र कुमार डूडी जी। और ये मैसेज गंज डुंडवारा से हमें प्राप्त हुआ है आदाब के साथ मोहम्मद कलीम अंसारी साहब, जहीरा बेगम अंसारी, मोहम्मद अयान अंसारी, मोहम्मद उस्मान अंसारी और अयाज अंसारी साहब हमें ये मैसेज कर रहे हैं। और ये अगला मैसेज समस्तीपुर बिहार से हमें प्राप्त हुआ है मीरा सिंह, ज्योति सिंह, रोहतास बिहार से सोनम सिंह और अनामिका सिंह जी का। नमस्ते के साथ आपने ये मैसेज हमें किया है। और आप सभी श्रोताओं के नाम कार्यक्रम का ये पहला गीत, फिल्म का नाम है रुदाली और इसके गायक हैं लता मंगेशकर, बोल लिखे हैं गुलजार ने और म्यूज़िक दिया है भूपेंद्र हजारिका ने। आइए सुनते हैं ये खूबसूरत सा गीत।

तो कार्यक्रम का पहला गीत आप सभी श्रोताओं ने सुना। कार्यक्रम के अगले गीत की फरमाइश आप सभी श्रोताओं की हमें प्राप्त हुई है। आप हैं जसपुर उत्तराखंड के हमारे श्रोता, आदाब और नमस्कार के साथ ये मैसेज हमें कर रहे हैं रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम, रियाज, रिफाकत, मोहम्मद रिहान, समरीन परवीन और माहिरा नूर। और ये अगला मैसेज हमें प्राप्त हुआ है जलालाबाद वेस्ट के हमारे श्रोता हैं सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल, प्रिया, दिशानी और निमित जी। आप राम राम जी के साथ ये मैसेज हम तक पहुंचा रहे हैं। और अगला मैसेज, सत श्री अकाल बहन जी कहते हुए, आप हैं मनाली हिमाचल के हमारे श्रोता हर्ष, विनय, विनीत, रोजस भाई। और चंडीगढ़ से आपके साथ हैं शिफाली, शैफी, डेविस, विमला और सतीश अनेजा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये अगला मैसेज हमें प्राप्त हो रहा है मलेट नगर, पटेल नगर मलोट के हमारे श्रोताओं का, डॉक्टर रमेश कुमार जाजौरिया, गीता रानी जाजौरिया, गगनदीप जाजौरिया और आरजू जाजौरिया जी का, आपके साथ हैं गुड्डू, देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव तामुरिया, डॉली बेबी, पूजा तामुरिया, राधिका और प्रभा देवी तामुरिया, साथ में आपका पोता है मास्टर अल कबीर। आप ये मैसेज हमें कर रहे हैं डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से, नमस्कार के साथ आपने ये मैसेज हम तक पहुँचाया है। ये अगला मैसेज हमें प्राप्त हो रहा है ग्राम उगाला जिला अम्बाला हरियाणा के हमारे श्रोताओं का, राजेंद्र कुमार, मलकीत कौर, आरती रानी, राघव, हरमन और आपके परिवार के सभी सदस्यगणों का। और ये मैसेज महसूल सीतामणि से हमें प्राप्त हुआ है, अक्रम हुसैन प्रिंस, बेगम इशरत अक्रम, वसीम अक्रम, रुबीना वसीम, आरिज वसीम, नदीम अक्रम, शमीम अक्रम, ममता रानी शर्मा, पूनम कुमारी शर्मा, कलेर बिहार से आपके साथ हैं मोहम्मद आसिफ खान और निखत परवीन जी, नमस्कार और सलाम करते हुए आप ये मैसेज हम तक पहुंचा रहे हैं। अगला मैसेज सहारनपुर से हमें प्राप्त हुआ है, आप हैं गांव कुम्हारहेड़ा के

प्रवीण पुजारी जी। ये अगला मैसेज अजीत कसाना जी हमें कर रहे हैं, माया देवी, ऋतिक और आदित्य कसाना, लदावली, जिला मुरादाबाद से। मोताला महाराष्ट्र के हमारे श्रोता विजय सुरलकर, रत्नमाला सुरलकर, आरती चिड़िया और ओम भैया ये मैसेज हमें कर रहे हैं नमस्कार के साथ। ज़िला नादेड़ इताला महाराष्ट्र के हमारे श्रोता हैं शंकर लाल जायसवाल, गणेश लाल जायसवाल, शुभम प्रसाद जायसवाल, अर्णव जायसवाल, दुर्गेश्वरी जायसवाल, राखी जायसवाल और तृप्ति जायसवाल जी, नमस्कार के साथ आप तक हम पहुंच रहे हैं। और ये अगला मैसेज नमस्कार करते हुए गुजरात गांधी ग्राम से हमें प्राप्त हुआ है प्रवीण सोनी, पूजा पायल और जगदीश जोहरी जी का। प्रणाम के साथ आप हैं टाउन मॉडल टाउन करनाल के हमारे श्रोता सुधीर नूतन, किरण ठाकुर और संदीप गुगलानी, जग मोहन प्रजापति और जग्गी दुआ जी। ये मैसेज हमें प्राप्त हुआ है ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राह महराज जहाँ, आज़ाद नगर, लक्सर हरिद्वार के हमारे ये श्रोता हैं, नमस्कार के साथ आपने ये मैसेज हम तक पहुँचाया है। और धनेरी तेलीवाला से निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया, आयन बाबू और आपके परिवार के सभी सदस्य नमस्कार के साथ इस मैसेज को हम तक पहुंचा रहे हैं। धाड़ी नादुरा महाराष्ट्र के हमारे श्रोता हैं श्री कृष्णा बाठे, संदीप बाठे और अमूल्य बाठे जी। और ये मैसेज भोपालगढ़ राजस्थान से हमें प्राप्त हुआ है धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा, ईशान छीपा और पूजा परिहार जी का, नमस्कार के साथ आप ये मैसेज हम तक पहुंचा रहे हैं। और आप सभी श्रोताओं के नाम कार्यक्रम का ये अगला खूबसूरत संगीत सिंदूर फिल्म से, इसे हमने लिया है, आवाज़ें हैं लता मंगेशकर और सुरेश वाडेकर की। इस गीत की धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

आकाशवाणी रामपुर से हमारे श्रोता इस समय सुन रहे हैं गीत आपके नाम कार्यक्रम। और अगला मैसेज हमें प्राप्त हो रहा है बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली के हमारे श्रोताओं का। तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन, आशीष राजा, चैतन्य मस्कीन, मेघा मस्कीन और आपके साथ चंडीगढ़ से हैं राहुल खुराना, रचिता खुराना और केशु रिधान खुराना जी। और ये अगला मैसेज हमें प्राप्त हो रहा है ग्राम पंचायत कालेगांव जाफराबाद के हमारे श्रोताओं का। प्रेम पूर्वक नमस्कार के साथ आप हैं श्री सुधाकर राजे जाधव, डॉक्टर प्रशांत राजे जाधव, कुमार संचित दयाल, कुमार प्रथमेश देशमुख, कुमारी प्रणाली, कुमार सर्वत देशमुख, कुमारी सानवी देशमुख, कुमारी हर्षिदा देशमुख और आपका समस्त राजे जाधव देशमुख वायाल परिवार। और ये अगला मैसेज हमें प्राप्त हो रहा है रघुवीर नगर दिल्ली के हमारे श्रोताओं का। दिलावर खान, हसीना बानो, एलिजा नायाब और लड्डू हमें मैसेज कर रहे हैं। और अगला मैसेज बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ढींगिया, नमन ढींगिया और अपार ढींगिया जी का हमें प्राप्त हो रहा है। नमस्कार के साथ आपने ये हमें मैसेज भेजा है। मोहल्ला बारादरी महमूद खान रामपुर के हमारे श्रोता भाई रफत साहब, सईद भाई मंसूरी, राशिद भाई मंसूरी, असद भाई बहन, फिरोज़ा मुस्कान और नगमा नाज मंसूरी साहिबा ये मैसेज हम तक पहुंचा रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया है आप सभी का। ग्राम शोभापुर मेरठ से हमें ये मैसेज किया है दिग्दर्शन और कविता गौड़ जी ने, और आपने बहुत प्यारा सा हमें नमस्कार भी लिख भेजा है और कुछ गानों की हमें लिस्ट भी भेजी है जी, सुनवाने की कोशिश करेंगे। ये अगला मैसेज हम तक पहुंचाया है कोटवार नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया के हमारे श्रोताओं ने। ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय, दुबिहार निवादा ज़िला गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय और प्रांजल राय ये मैसेज हमें पहुँचा रहे हैं। और आप हैं वाइल्ड फील्ड बेंगलुरु के हमारे श्रोता। नमस्कार के साथ भारत भूषण, अंजुश्री वास्तव और दुवेंद्रु भूषण, संस्कृति और पौरुष जी आप ही के साथ हैं। रामगढ़ कैंट के हमारे श्रोता महेंद्र मोदी और कुलदीप कंवल जी। और ये अगला मैसेज हम तक पहुंचाया है जल ही जीवन है। जी हाँ, बहुत ही खूबसूरत मैसेज आपने हमें ये किया है। पुफाली ज़िला यवतमाल के हमारे श्रोता हैं जयराम सिंघड़कर, दिशांत कुमार सिंघड़कर और अर्पिता जी। और ये अगला मैसेज पहुंचाने वाले हमारे श्रोता जुड़े हैं कहाँ से अभी देखते हैं। आप हैं उत्तम नगर दिल्ली के हमारे श्रोता बोधराज खोरवाल, कमला रानी, गीतिका खोरवाल और भानु प्रकाश जी। ये अगला मैसेज हम तक पहुंचाने वाले श्रोता हैं रेलवे कॉलोनी कानपुर के हमारे श्रोता अल्ताफ उल्ला, और साथ में हैं इलाहाबाद के हमारे श्रोता रेशमा और बेबी। ग्राम व पोस्ट हरहरपुर मटकली ज़िला बरेली से शारू नूर अंसारी, फरियाद हुसैन अंसारी, शकील अहमद इदरीसी, मोइन अंसारी, तस्लीम अंसारी और डीजे प्रधान जी हमें ये मैसेज कर रहे हैं। और अगला मैसेज किया है सूर्यवाड़ी छत्रपति शंभाजी नगर के हमारे श्रोताओं ने। प्यार भरे नमस्कार के साथ आप हैं प्रकाश बोरगांवकर, सुषमा बोरगांवकर, प्रांजलि, सोहम बोरगांवकर, सदानंद विराज, स्वीट अशमुन, अंशुमन और साथ में हैं बेबी ओवी। और ये मैसेज हमें प्राप्त हो रहा है पिपरिया के हमारे श्रोताओं का। कमलकांत गुप्ता और साथ में हैं श्रीमती दीपा रिमझिम गुप्ता। नमस्कार के साथ आपने ये मैसेज हम तक पहुंचाया है। और ये अगला मैसेज ग्राम व पोस्ट मुंगीसापुर कानपुर देहात के हमारे श्रोता हैं रमेश्वर कठेरिया, उमाकांति कठेरिया, कमलेश्वर कठेरिया और आपके साथ हैं निशा और प्रज्ञा, प्रतिमा कठेरिया, वेद बाबू और आपका समस्त कठेरिया परिवार। और बहुत ही खूबसूरत सा एक मैसेज भी आपने किया है नमस्कार के साथ सदा खुश रहो और खुशियाँ बांटो। हम आज हमें फिल्म जीवन मृत्यु का गीत सुनवा दीजिए, बहुत कोशिश करेंगे जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मैसेज करने के लिए। और ये अगला मैसेज भवानीगढ़ संगरूर पंजाब से हमें प्राप्त हुआ है परविंदर सिंह रंधावा, लखनपाल रंधावा और जसप्रीत कौर रंधावा जी का बहुत बहुत शुक्रिया।
और भटिंडा रोड डब्वाली से हमें ये मैसेज किया है राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग और मोहित नारंग, साथ में हैं तानिया नारंग जी ने। आप सभी श्रोताओं के नाम कार्यक्रम का ये अगला खूबसूरत सा गीत बेताब फिल्म से हमने इसे लिया है। और इस गीत का जो संगीत बनाया है वो है आरडी बर्मन ने और बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने, और इस गीत को गाया है शब्बीर कुमार ने और लता मंगेशकर ने। आइए सुनते हैं इस खूबसूरत से गीत को।

मलकापुर के आप हैं श्रोता नारायण इंगले और सोपान तायड़े, साथ में हैं आशीष मोहेकर, और आपने प्यारा सा नमस्कार हम तक पहुंचाया है अपनी फरमाइश के साथ। और ये अगला मैसेज हमें भेजा है शंभू दयाल खटक जी ने, और आप हैं गांव व डाकघर निम्नाबाद ज़िला जींद हरियाणा के हमारे श्रोता जसवीर सिंह अरोड़ा, जतिंदर कौर, गुरप्रीत सिंह, लवप्रीत कौर और करमजीत कौर। ये मैसेज हमें भेजा है गणेशवाड़ी कोल्हापुर के हमारे श्रोताओं ने, संभाजी सुतार, चेतन सुतार और सारिका सुतार जी ने। यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से आप हैं संतोष खड़से और विनोद खड़से जी, प्रणाम के साथ आपने ये मैसेज हम तक पहुंचाया है। और अगला मैसेज भेजने वाले हमारे श्रोता हैं दतरंगी के हमारे श्रोता भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा और रुद्र वर्मा जी, और आप हैं तहसील रोड गंज डुंडवारा के हमारे श्रोता के एच राही, गुड़िया बेगम और हम्माद जमील जी, आदाब के साथ आपने ये मैसेज हम तक पहुंचाया है। गणेशपुर गंज डुंडवारा एटा उत्तर प्रदेश के हमारे श्रोता हैं नमस्कार के साथ, एम फारूक शेख, शेख शमा परवीन, साइमा फारूक, सरफराज शेख और गुलफराज शेख, और साथ में हैं बेबी मुस्कान। और ये मैसेज पहुंचाने वाले श्रोता छत्तीसगढ़ चूड़ी लाइन मुंगेली के हमारे श्रोता हैं मोहम्मद इसहाक खतीजा बेगम, मोहम्मद अशफाक आफरीन कौसर, मोहम्मद अल्ताफ नीलोफर फातिमा, और छत्तीसगढ़ रायपुर से आपने ये मैसेज हम तक पहुंचाया है मोहम्मद इमरान, इशरत परवीन, मोहम्मद हसनैन रज़ा, गौसिया फातिमा और आपके परिवार के सभी सदस्यों ने। बहुत बहुत धन्यवाद हैं, आप लगातार सभी कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं। आदाब और नमस्कार के साथ आप पहुँचे हैं वारसी क्लब के हमारे श्रोता सिंधौली मीरगंज बरेली से जीशान वारसी, इमरान शेख, रेहान शेख, करूला मुरादाबाद से अयूब खान, इरम गुड़िया और शोएब खान जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ये अगला मैसेज हम तक पहुंचाने वाले श्रोता बीड शहर महाराष्ट्र से नंद किशोर घटे, संगीता घटे, साक्षी घटे, जयश्री मेत्रे और अंजलि करवा, और साथ में हैं बाबा बाला साहब करवा जी। खैल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा, नीटू, लक्ष्य मल्होत्रा, लाडो, कोयल मल्होत्रा, आपके पापा जी नानक चंद मल्होत्रा जी, शिवाजी कॉलोनी रोहतक से पीयूष सिक्का, कोयल सिक्का, ढुग्गू भाविक सिक्का कार्यक्रम को सुन रहे हैं और प्यारा सा नमस्कार हम तक पहुंचा रहे हैं, और ये भी कह रहे हैं कि दीदी बहुत देर से इंतज़ार कर रहे हैं। जी, आपका इंतज़ार ख़त्म हुआ। और साथ ही साथ श्रोताओं, ये बताइए कि बाहर का आपके यहाँ का मौसम कैसा है? यहाँ पर तो मैं स्टूडियो में हूँ, मुझे मालूम नहीं, सुबह जब आई थी तब अच्छा था मौसम, बादल थे, इस समय कैसा मौसम है ज़रूर बताइएगा। ज़िला अंबागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ के हमारे श्रोता हैं रिजवान खान, आयशा सबिहा और अनस, साथ में हैं रेहान। तो आप सभी श्रोताओं ने सुनना चाहा है कार्यक्रम का ये अगला खूबसूरत सा गीत, जिसे हमने लिया है दिल पड़ोसी है फिल्म से, आशा भोसले की आवाज़ है, और साथ में संगीत दिया है आर डी बर्मन ने और बोल लिखे हैं गुलजार ने।

सनावत से हमें ये मैसेज प्राप्त हुआ है शेख मूसा मोसिन अशोक वर्मा राजकुमार बुडाना जी का। आप लिख रहे हैं, प्यार भरा आदाब, आप खैरियत से हैं। हमारे यहाँ का मौसम काफ़ी गर्म है, बरसात का इंतज़ार करते हैं, दुआओं में याद रखिएगा। बिल्कुल, हम चाहते हैं कि गर्मी का मौसम अब थोड़ा सा ठंडा हो जाए। और ये अगला मैसेज हमें प्राप्त हो रहा है मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, निहारिका, हार्दिक बत्ता और वंश बत्ता जी, आपने ये कहाँ से मैसेज हमें लिखा है? ये कहीं हमें दिखाई नहीं दे रहा एड्रेस में आपके। और ये अगला मैसेज हम तक पहुँचाया है कुमकुम आरती आराध्या गौरी और आरती ने। आप हैं महाराष्ट्र के हमारे श्रोता और आप कह रहे हैं कि प्रस्तुति में मज़ा आ रहा है, लाजवाब पेशकश है। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको प्रोग्राम अच्छा लग रहा है, इसी तरह से कार्यक्रम के साथ जुड़े रहिएगा और प्यारे प्यारे गीतों का आनंद लीजिएगा और अपनी फरमाइशों को भेजिएगा। और फरमाइश अगर भेज चुके हैं तो दूसरों की फरमाइशों को सुनिएगा। पाकुड़ झारखंड के हमारे श्रोता हैं उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, किसुता सुअर्णव आनंद और सत्यम आनंद जी। बोरछा गाछी पश्चिम बंगाल के हमारे श्रोता मुन्ना भगत और गुड्डी भगत जी इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं और अपनी फरमाइश हम तक पहुंचा रहे हैं। खुर्जा उत्तर प्रदेश से सप्रेम नमस्कार के साथ आप हैं तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी। ये अगला मैसेज हम तक पहुँचाने वाले श्रोता हैं। चौटाला हरियाणा के हमारे श्रोता हैं दारा पंडित, संजय शर्मा और साथ में हैं प्रियंका शर्मा जी। प्रोग्राम को सुन रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया है और आप आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम का। ये बहुत ही अच्छी और दिलकश बात है हमारे लिए, सुकून की भी बात है। गोकुल चौक गंगजला सहरसा बिहार के हमारे श्रोता राधे कुमार विद्यार्थी, सविता राधे, राकेश रंजन, राजीव रंजन, संजय कुमार, ओम कुमार, गुंजेश कुमार, रिया रानी और साथ में हैं कुमकुम कुमारी साक्षी, अच्छेलाल राय, बुल्की वाली और फलना झा इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। और ये अगला मैसेज हम तक पहुंचाया है एक बहुत ही खूबसूरत से मैसेज के साथ। वन महोत्सव 2026 को आप सभी को शुभकामनाएं दे रहे हैं, हम सभी को शुभकामनाएं दे रहे हैं और साथ में मैसेज लिख रहे हैं कि जीवितों की श्वास का सीधा संबंध वृक्षों से है, वृक्ष नहीं तो श्वास नहीं और श्वास नहीं तो जीवन नहीं, इसलिए हरी भरी वसुधा को सदैव जीवित रखें, अपना जीवित होने का कर्तव्य पूरा करें और प्रकृति को अपने विस्तार विस्तरण की होने का सौंदर्य बहाल करें। और प्यारी सी नमस्कार के साथ आप हैं विदर्भ श्रोता क्लब जलगांव जंक्शन के हमारे श्रोता दिनेश काले, वंदना काले, आदेश कुमार काले और प्रोफेसर वसुधा वज्रसेन जी। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका इतने खूबसूरत से मैसेज और अपनी फरमाइश भेजने का। ये अगला मैसेज हम तक पहुंचाने वाले श्रोता हैं। नमस्कार के साथ वंडिंग खेड़ा पंजाब से मिंटू, टॉमस, पिंकी, लवली और आरती अरोड़ा इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं और अपना मैसेज हम तक पहुंचा रहे हैं। और गणेश वाली वाड़ी कोल्हापुर के हमारे श्रोता हैं संभाजी सुतार, चेतन सुतार, सारिका सुतार और वैशाली जी इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। और नई बस्ती पते खालसा के हमारे श्रोता बहारुल हसन सिद्दीकी, मोहम्मद आलम सिद्दीकी, मोहम्मद सिफान सिद्दीकी, मोहम्मद यूसुफ, अनाबिया, अलीशा, शकील फ़हीम, मोहम्मद यासीन अंसारी, सुदेश चौहान इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया है आप सभी श्रोताओं का। दतरंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरा मणि वर्मा, पारस मणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा और अनोखी लाल कार्यक्रम को सुन रहे हैं और सप्रेम नमस्कार भी आप हमें भेज रहे हैं। तो कार्यक्रम का ये अंतिम गीत आपने सुनना चाहा है वारिस फिल्म से। इस गीत को गाया है लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर ने और संगीत दिया है उत्तम जगदीश ने। आइए सुनते हैं कार्यक्रम की ये अंतिम पेशकश।

और कुछ मैसेज हमें और प्राप्त हो रहे हैं। आप हैं एसएम जावेद, शगुफ्ता, अंजुम और नजमुल होदा, और आपने ये मैसेज हमें किया है गुमला झारखंड से। और ये अगला मैसेज हमें प्राप्त हो रहा है सहारनपुर के हमारे श्रोताओं का, सोनाली नारंग और आशा नारंग, साथ में हैं सुनेश नारंग जी। बिस्मिल्ला मस्जिद रामपुर के हमारे श्रोता हैं फौजिया रोशनी, शायना काजल और भाई शहजाद अली। और ये मैसेज हमें रघुनाथपुरा ज़िला गंगानगर राजस्थान से हमें प्राप्त हो रहा है लालगिरी गोस्वामी और हेमलता जी का, साथ में हैं हिना हर्षिता हर्षित और साथ में हैं खुशी गोस्वामी। मरहरा दरवाज़ा एटा के हमारे श्रोता नवी हसन अब्बासी, शहनवाज अब्बासी, नवेज हसन, अनम यशफ और सुहेल हसन, साथ में हैं राशिद वारसी। किदवई नगर सिद्धपुरा टाउन से जुबैर अली खान अपनी फरमाइश को हम तक पहुंचा रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया।

हमारे श्रोता जिस भी रूप में इस कार्यक्रम में शामिल हुए, अपनी फरमाइशें हम तक भेजें, अपने मैसेज हम तक भेजें और खूबसूरत से संदेश भी आपने हमें भेजे, सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद। आकाशवाणी रामपुर को यूं ही सुनते रहिए और अपना प्यार का खजाना हम तक यूं ही पहुंचाते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।

अब आज के इस कार्यक्रम से सुरेंद्र कौर को दीजिएगा इजाजत। अगले कार्यक्रम में फिर से बात होगी, मुलाकात होगी और होंगी आपकी फरमाइशें। बहुत बहुत शुक्रिया और नमस्कार।

हमारे श्रोताओं ने सुना फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत आपके नाम। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से प्रस्तुत किया गया। अपराह्न के 1 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से होंगे।

0: सहायता मिलेगी। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारत और जापान हिंद प्रशांत तथा अन्य क्षेत्रों में भी शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए साझा प्रयास जारी रखेंगे। भारत ने अपने संकल्प को दोहराते हुए कहा है कि आतंकवाद को किसी भी परिस्थिति में उचित नहीं ठहराया जा सकता है। भारत ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मानदंडों की कड़ी आलोचना करते हुए एक मजबूत और एकजुट वैश्विक कार्रवाई का आह्वान किया। संयुक्त राष्ट्र की वैश्विक आतंकवाद विरोधी रणनीति की 9वीं समीक्षा में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने ये बात कही।
1: इंडिया हैज बीन अ विक्टिम ऑफ क्रॉस बॉर्डर
2: से सीमा पार आतंकवाद को झेल रहा है, हमने इसकी भारी कीमत चुकाई है। इसी अनुभव के चलते भारत ने आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति अपनाई है। आतंकवाद के सभी रूपों और तरीकों की निंदा की जानी चाहिए। भारत ने आतंकवाद के लिए फंडिंग को रोकने पर वैश्विक ध्यान केंद्रित करने की दिशा में काम किया है। भारत का मानना है कि आतंकवाद विरोधी प्रयासों को राजनीति से प्रेरित बयानों से कमजोर नहीं किया जाना चाहिए।
0: केंद्र सरकार ने असम में बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए पूरे सहयोग का आश्वासन दिया है। कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कल गुवाहाटी में राज्य सरकार के साथ समीक्षा बैठक की। श्री चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार असम और अरुणाचल प्रदेश में बाढ़ के हालात को लेकर बेहद गंभीर है। असम के मुख्य सचिव रवि कोटा ने बताया कि बाढ़ से 13 जिलों के करीब 72,000 लोग प्रभावित हुए हैं। बंगलुरु दक्षिण तालुक में एक चट्टान के गिरने से 7 प्रवासी श्रमिकों की मौत हो गई। दुर्घटना उस समय हुई जब मतपटना गांव स्थित कावेरी क्रशर पत्थर खदान में एक विशाल चट्टान नीचे खदान में गिर गई, जहां मजदूर काम कर रहे थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और खदान के मालिकों की तलाश जारी है। मृतकों में बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तरी कर्नाटक के निवासी थे। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर जी परमेश्वर ने घटना पर दुख व्यक्त करते हुए खदान मालिकों के खिलाफ उचित कार्रवाई का निर्देश दिया है। दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ ने ISI प्रायोजित अंतर्राज्य आतंकी और हथियार नेटवर्क पर कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी ISI हैंडलर शहजाद भट्टी और उसके साथियों के निर्देश पर राष्ट्रीय राजधानी में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने की योजना बना रहे थे। यूक्रेन के कीव में रूस के ड्रोन और मिसाइल हमले में 13 लोग मारे गए और कई लोग घायल हो गए। स्थानीय समाचार एजेंसियों ने बताया कि आज शहर के कई हिस्सों में विस्फोटों की आवाजें सुनी गईं। ये हमले इस सप्ताह की शुरुआत में यूक्रेन द्वारा मॉस्को पर किए गए ड्रोन हमलों के बाद हुए हैं। आज जम्मू में भगवती नगर आधार शिविर से कड़ी सुरक्षा के बीच उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए 4,822 तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे को रवाना किया। इस पवित्र यात्रा में शामिल होने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से तीर्थयात्री जम्मू पहुंच रहे हैं। दक्षिण पश्चिम मॉनसून आज दिल्ली के सभी इलाकों सहित गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के ज्यादातर हिस्सों तथा राजस्थान के कुछ इलाकों में आगे बढ़ गया है। राजधानी में बारिश से गर्मी और उमस भरे मौसम से काफी राहत मिली है। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिन में मॉनसून के उत्तर भारत के कई और इलाकों में आगे बढ़ने की संभावना व्यक्त की है। घरेलू शेयर बाजार में आज दोपहर के सत्र में सेंसेक्स 412 अंक की बढ़त के साथ 77,355 के उच्चतम स्तर और निफ्टी 119 अंक बढ़कर 24,124 पर आ गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

हम आकाशवाणी रामपुर से बोल रहे हैं। श्रोताओं, 1:05 और 19 सेकंड हो रहे हैं। आइए अब आपको बता दें आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों और उनके प्रसारण के विषय में संक्षिप्त जानकारी।

श्रोताओं, आपसे बस थोड़ी ही देर बाद यानी 1:15 पर आप सुनेंगे लोकगीतों का हमारा कार्यक्रम धरती गाती है। आज इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे विभिन्न कलाकारों के स्वर में कुछ लोकगीत। 1:30 का समय है महिलाओं के कार्यक्रम आंचल का। आज इस कार्यक्रम में सुनिएगा चर्चा वन महोत्सव सप्ताह। इसके साथ एक वार्ता आपको सुनवाई जाएगी ग्रामीण महिलाओं में शैक्षिक विकास। वार्ताकार होंगे अंचल गुप्ता। और गांव की बातों के अंतर्गत क्षेत्र संकलित कार्यक्रम भी आपके लिए हम लेकर आएंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थी से आपको बातचीत कराई जाएगी। लाभार्थी होंगे पूनम, ग्राम क्रांतपुर बरेली के हमारे ये श्रोता हैं। 2:30 का समय है प्रायोजित कार्यक्रम उमंग का। शाम की सभा श्रोताओं आरंभ होगी संध्या 4:00 हमारे रिले कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स कार्यक्रम के साथ। 5:00 आप सुनिएगा आज शाम कार्यक्रम। और 5:15 का समय है युवा साथियों के दैनिक कार्यक्रम युवाणी का। पर हम आपके लिए लेकर उपस्थित होंगे चित्रपट संगीत। और 6:20 का समय है किसान साथियों के दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत का। आज इसमें सुनिएगा चर्चा पशुओं में टीकाकरण का महत्व। आकाशवाणी गांव के अंतर्गत में सुनिएगा क्षेत्र संकलित कार्यक्रम ग्राम पंचायत संकलन विशेष। ब्लॉग रहेगा शाहबाद। इसके साथ साथ आपको मौसम की जानकारी भी कराई जाएगी। संध्या 7:00 सुनिएगा विविधा कार्यक्रम के अंतर्गत वार्ता सहकारिता में सहयोग की शक्ति। वार्ताकार होंगे श्री महिपाल सिंह। 7:31 पर सुनिएगा क्षमा जौहरी से कुछ गीत सुगम संगीत कार्यक्रम के अंतर्गत। गीत गाता चल ये फरमाइशी नगमों का कार्यक्रम आप सुनेंगे रात्रि 8:00। 9:30 पर हम आपके लिए लेकर उपस्थित होंगे सबरस कार्यक्रम। इसके अंतर्गत आप रुचि गुप्ता से सुनिएगा कुछ लोकगीत। रात्रि 10:00 रेले कार्यक्रम क्षेत्रीय लोक और सुगम संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर उपस्थित होंगे। और 10:30 पर सुनिएगा इंग्लैंड में महिला क्रिकेट विश्व कप 2026 के अंतर्गत दूसरे सेमीफाइनल क्रिकेट की ऑफ ट्यूब कमेंट्री मैच के समाप्त होने तक। ये कार्यक्रम आपको हम सुनवाएंगे हमारे दिल्ली केंद्र से। तो श्रोताओं, ये थी जानकारी आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कुछ विशेष कार्यक्रमों की। ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। 1:10 होना चाहते हैं अब लखनऊ केंद्र से इलाकाई खबरें नश्र होंगी।

विकसित भारत रोजगार और रोजी रोटी मिशन देही वीबीजी रामजी का बाजाब्ता आगाज किया। रियासत के नायब वजीर आला केशव प्रसाद मौर्य प्रयाग।

0: राज्य जिले से ऑनलाइन प्रोग्राम में शामिल हुए। वीबीजी रामजी गारंटी एक्ट 2025 कल से पूरे मुल्क में नाफिज हो गया है। इस एक्ट के तहत अहल दही कुनबों को अब 125 दिन की जमानत शुदा उजरत मुलाजमत का कानूनी हक मिलेगा। हुकूमत ने वीबीजी रामजी एक्ट 2025 के तहत तमाम रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के लिए मुआवजे की नजरसानी शुदा शरहों का भी नोटिफिकेशन जारी किया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की ज़ेर सदारत मरकजी काबीना ने कल उत्तर प्रदेश में कौमी शाहराह नंबर 34 के तकरीबन 118 किलोमीटर तवील एक्सेस कंट्रोल्ड कानपुर कबरई सेक्शन की तामीर को मंजूरी दे दी। काबीना के फैसले पर मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए इत्तिलात और नशरियात के वजीर अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस प्रोजेक्ट की तखमीनी लागत 7,145 करोड़ रुपये होगी। वज़ीर-ए-आला योगी आदित्यनाथ ने इस फैसले के लिए वज़ीर-ए-आज़म का शुक्रिया अदा किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में वज़ीर-ए-आला ने कहा कि भोपाल कानपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर का ये अहम प्रोजेक्ट पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान के मुताबिक बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और कानपुर रिंग रोड को बगैर किसी रुकावट के राबता फराहम करेगा। वज़ीर-ए-आला योगी आदित्यनाथ ने कल सहारनपुर में 613 करोड़ रुपए से ज्यादा के मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया और संग बुनियाद रखा। तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में सहारनपुर को फजाई राबते से जोड़ा जाएगा, जिससे उसकी तरक्की में मजीद तेजी आएगी। इससे कबल वज़ीर-ए-आला ने सहारनपुर के हायर प्राइमरी कंपोजिट स्कूल इस्माइलपुर से रियासतगीर स्कूल चलो मुहिम के दूसरे मरहले का आगाज किया। इस मौके पर वज़ीर-ए-आला ने स्कूल चलो मुहिम को अवामी तहरीक बनाने की अपील की।
1: पिछले 9 वर्ष में 60 लाख से अतिरिक्त बच्चे बेसिक शिक्षा परिषद में पढ़े और ड्रॉप आउट रेट जो पहले 19-20 फीसदी था घटकर के आज 3-4 फीसदी तक रह गया है। स्वस्थ समाज के लिए कोई भी बच्चा स्कूल में जाने से वंचित न रहे। अगर कोई बच्चा शिक्षा से वंचित है तो केवल परिवार की क्षति नहीं, समाज की भी है, राष्ट्र की भी है। यही बच्चे आगे बढ़ेंगे। हमें ऐसी फौज खड़ी करनी है जो राष्ट्र के कर्तव्यशील नागरिक के रूप में अपने दायित्वों का निर्वहन कर सके।
0: नायब वज़ीर-ए-आला ब्रजेश पाठक ने कल लखनऊ से रियासतगीर मुतादी बीमारी पर काबू पाने की मुहिम का आगाज किया। इस मौके पर उन्होंने वबाई अमराज से बचाव के लिए आगाही रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके साथ ही उन्होंने दस्तक मुहिम का भी आगाज किया जो 11 से 31 जुलाई तक चलाई जाएगी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मुहिम की कामयाबी के लिए हुकूमती कोशिशों के साथ साथ आवाम की शिरकत भी जरूरी है। कल रियासत के तकरीबन सभी इजला बशमूल वाराणसी, गोरखपुर, चंदौली, देवरिया और अंबेडकर नगर में अवामी बेदारियां रैलियां निकालकर लोगों को मुतादी बीमारियों से बचाव का पैगाम दिया गया। उत्तर प्रदेश टीचर अहलियत टेस्ट UPTET 2026 आज से 4 जुलाई तक रियासत के 60 इजला के 955 इम्तहानी मराकज पर मुनक्किद किया जा रहा है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: TET परीक्षा कुल 5 पालियों में आयोजित होगी। परीक्षा में करीब 19,94,661 अभ्यर्थी सम्मिलित होंगे। इनमें लगभग 17,67,000 अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश के हैं, जबकि 2,27,481 अभ्यर्थी अन्य राज्यों से परीक्षा देने आएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा के दौरान कहा कि प्रत्येक जनपद में स्थापित कंट्रोल रूम प्रभावी ढंग से सक्रिय कार्य करें। उन्होंने सोशल मीडिया पर भी कड़ी निगरानी रखने और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। समाचार कक्ष से तनवीर फातिमा।
0: इस सिलसिले में शुमाल मशरकी रेलवे लखनऊ डिवीजन आज से 4 जुलाई तक गोरखपुर और लखनऊ के दरमियान बगैर रिजर्वेशन वाली इम्तहान खसूसी 2 ट्रेनें चला रहा है। इस ट्रेन में 12 बिना रिजर्वेशन वाले डिब्बे होंगे। रियासती हुकूमत ने अयोध्या के श्रीराम मंदिर में चंदे के गबन के इल्जाम की जाँच करने वाली खसूसी तफ्तीश टीम SIT को मजीद 15 दिन की मोहलत दी है। 15 जून को तश्कील दी गई इस SIT को 7 दिन के अंदर इब्तदाई रिपोर्ट और 15 दिन के अंदर हतमी रिपोर्ट पेश करनी थी, लेकिन आखिरी तारीख 30 जून को खत्म हो गई। इसके साथ ही आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
3: ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। 1:15 हो रहे हैं। आइए श्रोताओं अब सुनते हैं लोकगीतों पर आधारित कार्यक्रम धरती गाती है। आज इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे विभिन्न स्वरों में कुछ लोकगीत। कार्यक्रम का पहला लोकगीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं मनु और साथियों की आवाज़ में।

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: हमारे श्रोता इस समय सुन रहे हैं लोकगीतों का कार्यक्रम धरती गाती है। कार्यक्रम का ये अंतिम लोकगीत मुस्कान अलवी की आवाज में।

अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे लोकगीतों का कार्यक्रम धरती गाती है। अब ये कार्यक्रम समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये रामपुर केंद्र है। 1:30 और 10 सेकंड हो रहे हैं। बहने सुने अपना कार्यक्रम आंचल।

0: आंचल कार्यक्रम में आप सबको बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम को सुनन बारी हमारी सभी बहनन को आपकी बहन सुमन की प्यार भरी नमस्कार और राम राम। कैसी हो बहनों? हम आशा करते हैं आप सब स्वस्थ हुई, मस्त हुई और अपनों कामों अच्छे से कर रही हुई। बहनों, हमारी तो ईश्वर से यही प्रार्थना रहती है कि सब ठीक ठाक रहें। बहनों, हमारे लिए शुद्ध वातावरण कितना ज़रूरी होता है, और ये केवल मानव के लिए ना बल्कि सब पशु पक्षियों के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है, और ये सब संभव है पेड़ों से। तो बहनों, आज हम वन महोत्सव सप्ताह के महत्व पर चर्चा करेंगे। बहनों, वन महोत्सव सप्ताह प्रति वर्ष जुलाई के प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है। इसको उद्देश्य लोगों को पेड़ पौधे लगाना और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करना है। बहनों, मन में एक ख्याल आता है कि वन क्यों आवश्यक होता है, इनकी क्या जरूरत होती है। तो बहनों, वन प्रकृति को वो अमूल्य उपहार है। पेड़ पौधे हमें शुद्ध वायु प्रदान करते हैं और जो हम ऑक्सीजन लेते हैं वो हमें पेड़ों से ही प्राप्त होती है। बहनों, जब बारिश ज़्यादा होने लगती है तो वन वर्षा को संतुलित रखने में और मिट्टी के कटाव को होने से रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बहनों, आज तेज़ी से बढ़ती जनसंख्या और विकास कार्यों के कारण पेड़न की कटाई बहुत ही ज़्यादा स्तर पर ही रही है, जिससे पर्यावरण प्रदूषित ही रहा है। बहनों, पेड़न की कटाई लगातार करण की वजह से तापमान बढ़ रहा है और वर्षा को चक्र प्रभावित भी इसी वजह से ही रहा है। बहनों, अगर हम समय रहते पेड़न की रक्षा ना करेंगे तो आने वाली पीढ़ियों को गंभीर समस्याओं को सामना भी करना पड़ जाएगा। बहनों, वन महोत्सव सप्ताह को मुख्य उद्देश्य अधिक से अधिक पेड़ लगाना और लोगों में पर्यावरण संरक्षण की भावना विकसित करना है। बहनों, इस सप्ताह विद्यालयों, पंचायतों, स्वयं सहायता समूह और सामाजिक संस्थाओं द्वारा पौधे लगाए जाते हैं। बहनों, गांव में हमारी बहनें अपने घर के आसपास पौधे लगा के अपने घर के छोटे बालकन को पेड़ लगाने को महत्व समझा सकती हैं और अपने बच्चों को बोलकर पौधों की नियमित पानी और उनकी देखभाल भी करा सकती हैं। ऐसे ही ग्रामीण बहनें पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान दे सकती हैं। बहनों, स्थानीय जलवायु के अनुसार पौधे लगाना सबसे अच्छा रहता है। जैसे नीम, पीपल, बरगद, आम, जामुन, अमरूद, ये पौधे पर्यावरण और स्वास्थ्य दोनों के लिए ही लाभदायक होते हैं। बहनों, पेड़ लगाने के बाद उनकी देखभाल करना बहुत आवश्यक होती है। बहनों, केवल पौधा लगाना ही पर्याप्त ना है, उनकी देखभाल करना बहुत ज़रूरी है। जब थोड़े ना पेड़ लगा दे और उनकी देखभाल करने की पतो ही ना है और वे सूख कर खराब ही जाता। इसलिए बहनों, हमारे द्वारा लगाए गए पौधन को समय पर पानी देना और पशुओं से उनकी रक्षा करना बहुत ज़रूरी है। और बहनों, पौधन के आसपास सफाई रखना और जैविक खादों को उपयोग करके पौधों को जल्दी बढ़ाने में सहयोग करना। बहनों, वन केवल पर्यावरण की रक्षा ना करता है बल्कि लोगों को रोजगार भी प्रदान करता है। फल, फूल, लकड़ी, औषधियाँ, पौधे और अन्य वन उत्पाद ग्रामीण परिवार की आय बढ़ाने में सहायक होता। बहनों, अपने बालकन को बचपन से ही पेड़ लगाने और उनकी देखभाल करने की आदत डालनी चाहिए। यदि हर बच्चा एक पौधा लगाए और उसकी देखभाल करने की जिम्मेदारी ले तो हमारा गांव या शहर सब अधिक हरो भरो बन जाए। बहनों, वन हमारे जीवन को आधार है। वन महोत्सव सप्ताह हमें प्रकृति के प्रति अपनी जिम्मेदारी को एहसास कराता है। बहनों, एक पेड़ 100 सुखों को आधार है, इसलिए हर व्यक्ति एक पेड़ अवश्य लगाए और पर्यावरण संरक्षण में अपना योगदान दे। बहनों, आओ हम सब संकल्प लें कि हर वर्ष कम से कम एक पौधा जरूर लगाएंगे और उसकी देखभाल करेंगे। बहनों, पेड़ बचेंगे तो पर्यावरण बचाए, और अगर पर्यावरण बचाए तो हमारा भविष्य सुरक्षित रहे। बहनों, अब सुन लेते हैं डॉक्टर अंचल गुप्ता द्वारा करी गई जा वार्ता को, जाको विषय है ग्रामीण महिलाओं में शैक्षिक विकास।
1: भारत को गांव का देश माना जाता है, अतः भारत के विकास हेतु आवश्यक है कि गांव का भी संपूर्ण विकास हो। ग्रामीण विकास की परिधि में सर्वप्रथम गांव में शिक्षा, महिला शिक्षा एवं उसके बाद संस्कृति, कला कौशल, चिकित्सा, सामुदायिक विकास, कृषि, सामाजिक सुधार, पशुपालन, उद्योग धंधे, रोजगार का विस्तार, पेयजल, विद्युत की सुविधा तथा संचार व्यवस्था का विस्तार आदि चीजें आती हैं। शिक्षा से ही महिला आत्मनिर्भरता तथा सशक्तिकरण का मार्ग प्रशस्त होता है। गांधी जी महिलाओं की शिक्षा के घोर समर्थक थे। वे कहा करते थे कि एक पुरुष पढ़ता है तो मात्र पुरुष पढ़ता है, परंतु एक महिला पढ़ती है तो पूरा परिवार और पूरा समाज पढ़ता है। भारतीय संस्कृति में नारी की महत्ता से कौन परिचित नहीं है। इसमें भगवान शिव को अर्धनारीश्वर बताया गया है। यह पौराणिक प्रतिपादन समग्र समाज में महिलाओं की पुरुषों के साथ बराबरी की भागीदारी की मान्यता, भावना एवं सिद्धांत की पुष्टि करता है। श्रेष्ठ तथा धार्मिक कार्य के समय भी महिला को पुरुष के दाहिनी ओर बैठाने की परंपरा के पीछे भी महिलाओं को श्रेष्ठ कार्यों में प्राथमिकता देने का विचार निहित है। रामायण में प्रसंग आता है कि राजसूय यज्ञ के समय जब सीता जी राम जी के समक्ष नहीं थे तो यज्ञ को फलीभूत करने हेतु सीता की स्वर्ण प्रतिमा उनके बाएं ओर स्थापित की गई थी। यह प्रसंग महिला की महत्ता की ओर इशारा करने के साथ साथ समग्र विकास में महिलाओं की अनिवार्य भागीदारी की आवश्यकता पर भी बल देता है। एक दूसरे के पूरक होते हुए नर नारी की समाज में महत्वपूर्ण भागीदारी है। इसी संकल्पना पर विचार करते हुए ग्रामीण विकास में भी महिला जनप्रतिनिधियों की भागीदारी की तीव्र आवश्यकता अनुभव की जा रही है। देश में महिलाओं की बड़ी जनसंख्या होने के बावजूद अगर उनकी भागीदारी देश के विकास में न हो तो इस जनसंख्या को उचित अवसर प्राप्त नहीं होगा। इस विशाल जनशक्ति की भागीदारी के बिना किसी भी प्रकार के विकास की कल्पना नहीं की जा सकती। इसलिए ग्रामीण महिलाओं के लिए महिलाओं की भागीदारी महत्वपूर्ण मानी गई है। ग्रामीण इलाकों में हमने अधिकांश महिलाओं को बहन, माँ, पत्नी, बेटी आदि विभिन्न रूपों में देखा है। ये सभी हर समय परिवार के मान सम्मान के लिए कुछ भी कर सकने के लिए तैयार रहती हैं। शहरी क्षेत्रों में तो फिर भी शिक्षा के प्रति जागरूकता के कारण हालात इतने खराब नहीं हैं, पर ग्रामीण इलाकों में महिला की स्थिति चिंता करने योग्य है। सही शिक्षा की व्यवस्था न होने के कारण महिलाओं की दशा दयनीय हो जाती है। एक औरत बच्चे को जन्म देती है और पूरी जिंदगी उस बच्चे के प्रति अपनी सारी जिम्मेदारियों के निर्वाह को ही अपना संपूर्ण जीवन मान लेती है तथा बदले में वो कुछ भी कामना नहीं करती। ताउम्र पूरी सहनशीलता व समर्पण के साथ बिना तर्क किए अपनी भूमिका को पूरा करती है। ग्रामीण समाज में आज भी एक ऐसी पितृसत्तात्मक सामाजिक व्यवस्था वाली मनोवृत्ति विद्यमान है जो न केवल महिलाओं को दोयम दर्जे की नागरिक मानकर चलती है, अपितु इसी आधार पर उन्हें संपत्ति, स्वास्थ्य, शिक्षा सहित कितने ही अधिकारों से वंचित कर दिया जाता है। ग्रामीण समाज की महिलाओं की समस्याएं कुछ अलग प्रकृति की हैं, परंतु इन सब के केंद्र में कहीं ना कहीं अशिक्षा तथा शिक्षा के प्रति जागरूकता का अभाव ही दिखाई देता है। आंकड़े बताते हैं कि ग्रामीण समाज में 90% महिलाएं खेती पर निर्भर हैं तथा असंगठित क्षेत्रों में 98% महिलाएं हैं। ग्रामीण महिलाओं को लगातार 16 से 18 घंटे काम करना पड़ता है। सुबह से लेकर शाम तक उन्हें हार तोड़ मेहनत करनी पड़ती है। कितनी ही महिलाओं को दिन भर खेत में काम करना पड़ता है, पानी लेने के लिए मीलों पैदल जाना पड़ता है, पशुओं के लिए चारा खेतों से काट कर लाना होता है। इस सब के बाद खाना बनाना, कपड़े धोना तथा बच्चों को पालने सहित सारा घर का काम उनकी प्रमुख भूमिकाओं में से है। फिर भी उनके श्रम को पितृसत्ता में महत्वपूर्ण कार्य नहीं माना जाता। कहना न होगा कि शिक्षा के अभाव में स्वयं महिलाएं भी अपने पूर्णकालिक काम का आकलन नहीं कर पाती। इसी प्रकार की मानसिकता के चलते महिलाओं को आज तक गरिमापूर्ण जीवन नहीं मिल पाया है। यद्यपि महिला आंदोलनों ने महिलाओं की सत्ता में भागीदारी के लिए अपनी आवाज को बुलंद किया, जिसके फलस्वरूप 73वां संविधान संशोधन लागू हुआ और पंचायती राज व्यवस्था में 1/3 अब 50% महिला आरक्षण का प्रावधान लागू किया गया, जिसके फलस्वरूप वर्तमान में लगभग 14 लाख महिला जनप्रतिनिधि हैं। परंतु वास्तविकता में ग्रामीण इलाकों में पंचायतों में चुनकर आई महिला जनप्रतिनिधि के अधिकारों का उपयोग उनके पति, पिता अथवा भाइयों द्वारा ही किया जा रहा है और ग्रामीण महिला आज भी घर की चारदीवारी में अपने पारंपरिक घरेलू कार्य निपटा रही है। आज महिलाएं दोनों के माध्यम से जो कुछ भी अधिकार मिल रहे हैं वे सिर्फ शहरी मध्यम वर्ग की महिलाएं प्राप्त कर पा रही हैं। संगठित श्रम बाजार में ग्रामीण महिलाएं लगभग अनुपस्थित ही दिखाई देती हैं। ग्रामीण महिलाओं के स्वास्थ्य शिक्षा की स्थिति अभी भी शोचनीय है। सरकारी संगठन के आंकड़ों के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में 53% लड़कियों की शादी 18 साल से पहले ही हो जाती है। महिलाओं को शिक्षा का पात्र नहीं समझा जाता। लड़कियों को स्कूल न भेजने के पीछे भी यही सोच रहती है कि लड़कियां पढ़कर क्या करेंगी, उन्हें आखिर में चूल्हा चौका ही संभालना है। अगर स्वास्थ्य की बात करें तो लड़कियों में आज ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े पैमानों पर अनीमिया, कुपोषण, अस्वच्छता जैसी समस्याएं व्याप्त हैं। इन सब बीमारियों का इलाज इसलिए नहीं कराया जाता कि वे अपने आप ही ठीक हो जाएंगी। इसी धारणा के परिणाम स्वरूप आज मातृत्व मृत्यु दर 212 प्रति लाख पहुंच चुकी है। परिवर्तन की बात करें तो इस तीव्र लहर से गांव भी अछूते नहीं हैं। परिवहन के सुलभ साधनों ने गांव और शहर की दूरी को भी कम कर दिया है, परंतु कहना न होगा कि ग्रामीण महिलाओं की स्थिति जिस तरीके से बदलनी चाहिए थी उस तरीके से अभी तक नहीं बदल पाई है। अच्छी शिक्षा प्रणाली की कमी के चलते उन्हें अभी भी पढ़ाई लिखाई में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यद्यपि महिला शिक्षा की महत्ता को समझते हुए सरकार भी इस ओर पूरे प्रयास कर रही है, ये अलग बात है कि जागरूकता के अभाव के चलते इनका उतना प्रभाव दिखाई नहीं दे रहा जितना वास्तव में दिखना चाहिए। ये सत्य है कि नारी को शिक्षित करके हम पूरे देश को शिक्षित बना सकते हैं। किसी देश और समाज की तो छोड़िए, हम अपने परिवार की उन्नति की कल्पना भी स्त्री शिक्षा के बिना नहीं कर सकते। किसी भी लोकतांत्रिक समाज की ये नींव है कि स्त्री और पुरुष को बराबर शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हो। एक पढ़ी लिखी स्त्री ही समाज में खुशी और शांति ला सकती है। कहते हैं कि बच्चे इस देश का भविष्य हैं और एक महिला ही माँ के रूप में उसकी पहली शिक्षा का स्रोत है। इसी कारणवश महिलाएं चाहे शहरी हों या ग्रामीण, उनका शिक्षित होना बहुत जरूरी है। शिक्षित होकर वह न केवल अपने घर परिवार पड़ोस अपितु पूरे समाज को ही सही दिशा प्रदान करती है। समाज के विकास और देश के आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए भी नारी का शिक्षित होना अत्यंत महत्वपूर्ण। इसी दिशा में स्त्री शिक्षा के पुरजोर विकास के लिए सरकार ने अनेक कानून लागू किए हैं, जिनमें मुख्य रूप से हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में महिला तथा लड़कियों की शिक्षा के बहुत लाभ हैं। देश के भविष्य के लिए भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में लड़कियों की शिक्षा आवश्यक है। बच्चे देश का भविष्य हैं तथा महिलाएं अपने बच्चों की पहली शिक्षक हैं। अशिक्षित महिलाएं जहां एक ओर परिवार के प्रबंधन में पूर्ण योगदान नहीं दे सकती, वहीं दूसरी ओर बच्चों की उचित देखभाल करने में भी पूर्ण सक्षम नहीं रहती हैं। पढ़ी लिखी महिला के रूप में माँ बच्चों का उचित मार्गदर्शन कर उसके व्यक्तित्व विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। शिक्षित महिला स्वयं अपने भविष्य को भी सही आकार देने में अधिक सक्षम होती है। ग्रामीण इलाकों में शिक्षित महिला कृषि के क्षेत्र में नई तकनीकी का प्रयोग कर सकती हैं। शिक्षित महिलाएं काम करने और आर्थिक रूप से मजबूत होने के कारण पारिवारिक गरीबी को कम करने में भी सक्षम हैं। शिक्षित ग्रामीण महिलाओं की जागरूकता के कारण महिलाओं में स्वास्थ्य दर बढ़ाकर बाल मृत्यु दर के जोखिम को भी कम किया जा सकता है। शिक्षित महिलाएं दूसरी महिलाओं की अपेक्षा 50% अधिक अपने बच्चों की रक्षा करने में सक्षम होती हैं। शिक्षित महिलाओं को घरेलू या यौन हिंसा के शिकार होने की संभावना भी कम होती है। शिक्षित महिलाओं ने समाज में भ्रष्टाचार को कम करके उन स्थितियों को बदल दिया है जो आतंकवाद को जन्म देती हैं। शिक्षित महिलाएं न केवल परिवार के आय में योगदान करती हैं, अपितु परिवार का बेहतर संचालन करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा। शिक्षित महिलाएं न केवल अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत होती हैं, बल्कि उनमें आत्मसम्मान और आत्मविश्वास भी भरपूर होता है। शिक्षित महिलाएं अपने ग्रामीण समुदाय को लघु योजनाओं के माध्यम से योगदान देने और समृद्ध करने में मदद करती हैं। शिक्षित महिलाएं शिक्षा की महत्ता को जानते हुए दूसरों में शिक्षा को बढ़ावा देने की क्षमता रखती हैं। शिक्षित महिला निसंदेह अपने बच्चों का कुशल नेतृत्व एवं उचित मार्गदर्शन कर परिवार को अधिक कुशलता से संभाल सकती हैं। वह बच्चों में अच्छे गुण प्रदान करके परिवार के प्रत्येक सदस्य को उत्तरदायी बना सकती हैं। शिक्षित महिला सामाजिक कार्यकलापों में भाग लेकर सामाजिक आर्थिक रूप से स्वस्थ राष्ट्र के लिए एक बड़ा योगदान कर सकती हैं। एक आदमी को शिक्षित करके केवल राष्ट्र का कुछ हिस्सा ही शिक्षित किया जा सकता है, जबकि एक महिला को शिक्षित करके पूरे देश को शिक्षित किया जा सकता है। लड़कियों की शिक्षा की कमी ने समाज के शक्तिशाली भाग को भी कमजोर कर दिया है, इसलिए महिलाओं को शिक्षा का पूर्ण अधिकार होना चाहिए और उन्हें पुरुषों से कमजोर नहीं समझना चाहिए। लड़कियों की शिक्षा न केवल समय की आवश्यकता है, बल्कि हम देश के गांव की महिलाओं को शिक्षित किए बिना एक विकसित राष्ट्र नहीं बना सकते।
0: बहनों, अभी आपने सुनी डॉक्टर अंचल गुप्ता द्वारा की गई वार्ता को, जाको विषय हो ग्रामीण महिलाओं में शैक्षिक विकास। हमें उम्मीद है बहनों आपको इस वार्ता से कुछ सीख जरूर मिली हुई। बहनों, अब सुन लेते हैं क्षेत्र संकलित कार्यक्रम के अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थी से बातचीत। क्षेत्र संकलित कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री आवास योजना की। ये योजना उन गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए चलाई जा रही है जिनके पास रहने के लिए पक्का घर नहीं है। इस योजना के माध्यम से हजारों परिवारों का सपना पूरा हुआ है। आज हमारे साथ गांव के हमारी बहन मौजूद हैं जिनके जीवन में इस योजना ने बड़ो बदलाव ला हुआ है। आइए करते हैं उनसे बातचीत। आपका नाम?
2: हमारा नाम पूनम है।
0: आप कहाँ रहती हो?
2: हम कंदरपुर रहते हैं।
0: अच्छा जी, कहाँ पढ़ता है?
2: औला के क्षेत्र में विशारगंज के पास पढ़ता है।
0: अच्छा, आपके घर में कौन कौन है?
2: हमारे घर में 7 लोग हैं। हमारी जेठ जिठानी है, हमारी सास है, हम दोनों पति पत्नी हैं और हमारे जिठानी के 2 बच्चे हैं।
0: अच्छा, तो आप पढ़ी लिखी हैं?
2: हाँ, हमने ग्रेजुएशन कर लिया हुआ।
0: अच्छा, तो घर में और कौन कौन से काम करती हैं?
2: घर में हम अपने ऐसे घर को काम, खेती वेती को काम है, अपने एक मशीन है, थोड़ी बहुत सिलाई कर लेते हैं, अपने बच्चा बच्चे कपड़ा सिल लेगा।
0: अच्छा, और आपके घर वाले क्या करते हैं?
2: घर वाले हमारे खेती है करते हैं।
0: कितनी खेती है?
2: खेती है ऐसे 3-4 बीघा।
0: अच्छा अच्छा, आप ये बताओ, जब आपको प्रधानमंत्री आवास योजना को लाभ ना मिलो तब आप किस तरह के घर में रहती और किस तरह से अपना जीवन यापन करती?
2: पहले हमारे कच्चे मकान हो, घर ऐसे ही दीवार वाकी कच्ची ही दीवार मिट्टी की और टीन ऊनी बारिश में ऐसी टपकत रहती, छत तो टपक जाती, तेज हवा चलती तो डर लगता हो रात उत में की कहीं गिरो ना जाए।
0: अच्छा, ऐसे ही। तो उस समय आपको चिंता सबसे ज्यादा कौन सी बात की लगी रहती कि जो काम गड़बड़ नहीं जाए या जो खराब नहीं जाए?
2: चिंता लगी रहती बालकन की, बालक छोटे घर में बड़े बूढ़े हैं, रात रात भर बैठ कर काट रहे हैं, बारिश में बेचारे सो ना पाते।
0: हाँ।
2: और सामान होता घर में बहुत भीग उग जाता तो बहुत दिक्कत रहती।
0: अच्छा, आपको जो प्रधानमंत्री आवास योजना की जानकारी किसने दी, आपको कैसे पता लगी?
2: जब गांव हमारे प्रधान आए, उनके संग सचिव उचिव एक बार घूमन आए तब उनने हमारे घर उड़ देखो तो बताई कि सरकार की तरफ से कोई योजना आई है तो तुम उसको काम करवा कर देखो, फिर हमने देखो इसके बारे में।
0: अच्छा, आपने इसके फार्म भरे होंगे?
2: हाँ, कागज उगज थोड़े तैयार करवाए, आए वगैरह, खाते तो नंबर लागे और सबके आधार कार्ड लागे, परिवार वान के और घर उड़ दे के हमारे फोटो वोटो खींचे, ये सब लागे।
0: अच्छा, तो जाको पूरी जानकारी उन्हीं ने दी आपको?
2: हाँ हाँ, पूरी जानकारी बताया गए, फिर हम भाई सब कागज तैयार कर लाए तो हमारा काम हो।
0: अच्छा जी, तो खाते में आते होंगे ना रुपया?
2: हाँ जी, किस्त आती है, किस्तन के हिसाब से आते हैं।
0: अच्छा, जब आपकी पहली किस्त आई तो आपको कैसे लगो?
2: कैसे होगा, किस्त तो आई हमारी तो लगी, हाँ पहले कुछ योजना लिख रही है तो काम बन जाए।
0: अच्छा।
2: हमारी न्यू भर जाएगी, पहली किस्त आई तब ऐसे लगी थोड़ी।
0: अच्छा, घर बनाने में कितना समय लगे?
2: घर बनाने में कम से कम 4 महीना तो हमारी लगी है गया में।
0: अच्छा, तो जैसे किस्त आते रहे थे अपना घर बनवाते?
2: हाँ, रहे किस्त आते रहे, वैसे लगाते रहे, वैसे अपना काम कराते रहे।
0: अच्छा, आप अब ये बतावे कि अब आपको पक्को घर मिलने के बाद क्या का बदलाव हुआ?
2: अब पक्को घर मिलो तो बनो, तब से बरसात को कोई डर ही ना है, ना छत गिरन को, ना कोई टीन उड़न को कोई डर ना है। अपने बहुत सुविधा पहले से अच्छी है, बालक आराम से पढ़ाई करते हैं, पहले तो उनके बैग रखने तक को जगह ना ही, बारिश होती तो बहुत आराम।
0: अच्छा, क्या आपके रिश्तेदार और गांव वाले भी आपके घर आते हैं? ना आते हैं वो?
2: हाँ, गांव के रिश्तेदार भी आते हैं, गांव के लोग भी घूमने आते हैं। गांव के अब रिश्तेदार भी अगर आते हैं तो एक दो रात हम रोके ना तो रुक जाते हैं, कोई दिक्कत ना होती है
0: अच्छा,
2: इतनी।
0: पहले का रुकत ना ही?
2: पहले रिश्तेदार आते तो वो रात बिरात ना रुकते, दिन में घूम घाम के ऐसे चले जाते, कोई इतने बढ़िया करके बातचीत ना करते।
0: अच्छा, आप ये बतावे कि जैसे हमारे घर की महिलाएं होती हैं, जैसे आप ही हैं, तो आपको का फायदा हुआ? जैसे आपको घर पहले कच्चो, आप पक्को है, तो आपको जैसे का फायदा भए हैं?
2: अब हमारा घर जब से पक्का बना तब से हमें बहुत फायदा है। हम मशीन चलाते हैं छोटी सी, अब हमें अपने कपड़े वपड़े हमारे बाहरों के लोग आयल करें देने के लिए, अब अपने कहीं भी हम कटिंग कर लें, कहीं भी सिलाई कर लें, रखे रहते हैं कपड़ा, कोई बारिश को डर ना है कि भीग जाएंगे या इधर
0: अच्छा
2: रखो उधर रखो।
0: हाँ, और घर भी साफ सुथरा
2: घर भी
0: रहता
2: साफ
0: है
2: सुथरा
0: ना?
2: रहता है, सफाई से, हाँ सब काम, और बच्चा उच्चा सब आराम से रह रहे हैं।
0: अच्छा, तो जैसे बालकन की पढ़ाई पे क्या असर पड़ा?
2: बच्चा आराम से पढ़ते हैं, बारिश में किताब उताब भीग जाती है, बहुत कुछ ना है, अब तो सब कुछ सही है।
0: अच्छा, आप ये बताओ, मैं कई योजना से गांव के दूसरे लोगों को भी प्रेरणा मिली है या ना मिली है?
2: हाँ, गांव में भी और लोगों को पता चली है इनको कैसे कैसे हो, तो फिर भी हमारे घर पर भी आती हैं पता करने के लिए। कुछ लोग हैं भी इनसे, हमारे घर वाले उनसे पूछते हैं कि तुमने कहाँ कहाँ फार्म जमा करे, कैसे कागज भाई, तो सब बता रहे हैं कि देखो किस किस को काम समझ जाए।
0: अच्छा, का आपको लगता है कि पक्का घर सम्मान भी देता है? जैसे समाज में लोग कच्चे घर वालों को ज्यादा अहमियत ना देते, तो आपको लगती है ऐसो का कुछ?
2: हाँ ऐसा है, जैसे मतलब बालक हाँ भाई छोटे हैं, कल को बड़े जाएंगे तो रिश्ते आ रहे हैं, किसी की शादी ब्याह बात आई तो कोई आदमी चार आदमी को बैठा रहे, तो पक्को घर है तो घर में ला सकता है वो लिवा के, और ना तो वैसे कोई हमारे घर का ढंग से देखता ना हो पहले तो।
0: ये बात आपने बहुत बढ़िया कही कि क्या कहते हैं, जैसे पक्को घर है तो अगर बालक शादी करने लाए हैं तो गांव के लोग भी और रिश्तेदार को लेकर आता है ना? अच्छा पूनम जी, आप ये बताओ, जैसे जो लोग इस योजना के पात्र हैं उनके आज भी कच्चे घर हैं, तो अगर वे आपसे कुछ पूछना चाहें तो आप उनका कब जवाब दोगी?
2: हम उन्हें जानकारी जे उनसे कहेंगे, सही इंसान सही लोगों से जानकारी लें, कोई गलत आदमी के चक्कर में ना पड़े। कुछ लोग ऐसे होते हैं दलाल भी पैसा खाकर काम करते हैं, तो ऐसे व्यक्ति के चक्कर में ना पड़े, जो हो सका जितना वो सही से करे, सही तरीका से अपनी जांच पड़ताल से कागज वगज जमा कराएं और खाते उत नंबर थोड़े हिसाब से दें।
0: अच्छा, प्रधानमंत्री जी के लिए आपको का संदेश है, आप क्या कहना चाहती हैं सबसे?
2: सरकार प्रधानमंत्री के लिए हम पहली बात तो तहे दिल से उनको धन्यवाद करना चाहेंगे, उनके हिसाब से बहुत मतलब उनके जो सुविधा देने के तरीका से है बहुत ज़्यादा गरीब परिवार में सुधार आ हुआ है, अच्छे से अच्छे लोग मतलब गरीब जो लोग निवास कर रहे हैं वे अच्छे से अच्छे मकान में अब लोग रह रहे हैं, और अपने उनके बच्चन की भी पढ़ाई लिखाई बहुत ढंग से हो रही है, बहुत तब से बहुत सुविधा हुई है जब से सरकार ने ये दी है।
0: तो पूनम जी, आपको जो हमारी बहनें और जो सुन रहे हैं लोग जो इस योजना के पात्र हैं, आप उनसे क्या कहना चाहोगी?
2: इन लोगों से हम कहना चाहते हैं जो लोग हमारी बात सुन रहे हैं कि अगर उन सुविधा को लाभ उठाना चाहते हैं तो अपने ग्राम प्रधान या कार्यालय के सचिव प्रमुख होते हैं उनसे जानकारी लेकर जल्द से जल्द लाभ उठावें।
0: हाँ, और वैसे वही कहते, ग्राम पंचायत में भी जाकर जानकारी मिल जाती है, हर गांव में ही ग्राम पंचायत बने हुए
2: हाँ,
0: हैं
2: गांव
0: ना?
2: गांव में ग्राम पंचायत है, अपने ब्लॉक है, उनमें जाकर जानकारी लें और इस योजना को लाभ उठावें।
0: ठीक है पूनम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: ठीक है, राम राम।
0: राम राम।
3: बहनों, अभी आपने सुनो क्षेत्र संकलित कार्यक्रम के अंतर्गत में प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थी से उनकी बातें। बहनों, अब कर लेते हैं मनोरंजन और सुन लेते हैं इंदु शर्मा के स्वर में एक लोकगीत। लोकगीत के बोल हैं नैनों से तीर।

बहनों, अभी आपने सुनो जो लोकगीत। हम आशा करते हैं आपको ये ज़रूर पसंद आओ हुए। बहनों, अब तो बालकन के स्कूल भी खुल गए हैं। सब बच्चे अपने अपने बैग लेके स्कूल में जा रहे हैं। लेकिन बहनों, बालकन से ज़्यादा उनकी चीज़न को ध्यान रखना हम महिलाओं की ही जिम्मेदारी है। बच्चन की ड्रेस, उनके जूता, मोजा, बैग, किताबें को उनके जान से पहले तैयार कर कर रख देनो, जिससे उनको कोई परेशानी ना हो। बहनों, बालकन को साफ सुथरे और सूखे कपड़ा पहना कर ही स्कूल भेजें। उनके टिफिन में अच्छी और पौष्टिक खाना रख कर दें और बहनों, सुबह उनको नाश्ता करा के ही स्कूल भेजें। अबे तो वैसों गर्मी बहुत पड़ रही है। जब छुट्टी होने के बाद अपने घर बालक आते हैं तो उनको जो कपड़ा पहने होता है वे पसीना में भीग जाता है। तो बहनों, उनके कपड़ा तुरंत बदलवा दें और हाथ मुंह धुलवा के उनको हल्के कपड़ा पहनावें, जिससे उनको आराम भी मिलाए। और बहनों, बालकन की कॉपी किताबों को पानी से बचा कर रखें। अब अपनी बहन सुमन को दीजिए अनुमति। राम राम।

0: प्रधानमंत्री कल शाम 3 दिन के भारत दौरे पर नई दिल्ली पहुंचे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये दौरा भारत और जापान के बीच विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन के लिए भारत के लंबे समय से चले आ रहे प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र महासभा में फिर से समर्थन मिला है। 140 सदस्यों द्वारा अपनाई गई संयुक्त राष्ट्र की वैश्विक आतंकरोधी रणनीति की 9वीं समीक्षा में सदस्य देशों से आग्रह किया गया है कि वे भारत द्वारा 3 दशक पहले प्रस्तावित सम्मेलन को अंतिम रूप देने के लिए हर संभव प्रयास करें। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा कि सर्वमान्य कानूनी ढांचे का अभाव वैश्विक आतंकरोधी प्रयासों को कमजोर करता है। उन्होंने आतंकवाद से निपटने में दोहरे मापदंड न अपनाने पर बल देते हुए अपराधियों, वित्त पोषकों और प्रायोजकों को जवाबदेह ठहराने का आह्वान किया।
1: India has been a victim of cross-border terrorism for decades.
2: भारत दशकों से सीमा पार आतंकवाद को झेल रहा है। हमने इसकी भारी कीमत चुकाई है। इसी अनुभव के चलते भारत ने आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति अपनाई है। आतंकवाद के सभी रूपों और तरीकों की निंदा की जानी चाहिए। भारत ने आतंकवाद के लिए फंडिंग को रोकने पर वैश्विक ध्यान केंद्रित करने की दिशा में काम किया है। भारत का मानना है कि आतंकवाद विरोधी प्रयासों को राजनीति से प्रेरित बयानों से कमजोर नहीं किया जाना चाहिए।
0: अमेरिका, इसराइल और अर्जेंटीना ने प्रस्ताव के विरुद्ध मतदान किया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। आज जम्मू में भगवती नगर आधार शिविर से कड़ी सुरक्षा के बीच उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए 4,822 तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे को रवाना किया। इस पवित्र यात्रा में शामिल होने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से तीर्थयात्री जम्मू पहुंच रहे हैं। 4,822 श्रद्धालुओं का पहला जत्था, जिसमें बाताल रूट के लिए 2,312 और पहलगाम रास्ते के लिए 2,510 लोग शामिल थे, 147 गाड़ियों के काफिले में रवाना हुए। ग्रामीण विकास, कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण, विकसित भारत जयरामजी अधिनियम 2025 देश में रोजगार सुनिश्चित करने, ग्रामीण आजीविका को मजबूत करने और गांवों के विकास में तेजी लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। श्री चौहान ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री एन चंद्रबाबू नायडू के साथ आज तिरुपति जिले के मुक्कावरीपल्ले गांव में विकसित भारत जयरामजी अधिनियम 2025 का शुभारंभ किया। सभा को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि योजना का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि कोई भी गरीब मजदूर बेरोजगार न रहे और सभी को रोजगार मिले।
3: मनरेगा में केवल 100 दिन रोजगार मिलता था, विकसित भारत जयराम जी योजना में पूरे 125 दिन मजदूर को रोजगार मिलेगा। और रोजगार देने की बात प्रधानमंत्री ऐसे नहीं कर रहे, पहले साल ही विकसित भारत जयराम जी योजना में केंद्र ने जो अपना पैसा दिया है वो है 95,600 करोड़ रुपया, और राज्यों का 40% शेयर मिलेगा, तो एक साल में ही खर्च होंगे 1,51,282 करोड़ रुपया।
0: श्री चौहान ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आंध्र प्रदेश के लिए 70,000 से अधिक आवासों की मंजूरी दी। उन्होंने ग्रामीण संपर्क और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से 422 करोड़ रुपए की स्वीकृत राशि से 146 ग्रामीण सड़कों और 19 पुलों के निर्माण के लिए स्वीकृति पत्र भी सौंपे। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि भारत में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी एक से दूसरी तकनीक की जगह नहीं ले रहा है, बल्कि इससे टिकाऊ औद्योगिक इकोसिस्टम का निर्माण हो रहा है। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी विकसित भारत के लिए देश को इलेक्ट्रिक मोबिलिटी हब बनाने पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में उन्होंने ये बात कही। उन्होंने कहा कि सरकार पर्यावरण संरक्षण और टिकाऊ तथा संतुलित विकास के साथ जीवन को सुगम बनाने के प्रयास कर रही है। मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत मॉनसून के मौसम में 21 लाख पौधे लगाए जाएंगे। जिले में विभिन्न स्थानों पर बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण किया जाएगा। झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने आज रांची के लोकभवन में मतदाता सूची के विशेष

0: उत्तरी कर्नाटक के निवासी थे। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डॉ जी परमेश्वर ने घटना पर दुख व्यक्त करते हुए खदान मालिकों के खिलाफ उचित कार्रवाई का निर्देश दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना में जान गंवाने वाले लोगों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की। दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ ने आईएसआई प्रायोजित अंतर्राज्यीय आतंकी और हथियार नेटवर्क पर कार्रवाई करते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी आईएसआई हैंडलर शहजाद भट्टी और उसके साथियों के निर्देश पर राष्ट्रीय राजधानी में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने की योजना बना रहे थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। दक्षिण पश्चिम मॉनसून आज दिल्ली के सभी इलाकों सहित राजस्थान, गुजरात और उत्तर प्रदेश के कुछ और हिस्सों में तथा मध्य प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के ज्यादातर भागों में पहुंच गया है। राजधानी दिल्ली में बारिश से गर्मी और उमस भरे मौसम से काफी राहत मिली है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 से 3 दिन में मॉनसून के उत्तर भारत के कई और इलाकों में आगे बढ़ने की उम्मीद है। वहीं पश्चिमी और मध्य भारत के कुछ हिस्सों के लिए तेज बारिश की आशंका को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश में मॉनसून के आगमन से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है और राज्य के लगभग सभी हिस्सों में बारिश हुई है।
1: दक्षिण पश्चिम मानसून मंगलवार से ही आधिकारिक तौर पर प्रदेश में दाखिल हो चुका है और ट्रफ लाइन आजमगढ़, बरेली और अयोध्या जिलों से होकर गुजर रही है। राज्य के कई हिस्सों में पिछले 24 घंटों में मध्यम से भारी बारिश दर्ज की गई, जिससे लोगों को लंबे वक्त से पड़ रही भीषण गर्मी से राहत मिली। सुल्तानपुर, मुजफ्फरनगर, बदायूं, सहारनपुर और संभल में बहुत भारी बारिश हुई, जिससे कुछ क्षेत्रों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। हालांकि दिन के तापमान में भी गिरावट आई। ये बारिश किसानों के लिए बड़ी राहत लेकर आई है, जो धान की बुआई में देरी के कारण बेसब्री से मानसून का इंतजार कर रहे थे। मौसम विभाग ने आज कई जिलों में भारी बारिश का पूर्वानुमान लगाया है और कहा है कि राज्य भर में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के लिए मौसम के हालात बेहतर बने हुए हैं। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: महाराष्ट्र में आज लगातार दूसरे दिन भी मूसलाधार बारिश जारी रही।
2: मुंबई में लगातार हो रही तेज बारिश के कारण निचले इलाकों में जलभराव हो गया है, यातायात धीमी पड़ गई है और उपनगरीय रेल सेवाएं कुछ मार्गों पर प्रभावित हो रही है। लगातार बारिश के चलते पवई लेक पूरी तरह भर चुका है। मुंबई विश्वविद्यालय ने पालघर जिला तथा पनवेल महानगर पालिका क्षेत्र के महाविद्यालयों में आज होने वाली परीक्षा रद्द कर दी है। मौसम विभाग ने उत्तर महाराष्ट्र तथा दक्षिण महाराष्ट्र गोवा तट पर 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की चेतावनी दी है। मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने की सलाह दी गई है। निवेदिता, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: कनाडा के अधिकतर क्षेत्रों में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। वहीं कुछ क्षेत्रों में बारिश और बाढ़ की समस्या बनी हुई है। ओंटारियो, क्यूबेक, प्रेरीज और नॉर्थ वेस्ट टेरिटरीज के कुछ हिस्सों के लिए गर्मी की चेतावनी जारी की गई है। अधिकारियों ने लोगों को पर्याप्त मात्रा में पानी पीने, बाहरी गतिविधियों से बचने और वरिष्ठ नागरिकों तथा बच्चों का ध्यान रखने की सलाह दी है। यूक्रेन के कीव में रूस के ड्रोन और मिसाइल हमले में 13 लोग मारे गए और कई लोग घायल हो गए। स्थानीय समाचार एजेंसियों ने बताया कि आज शहर के कई हिस्सों में विस्फोटों की आवाजें सुनी गईं। ये हमले सप्ताह की शुरुआत में यूक्रेन द्वारा मॉस्को पर किए गए ड्रोन हमलों के बाद हुए हैं। फीफा विश्व कप के रोमांचक मुकाबले में बेल्जियम ने सेनेगल को अतिरिक्त समय में 3-2 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश कर लिया है। यूरी टेलेमंस ने 125वें मिनट में पेनल्टी से गोल दागकर बेल्जियम को 3-2 की रोमांचक जीत दिलाई। राउंड ऑफ 32 के मैच में सह मेजबान अमेरिका ने आज सुबह बोस्निया और हर्जेगोविना को नॉकआउट राउंड में 2-0 से हराकर 2002 के बाद पहली जीत दर्ज की। अब अमेरिका का मुकाबला बेल्जियम से होगा। घरेलू शेयर बाजार में आज दोपहर के सत्र में सेंसेक्स 402 अंक के साथ 77,325 के उच्चतम स्तर पर और निफ्टी 129 अंक बढ़कर 24,135 पर आ गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची के बीच वार्षिक शिखर सम्मेलन स्तर की बातचीत। दोनों देशों के बीच आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा, फार्मास्यूटिकल्स और एआई सहित कई समझौते हुए। श्री मोदी ने कहा, भारत जापान के द्विपक्षीय संबंध समय की कसौटी पर खरे उतरे। संयुक्त राष्ट्र महासभा में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन को लेकर भारत के प्रस्ताव

0: एक बार फिर से समर्थन मिला। जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे के रवाना होने के साथ ही श्री अमरनाथ जी यात्रा शुरू। दक्षिण पश्चिम मानसून की दिल्ली में दस्तक, उत्तरी तथा पश्चिमी राज्यों के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: मीडियम वेव और एफएम 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर आप श्रोता जुड़े हैं आकाशवाणी रामपुर की पहली सभा के कार्यक्रमों से। श्रोताओं, अपराह्न के 2:30 और 12 सेकंड हो रहे हैं। आइए अब सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: शबदंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूँ विमलेश। नए महीने जुलाई की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
3: और मैं हूँ अजीत। स्वागत है आप सबका कार्यक्रम उमंग में। आइए शुरुआत करते हैं एक सुविचार के साथ, जिसे हमें भेजा है आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल जी ने। लिखते हैं,
2: सफलता की चाबी कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प में है।
3: धन्यवाद आपके इतने सुंदर संदेश के लिए। और आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरथा बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से। जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जय दास, देवेश दास और धनवंतीन बाई जी का। लिखते हैं, जय जोहार बंदगी विमलेश मैडम जी, अजीत साहेब जी, जय हिंद जी। आगे लिखते हैं,
2: उमंग टीम को बधाई जी। उमंग कार्यक्रम में 3 जून 2026 को पर्यावरण नेत्री गौरा देवी के पर्यावरण के प्रति लगाव वाली कहानी ने दिल छू लिया। हमें बहुत प्रेरणा और सीख मिली। आपने बहुत प्रेरणादायक और रियल स्टोरी सुनाई। धन्यवाद साहेब।
3: आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद इतने अच्छे संदेश के लिए। अगला संदेश हमें मिला है डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से अजय देवता मुरिया, तुषार देवता मुरिया, डॉली बेबी, पूजा, पुष्कर, लेहान, जिज्ञासा, विराट, तेजस्वी और गौरव तामुरिया जी का।
2: इंदिरा चौक दिल्ली से अजीम वकार, माहिरा अजीम और नीलिमा अजीम।
3: और पुणे से सुयोग बटवे।
2: धन्यवाद आप सबका संदेशों के लिए।
3: स्वागत है एक बार फिर से आप सबका हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी में।
2: जैसा कि आप जानते हैं, इस सप्ताह हम चर्चा कर रहे हैं विभिन्न खनिज पदार्थों की, और इस क्रम में हमने कल चर्चा की थी कोयले की, जिसे जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं। तो अजीत जी, आज की चर्चा का विषय तो बताइए, किस खनिज की हम चर्चा करने जा रहे हैं? श्रोताओं की उत्सुकता भी बढ़ती जा रही है।
3: उत्सुकता तो बढ़ेगी ही, क्योंकि हमारा कार्यक्रम होता ही है मजेदार और जानकारियों से भरपूर। पता है, कुछ श्रोता तो रेडियो सुनते समय कागज कलम लेकर बैठते हैं और कुछ तो पूरा कार्यक्रम भी रिकॉर्ड कर लेते हैं ताकि कोई जानकारी न छूट जाए।
2: हम सभी सुधीर श्रोताओं को धन्यवाद देते हैं। तो क्या रहेगा आज हमारी चर्चा का विषय?
3: चलिए मैं कुछ हिंट देता हूँ। श्रोताओं जरा अंदाजा लगाइए, हिंट है, ये बहुत ही लोकप्रिय धातु है
2: जी,
3: मूल्यवान भी है। रंग इसका सुनहरा पीला है, सभी इसे बहुत चाहते हैं।
2: अजीत जी, वैसे तो और भी कई धातुएं मूल्यवान हैं, लेकिन यदि हिंट है कि ये पीले रंग का है और बहुत लोकप्रिय है तो बात स्पष्ट हो गई है। कहीं आप गोल्ड या सोने की बात तो नहीं कर रहे हैं?
3: बिल्कुल सही है उत्तर आपका। जी हाँ, मैं सोने या गोल्ड की बात कर रहा हूँ। वैसे इसमें कुछ धातुएं मिला दी जाएं तो इसका रंग बदल भी सकता है। सोना पृथ्वी के बहुमूल्य खनिजों में से एक गिना जाता है
2: जी।
3: तो विमलेश जी, अब जानते हैं कि सोना बनता कैसे है?
2: अजीत जी, बेशक ये पृथ्वी के मूल्यवान खनिजों में से एक है, लेकिन एक बेहद रोचक और आश्चर्यजनक बात बता दूं कि कोयला तो पृथ्वी पर बना, लेकिन सोना पृथ्वी पर बना ही नहीं।
3: कोयला तो पृथ्वी पर बना लेकिन सोना पृथ्वी पर बना ही नहीं, ये क्या बात हुई?
2: यही तो खास बात है अजीत जी। सोने की उत्पत्ति की कहानी धरती से नहीं बल्कि अंतरिक्ष में तारों की भीषण टक्कर और विस्फोट से हुई है। सोने की उत्पत्ति अरबों साल पहले सुपरनोवा यानी विशाल तारे के फटने और न्यूट्रॉन तारों की टक्कर से हुई थी। वैज्ञानिकों के अनुसार अंतरिक्ष से विशाल तारों और उल्कापिंडों की टक्कर के कारण उत्पन्न धूल से सोना पृथ्वी पर पहुंचा है।
3: तो ये बात है, शायद इसीलिए सोने और चांदी को स्टार डस्ट भी कहते हैं
2: जी।
3: जब ब्रह्मांड में कोई विशाल तारा या सुपरनोवा अपना जीवन चक्र पूरा करता है ना, तो भयंकर विस्फोट के साथ फट जाता है, और इस प्रक्रिया में अत्यधिक उच्च तापमान और दबाव पैदा होता है।
2: जब कोई तारा फटता है और दबाव और गर्मी इतनी अधिक हो जाती है कि हल्के तत्वों के परमाणु आपस में जुड़कर भारी परमाणु बनाने लगते हैं, इसमें एक नया तत्व बनता है जिसे हम सोना कहते हैं।
3: लेकिन विमलेश जी, एक प्रश्न मेरे मन में आता है। अब वो ये है कि यदि सोना अंतरिक्ष में पैदा हुआ या उत्पन्न हुआ तो वो पृथ्वी तक पहुंचा कैसे?
2: ये जानना भी बहुत रोचक है। सोना पृथ्वी पर अंतरिक्ष से मुख्य रूप से तारों के टूटने और उल्कापिंडों की भारी बौछार मीट्रोइड बॉम्बार्डमेंट के जरिए पहुंचा है।
3: इसी बात को चलिए थोड़ा विस्तार और देते। लगभग 4 अरब साल पहले अंतरिक्ष से सोने और अन्य कीमती धातुओं से भरे लाखों विशाल उल्कापिंड पृथ्वी से टकराए। इस भीषण बौछार के कारण उल्कापिंडों में मौजूद सोना पृथ्वी की ऊपरी परत में बिखर गया। आज हम जो भी सोना खदानों से निकालते हैं वह इसी अंतरिक्षीय बारिश की देन है।
2: जी, सोना पृथ्वी की ऊपरी परत पर बिखर गया, लेकिन धीरे धीरे उस पर भी मिट्टी और चट्टानों की परतें जमने लगीं और सोना पृथ्वी की गहराइयों में चला गया। उसी सोने को अब हम खदानों से खोद कर निकालते हैं। अब सोने को ठोस रूप देने के लिए उसमें कई धातुएं भी मिलाई जाती हैं।
3: जी, सच्चाई ये है कि पृथ्वी पर पाया जाने वाला सोना मानव सभ्यता के प्रारंभ होने से भी अरबों वर्ष पहले बन चुका था।
2: अजीत जी, सचमुच बड़ी अद्भुत कहानी है ना सोने की। एक और रोचक बात साझा करना चाहती हूँ। पता है श्रोताओं, सोने को किसी भी रासायनिक विधि द्वारा पृथ्वी पर नहीं बनाया जा सकता। रसायन शास्त्रियों ने, जिन्हें एल्केमिस्ट कहा जाता है, शताब्दियों तक लोहे, तांबे और पारे जैसी सस्ती धातुओं को सोने में बदलने की कोशिश की थी, लेकिन वे हमेशा असफल रहे, क्योंकि रासायनिक रूप से किसी धातु को सोने में बदलना असंभव है। मान्यता ये है कि प्राचीन काल में भारत में एक पत्थर पाया जाता था जिसे पारस पत्थर कहते थे। इसके स्पर्श मात्र से लोहा सोने में बदल जाता था।
3: जी, लेकिन अब आधुनिक विज्ञान ने इतनी उन्नति कर ली है कि आज के समय में परमाणु रिएक्टर के जरिए वैज्ञानिक कुछ धातुओं से सोना बना सकते हैं। लेकिन इस वैज्ञानिक प्रक्रिया में इतनी अधिक ऊर्जा और पैसा खर्च होता है कि 100 रुपए का सोना बनाने में लाखों रुपए लग सकते हैं।
2: एक बात और, शुद्ध सोना बहुत नरम होता है, इसीलिए उसे आकार देने के लिए उसमें तांबा, चांदी, जस्ता और निकेल जैसी धातुएं भी मिलाई जाती हैं। लेकिन एक बात तो है,
3: और वो ये है श्रोताओं कि जब आप सोना या स्वर्ण आभूषण देखते हैं तो याद रखिए, ये मूल रूप से पृथ्वी की वस्तु नहीं लेकिन अरबों वर्ष पहले हुई ब्रह्मांडीय घटनाओं का परिणाम है। इसीलिए ये बहुत कीमती मानी जाती है। दूसरे शब्दों में,
2: आपके हाथ के सोने की अंगूठी कभी किसी तारे के फटने या किसी महाविस्फोट का हिस्सा रही होगी।
3: जी, तो श्रोताओं ये थी जानकारी अंतरिक्ष की मूल्यवान वस्तु सोने की। अब आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से प्रश्न है, सोने को स्टार डस्ट क्यों कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
2: सोने को स्टार डस्ट क्यों कहते हैं?
3: आप अपना उत्तर हमें हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर भेज सकते हैं और हमारे ईमेल पर भी। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in। और हाँ,
2: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप हमें फॉलो करना ना भूलिए। और अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की,
3: तो सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम, अरावली की कहानी।
2: ये कार्यक्रम कक्षा 7 की सामाजिक अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित है, जिसमें अरावली पर्वत श्रृंखला की रोचक जानकारी दी गई है और बताया गया है कि पर्यावरण संरक्षण में इस पर्वतमाला की क्या भूमिका है।
3: अरावली की कहानी।
4: नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सचिन और मेरे साथ हैं कुछ नन्हे मुन्ने साथी, यानी रिद्धि, रिदित, सोहम, नव्या और मनन, जो आज बहुत ही खुश हैं क्योंकि उन्हें जानी मानी भूगर्भ शास्त्री डॉक्टर सुचिता ने आज अपने रेडियो शो में बुलाया है। तो आइए चलते हैं सीधे रेडियो प्रसारण केंद्र में, जहां शुरू होने वाला है हमारा रेडियो शो पर्वत भी बोलते हैं। तो बच्चों, डॉक्टर सुचिता के साथ साथ आप सबका भी हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है।
5: धन्यवाद।
6: धन्यवाद सर।
4: तो करते हैं शुरुआत। डॉक्टर सुचिता, हम आज बात करने जा रहे हैं पर्वतों की, तो सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि पर्वत आखिर हैं क्या, यानी हम उन्हें परिभाषित कैसे करें?
7: वाह, बहुत अच्छा सवाल। देखिए, पर्वत वे स्थल रूप हैं जो आसपास की भूमि से कुछ अधिक ऊंचे होते हैं। उन्हें खड़ी ढलान यानी चढ़ाई और संकरे शिखरों यानी चोटियों से पहचाना जा सकता है। कुछ पर्वत अपनी अधिक ऊंचाई के कारण हिम से ढके होते हैं। समझ में आया बच्चों?
8: यस मैम।
7: वाह, क्या बात है
9: मैम।
7: हाँ बेटी,
9: आपने कहा कि पर्वत वे हैं जो आसपास की भूमि से कुछ अधिक ऊंचे होते हैं।
7: बिल्कुल कहा।
9: हमारे गांव में भी कुछ ऐसे पथरीले स्थान हैं जो भूमि से थोड़े ऊंचे होते हैं, क्या उन्हें भी पर्वत कहेंगे?
7: नहीं रिद्धि, उन्हें पर्वत नहीं कहेंगे। तुम्हारे प्रश्न का उत्तर ये है कि कम ऊंचाई वाले ऊंचे ऐसे स्थान जहां कम खड़ी ढलाने और गोल आकार की चोटियां होती है, उन्हें पता है क्या बोलते हैं? पहाड़ी कहते हैं।
9: जी, पहाड़ी।
4: अरे वाह। अच्छा, लेकिन सुचिता जी, हमारे श्रोता बड़ी उत्सुकता के साथ प्रतीक्षा कर रहे हैं ये जानने की कि आज हम भला किस पर्वत श्रृंखला के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं।
7: जी सचिन जी, आज हम चर्चा करेंगे अरावली पर्वत श्रृंखला के बारे में। बच्चों जानना है ना इसके बारे में?
5: यस मैम।
7: देखो, ऐसा माना जाता है कि अरावली पर्वत श्रृंखला भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है।
5: अच्छा।
7: पता है बच्चों, ये उत्तर पश्चिम भारत में स्थित है और देश की जो भौगोलिक संरचना है ना, इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है ये।
5: अच्छा।
7: तो बच्चों, यदि अरावली पर्वत श्रृंखला की बनावट को ध्यान से देखें, तो इसमें मध्यम दर्जे की बहुत सी ऊंची ऊंची चोटियां हैं, जो ऊपर से देखने पर वो आरी की तरह दिखती हैं।
5: अच्छा, मैंने भी देखा है।
4: आरा और वली यानी अरावली। अरे वाह सुचिता जी, ये तो बड़ी रोचक बात बताई है आपने।
6: मैम, अरावली के बारे में कुछ और बताइए ना।
7: बिल्कुल जरूर बताएंगे। आप जानते हैं इसके विस्तार के बारे में। इसकी कुल लंबाई है लगभग 800 किलोमीटर और चौड़ाई है 10 से 100 किलोमीटर।
9: लंबाई 800 किलोमीटर, ये कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है?
7: सोहम, ये गुजरात से शुरू होकर दिल्ली तक पहुँचती है और बीच में आने वाले राज्य हैं राजस्थान और हरियाणा। बताओ कौन कौन से?
5: गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और फिर दिल्ली।
4: बहुत अच्छे, तो एक बार जोरदार तालियां सबके लिए। ये हुई ना बात।
7: अब तुम्हें इसे हमेशा याद रखना है, ठीक है?
6: जी मैम,
9: जी मैम, हमेशा याद रखेंगे।
4: तो सुचिता जी, अब हमें ये भी तो बताइए कि गुजरात राज्य में अरावली पर्वत श्रृंखला आखिर शुरू कहाँ से होती है, क्योंकि हम देखें तो गुजरात राज्य तो खासा बड़ा है।
7: जी सचिन, बिल्कुल सही कहा आपने। अरावली पर्वत श्रृंखला गुजरात राज्य के बनासकांठा जिले में अंबाजी नामक स्थान से शुरू होती है। एक बात और, माना जाता है कि ये पहले संभवतः हिमालय से भी ऊंची रही होगी, लेकिन अत्यधिक अपरदन के कारण धीरे धीरे इसकी ऊंचाई कम होती चली गई।
9: अपरदन? ये अपरदन क्या होता है?
7: वाह मनन, अपरदन यानी मिट्टी का कटाव। अंग्रेजी में इसे पता है क्या बोलते हैं? सॉइल इरोजन।
5: सॉइल इरोजन,
7: बिल्कुल ठीक। अरावली पर्वत श्रृंखला की प्रमुख चोटियां हैं गुरु शिखर, जो राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है। शेर और अचलगढ़ भी इसकी प्रमुख चोटियां हैं, जो राजस्थान में ही हैं।
4: सुचिता जी, अब हम ये भी जानना चाहेंगे कि आखिर अरावली पर्वत श्रृंखला का हमारे यहाँ जलवायु और पर्यावरण पर भला क्या असर पड़ता है?
7: सचिन जी, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। बच्चों जानना चाहोगे ना?
5: हाँ, जी मैम।
9: यस मैम।
7: अब अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान के थार मरुभूमि को पूर्व की ओर फैलने से रोकती है, यानी यदि अरावली न हो तो राजस्थान के थार का रेगिस्तान दिल्ली और यहाँ तक कि गंगा के मैदानों तक भी फैल सकता है।
9: यानी ये हमारी पहरेदार हुई।
7: हाँ रिद्धि, बिल्कुल सही है। अरावली श्रृंखला उत्तर भारत को रेगिस्तान बनने से रोकती है। इतना ही नहीं, ये अपने क्षेत्र में भूजल का स्तर भी बनाए रखती है।
9: मैम, जैसा कि हम जानते हैं कि पर्वतों से नदियाँ भी निकलती हैं, क्या अरावली से भी नदियाँ निकलती है?
7: सोहम, अरावली पर्वत श्रृंखला से निकलने वाली जो प्रमुख नदियाँ हैं, उनके नाम इस प्रकार हैं: बनास, साबरमती, लूनी और माही। और हाँ, अरावली पर्वत श्रृंखला बहुत से वन्य जीवों की शरण स्थली है। मैं बताती हूँ, जैसे तेंदुआ, सियार, लोमड़ी, नीलगाय, सांभर, चीतल और जंगली सुअर इत्यादि।
4: अरे वाह सुचिता जी, देखिए अब ये तो आपने हमें बताया नदियों के बारे में और आसपास मिलने वाले जीव जंतुओं यानी पशुओं के बारे में, लेकिन अगर पक्षियों की बात करें तो?
7: सचिन जी, पक्षियों में यहाँ मोर, गिद्ध, सारस, चील, तोता, मैना इत्यादि बहुत अधिक पाए जाते हैं। एक और बात, यहाँ बहुत सारे खनिज पदार्थ भी मिलते हैं, जिनमें मुख्य हैं तांबा, जस्ता, सीसा और लोहा। लेकिन एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है।
4: चिंता का विषय है? भला वो क्या?
7: सचिन जी, अब ये पर्वतमाला पर्यावरण के संकट से गुजर रही है।
4: ओह।
7: अब जैसे अच्छा। जंगलों का कटना, पानी के स्रोतों का सूखना
4: जी।
7: और इनके कारण वन्य जीवों का धीरे धीरे विलुप्त होना, इसीलिए अरावली को बचाए रखना बहुत आवश्यक है। तो बच्चों, बचाओगे ना अरावली को?
5: जी मैम।
4: भाई वाह, तो बच्चों कैसी लगी आपको ये सारी जानकारी?
5: बहुत अच्छी लगी।
4: तो साथियों, अब हमारे रेडियो शो पर्वतों की कहानी का आज का ये अंक होता है यहीं समाप्त। तो एक बार फिर से जोरदार तालियां सबके लिए। डॉक्टर सुचिता, सोहम, रिदित, रिद्धि, नव्या और मनन, आप सभी का हमारी श्रोताओं की ओर से भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे स्टूडियो में आए। तो दोस्तों, इसी तरह से चलता रहेगा हमारा ये रेडियो शो पर्वत भी बोलते हैं। तो अब हम मिलेंगे अगले एपिसोड में। नमस्कार, धन्यवाद।
5: धन्यवाद सर।
9: धन्यवाद मैम।
3: साथियों, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम। क्या कार्यक्रम सुनते समय आपके मन में ये प्रश्न आया कि इस पर्वत श्रृंखला का नाम अरावली क्यों पड़ा? तो चलिए हम आपको बता देते हैं। अरावली शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत के दो शब्दों से मिलकर हुई है, अरा और अवली। अरा का अर्थ है पर्वत की चोटी और अवली का अर्थ है कतार या श्रृंखला। इन दो शब्दों से मिलकर बना शब्द अरावली। तो साथियों, कुल मिलाकर अरावली शब्द का अर्थ है चोटियों की कतार या पर्वत शिखरों की श्रृंखला। ये नाम अरावली पर्वतमाला की भौगोलिक बनावट को दर्शाता है, जो लंबी चोटियों वाली पुरानी पर्वत श्रृंखला है।
4: अब आपके लिए कुछ सोचने और करने को। जरा पता लगाइए कि भारत में कितनी पर्वत श्रृंखलाएं हैं और उनसे भला कौन कौन सी प्रसिद्ध नदियां निकलती हैं और वो कहां जाकर सागर में मिलती हैं, और फिर उन जगहों को भारत के मानचित्र पर अलग अलग रंगों से चिन्हित कीजिए और उनके बारे में संक्षेप में लिखिए।
3: अभी आपने सुना कार्यक्रम अरावली की कहानी, और आइए सुनते हैं अगला कार्यक्रम। शीर्षक है बांगुई।
2: ये कार्यक्रम अफ्रीका की एक लोक कथा पर आधारित है, जिसके द्वारा संदेश दिया गया है कि पर्यावरण को बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। कार्यक्रम एक सुंदर नाटक द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

0: अफ्रीका महाद्वीप का नाम तो आपने सुना होगा। उसके पश्चिमी हिस्से में एक छोटा सा देश है घाना। विश्व के सबसे बड़े रेगिस्तान सहारा के निकट होने के बावजूद घाना में सूखे की नहीं बाढ़ की समस्या प्रबल रहती है। कई छोटी बड़ी नदियां इस देश से होकर बहती हैं और इसे हरा भरा बनाए रखती हैं, लेकिन अक्सर इन नदियों में बाढ़ आ जाती है और गांव के गांव डूब जाते हैं। आज सुनते हैं व्हाइट वोल्टा नदी के किनारे बसे एक ऐसे ही गांव के आदिवासियों की कहानी।
1: नमस्कार भाई।
2: नमस्कार भाई। नमस्कार।
1: इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? अभी तो खेत में काम करने का समय नहीं हुआ।
2: अरे आज खेतों में नहीं, जंगल में काम करने जा रहा हूँ। ये देखो कुल्हाड़ी।
1: अरे ये क्या, हल वाले हाथ में कुल्हाड़ी, लकड़ी काटने जा रहे हो? क्या नया घर बना रहे हो?
2: हाँ भैया, नया घर तो बन रहा है, लेकिन मेरा नहीं, अपने मुखिया बानगुई है ना, वही अपना नया घर बनवा रहे हैं।
1: मुखिया बांगुई का नया घर? लेकिन अभी कुछ ही बरस पहले तो उन्होंने नया घर बनवाया था।
2: तो क्या हुआ, उन्हें अपना वो नया घर अब पुराना और छोटा लगने लगा है। दरअसल जंगल की लकड़ी बेच बेच कर रईस हो गए हैं ना, सो अपनी रईसी की शान दिखाने के लिए फिर नया मकान बनवा रहे हैं।
1: अच्छा तो ये बात है, मुखिया बांगुई ने ही पैसे के लालच में शहर के लोगों को जंगल से लकड़ी काटने की अनुमति दी है। तभी मैं कहूं कि जंगल से आजकल दिन रात लकड़ी काटने की आवाज क्यों आती है, इस तरह तो जंगल के सारे पेड़ कट जाएंगे।
2: अरे और नहीं तो क्या, जंगल से जिस तरह से ये शहरी लोग दिन रात लकड़ी काट रहे हैं ना, देखना थोड़े दिनों में सारा जंगल साफ हो जाएगा। अरे जंगली जानवर गांव पर हमला करेंगे, नदी की धारा जंगल की रुकावट ना पाकर गांव की तरफ बढ़ने लगेगी।
1: और ये सब जानकर भी तुम कुल्हाड़ी लिए लकड़ी काटने जा रहे हो?
2: हाँ भैया, और क्या करूं, मेरे पास खेत तो है नहीं। मुखिया बानगुई के खेतों में काम करता था, लेकिन उन्हें अब खेती बाड़ी में कोई दिलचस्पी नहीं। उन्हें जंगल की कटाई से काफी पैसे मिल जाते हैं ना, बाल बच्चों का पेट पालने के लिए मैंने भी लकड़ी काटना शुरू कर दिया है भैया। फिर शहर के लोग लकड़ी काटने की मजूरी भी अच्छी देते हैं।
1: पर तुम तो मुखिया के मकान के लिए लकड़ी काटने जा रहे हो?
2: हाँ, मुखिया का ये नया मकान शहरी लोग ही बनवा रहे हैं ना, मुखिया ने उन्हें जंगल से लकड़ी काटने की आज्ञा दी है, इसलिए वो लोग उन्हें ऊंची वाली चट्टान पर एक बहुत बड़ा तिमंजिला मकान बना कर दे रहे हैं।
1: तिमंजिला मकान? वो तो बहुत ऊंचा होगा।
2: हाँ, हमारे तीन मकान एक के ऊपर एक रख दिए जाए, इतना ऊंचा होगा।
1: लेकिन ये मकान नदी के इतने नजदीक क्यों बनवा रहे हैं, अगर नदी में बाढ़ आ गई तो?
2: अरे भैया, बाढ़ आती है तो तबाही हमारे कच्चे झोंपड़ों की होती है ना, ऊंची चट्टान पर बने तिमंजिले मकान पर बाढ़ का क्या असर होगा भला? फिर हमें से क्या भैया, हमें तो अपनी मजूरी से मतलब है। अच्छा चलता हूँ, बड़ी देर हो गई।
1: अच्छा भाई, मैं भी चलता हूँ।
2: ए, कहाँ बड़े चले आ रहे हो? अरे जानते नहीं ये मुखिया बानगुई का मकान है?
3: जानते हैं भाई, जानते हैं, तभी तो अपनी फरियाद लेकर यहाँ आए हैं।
2: मैं कहता हूँ भाग जाओ यहाँ से।
3: अरे भाई, ये भी कोई
2: इस समय कोई फरियाद वरियाद नहीं सुनी जाएगी। अभी मुखिया जी बांसुरी बजा रहे हैं, और जब वो बांसुरी बजा रहे हो तब उन्हें तंग करने का हुक्म नहीं है।
3: लेकिन अगर मुखिया जी हमारी फरियाद नहीं सुनेंगे तो हम कहाँ जाएंगे भैया?
2: अच्छा भाई बोलो, क्या बात है, बोलो।
3: मैं बोलो। अच्छा अच्छा, देखो भैया, तुम भी तो हम ही में से एक हो, गांव की हालत तुमसे छुपी नहीं है। मुखिया जी के सारे खेत खाली पड़े हैं, उनमें काम करने वाले मजदूर बेकार हो गए हैं। जिनके पास थोड़ी बहुत अपनी जमीन थी, जहाँ खेती करके थोड़ा अनाज हो जाता था, उन सारे खेतों में बाढ़ का पानी भर गया है भैया। बारिश के मौसम में लकड़ी की कटाई का काम भी बंद हो गया है। हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं भैया, इसीलिए हम मुखिया जी के पास आए।
2: अरे तो इसमें मुखिया जी क्या कर सकते हैं?
4: सुना है मुखिया जी के मकान के एक पूरे खंड में अनाज भरा है। अगर इस संकट के समय हम गरीबों को भी एक एक मुट्ठी अनाज मिल जाता तो।
2: अच्छा, और मुखिया जी क्या फाके करे? मैं कहता हूँ भाग जाओ यहाँ से। बढ़िया है
0: एक बार की बात है, उस इलाके में मूसलाधार वर्षा हुई और लगभग 4 दिनों तक चलती रही।
3: मुखिया जी
5: बदतमीज, ऐसे क्या चिल्ला रहे हो?
6: माफ कीजिएगा, लेकिन बात ही कुछ ऐसी है कि।
5: ओहो, आप कुछ बोलो भी, क्या हुआ है?
6: गांव में चारों तरफ पानी भर गया है।
5: तो भरने दो।
6: गांव के सभी लोग, औरतें, बच्चे और मर्द गांव छोड़कर जा रहे हैं।
5: अरे तो जाने दो।
6: लेकिन मुखिया जी, इस मकान के चारों तरफ भी पानी पानी है, अगर हम निकलकर जाना भी चाहें तो भी नहीं जा सकते।
5: अरे बेवकूफ, हम यहाँ से जाएंगे ही क्यों? इस ऊंची चट्टान पर बने 3 मंजिले मकान में पानी आएगा कैसे? हमारे पास यहाँ क्या कमी है? अरे खाना है, पानी है, और ये हमारी बांसुरी भी है।
6: लेकिन मुखिया जी,
5: वो तुमसे कितनी बार कहा है कि जब हम बांसुरी बजा रहे हो तो हमें परेशान मत किया करो।
6: जी मगर
5: जाओ, चले जाओ यहाँ से।
7: मुखिया जी,
5: अब क्या है?
7: नीचे वाली मंजिल में बहुत पानी आ गया है।
5: तो यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? जाओ, सब चीजें दूसरी मंजिल पर ले जाओ, और हम 3री मंजिल पर जा रहे हैं।
4: मुखिया जी
5: चैन नहीं लेने देंगे, अब क्या है
4: जी? वो दूसरी मंजिल पर भी पानी
5: चढ़ रहा है। अरे तो 3री मंजिल किस लिए है? देखो सब सामान ऊपर ले जाओ, हम छत पर जा रहे हैं।
4: माफ कीजिएगा मुखिया जी, अब हम यहाँ नहीं रुक सकते। बूढ़ा कालू कह रहा है कि ये साधारण बाढ़ नहीं है, बल्कि नदी ने अपनी धारा बदल दी है। अब नदी इसी जगह से बहेगी, बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं रह जाएगा। हम लोगों ने लकड़ी के तख्ते जोड़ जोड़ कर एक नाव तैयार की है, हम तो जा रहे हैं, आप चाहें तो हमारे साथ चल सकते हैं।
5: नालायक, डरपोक, अरे भाग रहे हो? इस महल को छोड़कर भाग रहे हो? जाओ, चले जाओ यहाँ से, जाओ तुम लोग, मैं यही रहूंगा।
4: जैसी आपकी मर्जी।
5: अरे ये तो सचमुच चला गया, कहीं वो बूढ़ा कालू ठीक ही तो नहीं कह रहा? क्या नदी ने सचमुच अपनी धारा बदल दी है? हाँ, छत से देखता हूं मैं। ये कैसा भयानक दृश्य है! दूर दूर तक जहां नजर जाती है पानी ही पानी, कहीं कोई नहीं, ना कोई आदमी, ना जानवर, ना खेत, ना जंगल। अगर अगर मेरे इस मकान की 3री मंजिल में पानी में डूब गई तो ये क्या? अरे ये क्या हो रहा है? नहीं, ये इतना मजबूत मकान भी गिर रहा। हे भगवान, मैं क्या कर रहा हूँ? अरे कहाँ जाऊँ मैं? ये पानी में डूब रहा हूँ मैं। अरे मैं अपनी जान कैसे बचाऊँ? अरे कोई है? अरे बचाओ मुझे! अरे मैं डूब रहा हूँ मैं। ये क्या? ये लगता है कोई पेड़ अब भी अपनी मजबूत जड़ें धरती पर धंसाए बैठा है। अगर किसी तरह मैं उसे पकड़ लूं तो मेरी जान बच सकती है। हाँ, मैं उसे पकड़ूंगा किसी तरह मैं उसे पकड़ लूं। लेकिन ये पानी तो मुझे दूसरी तरफ बाहर ले जा रहा है। मैं कोशिश करूंगा, उस पेड़ तक जाने की कोशिश करूंगा मैं। वो पेड़,
4: आखिर पहुंच गया।
5: यहां तो इस तरह के कितने ही पेड़ थे जो मैंने कटवा दिए, लेकिन ना जाने यही एक इकलौता पेड़ मुझे शरण देने के लिए कैसे बच गया। शायद मेरी आंखें खोलने के लिए, हाँ शायद मेरी आंखें खोलने के लिए

0: बांगुई, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम। अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।

उमंग। अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे ये प्रायोजित कार्यक्रम मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलो हर्ट्स और FM 102.9 मेगा हर्ट्स पर आप तक पहुंच रहे हैं हमारी पहली सभा के कार्यक्रम। अपराह्न के 3 बज रहे हैं। अभी तक आप सुन रहे थे हमारी प्रथम सभा के कार्यक्रमों को। अब से लेकर संध्या 4 बजे तक आप सुनेंगे विविध भारती के प्रसारण। संध्या 4 बजे अपनी द्वितीय सभा के कार्यक्रमों के साथ मीडियम वेव और FM पर आपसे पुनः भेंट होगी। अब मीडियम वेव पर हमें ये सभा संपन्न करने की आज्ञा दीजिए।

0: सखी सहेली
1: सभी सखियों सहेलियों को श्रोताओं को सोनाली पाठक का सप्रेम नमस्कार। दीपा आपको भी मेरा नमस्कार।
2: सोनाली आपको और हमारी सभी सखियों सहेलियों श्रोता भाइयों को दीपा माहेश्वरी का हेल्दी नमस्कार।
1: और क्या हालचाल है?
2: बिल्कुल अच्छे। और आशा करते हैं कि हमारी सारी सखियां हमारे सभी श्रोता अपना और अपनी सेहत का और अपने परिवार का खूब अच्छा ध्यान रख रहे होंगे, क्योंकि बदलता मौसम है इस वक्त कुछ और एक्स्ट्रा ध्यान रखने की जरूरत है।
1: और झमाझम बारिश हो रही है तो बारिश का हम सभी लुत्फ उठा रहे हैं।
2: बिल्कुल,
1: जिन जगहों पर अभी बारिश नहीं आई है वे बारिश का इंतजार कर रहे हैं
2: और उनके लिए भी ये शुभकामना है कि जल्दी से उनके शहर में भी ये जो ठंडक हम जो एहसास कर रहे हैं उन्हें भी ये एहसास हो।
1: और ये ठंडक का एहसास है ना दीपा, ये तो इस मंच पर आते से ही हमें होने लगता है। भले ही कितनी भी चिलचिलाती गर्मी हो या बहुत ठंड हो या बारिश हो, यहाँ आने के बाद में जो सुखद अनुभूति मिलती है ना उसका हम वर्णन नहीं कर सकते।
2: ये बात तो बिल्कुल 16 आने सही कही तुमने।
1: और जब सुखद अनुभूति कब मिलती है? जब हम अपने घर में पुराने फोटो के एल्बम लेकर बैठते हैं, कह रहे मैं पहले कैसे दिखती थी, कितनी सुंदर दिखती थी, मेरे बाल कितने लंबे थे, मैं कितनी सुंदर दिख रही थी, मेरे बच्चे कितने अच्छे दिख रहे थे, या फिर हमारा बचपन कितना खूबसूरत था। ये सब हम जब पुराने फोटो एल्बम देखते हैं, पुराने फोटो एल्बम देखना अपना एक अद्भुत अनुभव होता है।
2: बिल्कुल, और एक फिल्म से चल जाती है उस दिन को, हम फिर से लगता है जैसे
1: जी रहे हैं
2: और वो वक्त उस वक्त क्या हुआ था, कुछ बातें भी याद आ जाती हैं और सभी लोग उस बातों को फिर याद कर करके खूब खुश होते हैं और आनंद का जो
1: क्षण होता है
2: वो उसकी अनुभूति, उसका अनुभव ही कुछ अलग है सोनाली।
1: साथ ही कहानी पद्मश्री की, इसके अंतर्गत हम तकदीदा बेगम कांथा कढ़ाई वर्क में जिन्होंने काम किया है बहुत आगे बढ़ी है, तो उनके बारे में हम जानकारी देंगे।
2: और जो आजकल एक बात चली है कि बच्चों की शादी अपनी मर्जी से होना चाहिए या उसमें बड़ों की भी मर्जी शामिल होना चाहिए, सलाह उनकी शामिल होनी चाहिए या नहीं, ये इस बातों पे घर घर में बहुत सारी बातों पर विचार विमर्श चलते रहते हैं जहाँ पे शादी योग्य युवक या युवतियां हैं उनके घरों में। तो हम भी कुछ जानेंगे कि कैसा होना चाहिए, बड़ों की सहमति या बड़े दिखाएं या बच्चे ही अपनी मर्जी बता दें, क्या सही है क्या गलत है उनके लिए, इस बारे पे थोड़ी विचार और विमर्श करेंगे।
1: देखिए जो बदलता जमाना है ना, पुराने जमाने में थोड़ी छोटी उम्र में शादी हो जाती थी तो उस वक्त माता पिता जो है वे उनके बारे में अच्छा ही सोचते थे, पर अब बदलते जमाने के नजरिए जो बच्चे हैं ना थोड़ी बड़ी उम्र में शादी करते हैं, यानी 25, 26, 27, 28 के बाद में शादी करते हैं, तो उनकी राय जान लेना उतना ही जरूरी है क्योंकि उन्हें एक साथ जिंदगी गुजारना होता है। तो इस विषय में हमारे श्रोताओं ने, हमारी सखियों ने बहुत सुंदर सुंदर कमेंट्स लिखे हैं, तो उनके हम कमेंट शामिल करेंगे क्योंकि ये श्रोताओं का ही सेगमेंट है। मुझे कुछ कहना है, बच्चों की सहमति से हो शादी, है ना?
2: बिल्कुल।
1: और साथ ही उपयोगी टिप्स अच्छी नींद के लिए, जो आजकल हम सभी को नसीब नहीं होती है। कुछ कुछ खुशकिस्मत होते हैं जिन्हें बस ऐसे बिस्तर पर लेट गए और नींद लग जाती है, पर कुछ कुछ लोगों को बहुत जद्दोजहद के बाद नींद आती है।
2: जी, तो इसके लिए भी बहुत जरूरी है कि भाई एक स्वस्थ नींद अगर मिलेगी तो स्वस्थ तन होगा और उसके बाद आपका अगला दिन उसी तरह से स्वस्थ होगा और साथ में तभी वो सकारात्मक हो सकेगा। तो आगे आने वाले दिनों के लिए या कल के लिए आज की रात सोना बहुत जरूरी है, वो भी एक गुड क्वालिटी स्लीप आपको मिलना चाहिए।
1: और आप क्या करना चाहिए?
2: गीत सुनना चाहिए,
1: तो सुनते हैं गीत।
3: टोकरियों में घोला जाए फूलों का शबाब, उसमें फिर

0: तो दीपा, बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ, जिसमें हम कहानी पद्मश्री की, इसके अंतर्गत आज हम जानकारी देंगे तकदीरा बेगम के बारे में।
1: जी, बंगाल की रहने वाली हैं ये। और सोनाली, आप तो जानती हैं कि बंगाल राज्य अपनी पारंपरिक और उत्कृष्ट कांथा कढ़ाई के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें नक्शी कांथा, लेप कांथा, सुजनी कांथा, बेटन कांथा, ऐसे अलग अलग प्रकार के बहुत सारी शैलियां हैं। ये कला हमारे देश के प्राचीन विरासत का एक अभिन्न अंग है और बंगाल की विशेष पहचान।
0: बिल्कुल सही कहा आपने दीपा। नक्शी कांथा में पुरानी साड़ियों और कपड़ों को एक के ऊपर एक रखकर रंगीन धागों से जटिल कढ़ाई की जाती है, और इस कला में रनिंग स्टिचिंग या कंथा स्टिच का उपयोग करके सुंदर नक्शा यानी कलात्मक पैटर्न बनाया जाता है, और इसका उपयोग अक्सर रजाई, बेडशीट, पर्दे और अन्य घरेलू सामानों के लिए किया जाता है। खास तौर पर इन्हें साड़ियों पर भी उतारा जाता है।
1: बिल्कुल, और तकदीरा बेगम जो है नक्शी कांथा कढ़ाई की माहिर कलाकार हैं। उनका जन्म 1953 में पश्चिम बंगाल के परगना जिले में का एक छोटा इलाका है, नाम है श्री कृष्णापुर, वहां हुआ था। उनकी माँ घर पर बंगाल की जो पारंपरिक ये जो कांथा कढ़ाई है वो किया करती थी। अपनी माँ को काम करता देख तकदीरा को इस कला के लिए, जैसे एक होता है ना कि घर में एक कोई बड़ा आपका कर रहा है तो आपका भी प्यार उस कला की तरफ हो जाता है, तो स्वाभाविक सा हो गया कि तकदीरा का भी जो आकर्षण है इस कांथा कढ़ाई की ओर गया।
0: यानी ये कितनी अच्छी बात है ना कि जब हम कोई अच्छा काम बच्चों के इर्द गिर्द करते हैं तो बच्चों को भी उसमें अपने आप रुचि उत्पन्न हो
1: रुचि
0: जाती।
1: उत्पन्न होती है।
0: जी,
1: जी
0: और तकदीरा बेगम नक्शी कांथा कढ़ाई की माहिर कलाकार है। तो उनका जन्म तो आपने बता ही दिया कि 1953 में हुआ था, और बचपन में तकदीरा अक्सर स्कूल के बाद अपनी माँ के साथ कंथा कढ़ाई करती, और जिसमें वे रंगीन धागों से पारंपरिक डिजाइन बनाती। 12 या 13 साल की उम्र तक कांथा कढ़ाई की रचनात्मक दुनिया में उन्होंने प्रवेश कर लिया। देखिए, 12-13 साल की उम्र कितनी छोटी उम्र होती है
1: जी
0: ना।
1: बिल्कुल, मतलब उस वक्त तो समझ ही नहीं आता है, लेकिन ये कढ़ाई किया करती थी। और तकदीरा बेगम के पिता मूल रूप से श्री कृष्णपुर के निवासी ही थे, लेकिन बाद में वो जय कृष्णपुर चले गए थे। उन्होंने औस ग्राम के गर्ल्स स्कूल में 10वीं तक की पढ़ाई की थी। सिलाई और कढ़ाई में उनकी रुचि बहुत थी। 5वीं कक्षा से ही उन्होंने ये काम शुरू कर दिया। अपनी माँ की कांथा कढ़ाई से प्रेरित होकर वे पारंपरिक शैक्षणिक विषयों से परे, यानी उनको शायद पढ़ाई में थोड़ा मन कम लगता होगा, अब जाकर के वो सीधे सुई धागे की ये जटिल कला की ओर उनका आकर्षण बढ़ने लगा।
0: पिछले 30 वर्षों से तकदीरा ने अपना जीवन कांथा कढ़ाई की कला को निपुणता प्रदान करने में समर्पित कर दिया है। बचपन के शौक के रूप में शुरू हुआ ये काम धीरे धीरे उनका जुनून और पेशा बन गया। स्कूल के दिनों में उन्होंने जो सिलाई कौशल हासिल किया था, उसी शिल्प ने उन्हें उनके उनके आजीवन सफर की नींव रख दिया। कितनी अच्छी बात है कि जो काम उन्होंने शौकिया तौर पर शुरू किया, उस शौक ने ही उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से
1: जी
0: सम्मानित कर दिया
1: बिल्कुल।
0: उन्हें। जी
1: और पिछले कई सालों से आप महिलाओं को अपनी सामाजिक आर्थिक स्थिति सुधारने में बहुत उनकी मदद कर रही हैं। उनका मानना है कि पारंपरिक कलाओं के माध्यम से आर्थिक स्वतंत्रता हम महिलाएं पा सकती हैं, अपना जीवन भी बदल सकती हैं, और साथ ही सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने में भी

0: मदद कर सकते हैं।
1: और उनका ये मानना था कि मैं कभी खाली नहीं बैठ सकती थी, मुझे काम करना हरदम पसंद था, और ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि सरकार ने मुझे पद्मश्री पुरस्कार के काबिल समझा और वर्ष 2024 में उन्हें भारत सरकार की ओर से पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
0: और कई सारे उनके इंटरव्यूज हुए, तो उसमें से एक साक्षात्कार में उन्होंने ये भी किया, ये भी बताया था कि मेरी माँ ने कभी सोचा ही नहीं था कि वो अपनी इस कारीगरी से, इससे बने जो भी उत्पाद थे उससे पैसे कमा पाएंगी। उस समय हमारे परिवार में इसकी इजाजत भी नहीं थी, ये वो इस तरह से बताती हैं, लेकिन वह कढ़ाई में माहिर थी और उन्होंने मुझे कई दुर्लभ और जटिल डिजाइन सिखाए। मैं इस कढ़ाई को एक बड़े मुकाम तक ले जाना चाहती थी, ये मेरा सपना हुआ करता था।
1: और उनका ये मानना था दीपा कि भले ही कई लड़कियां काम करने और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने के लिए उत्सुक भी रहती हैं, लेकिन उनके घर से उनके पति उन्हें घर से बाहर निकलने ही नहीं देते। पर उनका ये कहना था कि उनके पति यानी तकदीरा बेगम के पति ने उन्हें भरपूर समर्थन किया और अपने दोस्तों को भी ऐसा ही करने के लिए प्रोत्साहित किया ताकि वे अपनी पत्नियों को काम करने दें और उन्हें आत्मनिर्भरता बनने दें, आत्मनिर्भर होने दें।
0: बिल्कुल, अपनी लगन से तकदीरा बेगम देश की अनगिनत महिलाओं के लिए एक प्रेरणा बन गई हैं। उन्होंने ये साबित कर दिया है कि दृढ़ संकल्प और कौशल से पारंपरिक कला न केवल जीवित रह सकती है बल्कि पीढ़ियों को सशक्त भी बना सकती है। ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने की उनकी 3 दशकों से अधिक की यात्रा चुनौतियों से तो बहुत भरी रही सोनाली, फिर भी इनके जो परिणाम है बहुत उल्लेखनीय निकले। इतनी सफलता उन्होंने हासिल की है और साथ में अपने सिर्फ खुद सफल नहीं हो रही हैं, खुद आत्मनिर्भर नहीं हुई, उन्होंने अपने साथ कई सारी महिलाओं को ये सफल राह दिखाई है।
1: यानी देखिए ना, उनकी एक कला के कारण कितनी सारी महिलाएं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनी है, उन्हें उनकी आमदनी हो रही है। तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि कोई भी कला है जो जो खुशियां तो देती है, पर ये खुशी उन्होंने अपने खुद तक सीमित नहीं रखी है, बल्कि उनके कारण कितने सारे घरों में रोशनी आ रही है।
0: बिल्कुल, और ये जो आर्ट है काथा कढ़ाई,
1: जी
0: ये भी संरक्षित है आज भी, और ये तो इसमें साड़ियों में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है ये इस प्रकार की कढ़ाई।
1: तो श्रोताओं ने भी इस बारे में बहुत सारे कमेंट्स लिखे, हम वो बाद में पढ़ेंगे, पहले अभी क्या करें?
0: गीत सुनेंगे,
1: तो एक गाना सुनते हैं।
0: चलिए।

0: मानना।
1: कुछ ऐसा ही होता है ना, जब हम पुरानी एल्बम या पुराना कोई अपनी कोई पुरानी तस्वीर हमारे हाथ लग जाती है घर सफाई के समय, तो लगता है कि वही फिर से वही बात कुछ फरमा दे, वही चीज हो जाए हमारा। हम कई बार ऐसे हंसी
2: हमारा
1: मजाक
2: चेहरा
1: में
2: वैसा
1: बोलते
2: ही
1: हैं
2: हो जाए।
1: वैसा ही हो जाए, और हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे वापस से उतने छोटे हो जाएं
2: हाँ,
1: जैसे उस वक्त थे जो हम तस्वीर में देख रहे होते हैं।
2: यानी उस वक्त मैंने थोड़ा कम लाड़ दुलार किया, अब वो
1: हाँ
2: ऐसे होते तो मैं और प्यार करती। उस वक्त मैं इतनी उलझनों में थी, इतने कामों में व्यस्त थी कि मैं अपने बच्चों को अच्छी तरह से खिला नहीं पाई, अच्छी तरह से उनका बचपन नहीं देख पाई, तो फिर से वो छोटे हो जाए तो मैं फिर से उन्हें खिला लूँ, है ना।
1: और एक दूसरा पक्ष भी हो सकता है कि उस दिन उसने बहुत ज्यादा बदमाशी की थी, तो उसे एक तो थप्पड़ उसे दे ही देना था, तो बाद में वो जिद करता ही नहीं।
2: वैसे दीपा, पुराने एल्बम हमारे जीवन की वो अनमोल धरोहर होते हैं ना, जिनमें केवल तस्वीरें नहीं बल्कि भावनाएं, रिश्ते और बीते समय की खुशबू संजोई रहती है।
1: बिल्कुल। और सोनाली, जब हम किसी पुराने एल्बम को हाथ में लेकर उनके पन्ने पलटते हैं, तो अब ऐसा लगता है जैसे समय हमें पीछे ले के जा रहा है और हम अपने ही पुराने दिनों को दोबारा मिल रहे हैं।
2: वैसे दीपा, एल्बम का जो हर पन्ना होता है ना, उसकी एक अलग कहानी होती है। और कहीं बचपन की शरारतें दिखाई देती हैं, तो कहीं माता पिता का स्नेह भरा चेहरा दिखाई देता है, कहीं परिवार के साथ बिताए त्योहारों के पल, कहीं दोस्तों के साथ हंसी मजाक की यादें, तो कहीं स्कूल के पिकनिक के फोटोज होते हैं। तो जो
1: हाँ
2: फोटोज,
1: बिल्कुल,
2: ये अनगिनत यादें होती है ना,
1: बहुत
2: और
1: सारी
2: कुछ
1: जी।
2: तस्वीरें तो ऐसी होती नहीं जो हमारे चेहरे पर मुस्कान लेकर आ जाती है और कुछ आंखों को नम कर देती है।
1: ये बात तो बिल्कुल सही कही तुमने कि कभी कभी एकदम ऐसा लगता है हाय वो दिन कहाँ गए, वो दिन फिर से हमारे लौट आए। और पुराने समय की तस्वीरों में एक अलग ही अपनापन होता है, तस्वीरें कम खींचा करते थे उस वक्त, इसलिए हर फोटो खास होती है, और परिवार के सभी लोग एक जगह इकट्ठा होकर फोटो खिंचवाते थे। ये वो जमाना था, है ना, वो इंतजार, वो उत्साह, और फिर एल्बम में तस्वीरें सजाने की खुशी आज के हजारों मोबाइल फोटो से एक अलग ही अनुभव देती है। हमारे मोबाइल में भले ही ढेर सारे फोटो हो, हजारों में होते हैं,
2: जी।
1: लेकिन जब हम एल्बम उठा करके बैठते हैं, तो घर के भी जो सारे सदस्य होते हैं ना, कि वो कहते हैं अरे क्या देख रहे हो, हमें भी देखना है, और फिर उस पर वापस एक डिस्कशन, एक विचार विमर्श शुरू हो
2: और फिर
1: जाता है, और
2: उस
1: फिर वो
2: वक्त,
1: बातें पता नहीं कहाँ
2: हाँ,
1: तक चली
2: और
1: जाती
2: उस
1: हैं।
2: वक्त अगर कोई घटना घटी होती तो उसे भी हम याद करके बहुत हंसते हैं, है
1: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा।
2: ना, कि ऐसे हुआ था, ये हुआ था, है ना। एक हमारे सखी ने लिखा है, सच कहा, पहले के फोटो देखना बड़ा ही अच्छा लगता है। सच में पहले के फोटो और उनसे जुड़ी बातें जब

0: रूपी तस्वीरें नहीं बल्कि जीवन की सबसे अनमोल पूंजी है।
1: एक साथी कहते हैं कि सच में पुराने फोटोज देखकर तो दिन कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता। मुझे भी जिस दिन मन नहीं लगता उस दिन मैं भी अपने या अपने बेटे के पुराने एल्बम निकालकर देखती हूँ। क्योंकि मुझे शुरू से फोटोग्राफी का शौक रहा है तो मेरे पास अपनी या अपने बेटे के हर क्षण की फोटो है। जब मोबाइल नहीं था तब मेरे पर्स में हमेशा एक कैमरा रहता था, जहां जो अच्छा लगता था मैं फोटो ले लेती थी। यहां तक कि स्कूल में भी वहां भी बच्चों की फोटो लेती थी, जिसकी वजह से मैं अपने स्कूल में सेल्फी मैम के नाम से जानी जाती हूँ। कितनी सुंदर बात।
0: बहुत सुंदर। और एक संदेश कहता है कि एल्बम के देखने की अनुभूति बेहद खास और भावनात्मक होती है। उस समय में पीछे जाने जैसा होता है, पुरानी यादें, चेहरे और पल आंखों के सामने सजीव हो जाते हैं। खुशी केवल तस्वीरों को देखने तक सीमित नहीं बल्कि यह बीते हुए सुनहरे पल के एहसास को फिर से जीने का एक प्यारा माध्यम है। एल्बम पलटने से अपनों के साथ बिताए गए खास लम्हे, बचपन, शादी, छुट्टियां, त्यौहार, सब यादें ताजा हो जाती हैं।
1: एक साथी कहते हैं कि भाई मेरी तो 10th बोर्ड जो है ना फॉर्म में लगाने वाली पासपोर्ट साइज फोटो है, उसे देखता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं तो तब बिल्कुल लड़की जैसा दिखता था। अभी मैं यहां पर अपलोड नहीं कर सकता, वरना मैं आपको वो फोटो जरूर दिखाता।
0: जी कभी मौका लगेगा तो जरूर हम भी देखना चाहेंगे। और अब क्या करना चाहेंगे?
1: अब गाना सुनेंगे।
0: चलिए।

0: रिमझिम रिमझिम सावन की बरसात हो रही है, यानी सावन तो नहीं आया है अभी, पर बरसात ऐसी है कि मानो सावन आ गया है।
1: एहसास तो वही करा रहा है
0: और वो जो है ना
1: ना।
0: सुखद अनुभूति है ना, वो एल्बम देखने जैसी ही है। एक हमारे साथी ने लिखा है कि पुराने एल्बम के पन्ने पलटते ही यादों का कारवां चल पड़ता है, बचपन, परिवार, दोस्त और जीवन के अनमोल

0: फिर से आंखों के सामने ताजा हो जाते हैं और हर तस्वीर की एक कहानी होती है जो अब दुनिया में नहीं, उनकी यादें संजोए रहते हैं। शादी ब्याह की शरारतें, नाच गाना चेहरे पर मुस्कान ले आते हैं। सचमुच पुराने एल्बम को देखना बीते हुए खूबसूरत पलों को एक बार जीने जैसा सुखद अनुभव मिलता है। और अब वक्त हो चुका है ब्रेक का, तो लेते हैं एक ब्रेक।
1: चलिए।

0: ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर है, कार्यक्रम है सखी सहेली, और हमारे बहुत सारे साथियों ने कमेंट्स लिखे हैं। तो एक हमारी सखी ने लिखा है कि एल्बम देखने की अनुभूति बेहद खास और भावनात्मक होती है, उस समय में पीछे जाने जैसा है जहां पुरानी यादें चेहरे और पल आंखों के सामने सजीव हो जाते हैं। ये खुशी केवल तस्वीरों तक देखने तक सीमित नहीं है, बल्कि बीते हुए सुनहरे पल के एहसास को फिर से जीने का एक प्यारा माध्यम है। एल्बम पलटने से अपनों के साथ बिताए गए खास लम्हों, बचपन, शादी, छुट्टियों और त्योहारों की यादें ताजा हो जाती हैं। ये चेहरे पर मुस्कान लाने के साथ साथ आंखों में खुशी के आंसू भी लाते हैं। मैं तो बेटे के बचपन का फोटो पोते को दिखाती हूँ, और कभी कभी दोनों का फोटो लगाकर मोबाइल स्टेटस सोशल मीडिया पर लगाती हूँ। पोता फोटो को देखकर खूब खुश हो जाता है और पूछता है, दादी पापा भी मेरी तरह छोटा था? कितना मासूमियत भरा सवाल
1: बिल्कुल,
0: है।
1: बिल्कुल। और इसी तरह से जब हम अपने यादों तक वापस उस गलियारों में जब हम गुजरते हैं
0: जी,
1: तो मन प्रसन्न होता है, कहीं सकारात्मक एक धारा भी प्रवाह हो जाती है हमारे अंदर, और एक खुशी की जो लहर अंदर दौड़ पड़ती है, तो सब तरफ हर तरफ हमें अच्छा अच्छा और खुश खुश जैसा माहौल लगने लगता है। और एक माहौल और चल रहा है आजकल कि भाई शादी ब्याह जो है वो इतना जो नाजुक मसला होने लग गया है,
0: जी,
1: इस पर सहमति तो परिवार की होती ही थी, पहले तो हुआ करती थी, अब बच्चों का सहमत होना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है।
0: यानी पहले बताया जाता था कि सब अच्छा है, और बच्चे जो होते थे उन्हें भी पूरा विश्वास होता था कि हमारे माता पिता कभी हमारा बुरा नहीं चाहेंगे, वो हमारा अच्छा ही चाहेंगे, और सब कुछ सोच के घर परिवार देख के पूरा उनके दादा नाना नानी सारे लोग बैठ के पूरा इन्हें पूरा परिवार ही कहते हैं कि कुनबा ही इकट्ठा हो जाया करता था, और फिर इस तरह से शादियां तय होती थी। पर अब समाज जो है बदल रहा है, अब बच्चे पढ़ लिख कर आगे बढ़ रहे हैं, उनकी भी इच्छाओं का हमें ध्यान रखना चाहिए कि उन्हें किस तरह से, यानी हर किसी की अपेक्षा अलग होती है कि उन्हें ऐसा लगता है कि मेरा होने वाला पति ऐसा होना चाहिए जो मुझे समझे, मेरी भावनाओं की कद्र करे, मैंने जो पढ़ाई की है उसे मुझे आगे बढ़ने का मौका दे, उसे उसमें हमें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन दे। वहीं पर लड़कों को भी अपेक्षाएं होती है कि जो लड़कियां हैं बराबरी से काम में हाथ बटाए और फिर खूब आगे बढ़ने में एक दूसरे का ये मिले,
1: मदद मिले,
0: सहयोग मिले,
1: कि हाँ एक की वजह से दूसरा आगे बढ़े और जो दूसरा है उसकी वजह से, मतलब पति पत्नी दोनों ही ये चाहते हैं कि हम एक दूसरे का सहयोग भी काम में भी करें, घर में भी करें, ये
0: घर में भी हाथ बटाएं।
1: हाँ,
0: इन पुराने जमाने में ऐसा होता था कि लड़के घर में काम नहीं करते थे,
1: नहीं ऐसा
0: ही काम करते थे।
1: हाँ, लेकिन अब ये है कि आप अपने जो कार्य क्षेत्र है, ऑफिस है या व्यापार है, जब घर वापस आते हैं तो दोनों मिलकर अब घर रसोई सब कुछ देखते हैं, अपना काम देखते हैं, यहाँ तक कि काम बांट भी दिया जाता है, और इसे कोई गलत या बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो अगर वो शहर में नहीं है, अपने माता पिता से दूर है, तो किस तरह से अपने सब चीजों का संयोजन बनाएंगे, बैलेंस कैसे बनाएंगे अपने लाइफ में, तो वो बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। इसी तरह से देखो बहुत सारे संदेश इस बात को लेकर आए हैं और बहुत अलग अलग विचार सामने आए हैं, तो ये पहला संदेश हम पढ़ रहे हैं। पुराने जमाने में माता पिता जो तय करें उनके साथ शादी हो जाया करती थी, उन दिनों लड़का लड़की एक दूसरे को देखे बिना छोटी उम्र में ही उनकी सगाई भी हो जाया करती थी। आज की तरह सगाई के बाद एक दूसरे से मुलाकातें भी नहीं हो सकती थी, उस वक्त साथ घूमने का तो सवाल ही नहीं होता था। आज लेकिन माहौल बहुत बदल गया है, लड़के के लिए 21 साल, लड़की के लिए 18 साल वैधानिक आयु होनी अनिवार्य हो चुकी है। माता पिता की मर्जी के बिना लड़का लड़की एक दूसरे की पसंद के अनुसार शादी कर सकते हैं। अब माता पिता का तो रोल सिर्फ आशीर्वाद देना ही रह गया है।
0: एक सखी ने लिखा है, विवाह केवल दो व्यक्तियों का नहीं बल्कि दो परिवारों और दो जीवनों का मिलन होता है। माता पिता का अनुभव भी अमूल्य होता है, लेकिन बच्चों की इच्छा, उनकी भावनाएं और उनकी सहमति भी महत्वपूर्ण है। माता पिता बच्चों का मार्गदर्शन करें, उनके लिए योग्य जीवन साथी खोजने में सहायता करें, लेकिन अंतिम निर्णय बच्चों की इच्छा का सम्मान करते हुए ले। समय बदल रहा है, बच्चों की सहमति से होने वाला विवाह न केवल रिश्तों को मजबूत बनाता है बल्कि परिवार में प्रेम, सम्मान और खुशियों को भी स्थायी बनाता है।
1: बिल्कुल। वही एक और संदेश ये कहता है कि विवाह जीवन का एक महत्वपूर्ण निर्णय है, इसलिए इसमें बच्चों की सहमति और इच्छा का सम्मान आवश्यक है। माता पिता का अनुभव और मार्गदर्शन अमूल्य होता है, लेकिन जिस व्यक्ति को जीवन भर उस रिश्ते को निभाना है उसकी राय सबसे अधिक मायने रखती है। आपसी समझ, विश्वास, सहमति पर आधारित विवाह अधिक सुखद और सफल होता है। जब परिवार और बच्चों के विचारों का सम्मान करते हुए निर्णय लिया जाता है तो रिश्तों में अपनापन, सम्मान और विश्वास भी बढ़ता है।
0: एक सखी ने लिखा है कि बच्चों की सहमति से शादी। आजकल शादी का रिवाज बदल गया है, बच्चे अपने ही पसंद की शादी करना पसंद करते हैं। माता पिता को बस घर परिवार जिसको पसंद किया है उसको देखना होता है, बस माता पिता की मोहर लग जाती है। अगर माता पिता खुद से बच्चों के लिए जीवन साथी का चयन करते हैं तब भी यही स्थिति होती है, जब तक बच्चे आपस में एक दूसरे को समझ ना ले तब तक बात आगे नहीं बढ़ती, और जब तक बच्चों की सहमति नहीं होती तब तक माता पिता को रुकना होता है। पहले के समय माता पिता खुद ही पसंद करते थे तब बच्चों की सहमति की जरूरत नहीं होती थी, पर आजकल इन बातों का ध्यान रखा जाता है।
1: एक संदेश कहता है कि आजकल जो माहौल हो रहा है और युवा पीढ़ी हाईली एजुकेटेड होने के बावजूद शादी ब्याह के पवित्र रिश्ते में कोई गलत कदम ना उठा ले, इसलिए जरूरी है कि शादी के लायक बच्चों की सहमति लेना बहुत जरूरी है। और सोने पे सुहागा वाली शादी का निर्णय होता है जब घर के बड़ों के माता पिता के तजुर्बों का भी सम्मान होता है, यानी कि सबकी सहमति सर्वश्रेष्ठ होती है।
0: और आप क्या करेंगे?
1: अब हमारी सहमति तो ये है कि आप गीत सुनाएंगे तो हम बिल्कुल खुश भी हो जाएंगे।
0: चलिए सुनते हैं गीत।

0: बात चल रही है कि शादी हो सहमति से, यानी घर परिवार की तो सहमति हो ही, आजकल बच्चों का सहमत होना बहुत जरूरी है। एक्चुअली हमेशा से ही सबका सहमत होना बहुत जरूरी है, लेकिन अब जबकि एकल परिवार होने लगे हैं और बच्चे कई बार शादी के बाद तुरंत ही दूसरे शहर जहां पे कि वो काम कर रहे हैं वहां चले जाते हैं, ऐसे में अब उनके पास वो शादी ब्याह वाला अनुभव तो होता नहीं है, कैसे जीवन जिया जाना चाहिए वो अनुभव तो होता नहीं है। पहले घर में बड़े साथ में हुआ करते थे, तो कहीं पे पास में बातों में कहीं थोड़ी भी ऊंच नीच हो गई तो संभाल लिया करते थे, अब वो दोनों अकेले रहते हैं। ऐसे में अगर कोई एक गर्म मिजाज हो और एक कोई ठंडा हो तो बात कभी बन जाती है लेकिन कभी कभी बिगड़ भी जाती है।
1: इसलिए दोनों को शादी से पहले थोड़ी बातचीत करके एक दूसरे के स्वभाव को जान ले कि किस तरह से इन्हें कैसे पसंद है, उन्हें कैसे पसंद है, किस तरह से इन्हें जीवन साथी की जो अपेक्षाएं हैं वे फोन पर बात करके उन्हें पता चल जाता है कि लड़की क्या चाहती है कि कैसा हो उसका पति, और लड़का भी क्या चाहता है कि कैसा हो। तो ये अगर बातें अगर थोड़ी सी सुलझ जाए ना तो जिंदगी बहुत अच्छी सुंदर हो सकती है।
0: बिल्कुल,
1: एक हमारी सखी ने लिखा है कि आज के आधुनिक जमाने में युवाओं की आपसी सहमति को शादी का सबसे प्रमुख और अनिवार्य आधार माना जाता है। कानून और सामाजिक बदलाव के अनुसार जब दो वयस्क आपस में शादी करना चाहते हैं तो उनकी सहमति सर्वोपरि होती है। भारतीय कानून के अनुसार बालिग हो जाने पर युवाओं को अपना जीवन साथी चुनने का पूरा अधिकार है। यदि दोनों वयस्क अपनी मर्जी से विवाह करते हैं तो उनकी सहमति ही कानूनी रूप से मान्य है। हमारे समाज में विवाह दो व्यक्तियों के साथ साथ दो परिवारों का भी मिलन माना जाता है, इसलिए लोग कहते हैं कि बच्चों को शादी का फैसला अपनी सहमति से जरूर लेना चाहिए, क्योंकि माता पिता के अनुभव और आशीर्वाद से रिश्ता अधिक मजबूत और सुरक्षित बनता है। माता पिता उसे परिवार से भी देख पाक रखकर इस तरह शादी का सहमति दे सकते हैं, अपनी राय रख सकते हैं, पर दबाव नहीं बच्चों पर। असहमति वाले दबाव वाले शादियों का नतीजा अच्छा नहीं दिख रहा। माता पिता अपने बच्चों का अच्छा ही चाहते हैं पर कभी कभी अपने इंसानी फितरत के चलते अपनी ईगो के चलते कुछ गलत निर्णय ले लेते हैं और बच्चों पर डालते हैं, जिसका परिणाम किसी एक जो है नहीं दो परिवारों कई परिवारों को भुगतना पड़ सकता है। यानी
0: बिल्कुल
1: इस मामले में बहुत सोच समझ कर हमें निर्णय लेना चाहिए।
0: जी। अच्छा, एक और संदेश आया है सोनाली, ये कहती है कि मेरी एक सखी है, उनकी बेटी की अभी हाल ही में शादी हुई है और उस शादी में हम सब ने बहुत आनंद लिया था, सब ने बहुत भरपूर आशीर्वाद युगल जोड़े को दिया था, लेकिन अब ये शादी में कहीं कुछ दिक्कतें दिखाई दे रही हैं, क्योंकि बेटी जो है वो डॉक्टर है और अब जहां वो ससुराल में गई है तो वहां ये उम्मीद लगाई जा रही है कि वो क्लिनिक छोड़कर घर का काम करे। घर शादी और इस रिश्ते को निभाने के लिए वो बच्ची वैसा कर भी रही है, लेकिन फिर भी समझदारी ज्यादा बड़ों में होनी चाहिए ऐसा हमारी सखी को लगता है। वो कहती है कि बच्चों पर भरोसा ही इस रिश्ते को आगे ले जाया जा सकता था। अब जब कारण सुन रहे हैं कि ससुराल वाले खुश ही नहीं है, वो डॉक्टर है, घर में काम भी कर रही है, सब कुछ अपना जो करियर है उसको साइड में रखे हुए है, लेकिन मन में उन लोगों के फिर भी असंतोष रहता है, तो ऐसे में उन्हें ये लग रहा है कि थोड़ा सा हमें जान पड़ताल थोड़ी सी जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए थी, थोड़ा सा और समझ लेना चाहिए था, उसके बाद ही इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहिए था।
1: ये तो बात ऐसी होती है ना दीपा जी कि ये सब बातें कहने की है, पर ऐसा होता है कि अभी हमने पढ़ाई लिखाई कर ली है और पढ़ाई लिखाई करने में हमने इतने वर्ष गवाए हैं, इतने सारे वर्ष हमने अपने जिंदगी के उस पढ़ाई के लिए समर्पित किए हैं और उस पढ़ाई से ही हमारा घर चलने वाला है ना, पैसा मिलने वाला है, तो फिर क्यों ना करें नौकरी। नौकरी करना बहुत अच्छी बात है, और कभी कभी ऐसा होता है कि एक उम्र के बाद यानी 40-45 के बाद में अगर घर के मुखिया इस दुनिया को छोड़ के चले गए यानी जीवन साथी नहीं रहे, तो उस वक्त जो महिला आती है ना उसके ऊपर बहुत बड़ी आपत्ति आ सकती है कि मेरे पास पढ़ाई है पर अनुभव नहीं है, क्योंकि बिना अनुभव के उस उम्र में कोई नौकरी नहीं देता है।
0: बिल्कुल, और आज के जमाने में जहां

0: इतनी तेज भागती दौड़ती जिंदगी चल रही है और हर जगह कंपटीशन इतना है, दोनों का काम करना
1: बहुत
0: अत्यंत
1: जरूरी
0: आवश्यक हो गया है। आपकी छोटी मोटी खुशियां, आपकी छोटी मोटी इच्छाएं भी, हम महिलाएं जो होती हैं, सारी महिलाओं के बारे में बात हो रही है कि हम आत्मनिर्भर होते हैं अपने पढ़ाई अपने शिक्षा की वजह से, तो हमें किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। जो चाहे वो एक लड़की
1: ले सकती है,
0: है,
1: अपनी
0: पा
1: इच्छा पूरी
0: सकती
1: कर
0: है, अपनी
1: सकती,
0: इच्छा पूरी कर सकती है, न सिर्फ अपनी, वो परिवार की भी इच्छा
1: हाँ,
0: पूरी कर
1: पूरी
0: लेती
1: कर
0: है।
1: सकती है
0: और वो खुशी वो आनंद सिर्फ उस बच्ची को या उस महिला को नहीं होता, उस
1: पूरे
0: परिवार
1: परिवार
0: को
1: को।
0: होता है।
1: तो इसमें क्या होता है, दोनों खुश रहते हैं कि वो बाहर गई काम के लिए, तो पति ने भी थोड़ा सा घर के काम में हाथ बटाया, उन्होंने
0: बिल्कुल
1: भी बाहर से गए अच्छे से पैसे कमा कर भी आ गए, ना पूरा घर खुशहाल रहेगा। बस थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग होगी, थोड़ी सी एक दूसरे की तरफ समझेंगे हम, एक दूसरे से जुड़ेंगे, तो ये रिश्ता और भी खूबसूरत होगा।
0: बिल्कुल,
1: और अब गाना सुन ले, एक
0: तो सफर और खूबसूरत हो जाएगा।
1: सुनते हैं।

0: आसमां तो झूम रहा है अभी, है ना।
1: आसमान भी झूम रहा है और गीत सुन के मन भी प्रसन्न हो रहा है।
0: मन प्रसन्न हो रहा है पर नींद तो नहीं आ रही दीपा।
1: अभी कैसे आ सकती है? अभी तो हमारी सखियां साथ में है भाई।
0: और पर नींद ऐसी है ना कि जब नहीं आना चाहिए तब आती है और जब आना चाहिए तब नहीं आती। बहुत बार
1: अक्सर ऐसा
0: होता
1: तो है
0: ना।
1: हाँ?
0: पर
1: और
0: नींद का ना सीधा सीधा संबंध हमारी मानसिक अवस्था पर भी होता है। कि कभी कभी ऐसा होता है ना कि रात के समय सोशल मीडिया पे किसी से बहस हो गई या किसी से फोन पर बहस हो गई तो हमारी पूरी रात खराब हो जाती है।

0: उसके बारे में सोचते हैं,
1: सोच
0: है
1: सोचते रहते हैं कि यार ऐसा क्यों
0: ना?
1: बोल दिया, मैंने तो ऐसा कभी नहीं सोचा, मैंने तो ये कभी नहीं चाहता हूं, फिर ये क्यों बोल दिया, इस तरह से होता है बहुत बार।
0: इसीलिए सोनाली, एक मानसिक स्वास्थ्य और हमारे अच्छे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए अच्छी और गहरी नींद बहुत आवश्यक है। और फिर अगर आप रात को चैन की नींद ना सोएंगे तो अगला दिन आपके जो है आपके काम में उसका असर दिखेगा, आप जो भोजन बना रही हैं उसमें भी असर दिखेगा, या
1: खाना
0: फिर आप चिड़चिड़े होंगे, या आप बिना किसी कारण के घर में नाराजगी आपकी दिखाई देगी।
1: और ऐसा है ना, जो चेहरा होता है ना वो हमारा हमारे स्वास्थ्य का दर्पण होता है, कि हमारी नींद नहीं हुई तो हम सामने वाला बराबर पहचान लेगा कि आपकी आंखों में सूजन दिखाई दे रही है, आप ठीक से नींद नहीं ली है, आप
0: बिल्कुल।
1: हमेशा की तरह फ्रेश नहीं दिख रही है, आप थोड़ी चिड़चिड़ी नजर आ रही है, तो शायद आपकी नींद नहीं हुई है। और पूरा गुस्सा फिर वो बच्चों पर निकल सकता है, पतिदेव पर निकल सकता है, पतिदेव का गुस्सा पत्नियों पर निकल सकता है,
0: ऐसा अक्सर हो ही
1: होता
0: जाता
1: है
0: है
1: ना।
0: जब बहुत काम में प्रेशर में होते हैं हम, काम का दबाव बहुत ज्यादा होता है, या कुछ ऐसा घर में कोई त्योहार या शादी ब्याह का माहौल भी आता है ना, बहुत सारे काम होते हैं घर में, और हम बिना छोटी सी बात पे ही, बात छोटी सी होती है और एकदम से हम नाराज हो जाते हैं या बोल पड़ते हैं कि क्या है, क्यों ऐसा कर रहे हो। वो इसलिए क्योंकि रात को, रोज रात को देर तक काम कर रहे हैं, सुबह जल्दी उठ रहे हैं, इस तरह के कभी 2-3 दिन तक भी अगर इस तरह की रूटीन हो जाती है तो देखिए आपके व्यक्तित्व में बहुत ज्यादा बड़ा बदलाव दिखने लग जाता है।
1: एक हमारे साथी ने लिखा है कि अच्छी नींद किसी दवा से नहीं बल्कि अच्छी दिनचर्या और शांत मन से आती है। ध्यान साधना, नियमित समय पर सोना, संतुलित भोजन, हल्का व्यायाम और तनाव कम रखने की आदतें नींद को गहरी और सुकून भरी बताती है। वही बहुत सारे साथियों ने कहा है कि स्क्रीन जो है, ये हमारा मोबाइल फोन है, इसको
0: बिल्कुल
1: सोने से 1-2 घंटे पहले दूर रख दीजिए।
0: बिल्कुल,
1: जब
0: बहुत
1: हम
0: जरूरी है क्योंकि इसमें से जो निकलने वाली ब्लू लाइट है वो हमारे दिमाग में मेलाटोनिन, जो वो हार्मोन जो कि नींद लाने वाला होता है, उसकी ये जिम्मेदारी होती है, तो इसका स्तर कम हो जाता है और उसी की वजह से नींद आने में दिक्कत होने लगती है और हमारा दिमाग एकदम अलर्ट रहता है, एकदम सतर्क हो जाता है, तब तक वो जो सोने की अवस्था आनी चाहिए वो पूरी अच्छे से आ नहीं पाती है।
1: एक हमारे साथी ने लिखा है कि नींद पर मैं ये बताना चाहता हूं कि कभी नींद से जागकर सुबह मजाक में सखी सहेली की सखी यानी कि मेरी धर्म पत्नी से ये गाकर सुनाता हूं, सारी सारी रात तेरी याद सताए, नींद ना आए मुझे चैन ना आए। और धर्म पत्नी तुरंत कहती है, अजी छोड़िए, आप तो घोड़े बेचकर सोए थे, कोई उठाकर ले जाता आपको मालूम नहीं पड़ता। दोनों इस बात पर हंस लेते हैं। ये कितनी अच्छी बात है कि दोनों इस बात पर हंसते हैं, क्योंकि नहीं तो क्या होता ना, एक उम्र के बाद में लोग हंसना, मुस्कुराना, खिलखिलाना ही भूल जाते
0: बिल्कुल,
1: हैं।
0: और अगर आपकी ये हंसी बनी रहे और नींद अच्छे से आए, ये भी जरूरी है कि उसके लिए आप अपने खान पान की आदतों का भी ध्यान रखें, जैसे कि कैफीन से बचना बहुत जरूरी है, दोपहर के बाद या शाम को, देर शाम को, कभी घर हम देर से आते हैं तो कहते हैं ना थोड़ी सी पहले चाय पी लेते हैं, वो चाय तो आप पी सकते हैं, कॉफी चाय जो भी आपको पसंद है वो पी सकते हैं, लेकिन उसका असर शरीर में कई घंटों तक रहता है। और बहुत जरूरी है कि हम हल्का डिनर खाएं रात के समय, रात का खाना बहुत भारी नहीं होना चाहिए, बहुत मसालेदार नहीं होना चाहिए, और उससे ज्यादा जरूरी सोने और खाने के बीच में कम से कम 2 से 3 घंटे का अंतर जरूर
1: रहना
0: होना
1: चाहिए।
0: चाहिए।
1: एक साथी ने लिखा है, अच्छी नींद के लिए मेडिटेशन करो, रात को जल्दी और हल्का खाना खाओ और मोबाइल दूर रखो, कमरे में अंधेरा हो, शांति हो, ठंडक हो, बेड आरामदायक हो तो नींद बढ़िया आती है। और जब गर्मियों का मौसम है ना, जैसे बहुत चिलचिलाती गर्मी थी, तब है ना एक नहा ले सोने से
0: बिल्कुल
1: पहले,
0: बिल्कुल।
1: नहा के ढीले ढाले सूती कपड़े पहने, और जब हम जिस चादर पे सोते हैं बिस्तर में, वो चादर एकदम सूती नरम मुलायम चादर हो, ऐसे डार्क कलर के पर्दे हो, तो नींद जल्दी से आ जाती है।
0: बिल्कुल, और आपने जो ये बात करी ना कि चादर नरम मुलायम हो, इसी तरह से आपका बिस्तर भी, जो गादी होती है वो, और तकिया आरामदायक होना चाहिए, ऐसा नहीं कि उसमें कहीं पे अगर रुई की है तो वो कहीं कहीं उसकी गठाने पड़ जाती हैं, उस तरह की नहीं होना चाहिए, वो बिल्कुल इस तरह हो कि वो शरीर को पूरी तरह से
1: आराम दे।
0: सपोर्ट दे और आराम दे।
1: और अब गाना सुन ले।
0: चलिए

0: हमारी एक सखी ये कहती है कि एक और जरूरी बात है कि सोने का एक समय बना लेना चाहिए। तो मैं भी समय पर अपने सारे काम निपटा लेती हूँ और बिस्तर पर आ जाती हूँ। उसके बाद कोई टीवी नहीं, कोई फोन नहीं, शांत होकर के आंखें बंद कर लेती हूँ। वो ये सलाह दे रही है कि आप भी इस नियम को 21 दिन करके देखिए और फिर देखिए कितनी अच्छी बढ़िया नींद आपको भी आएगी।
1: तो श्रोताओं के आज इतने सारे हमने सुंदर सुंदर कमेंट्स पढ़े, सारे श्रोताओं को दिल से धन्यवाद। आज सखियों के साथ, श्रोताओं के साथ बहुत आनंद आया और अब इजाजत लेने का वक्त आ चुका है। तो आप सभी को सोनाली पाठक
0: और दीपा माहेश्वरी का
1: नमस्कार।
0: नमस्कार।
1: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

शुभ संध्या। मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलो हर्ट्स और FM 102.9 मेगा हर्ट्स पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। संध्या के 3:59 हुए हैं। हमारी आज की दूसरी सभा के प्रसारण मीडियम वेव और FM दोनों मीटर्स पर एक साथ आरंभ हो रहे हैं। सभा के आरंभ में आपको जोड़ रहे हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से, जहां से आप सुनेंगे संदेश टू सोल्जर्स।

कुछ बात है कि हस्ती हमारी मिटती नहीं, कुछ बात है इस मिट्टी में कि दुश्मन लाख चाहे पर देश झुकता नहीं, हजार साजिशों से भी देशवासी टूटता नहीं। कुछ बात है भारत की मिट्टी में कि इसका सिपाही, इसका रक्षक, वीर सैनिक शौर्य, निष्ठा, साहस, वीरता और बलिदान से कभी पीछे हटता नहीं। स्वागत है आपका देश की सीमाओं से लेकर देश के भीतर और आसमान की ऊंचाइयों से समंदर की गहराइयों तक, देश की रक्षा में सदैव तत्पर हमारी आर्म्ड फोर्सेस को डेडिकेटेड हमारे स्पेशल प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर्स में। 102.6 यह देश का नंबर वन रेडियो, आपका अपना रेनबो। और आज संदेश टू सोल्जर्स में शाहिद आपके साथ और हमारे बहुत ही स्पेशल मेहमान होंगे हमारे साथ, इंस्पेक्टर कुमार ऋतुराज, पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री से नवाजे गए और उसके अलावा भी कई अवार्ड से नवाजे जा चुके हैं। आप हमें मैसेज कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर 9868107070 पर, और आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, सवाल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं हमारे मेहमान से। नंबर है हमारा दिल्ली का कोड 011 और उसके बाद 2342 1080 पर। साथ ही हमारी मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एयर के माध्यम से डाउनलोड करके दुनिया भर में आप हमें लाइव सुन सकते हैं। तो मिट्टी को सलाम है देश की, हमारे सैनिकों की तरफ से और हमारी ओर से भी। शाहिद आपके साथ संदेश टू सोल्जर्स में।

0: 106 देश नंबर वन रेडियो आपके अपने रेनबो पर प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर्स में एक बार फिर स्वागत है आपका। आपके साथ है शाहिद और आज के हमारे खास मेहमान हैं इंस्पेक्टर कुमार ऋतुराज। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका संदेश टू सोल्जर्स में आकाशवाणी रेनबो पर।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जितने भी श्रोतागण हैं सशस्त्र सीमा बल की तरफ से मैं कुमार ऋतुराज सबको जय हिंद।
0: जय हिंद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना समय निकाला और आप हमारे साथ इस प्रोग्राम में शामिल हुए, बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपको अपने लिसनर्स को बताना चाहेंगे कि दो बार पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री जैसे प्रेस्टीजियस अवार्ड के अलावा आपने अदम्य साहस, वीरता और समर्पण के लिए कई दूसरे अवार्ड से भी लगातार सम्मानित किए जाते रहे हैं। श्री इंस्पेक्टर कुमार ऋतुराज सशस्त्र सीमा बल के जांबाज और अत्यंत निपुण सबऑर्डिनेट ऑफिसर हैं। 72 बटालियन एसएसबी के साथ रिमार्केबल शानदार 14 साल से भी ज्यादा की सर्विस प्रदान कर चुके हैं। खास तौर पर एंटी नक्सल ऑपरेशंस को सक्सेसफुली लीड कर खतरनाक माओइस्ट आतंकियों को और उनके कई मिशंस को नाकाम किया है इंस्पेक्टर कुमार ऋतुराज ने। सर अपना ये एक्सपीरियंस आप हमारे साथ शेयर कीजिए, हमारे लिसनर्स के साथ, कि कैसा था ये एक्सपीरियंस आपने अपने 14 साल के करियर में खास इस तरीके के एंटी नक्सल ऑपरेशंस में कामयाबी के साथ उनको लीड किया और कामयाबी के साथ उनको पूरा किया।
1: ये सफ़र तो काफ़ी मेरा शानदार है, लेकिन आपको बताना चाहते हैं कि इसमें टीम वर्क होता है। ऑफिसर से लेके जितने आपके सबऑर्डिनेट हैं, जितने भी कार्मिक हैं, सबको इसमें मेहनत करना पड़ता है। कहीं ना कहीं सबका योगदान इसमें रहता है। भले मेडल हमारे सीने पर लगा हुआ है, लेकिन जो हमारे ऑफिसर हैं, हमारे साथ जितने काम करने वाले सहपाठी हैं, सबका महत्वपूर्ण योगदान रहता है। जी
0: तो सर, जैसा आपने बताया कि ये एक टीम वर्क होता है, लेकिन सर आपने इन सब से हट करके अपनी पहचान जो बनाई, एक टैक्टिकल लीडरशिप, काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस और मैदान जंग में स्ट्रेटेजिक प्लानिंग और अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए भी आप जाने गए, इसीलिए आपके वो ऑपरेशन सक्सेसफुल भी रहे, तो उनके बारे में बताइए।
1: जी, ऑपरेशन इसीलिए सक्सेसफुल रहा कि हम जब 32 बटालियन सशस्त्र सीमा बल मुजफ्फरपुर बेला में जब पोस्टेड थे, तो हमारे कमांडेंट श्री दीपक सर थे और सुमित जोशी सर डीआईजी थे जो अभी आईजी हैं, और आईपीएस संजय सर थे, वो पटना फ्रंटियर में थे। उनका, इन लोग का बहुत सहयोग रहा हमारे ऊपर, हमारे काम को हमेशा प्रोत्साहित करते रहे। हमेशा किसी भी ऑपरेशन से पहले शुरुआत से ही डिस्कस होता था, हर एक पॉइंट पर डिस्कस होता था कि कम से कम हम लोग का कैजुअल्टी हो और दुश्मन का ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग क्षति कर सकें। तो इसीलिए ही ऑपरेशन हमारा अभी तक सक्सेसफुल रहा, जो भी ऑपरेशन हुआ।
0: जी, यहाँ पर हम अपने लिसनर्स को बता दें कि सशस्त्र सीमा बल इंडिया की सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स है जो इस बात के लिए जिम्मेदारी लेती है कि वो इंडो नेपाल और इंडो भूटान बॉर्डर की सुरक्षा रक्षा कर सके। सर मैं ठीक बता रहा हूँ?
1: जी बिल्कुल ठीक
0: बता जी। तो हम सर आगे बढ़ेंगे और हम जानना चाहेंगे कि आपकी सर्विसेज के दौरान जो सबसे महत्वपूर्ण और एक की करियर माइलस्टोन भी रहा, जुलाई 2020 का वाल्मीकि नगर एनकाउंटर, और इस ऑपरेशन के दौरान जब खतरनाक गोलीबारी चल रही थी तब आपकी कलाई में भी एक गोली लगी, लेकिन घायल होने के बावजूद आपने पीछे हटने से इनकार कर दिया और अपने जवानों के साथ डटे भी रहे, उन्हें लीड भी करते रहे। और हम ये जानना चाहेंगे कि फिर क्या हुआ उस ऑपरेशन का अंजाम, क्या वो मंजर, वो सिचुएशन हमारे लिसनर्स के साथ आप शेयर कर सकेंगे?
1: ये वाल्मीकि नगर रिजर्व फॉरेस्ट काफ़ी टफ लोकेशन है। इस ऑपरेशन के लिए हम लोग पहले भी प्रयास कर चुके थे 2-3 बार, लेकिन असफलता ही हाथ लगा था। लेकिन मेहनत बोला जाता है, करने से सफलता तो एक दिन आता ही आता है। तो इसमें 4 खूंखार जो नक्सली थे, एक तो पीलूट ब्यूरो के थे, उनके साथ ज़बरदस्त मुठभेड़ हुआ। उस मुठभेड़ के दौरान मेरे राइट हैंड पर बुलेट इंजरी भी हुआ, उधर से भी बहुत ज़बरदस्त फायरिंग हुआ। ये इतना डेन फॉरेस्ट था कि वहाँ जीपीएस वगैरह भी काम नहीं कर सकता था, वहाँ दिन में पहुँचना बहुत मुश्किल है। और उस सिचुएशन में हम लोग वहाँ तक पहुँचे, उसमें बहुत टफ ऑपरेशन, काफ़ी देर तक गोलीबारी चली, इसका परिणाम हुआ कि 4 नक्सली उसमें मारे गए।
0: और सर उसमें बताया जाता है कि वो काफ़ी मतलब ड्रेडेड किस्म के जो नक्सली थे, वो बहुत ख़तरनाक वाले नक्सली थे, तो क्या वो ऑपरेशन आपने जब प्लान किया उसको, तो उसके जो भी कॉन्सिक्वेंसेस है, मतलब कि इसका अंजाम कुछ भी हो सकता है, आपके जवानों को, आपको जैसे कि गोली भी लगी और भी कुछ हानि हो सकती थी, तो आपने उसकी तैयारी की थी?
1: जी उसकी तैयारी बहुत लंबा तैयारी रहा, बहुत सारे इंफॉर्मेशन है जो हम शेयर नहीं कर सकते हैं, लेकिन बहुत लंबी तैयारी रही। जब तक हम लोग पिन पॉइंट पर पहुँचे, मतलब पिन पॉइंट पर हम लोग पहुँचे नहीं, तब तक वो हम लोग अंजाम उसको नहीं दिए।
0: तो सर कितना लंबा चला ये ऑपरेशन?
1: तैयारी तो ऑपरेशन का मतलब 2 साल हम लोग इस ऑपरेशन का तैयारी किए, तब जाके हम लोग को सफलता हासिल हुआ
0: जी।
1: इसमें जी जी जी।
0: और जब आपने ये मिशन शुरू किया, जब आप उन आतंकियों के पीछे गए, तो उसमें फिर कहाँ से शुरू हुआ, फिर कितना समय लगा उसको पूरा करने में, और किस तरीके की आपकी स्ट्रैटेजी रही और कैसे आपने कामयाबी हासिल की?
1: एक्चुअली हमारे में क्या है कि हमारे सशस्त्र सीमा बल जो है उसमें कोई रैंक का कोई गैप नहीं है उसमें।
0: अच्छा।
1: उसमें हम लोग आराम से अपने डीआईजी महोदय, आईजी महोदय से भी आराम से, हम लोग कमांडेंट महोदय से आराम से किसी भी छोटे बात से डिस्कस कर सकते हैं
0: जी।
1: और छोटा छोटा बात जो हम लोग डिस्कस करते हैं उसी का परिणाम है कि हम लोग का कैजुअल्टी कम से कम होता है और हमारा ऑपरेशन 100% नहीं तो 99% हमारा सक्सेस होता है
0: जी।
1: जी
0: तो आपने जब इस मिशन के लिए, आपको ये तो अंदाज़ा होगा कि ये कितना ख़तरनाक मिशन है, तो आपने सब कुछ दांव पर लगा दिया इसकी कामयाबी के लिए और उन आतंकियों से आज़ादी के लिए, मतलब उन आतंकियों को ढेर करने के लिए पूरी तरीके से आपने तैयारी कर ली।
1: आपको बताना चाहते हैं अगर उस इलाके में ये ऑपरेशन नहीं होता तो सुरक्षा बल के लिए बहुत घातक परिणाम भविष्य में होने वाला था, क्योंकि हमारे वाल्मीकि नगर में हमारे भी बटालियन, वहाँ 2 बटालियन कार्यरत हैं, हमारे कार्मिक उसी रूट से आना जाना करते हैं और
0: अच्छा।
1: फॉरेस्ट के भी जो कर्मचारी हैं कार्मिक है, वो भी जाते हैं, स्टेट पुलिस के एसटीएफ भी जाती रहती थी उधर, कभी भी कुछ भी हो सकता था उधर अगर ये नहीं होता ऑपरेशन। तो इस ऑपरेशन के बाद उधर से नक्सल का पूरा जड़ ही वहां से खत्म हो गया इस ऑपरेशन के बाद, उनकी कमर टूट गई।
0: क्या बात है सर जी। तो यानी कि ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट, एक सक्सेसफुल एंटी नक्सल मिशन था जिसकी वजह से बहुत ज्यादा फिर बाद में फायदा हुआ पूरी फोर्स को भी और उस एरिया को भी, जैसे कि आपने बताया कि उनकी वजह से बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता था और आतंकवाद भी बढ़ रहा था।
1: बिल्कुल, उन लोग का वहाँ ट्रेनिंग कैंप भी चल रहा था,
0: बाहर
1: से रिक्रूट करते थे, नौजवान युवक को भड़काते थे, वहाँ ट्रेनिंग करवाते थे, देश के विरुद्ध अगर कोई किसी क्राइम में फंस गया, कोई पुलिस के कार्य से अगर वो खुश नहीं है तो उसको भला फुसला के वहाँ बुलाते थे और देश के विरुद्ध गतिविधियों में उसको लगाते थे और उसे ट्रेनिंग करवाते थे, फिर सुरक्षा बल के खिलाफ ही उसको यूज करते थे।
0: तो इंस्पेक्टर ऋतुराज जी, आप ये बताइए कि उसी ऑपरेशन के दौरान आपके हाथ में गोली जब लगी तो फिर वो तो फिर एक बहुत ही सिचुएशन ही बदल गई, वहां पर आप घायल हो गए, तो फिर भी आपने लेकिन मिशन अपना जारी रखा, कंटिन्यू रखा, तो वो कैसे पॉसिबल कर पाए आप घायल अवस्था में भी?
1: एक्चुअली जब इस टाइप का ऑपरेशन होता है तो उसमें अगर गोली बुलेट इंजुरी भी होता है तो उसमें पता नहीं चलता है, और उस समय आदमी उस जोश और जुनून में कुछ भी हद तक कर मिटने के लिए तैयार रहता है।
0: बिल्कुल। और जैसे कि आपने बताया कि मिशन ये बहुत ही सक्सेसफुल रहा, तो आपको लगता है कि आपके कंसिस्टेंट रहने पर, आपके बिल्कुल डटे रहने की वजह से ही जो साथ में आपके जवान थे वो भी डटे रहे और इसको कामयाब करके ही वापस लौटे?
1: इसमें हमारे ऑफिसर और ऑफिसर में हमारे नरपत सर डिप्टी कमांडेंट थे, उनका अहम योगदान है, और जो कार्मिक लोग थे बहुत उनका अहम योगदान था इसमें
0: जी।
1: जी जी जी।
0: तो
1: बहुत बहादुरी के साथ वो फायर करते रहे, दोनों साइड से काउंटर फायर बहुत जबरदस्त
0: जी,
1: भारी गोलीबारी का बौछार हुआ दोनों साइड से। जी जी जी।
0: सर हमें ये भी हम यहाँ जानना चाहेंगे जैसे हमारे लिसनर्स, कि ये जो सिचुएशन होती है जो एक जवान फेस करता है, एक सोल्जर जो फेस करता है, हमें यहाँ स्टूडियो में बैठ करके, अपने घर में बैठ करके वो अंदाज़ा उसकी इंटेंसिटी का नहीं हो पाता है, तो उसको आप किस तरीके से बयान करेंगे कि जैसे हमने फिल्मों में तो कुछ भी देख लिया है, कोई भी बैटल सीन, कोई भी वॉर सीन या कोई भी इस तरह के एनकाउंटर सीन, लेकिन जब वो आपके सामने हो रहा होता है तो क्या, मतलब वो सिचुएशन होती है आपके दिमाग में, आपके दिल पर क्या चल रहा होता है?
1: बस यही सिचुएशन होता है कि किस तरह उन लोगों को हम लोग परास्त करें, कितना से जल्दी जल्दी उनका जो इनकाउंटर चल रहा है उनको कितने से जल्दी
0: खात्मा करें। जी, लेकिन सर मैं ये जानना चाह रहा था कि वो जो डर वाली सिचुएशन जो होती है वो भी तो कहीं ना कहीं रहती होगी ना, क्योंकि एक तो ये कि मिशन तो है लेकिन एक इंसान के अंदर वो डर जो होता है, तो वो फिर कैसे आप उसको हैंडल करते हैं, कैसे टैकल करते हैं?
1: एक्चुअली हमारे टीम में जितने भी हमारे टीम सैट टीम हमारा था
0: जी,
1: उसमें जितने भी कार्मिक थे, डेडिकेटेड कार्मिक थे, डरने का कोई सवाल नहीं था, गोलियों को बौछार आते भी रहेगा तो वो खड़ा होकर गोली चलाने वाले सारे कार्मिक इसमें थे,
0: क्या
1: नाम का इसमें कोई चीज ही नहीं था।
0: जी
1: जी जी।
0: तो सर यही हमारे सोल्जर्स की, हमारे जवानों की पहचान है कि वो, जिसको बोलते ना कि बस डर से आगे निकल करके वो जीत हासिल करके ही दम लेते हैं। तो सर आपको जो स्पेशल रिकॉग्निशन भी मिले हैं और आपको जो एक बहुत ही प्रेस्टीजियस जो मेडल है उससे भी नवाजा गया, उस इसी ऑपरेशन के बाद ही उससे नवाजा गया आपको, जो पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री जैसा प्रेस्टीजियस अवार्ड आपको 2 बार दिया गया है, इसके बारे में बताइए
1: जी। एक तो वाल्मीकि नगर के लिए मुझे गैलेंट्री अवार्ड मिला, गैलेंट्री अवार्ड मिला। उसके बाद फिर एनकाउंटर हुआ था जिसमें दो नक्सली मारे गए थे।
0: अच्छा।
1: उसमें भी भारी मात्रा में गोली और हथियार बरामद हुए थे, तो उसके लिए भी हमको गैलेंट्री मिला। तो फर्स्ट बार गैलेंट्री मिला है
0: जी। जी, और दो बार आपको मिला है?
1: दो बार गैलेंट्री।
0: और उसके अलावा भी बहुत सारे आपको और भी मेडल्स मिले हुए हैं, जैसे कि आप इस वक्त जिस तरीके की अपनी बहुत शानदार यूनिफॉर्म में मौजूद हैं, तो वो मेडल भी मैं दो चार देख पा रहा हूँ, और शायद जगह कम है इसलिए जो आपके मेडल्स, आपके जो अवार्ड हैं वो ज्यादा हैं।
1: आपको तो बताया ही कि मेडल भरे मेरे सीने पर लगा हुआ है, लेकिन काम तो पूरा टीम वर्क का ही होता है।
0: एग्जैक्टली लेकिन वही है कि लीडरशिप का बहुत इंपॉर्टेंट रोल भी होता है, ये भी तो मानना पड़ेगा। तो हमारे साथ हैं हमारे आज के खास मेहमान संदेश टू सोल्जर में इंस्पेक्टर कुमार ऋतुराज, जिनको दो बार पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री जैसे प्रेस्टिजियस अवार्ड के अलावा कई और भी अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। और देश के दुश्मनों के खिलाफ जंग करने में अपनी वीरता और साहस से पीछे नहीं हटे और मिशन को कामयाबी के साथ पूरा किया, डेडिकेशन के साथ। हमारे साथ बने रहेंगे हमारे संदेश टू सोल्जर्स के आज के खास मेहमान इंस्पेक्टर कुमार ऋतुराज, सशस्त्र सीमा बल से। आप सुन रहे हैं शाहिद को 102.6 देश का नंबर 1 रेडियो रेनबो पर।

0: 102.6 देश के नंबर वन रेडियो आपके अपने रेनबो पर प्रोग्राम चल रहा है संदेश टू सोल्जर्स। आप हैं शाहिद के साथ और हमारे साथ हैं इंस्पेक्टर ऋतुराज सशस्त्र सीमा बल से। सर स्वागत एक बार फिर आपका हमारे शो में।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: और जैसे हमने ये गाना भी सुना कि हमारे जो वीर सैनिक हैं उन्हीं के हाथ में है देश की सीमाओं की रक्षा और देश के भीतर की भी सुरक्षा, इसमें कोई दो राय नहीं। हम इनकाउंटर की बात कर रहे थे सर, जिस तरीके से आपने बताया तो लग रहा है कि जैसे आपने इसको इतनी मतलब विद ईज आपने इसको किया, इतने आराम से और इतनी प्लानिंग के साथ, पूरी स्ट्रेटजी के साथ किया, तो जाहिर है इसके लिए तैयारी भी बहुत लंबी चली होगी। तो वहाँ आप पहुँचे कैसे, और ये इतना बड़ा ऑपरेशन था तो तैयारी भी आपने पहले से ही की होगी, और जाहिर है इससे पहले भी कहीं ना कहीं आपने ऐसी कोई मिशन तो किया होगा, या हम ये पूछें कि आपने अपना पहला इनकाउंटर कब और कैसे किया, कैसे आप उसको याद करते हैं?
1: आपको हम बताना चाहेंगे कि 2019 में लोकसभा इलेक्शन था, आपको याद होगा, उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी का मुजफ्फरपुर में उसमें उनका वो वहाँ प्रोग्राम था। उसी समय नक्सली लोग छत्तीसगढ़ से कुछ प्लान बना के आए हुए थे और कुछ आईडी ब्लास्ट वगैरह का कुछ प्लानिंग उनका चल रहा था, तो सोर्स के द्वारा हमको खबर मिला। उसके बाद हम लोगों ने ऑपरेशन शुरू किया, उस पर काम करना शुरू किया, और जैसे जैसे लीड मिलते गया और लीड मिलने के बाद फिर हम लोग का इनकाउंटर 2019 में मुजफ्फरपुर में हुआ।
0: जी।
1: 50 केस का वांटेड, आपको बता

0: वो आपने बताया कि वो 50 केसेस में वांटेड था जिसको आपने मार गिराया।
1: हमने नहीं, हमारी टीम और सब
0: एसएसबी की टीम जिसको आप लीड कर रहे थे और एसटीएफ की टीम ने मिलकर के।
1: कुछ कोई ऐसा नहीं होता है कि वो कमांडर ही किसी को मारता है, पूरी टीम का वर्क होता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल आपने ठीक कहा जी। तो जो ऑपरेशन का आपने जैसे जिक्र किया, तो इसकी तैयारी आपने बहुत पहले से ही शुरू कर दी थी?
1: हाँ, एक्चुअली जैसे ही मेरा नक्सल में जो टेन्योर मेरा स्टार्ट हुआ, जब पोस्टिंग मेरा हुआ, उसी समय से मन में तो भावनाएं, हर एक जो भी वर्दीधारी हैं सबके मन में भावनाएं रहती है कि पूरे लाइफ के दौरान कभी ना कभी उनको लाइव गोली चलाने का मौका मिले, इनकाउंटर करने का मौका मिले। सबका सबको ये सौभाग्य प्राप्त नहीं होता है, लेकिन उनको ये सौभाग्य एसएसबी की तरफ से प्राप्त हुआ, इसके लिए मैं सदा ऋणी हूँ एसएसबी का।
0: बिल्कुल
1: जी।
0: और सर, हम जैसे अब थोड़ा सा हम पीछे की तरफ पलट करके जाएं, आपके हम शुरुआत की बात करते हैं अगर, तो आपने जो फोर्स ज्वाइन की तो कहाँ से आपको प्रेरणा मिली, कैसे आपने शुरुआत करी? क्योंकि आपने पटना बिहार से बीए ऑनर्स किया था हिस्ट्री में, 2011 में आपने एसएसबी ज्वाइन कर लिया एज सब इंस्पेक्टर, फिर प्रमोट होते चले गए आप। तो शुरुआत कैसे हुई, कहाँ से इंस्पिरेशन मिली, कहाँ से आपको प्रेरणा मिली, कैसे ये जोश जज्बा आया?
1: एक्चुअली जब स्कूल टाइम में थे तो वर्दी पहनने का बहुत शौक था।
0: अच्छा।
1: जी जी जी हाँ।
0: तो ये जो जोश था ये बचपन से ही था आपके मन में कि देश सेवा करनी है वर्दी पहन करके?
1: जी जी, वर्दी पहनने का बचपन से ही शौक था। उसके बाद फॉर्म आया, उसके बाद फॉर्म फिलअप किए
0: जी। तो फिर तो परिवार में या कहीं पर भी कोई बैकग्राउंड कहीं से कोई आर्मी का या किसी सैनिक से नहीं था बैकग्राउंड, फैमिली बैकग्राउंड?
1: बैकग्राउंड ऐसा कोई सैनिक का बैकग्राउंड नहीं था, परिवार में मैं फर्स्ट ही हूँ जो मैंने एसएसबी ज्वाइन किया, फोर्स अच्छा। ज्वाइन किया जी
0: जी। तो आपने स्कूलिंग के जमाने से ही ये अपना मन बना लिया था कि वर्दी पहननी है?
1: हाँ बिल्कुल, स्कूल के समय से ही सोचे थे कि वर्दी पहनना है और देश के लिए कुछ करना है।
0: तो फिर आपने जब शुरुआत करी, टेस्ट दिया, उसमें आप पास हुए, तो कैसे शुरुआत हुई?
1: हाँ, टेस्ट पास हुए, उसके बाद मेरी ट्रेनिंग सोलोनाबाड़ी में स्टार्ट हो गया। उसके बाद ट्रेनिंग के आफ्टर ट्रेनिंग के बाद फिर मेरा आसाम में पोस्टिंग हुआ।
0: अच्छा।
1: भी एनडीएफबी के खिलाफ काम हम लोग किए, जो मेरी टीम थी उसके साथ।
0: अच्छा।
1: हाँ, वहाँ फिर एनडीएफबी के कैडर भी वहाँ हम पकड़े थे, वहाँ असम में। उसके बाद बहुत सारा मेरा
0: तो सर आपकी जो जी, एक तो एसएसबी का इंडो नेपाल और इंडो भूटान बॉर्डर का सर रहता है ना मैनेजमेंट?
1: हाँ
0: जी, इंडो भूटान। तो आपका जो खास था वो इंडो नेपाल बॉर्डर का था?
1: इंडो नेपाल इंडो भूटान बॉर्डर, फर्स्ट मेरा ज्वाइनिंग तो भूटान बॉर्डर पर हुआ था। उस समय असम जल रही थी एनडीएबी का उससे।
0: अच्छा।
1: तो उसमें एनडीएबी पर भी हम लोग काफी काम किए थे, हमारे बटालियन एसएसबी बहुत अच्छा काम किए थी उसमें। उसमें एनडीएबी कैडर भी उसमें हम लोग पकड़े थे, एमुनेशन वगैरह हथियार वगैरह भी पकड़ाया था। बहुत सारे सीजर हुए थे, नारकोटिक्स का भी बहुत सारा सीजर किए थे उस समय जी।
0: अच्छा। हाँ, तो फिर ये आपके जो शुरुआत हुई, आपने एज सब इंस्पेक्टर शुरुआत करी थी, फिर उसके बाद आपको प्रमोट करके इंस्पेक्टर 2017 में बनाया गया, जीडी मतलब जनरल ड्यूटी।
1: जनरल ड्यूटी जी, जीडी मतलब जनरल ड्यूटी।
0: तो ये जाहिर है ये जो आपको पिकअप मिला, प्रमोशन मिला, तो आपकी कार्यक्षमता पर, आपके जो भी जिस तरीके के आपने जो परफॉर्मेंस दी, जो ड्यूटी आपने परफॉर्म करी, उसकी बिना पर ही मिला, तो वो क्या क्या चीज़ें थी?
1: एक तो आपका सर्विस सही रहना चाहिए
0: जी।
1: हाँ, और उसके बाद प्रमोशन का समय होता है, 4 साल का 5 साल का ये होता है प्रमोशन, इतने साल में आना है, उसके बाद प्रमोशन मेरा हुआ जी।
0: तो आपने सर शुरुआत करी, आपने जैसे बताया कि असम में आपने सीटीसी सोलोनबाड़ी से आपने शुरुआत करी थी, यहाँ से शुरुआत करी थी आपने अपनी सर्विस की?
1: सोलोनबाड़ी में बेसिक ट्रेनिंग मेरा हुआ।
0: अच्छा, बेसिक ट्रेनिंग।
1: हाँ, उसके बाद फिर मेरा वहीं असम में ही पोस्टिंग हो गया।
0: तो 23 बटालियन असम में आपने शुरुआत? अच्छा।
1: थर्ड बटालियन लालपुर में मेरा वहाँ से शुरुआत। अच्छा। हुआ जी।
0: तो उसके बाद भी आप सर बटालियन में मतलब चेंज रहा, लेकिन आप रहे असम में ही?
1: हाँ, असम में रहे, फिर इंस्पेक्टर के बनने के बाद फिर मेरी पोस्टिंग असम में ही हो गई, 31st बटालियन गोसाई गांव में हुआ। जी जी।
0: अच्छा।
1: जी, जी।
0: फिर उसके बाद आप 32 बटालियन बिहार में गए, और उसके बाद फिर 42 बटालियन यूपी में भी आप रहे?
1: हाँ, 32 बटालियन उसके बाद वहीं से मेरा ट्रांसफर 32 बटालियन हुआ जो असम में ही थी। तो बटालियन का पहले रोटेशन होता था।
0: अच्छा।
1: तो वो बटालियन 32 बटालियन रोटेट होके चली गई मुजफ्फरपुर, और वहाँ 27 बटालियन थी वो रोटेट होके आ गई।
0: अच्छा।
1: असम में आ गई होली में जी।
0: ओके। तो सर अभी आप फिलहाल 72 बटालियन सिक्किम में पोस्टेड हैं?
1: हाँ, 72 बटालियन सिक्किम युक्शुंग में मेरी पोस्टिंग हुई है।
0: अच्छा, एक चीज सर हम यहाँ जानना चाहेंगे कि जिस तरीके के आपकी पोस्टिंग रही जगह जगह अलग अलग, तो वो सब मिशंस भी आप उसी तरह के ही रहे जहाँ पर सामने दुश्मन का सामना करना पड़ता है? ऐसा नहीं कि सिर्फ बॉर्डर के पीछे रह करके सिर्फ सिक्योर करना है?
1: जहाँ जो भी देश विरोधी कार्य हो रहा है उसमें मेरा कोशिश रहता है कि खत्म तो हम

0: नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसको कम करने का मेरा 100% कोशिश रहता है।
1: जैसे आपने बताया कि वो जो वांटेड एक था, अपराधी था, जो माइस्ट था, नक्सल, उसको आपने मार गिराया 50 केसेस में, तो वो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था।
0: हाँ, उस समय तो बहुत बड़ा अचीवमेंट था ये 50 केस का, उसके पीछे एसटीएफ वगैरह भी लगी हुई थी।
1: जी
0: जी हाँ।
1: लेकिन तो ये जो आपका पूरा ये जो सर्विस रिकॉर्ड रहा सर, इसमें आपके जो भी एक्सपीरियंसेस रहे, किस तरीके के उतार चढ़ाव रहे, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आप आज भी याद करते हैं?
0: वो जो वाल्मीकि नगर का जो इनकाउंटर हुआ, सबसे बेस्ट इनकाउंटर रहा, वो उस चीज को हम याद
1: अच्छा,
0: करते हैं। जी हाँ।
1: तो ये सर जुलाई 2020 में हुआ था।
0: जी
1: जी, तो इसको आप सबसे ज्यादा याद रखते हैं?
0: जी, क्योंकि इसमें बहुत मेहनत करना पड़ा, टीम वर्क ऐसा था कि हर चीज पर हम लोग डिस्कस करते, हर छोटे चीज से हर बड़े चीज में।
1: जी
0: जी जी जी।
1: तो सर इसके बाद फिर आपने कुछ बदलाव महसूस करा कि आपके जो कार्यशैली है, आपका काम करने का तरीका है, या आपके ऑपरेशंस का है, और उसमें आपने अपनी स्ट्रेटजी बदली, उनको और बेहतर किया और इम्प्रूव किया इस मिशन के बाद से?
0: जी जी, मेन तो अब सोर्स पर सारा चीज डिपेंड करता है, आपका जो सूचना देने वाला। आज भी के मेरा जो मानना है, आज के समय में कितना भी टेक्नोलॉजी कुछ भी आ जाए, लेकिन ह्यूमन इंट, जो ह्यूमन इंट से बड़ा कोई इंट नहीं है।
1: यानी कि जो जो भी हमारे जो सोर्सेस हमें,
0: हाँ,
1: इन्फॉर्मेशन
0: इन्फॉर्मेशन जो देते हैं, टेक्निकल जो लॉगर वगैरह है, वो तो दूसरा चीज हो जाता है।
1: जी जी,
0: उस पर उतना विश्वास नहीं, लेकिन जो ह्यूमन इंट जो होता है, जो वो आज के भी समय में सबसे बेस्ट है, उसका कोई तोड़ ना हुआ है ना होगा, क्योंकि वाल्मीकि नगर वहाँ जहाँ था, वहाँ ना कोई टेक्निकल गजट पहुँचना संभव था, ना कुछ पहुँचना, ना आदमी पहुँचना कुछ संभव था, लेकिन जो ह्यूमन इंट है वही मतलब काम किया।
1: सर हम एक चीज़ यहाँ जानना चाहेंगे अपने लिसनर्स के लिए भी, कि अगर कोई एसएसबी ज्वाइन करना चाहे, सशस्त्र सीमा बल, तो उसके लिए क्या तरीका होता है, क्या प्रोसीजर होता है, और स्टेप बाय स्टेप अगर हमें बता सकें तो?
0: आप अगर सब इंस्पेक्टर में बहाल होना है तो अपग्रेडेशन करके उसके बाद फॉर्म निकलता है एसएससी के थ्रू, तो उसमें आप भरिए।
1: अच्छा, तो वो कोई उसकी वेबसाइट होती है या किस तरीके से कोई इन्फॉर्मेशन उसकी आती है?
0: आजकल तो ऑनलाइन भी आ जाता है, उसका फॉर्म मार्केट में भी फॉर्म आता है, आप फॉर्म फिलअप करिए, उसके बाद आप
1: अप्लाई कर सकते हैं।
0: अप्लाई कर सकते हैं, अगर उसमें जो मापदंड है उसको आप फुलफिल कर रहे हैं
1: जी, तो ग्रेजुएशन कम से कम इसका क्राइटेरिया है।
0: हाँ, ग्रेजुएशन क्राइटेरिया।
1: जी सर, हमारे पास, हम आपसे शेयर करना चाहेंगे कि व्हाट्सएप मैसेजेस आ रहे हैं, और कुछ लोगों ने हमें मैसेज किया, हम आपको पढ़ करके बताते हैं। जय हिंद रिस्पेक्टेड ऋतुराज सर एंड आरजे साहिद सर, आई वुड बी ग्रेटफुल टू ऋतुराज सर और हमारे सभी ऑल आवर बिलव्ड इंडियन आर्मी फॉर देयर सेल्फलेस सर्विस टू द नेशन विद फियरलेसली एंड डेडिकेटेडली, सो आई पे माई ग्रेटिट्यूड एंड ऑफ कोर्स हार्ट फेल्ट ओबिसियंस टू देम माई सेल्फ। शंकर लोधे फ्रॉम ककरोला द्वारका सेक्टर 15 दिल्ली से, जय हिंद, जय भारत माता की, जय वंदे मातरम, आई होप माई मैसेज विल फॉरवर्ड टू रिस्पेक्टेड सर। यस ऑफ कोर्स, आपका मैसेज हमने इंस्पेक्टर ऋतुराज जी को सुना दिया है, तो सर आप कुछ कहना चाहेंगे इस मैसेज के जवाब में? ये बहुत आपकी तारीफ कर रहे हैं और आपको आपको ग्रीट भी कर रहे हैं आपके मिशंस के लिए भी, और आपको बहुत धन्यवाद कर रहे हैं देश सेवा के लिए।
0: जी जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मतलब ऐसा नहीं है कि जो वर्दी नहीं पहने हैं वो देश की सेवा नहीं कर सकते हैं, जो वर्दी नहीं भी पहने वो भी देश की सेवा करते हैं। अगर आपके आसपास या कहीं भी कुछ भी कोई भी देश विरोधी सूचना अगर आता है, तो नज़दीकी पुलिस को या जो भी बल के कार्मिक हैं उनको आप बताइए और देश की सेवा आप करिए।
1: क्या बात है सर, बिल्कुल, बहुत अच्छी आपने बात कही कि सिर्फ यूनिफॉर्म पहन करके ही आप सिर्फ देश की सेवा नहीं करते हैं, आप वर्दी पहने बगैर भी, अलर्ट रह करके, अवेयर रह करके भी, इन्फॉर्मेशन दे करके भी अपने देश की सेवा में अपना योगदान दे सकते हैं,
0: तभी हमारा देश सुरक्षित रहेगा।
1: बिल्कुल ठीक कहा आपने, तभी हमारा देश, जाहिर है हमारी जनता और हमारी जो फोर्सेस हैं वो मिलकर के ही इस देश को बेहतर और सुरक्षित बना सकती हैं। एक और मैसेज है सर, सनातन कुमार हैं ये जैतपुर नई दिल्ली से, जय हिंद कह रहे हैं आपको।
0: जय हिंद आपको भी।
1: और ये एक मैसेज आया है फ्रॉम ओल्ड लखनऊ अंबरगंज से, प्लीज सॉन्ग शीशे की उम्र पायल की मूवी, ये तो कुछ सॉन्ग की भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं और आपको भी जय हिंद बोलते हैं ये।
0: जय हिंद, हिंद का जय तभी होगा जब हम लोग सारे मिल के काम करें, तभी देश का तरक्की होगा, तभी हमारा देश भी सुरक्षित रहेगा।
1: बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल ठीक बात कही कि हमारा देश तभी सुरक्षित रहेगा और आगे बढ़ेगा जब हम सब मिल करके एक साथ अपने देश की सेवा में तत्पर रहें। सर आपने अपनी फॉर्मल एजुकेशन के बाद जब एसएसबी ज्वाइन किया, उसके बाद भी आपकी जो सीखने की जो लगन है वो जारी रही, उसके बारे में हमारे लिसनर्स को बताइए, हमारे श्रोताओं को, आपने क्या क्या कोर्सेज उसके बाद भी किए?
0: उसके बाद मैंने CIW कोर्स किया गोल्डम से, उसके बाद फिर INT का कोर्स किया, इंफॉर्मेशन कैसे गैदरिंग किया जाता है, कैसे किया जाता है।
1: ओके, मतलब अपनी फोर्स से ही आपने रिलेटेड चीजें,
0: फोर्स से ही मैंने जी।
1: आपने काउंटर इंसर्जेंसी और जंगल वॉरफेयर का भी कोर्स किया है सर, ये इसके बारे में थोड़ा सा बताइए।
0: एक्चुअली ये हमारा कोर्स ग्वालदम में हमारा ट्रेनिंग सेंटर है, वहीं ये कोर्स होता है हमारा ये जी। अच्छा। इसमें कैसे कैसे नक्सल से, कैसे आतंकवादी से लड़ना, ये
1: तो सर ये जो फॉर्मल ट्रेनिंग
0: सिखाया जाता है
1: जी, जैसे SSB में जाने के लिए जो ट्रेनिंग होती है, उसके अलावा ये भी वैसी ही कुछ ट्रेनिंग होती है और ज्यादा हार्श और ज्यादा टफ होती है?
0: बेसिक ट्रेनिंग में जैसे आप घर में एक होता है ना, माँ बाप आपको चलना सिखाते हैं, कैसे चलना है, कैसे खाना है, नहीं
1: अच्छा।
0: खाना है। और बेसिक ट्रेनिंग में वहाँ आपके गार्जियन हो जाते हैं, वो पूरा जितने दिन का ट्रेनिंग होता है आपको कैसे चलना है, कैसे किससे बात करना है, क्या कैसे खाना है, कितना किससे बात करना है अपने सीनियर पदाधिकारी से, नीचे से, वो बेसिक ट्रेनिंग में सिखाया जाता है अच्छा। चलने से लेकर हर चीज। और अच्छा। उसके बाद जो कोर्सेस होते हैं ना, उसको आपको टेक्निक सिखाया जाता है कि आपको कैसे दुश्मन से लड़ना है, नक्सल अच्छा। से कैसे लड़ना है,
1: यानी कि पूरा
0: से कैसे लड़ना है, उसमें टैक्टिक्स सिखाया जाता है जी,
1: पूरा टैक्टिक्स। तो ये जैसे इसमें लिखा है कि हमने पढ़ा काउंटर इंसर्जेंसी एंड जंगल वॉरफेयर
0: जी,
1: तो ये तो बड़ा टफ होता होगा, आपकी जो ट्रेनिंग थी उससे भी ज्यादा टफ लगता है कि इसको पढ़ करके।
0: ये काफी टफ ट्रेनिंग होता है इसमें जी। जंगल
1: तो आपने जी, तो जंगल में ही रहना होता है, उसी के एनवायरनमेंट में अपने आपको ढालना होता है,
0: जंगल में रहना होता है। 1 लीटर पानी है, उसमें आपको 72 घंटा गुजारना है,
1: अच्छा।
0: ब्रश भी करना है, उसमें खाना भी बनाना है, उसके बाद आपके कैंप पर अटैक भी हो गया, फिर दुश्मन से भी आपको लड़ना है।
1: तो एक लीटर पानी में,
0: एक लीटर पानी में,
1: और वो भी 72 घंटे,
0: 72 घंटे इस टाइप के ड्रिल, उसमें बहुत सारे प्रोग्राम बनाए रहते हैं डे टू डे, उसमें आपको एकदम
1: अच्छा। तो कितने दिन की ट्रेनिंग होती है सर?
0: ये ट्रेनिंग करीब 1 मंथ का होता है,
1: 1 महीना
0: जी।
1: तो आपको क्या लगता है, मतलब और भी ऑफिसर्स होते होंगे जो ट्रेनिंग लेते होंगे, तो सब सर्वाइवल कैसे पॉसिबल हो पाता होगा, या कैसे आप इसको पूरा करते हैं इतनी टफ ट्रेनिंग को, क्या तरीका होता है?
0: कुछ नहीं, टीम वर्क है, टीम में लगा हुआ लगे रहना है, साथ में हो जाता है सारा चीज। मन में इच्छा शक्ति होती है तो कुछ भी हो सकता है।
1: तो इच्छा शक्ति के साथ साथ सर वो आपकी वो जो एक फिजिकल स्ट्रेंथ और मेंटल स्ट्रेंथ, वो सब भी कंट्रीब्यूट करती है उसके अंदर, उन सब का भी योगदान रहता है।
0: ट्रेनिंग में जाने से ही फिजिकल स्ट्रेंथ वो जो इंस्ट्रक्टर लोग होते हैं वो बढ़ा देते हैं।
1: अच्छा, यानी कि वो आपको पूरी तरीके से जोश से हमेशा भरे रखते हैं।
0: हाँ,
1: लेकिन सर इसको थोड़ा सा हमें और बताएं कि अगर हमारा लिसनर ये सुन रहा है, वो बड़ा मुझे भी हैरानी होती है कि आपने कहा ना सिर्फ 24 घंटे बल्कि 72 घंटे, तो ये बहुत बड़ा पीरियड हो गया, और आपने कहा कि सिर्फ 1 लीटर पानी की बोतल।
0: जी हाँ, तो हो जाता है उसमें।
1: तो कैसे, आप थोड़ा सा बताएं हमें।
0: उसमें क्या होता है ना, बड़ी पेयर में बनाया जाता है, तो 3 लीटर हमारा, 3 लीटर बड़ी पेयर का मेरा।
1: अच्छा।
0: तो हाँ, तो उनके 3 लीटर से हम काम चला लिए, बाकी काम उनका।
1: तो सर जंगल में आप हैं उस ट्रेनिंग को लेने के लिए, तो हाँ। कैसे रहते हैं, किस तरीके से मैनेज करते हैं अपना पूरा दिनचर्या, और फिर रात को कैसे आपकी वो ट्रेनिंग चलती है?
0: वो सब ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाया जाता है सीनियर पदाधिकारी के द्वारा, उसको ग्राउंड में इंप्लीमेंट किया जाता है, उसको पहले बताया नहीं जाता है।
1: अच्छा।
0: अचानक सब चीज होता है,
1: पहले से नहीं बताते?
0: नहीं, खाना बना रहे हैं, आप पर कैंप अटैक हो गया।
1: ओके,
0: हाँ,
1: एक तरह से ड्रिल
0: ड्रिल हाँ।
1: अच्छा।
0: ये सब प्रोग्राम पहले से बना हुआ रहता है जी।
1: तो ये तो बहुत टफ एक तरह से ट्रेनिंग हुई, और जाहिर है तभी आप असल में दुश्मन का मुकाबला कर पाते हैं इतनी जीदारी के साथ।
0: मेरा कहना है ट्रेनिंग हमेशा टफ होना चाहिए, क्योंकि कब कब कौन सा सिचुएशन, कहाँ आपकी पोस्टिंग होगी, उस अनुसार अगर आप टफ ट्रेनिंग नहीं कर पाइएगा तो आप तो फंसिएगा, आपके साथ आपकी पूरी टीम फंस जाएगी। एक भी हमारा कार्मिक अगर कहीं किसी ऑपरेशन में फंस जाता है या घायल हो जाता है, नहीं चल पाता है, तो उसके लिए पूरी टीम को रुकना पड़ेगा।
1: यानी कि एक भी कोई अगर कमजोर पड़ा, पूरी टीम उससे कमजोर पड़ जाएगी।
0: तो पूरी टीम को एक जैसा लाया जाता है,
1: मोटिवेटेड रखना।
0: हाँ, ट्रेनिंग का मकसद ही आता है फिजिकल स्टैंडर्ड, मेंटल फिजिकली मेंटली पूरा टीम वर्क के जैसा, टीम के रूप में उनको ढाला जाता है।
1: सर अगर मान लीजिए कोई अगर मतलब कमजोर पड़ रहा है, बीमार पड़ गया बाय चांस, मान लीजिए वो तो कंट्रोल नहीं उसका, तो फिर कैसे आप फिर उसको अपने साथ रखते हैं, मैनेज करते हैं, उसको पिकअप करते हैं?
0: एक्चुअली फर्स्ट एड बॉक्स भी हमारे साथ जाता है, जहाँ भी कुछ भी ऑपरेशन वगैरह होता है या कहीं भी पेट्रोलिंग वगैरह भी हम लोग जाते हैं, तो हम लोग फर्स्ट एड बॉक्स रखते हैं जी। हाँ, और जब भी हम लोग जाते हैं तो बड़ी पेयर में ही मूव करते हैं, अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर हम लोग रुकते हैं
1: जी।
0: ऑपरेशन काफी बड़ा होता है तो फिर हम लोग बेस कैंप बना के रखते हैं नीचे, तो उस बेस कैंप में फिर कुछ कार्मिक को पहले से डिटेल करके रखते हैं, अगर इस टाइप से अगर कुछ
1: जी
0: होता है तो वही कार्मिक उसको लेके बेस कैंप में चले जाएंगे
1: जी। आपके आपके सर कोर्सेज तो और भी बहुत सारे हैं, आपने बड़े ही जोश वाले और बहुत ही हिम्मत वाले कोर्सेज किए हैं। रॉक क्लाइंबिंग आपने किया है, इंटेलिजेंस का भी आपने कोर्स किया है, साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस का आपने किया है, और FICN वर्कशॉप भी आपने की है
0: जी।
1: तो ये FICN वर्कशॉप क्या होती है?
0: वो फेक करेंसी डिटेक्ट कैसे करना है, कैसे बॉर्डर अच्छा, करना है जी उसके, अच्छा, उसके बारे में।
1: यानी कि वॉर फ्रंट के अलावा आपने जो है बैकएंड वाली चीजें जिनसे हम टेक्निकली भी अपने आपको मजबूत बना सके वो भी आपने किया हुआ है,
0: क्योंकि बॉर्डर पर तो हर एक तरह का चैलेंज आता है ना
1: जी। जी
0: वो उसमें एक्सपर्ट होने के लिए ट्रेनिंग कोर्स करना बहुत जरूरी है
1: जी। जी सर, ये जो अब जैसा हम बात कर रहे थे जंगल वॉरफेयर का, आपने जिस तरीके से ट्रेनिंग लिया तो क्या वो बहुत खतरनाक होता है या आपको मजा भी आया, मतलब एडवेंचर भी था क्या वो?
0: एक्चुअली अगर उसको खतरनाक लीजिएगा तो खतरनाक हो, एडवेंचर लीजिएगा तो मजा आएगा।
1: तो आपको कैसा लगा, आपने कैसे उसको किया?
0: मैंने तो अभी तक जितना ट्रेनिंग हुआ सब एंजॉय ही किया।
1: अच्छा। जी सर, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारे पास जो मैसेज आ रहे हैं आपको मैं पूछना चाहूंगा, आपको क्या लगता है कि किसका मैसेज आपके लिए आ सकता है स्पेशली? मैं आपको बता देता हूं
0: जी,
1: राजवीर का यहां पर मैसेज आया है और ये बताते हैं कि कुमार ऋतुराज का मैं भतीजा हूं, प्लीज राज सर को मेरा जय हिंद और फॉरवर्ड करें मैसेज। तो अगर वो सुन रहे हैं तो उनको बता दूं कि आपका मैसेज हमने कुमार ऋतुराज को, इंस्पेक्टर कुमार ऋतुराज को पढ़ करके सुना दिया है। सर आपका कोई रिएक्शन?
0: जय हिंद बेटा, बढ़िया से पढ़ो, मन से पढ़ो और देश के काम आओ।
1: बहुत खूब सर, बहुत बहुत बहुत खूब। एक और मैसेज आया है, नमस्ते सर जी, मेरा नाम रोशनी रावत, गांव बम्हाना, तहसील सफीपुर, जिला उन्नाव, चंडीगढ़ से प्रोग्राम सुन रहे हैं, जय हिंद।
0: आपको भी जय हिंद।
1: और भी मैसेज आया है सर, ये है मिस्टर अनमोल अंबावने फ्रॉम थाईलैंड से, सर ये मैसेज कर रहे हैं आपके लिए,
0: जय हिंद आपको भी।
1: आपकी सर हम और भी अचीवमेंट के बारे में आगे हम करेंगे बात, हमारे साथ हैं इंस्पेक्टर ऋतुराज सशस्त्र सीमा बल से और इनकी इतनी एडवेंचर्स और इतनी जोश से भरी हुई कहानियां हम यहां पर सुन रहे हैं। आप सुन रहे हैं संदेश टू सोल्जर्स आकाशवाणी रेनबो पर, शाहिद आपके साथ।

0: 102.6 देश के नंबर वन रेडियो आपके अपने रेनबो पर प्रोग्राम चल रहा है संदेश टू सोल्जर्स और शाहिद आपके साथ। आप हमें सुन रहे हैं अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर पूरे देश में 102.6 पर दिल्ली एनसीआर में। मोबाइल ऐप के माध्यम से पूरी दुनिया में हमें आपसे रूबरू जो है न्यूज ऑन एआईआर। आज के संदेश टू सोल्जर के हमारे खास अतिथि इंस्पेक्टर ऋतुराज सशस्त्र सीमा बल से और हम सुन रहे हैं उनकी जोश भरी कहानियां। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट हैं वो। सर क्या कहना है आपका इस बारे में जो आपको एक टाइटल दे दिया गया है और इस पर आपको कई सारे गैलेंट्री मेडल्स भी दिए जा चुके हैं।
1: मैं बार बार कहता हूँ कि ये सारा टीम वर्क होता है
0: जी।
1: पहले जो गैलेंट्री मेरे सीने पर लगा हुआ है लेकिन इसमें जितने भी मेरे साथ सबऑर्डिनेट काम किए जो हमारे सीनियर ऑफिसर जिनके साथ हम काम किए वो सब सबका अहम इसमें योगदान है
0: जी।
1: सिर्फ सीना मेरा है इसमें योगदान सबका है।
0: बिल्कुल सर बहुत अच्छी आपने बात कही और ये बहुत ही अपने आप में इंस्पायर करने वाली बात है, बहुत ही प्रेरणादायक बात है कि आप अकेले ही उसको जो है नहीं लेना चाहते, उसकी तारीफ आप अकेले नहीं सुनना चाहते, आप सबके साथ उसको शेयर करते हैं, उस मेडल को भी, अपने अवार्ड को भी, अपनी उस गैलेंट्री को भी। हम बता दें आपको कि पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री 2 बार दिया जा चुका है, उसके अलावा फर्स्ट बार टू दी पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री भी आपको नवाजा जा चुका है। उसके अलावा पुलिस आंतरिक सुरक्षा सेवा पदक फॉर कमेंडेबल सर्विस इन लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म अफेक्टेड एरियाज में भी ये भी आपको दिया जा चुका है।
1: हाँ जी ये आंतरिक सुरक्षा पदक है ये
0: जी। ये सर ये किस तरह से होता है, ये इसको हम कैसे अगर डिफरेंशिएट करें गैलेंट्री मेडल से?
1: एक्चुअली ये जो नक्सल में अच्छे काम करते हैं या जम्मू कश्मीर में जो आंतरिक सुरक्षा
0: अच्छा।
1: में जो काम जिनका बेस्ट परफॉर्मेंस रहता है
0: जो सेंसिटिव एरियाज हैं उनमें सर्विस के लिए
1: अच्छे काम करते हैं उनका नाम रिकमेंड किया जाता है बटालियन के द्वारा।
0: okay.
1: उसके बाद फोर्स हेडक्वार्टर में आता है, फिर उनका जो जिनका काम अच्छा रहता है उनका सिलेक्शन होता है, उसके बाद फिर ये मिलता है।
0: अच्छा और उसके अलावा सर डायरेक्टर जनरल का गोल्डन डिस्क, उसमें 1-स्टार और 2-स्टार वेरिएंट भी शामिल है, वो भी आपको मिला है और उसके अलावा डीजे सिल्वर डिस्क भी आपको प्रदान की गई है, इसके बारे में क्या कहेंगे, ये क्या होता है?
1: जी ये वही बताए काम जिनका अच्छा रहता है जिनका ऑपरेशनल अचीवमेंट अच्छा रहता है।
0: तो सर आपके बैक टू बैक इतने अच्छे और इतने अचीवमेंट रहे हैं कि आपको बैक टू बैक इस तरीके के गैलेंट्री मेडल्स से भी नवाजा गया है, प्रदान किए गए हैं आपको, तो कैसा महसूस होता है जब ये मिलते हैं और कैसा महसूस हो रहा है अब आपको?
1: जी ऐसा होता है कभी ये सोच के नहीं कि हमको गैलेंट्री मेडल चाहिए या हमको डीजी डिस्क चाहिए, हम अपना जो मेरा काम है वो अपना हम काम करते रहते हैं
0: जी।
1: टीम के साथ मिलके हमेशा सोचते हैं कुछ देश हित में कुछ अच्छा करें जिसमें हमारे जो सशस्त्र सीमा बल का है वो नाम हमेशा रोशन रहे।
0: क्या बात है सर, बहुत बहुत खूब। आगे बढ़ेंगे हम इंस्पेक्टर ऋतुराज, लेकिन कुछ मैसेजेस हैं जिनको पढ़ना बहुत जरूरी है, मैं आपके लिए पढ़ता हूं। जय हिंद कुमार साहब, मेरा नाम संदीप कश्यप है, पालम दिल्ली से ये मैसेज कर रहे हैं सर आपके लिए। आज की जनरेशन को कैसे मोटिवेट किया जाए देश सेवा के लिए, आपसे अनुरोध है कि कृपया बताएं। बताइए सर।
1: जय हिंद आपको भी। देश हमारा तभी सुरक्षित रहेगा जब सब लोग मिलके हम लोग काम करेंगे। कोई भी अगर आपके आसपास या कहीं भी कुछ भी देश विरोधी तत्व या कोई देश लगे आपको कि ये देश हित में नहीं अच्छा है या अच्छे लोग नहीं है तो उनको तुरंत आप नज़दीकी पुलिस एसोसिएशन या जो भी फोर्स वहाँ काम कर रही है उसको आप बताएं, तभी हमारा देश सुरक्षित रहेगा। सब हम लोग टीम वर्क के रूप में काम करें, या वर्दी पहने हुए हैं या जो वर्दी नहीं भी पहने हुए हैं, देश सबका है, देश तभी सुरक्षित रहेगा जब सब हम लोग मिलकर काम करेंगे।
0: क्या बात है सर, बहुत खूब। और सर एक और बहुत ही स्पेशल विशेष मैसेज है सर आपके लिए, मैं अभी अगर नाम ना बताऊं तो शायद आप पहचान लेंगे या मैं बता देता हूं। ऋतुराज सर जय हिंद, फीलिंग प्राउड टू लिसन यू, विश यू अ टन ऑफ गुड एनर्जीज, इंस्पेक्टर बरखा निरंकारी सशस्त्र सीमा बल से।
1: जय हिंद आपको भी।
0: ये खास मैसेज सर आपके लिए आया है जो आपको सुन रहे हैं इस वक्त। इसके अलावा संदेश टू सोल्जर शो बेहद खूबसूरत शो है, जय हिंद वंदे मातरम, यश शिंदे हैं ये मुंबई से सर, ये भी मैसेज कर रहे हैं। और इसके अलावा सर जय हिंद, ऋतुराज जी को भी जय हिंद, आप लोगों की बदौलत हम देशवासी सुकून से जीते हैं, हमें गर्व है। लेकिन कुछ शीर्ष पर बैठे हुए इच्छा शक्ति की कमी से बॉर्डर के अलावा आंतरिक सुरक्षा पर आपके विचारों को, अपने विचारों को व्यक्त करें। ये कृष्ण साहू हैं रायपुर से छत्तीसगढ़।
1: जय हिंद आपको भी।
0: और ये मैसेज है जय हिंद भारत माता की जय, मोनू सेठ खालिसपुर अमेठी से सर ये आपको मैसेज कर रहे हैं, सलाम है आपके जज्बे को जय हिंद कह रहे हैं सर आपसे।
1: जय हिंद आपको भी।
0: और ये मैसेज है, मेरा भतीजा भी आपके SSB में है और भारत माता की सेवा कर रहा है, मुझे बेहद गर्व है। ये हैं सर सुशील कुमार नई दिल्ली से।
1: जय हिंद आपको भी।
0: और ये एक और मैसेज है सर, रजनीकांत रघुनाथ पाटिल महाराष्ट्र वार्ड 1 से, जय हिंद कह रहे हैं आपको।
1: जय हिंद आपको भी।
0: सर ये सारे जोशीले मैसेज जो हैं, इनकी लग रहा है इन मैसेज को पढ़कर कि वो दिल से और बहुत ही जज्बे के साथ आपको भेजे गए हैं, तो इस पर आप कुछ अपनी तरफ से भी कुछ बताएं और ये भी बताएं कि SSB के लिए जैसे कुछ लोगों ने पूछा, तो एक बार और उनको बता दें कि क्या तरीका है, कैसे जा सकते हैं, और जो आपने महसूस किया इन मैसेज के जरिए वो भी उन तक पहुँचाएं अपने दिल की बात।
1: आप अगर कांस्टेबल में भर्ती होना चाहते हैं तो मैट्रिक इंटर करने के बाद आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, और अगर आप सब इंस्पेक्टर में भर्ती होना चाहते हैं तो ग्रेजुएशन के बाद, और असिस्टेंट कमांडेंट में भी अगर भर्ती होना चाहते हैं तो UPSC के थ्रू फॉर्म आता है, तो उसमें भी आप डायरेक्ट असिस्टेंट कमांडेंट में भर्ती हो सकते हैं
0: जी। और इसके अलावा सर हमें ये भी आप बताइए, क्योंकि अब हमारे पास समय भी कम बचा है और मैसेज भी लगातार अब आ ही रहे हैं, तो मैं मैसेज बाद में पढ़ूंगा। हम ये भी जानना चाहेंगे कि सर जिस तरीके से आपकी सर्विस ये रही है और जिस तरीके से आपने डेडिकेशन के साथ अपनी सर्विस को पूरी तरीके से पूरी निष्ठा के साथ निभाते हैं, आप कर रहे हैं, तो आप हमारी जो यूथ है, हमारा जो यंग जनरेशन है, उसको कुछ कहना चाहेंगे किस तरीके से हम उसको भी, जो अगर नहीं है उस तरीके की सोच रखता है, तो कैसे उसको मोटिवेट करें?
1: जी, देश सबका है, हमारा जितना है सबका देश है, उसमें सबका सहयोग चाहिए। आजकल युवा थोड़ा नशे के तरफ मोटिवेट हो रहे हैं, उस पर थोड़ा कम ध्यान दीजिए, जंक फूड की तरफ कम ध्यान दीजिए, अपना स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए। स्वास्थ्य ही आपका धन है, स्वास्थ्य अगर आप सही रखेंगे तभी आपका सोच अच्छा रहेगा, और जब सोच और स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो ऑटोमेटिक है देश हमारा अच्छा रहेगा। जी
0: बिल्कुल सर, एक मैसेज है, जय हिंद ऋतुराज सर एंड नमस्ते RJ सर, मैं अपने सारे फौजी भाइयों को दिल से सैल्यूट करती हूँ, उनकी शक्ति वीरता के साथ देश की सेवा करने के लिए हमेशा उनका आभारी रहूंगी। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। अंजलि लोड फ्रॉम गुमो डिस्ट्रिक्ट धनबाद झारखंड से ये सर मैसेज किया है इन्होंने।
1: जय हिंद आपको भी।

0: तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आज के शो में आप हमारे साथ रहे, बहुत बहुत धन्यवाद इंस्पेक्टर ऋतुराज, जिनकी जितनी तारीफ की जाए कम है, और उनकी वीरता, उनके समर्पण, उनके साहस, अदम्य साहस के लिए और उनके जज्बे के लिए, बलिदान के, हम बहुत बहुत उनका स्वागत करते हैं और उनका बहुत सम्मान करते हैं उनके इस जज्बे के लिए। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आप हमारे शो में आए।
1: सशस्त्र सीमा बल की तरफ से सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।
0: और सर जाते जाते हम एक बहुत ही जोशीला गाना, जैसे कि आपने कहा कि ये जोश और ये जज्बा बहुत जरूरी है अपने देश के लिए, क्योंकि हम हैं हिंदुस्तानी। सर बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी।
0: आप सुन रहे थे संदेश टू सोल्जर्स, आज के हमारे खास मेहमान इंस्पेक्टर कुमार ऋतुराज SSB से, और शायद अब आपसे यहां से लेगा विदा, आ गई हैं श्वेता लेकर के सैटेलाइट्स। आप सुनते रहे हैं रेनबो दिल से दिल तक।
2: तो समझो दिल भर जानी, जितना भी तुम समझोगे उतनी होगी हैरानी।

0: अभी आप सुन रहे थे हमारा विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
1: मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्ज़ और FM 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। संध्या के 5 बजे हैं, आपके लिए लेकर आए हैं कार्यक्रम आज शाम।

आज शाम कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को शहसी आगा का नमस्कार। कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। हो के मायूस न यूं ही शाम की तरह ढलती रही है, जिंदगी एक भोर है सूरज की तरह निकलते रहिए। ठहरोगे एक पांव पर तो थक जाओगे, धीरे धीरे ही सही मगर राह पे चलते रहिए। जी हाँ श्रोताओं, वाकई जिंदगी एक साइकिल है जो चलती रहती है। दिन ढल गया, शाम हो गई, उम्र यूं ही तमाम हो गई। शाम होते ही दिल में ये सवाल जरूर उठता है कि आज दिन ढल गया है या मेरी उम्र। सवाल आता है मन में, क्या मेरे आज के जो काम रुके हुए थे वो पूरे हुए या नहीं, वो मैंने आज ही किए या फिर कल के लिए छोड़ दिए। क्या मालूम कल हो ना हो,

श्रोताओं, कहते हैं ना, उम्मीद और विश्वास पे ये दुनिया कायम है। बस यही उम्मीद जो जीने का हौसला देती है, विश्वास बढ़ाती है जिंदगी में आगे बढ़ने का, जिंदगी में कुछ करने का। जिंदगी में मुश्किलें चाहे कितनी भी हों, हर पल चिंता करने से ये और भी बढ़ जाती हैं, पर हर मुश्किल उम्मीद की किरण जगाती है और सब्र के साथ मेहनत करने से हल हो जाती है। उम्मीद वो कैची है जो नामुमकिन के ना को काट कर हाँ में बदल देती है, नामुमकिन को मुमकिन में तब्दील कर देती है। यही उम्मीद, यही आशाएं होती हैं जो हौसला देती हैं आसमानों में उड़ने का। जहाँ उम्मीदें होती हैं, आशाएं होती हैं, उम्मीदें तैरती हैं, कश्तियाँ डूब जाती हैं, कुछ घर सलामत रहते हैं, आंधियाँ जब भी आती हैं बचा ले जाती हैं, बचा ले जो हर तूफान से उसे आस कहते हैं। बड़ा मजबूत है ये धागा जिसे विश्वास कहते हैं। दोस्तों, ये रिश्ता ही तो है उम्मीद का, आशा का और विश्वास का, जो हमें आपसे यूं ही जोड़े रखता है। ये अटूट बंधन ही तो है जनाब, जो शाम 5 बजते ही हमें विश्वास दिलाता है कि आप हमारे साथ हैं। ये विश्वास का रिश्ता ही तो है जो दिल से निभाया जाता है, बड़ा ही प्यारा लगता है।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म कंपेयर प्रोग्राम आज शाम मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलो हर्ट्स और एफएम 102.9 मेगा हर्ट्स पर। हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। संध्या के 5:15 हुए हैं। आप लाए हैं युवा श्रोताओं के लिए दैनिक कार्यक्रम युवा वाणी।

0: हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका आपके पसंदीदा प्रोग्राम युववाणी में, जिसे लेकर हाजिर हूँ मैं भारती
1: और मैं नव्या अग्रवाल।
0: दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं कि आप सभी बिल्कुल अच्छे होंगे और बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होंगे अपने पसंदीदा प्रोग्राम युववाणी का। तो दोस्तों, देर ना करते हुए शुरू करते हैं हम अपना आज का ये प्रोग्राम। और हमारा आज के प्रोग्राम का सवाल है, हाल ही में भारत के 97वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने?
1: साथियों, सवाल एक बार फिर से सुन लीजिए। हमारा

0: सवाल है, हाल ही में भारत के 97वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? और इस सवाल का जवाब देने के लिए आपको जाना होगा आकाशवाणी रामपुर के फेसबुक पेज पर और आज की अपडेटेड पोस्ट के कमेंट सेक्शन में लिख भेजने होंगे अपने जवाब। और सही जवाब देने वाले श्रोता साथियों के नाम हम अनाउंस करेंगे प्रोग्राम के एंड में। भारती, कभी तुमने सोचा है कि अगर दुनिया में गिनती करने का तरीका इतना आसान ना होता तो शायद आज का दौर कितना अलग होता?
1: बिल्कुल नव्या, आज तो हम मोबाइल से लेकर कंप्यूटर तक हर चीज़ में सेकंडों में हिसाब कर लेते हैं, लेकिन इसके पीछे गणित की एक बहुत बड़ी देन छिपी है।
0: और भारती, सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि ये देन संबंधित है हमारे भारत से। दुनिया जिस दशमलव प्रणाली का इस्तेमाल करती है वो भारत का दिया हुआ एक अनमोल गणितीय उपहार माना जाता है।
1: सही कहा नव्या, दशमलव प्रणाली यानी सिर्फ 0 से 9 तक के 10 अंकों के जरिए हर छोटी बड़ी संख्या को लिखना और समझना, आज ये हमें सामान्य लगता है, लेकिन एक समय ऐसा था जब गणना करना बेहद कठिन माना जाता था।
0: और जब बात दशमलव प्रणाली की होती है तब शून्य यानी कि 0 का जिक्र ज़रूर आता है। भारत ने दुनिया को शून्य की अवधारणा दी और यही खोज गणित के इतिहास में सबसे क्रांतिकारी मानी जाती है।
1: बिल्कुल, सोचिए अगर शून्य ना होता तो बैंकिंग, विज्ञान, अंतरिक्ष, तकनीकी और यहाँ तक कि कंप्यूटर भी शायद आज इस रूप में मौजूद ना होते।
0: और भारतीय हमारे प्राचीन भारतीय गणितज्ञों ने इस क्षेत्र में अद्भुत काम किया है। आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त जैसे विद्वानों ने गणित को नई दिशा दी और दुनिया को सोचने का एक नया तरीका भी दिया।
1: और फिर भारत से ये ज्ञान अरब देशों तक पहुंचा, वहां से यूरोप गया और धीरे धीरे पूरी दुनिया ने इसे अपना लिया, क्योंकि ये प्रणाली सरल भी थी और बेहद सटीक भी।
0: आज हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अनजाने में ही इस भारतीय देन का इस्तेमाल करते हैं। स्कूल की पढ़ाई हो, मोबाइल हो, कैलकुलेटर हो या फिर ऑनलाइन पेमेंट, हर जगह दशमलव प्रणाली हमारे साथ जुड़ी हुई है।
1: सच में ये सिर्फ गणित की खोज नहीं बल्कि भारत की वैज्ञानिक सोच और बौद्धिक विरासत का प्रतीक है।
0: और हमें गर्व होना चाहिए कि भारत ने दुनिया को एक ऐसा ज्ञान दिया जिसने पूरी मानव सभ्यता को आगे बढ़ने में मदद की।
1: बिल्कुल नव्या, अपने इतिहास और महान विद्वानों की इस विरासत को जानना और आगे बढ़ना हम सभी की जिम्मेदारी है।
0: साथियों, इसी के साथ लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा नहीं क्योंकि ब्रेक के उस पार है आप सभी के लिए बहुत कुछ खास।

0: वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आपका अपने पसंदीदा प्रोग्राम युववाणी में। दोस्तों, अब बढ़ते हैं हमारे सेगमेंट कुछ खास आज की ओर। उससे पहले हम आपको बता दें कि आज है थर्सडे और आज ही है हमारा स्पेशल सेगमेंट फेसबुक लाइव, जिसका टॉपिक रहने वाला है मौसम आम, रसीली यादें और मीठे किस्सों का कारवां। तो दोस्तों, आकाशवाणी रामपुर के फेसबुक पेज पे आज की अपडेटेड पोस्ट के कमेंट सेक्शन में लिख भेजिए इस विषय पर अपने अपने विचारों को।
1: कुछ ख्वाबों की बात,
2: कुछ अपनों का साथ,
1: नर्म धागे से बंधे कुछ पन्ने
2: और उन पर नीली स्याही से लिखे हुए कुछ नगमे
1: कह रहे हैं बहुत कुछ आज।
2: वाकई कुछ खास है आज,
1: कुछ खास है आज।
0: साथियों, आज का दिन खास है क्योंकि आज शिमला समझौते की वर्षगांठ है। 2 जुलाई 1972 को भारत और पाकिस्तान के बीच यह ऐतिहासिक समझौता हुआ था। 1971 के युद्ध के बाद दोनों देशों के रिश्तों में काफी तनाव था। ऐसे माहौल में भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के राष्ट्रपति जुल्फकार अली भुट्टो हिमाचल प्रदेश की खूबसूरत वादियों में बसे शिमला शहर में मिले और शांति की दिशा में एक अहम कदम उठाया गया।
3: साथियों, इस समझौते का मुख्य उद्देश्य था दोनों देशों के बीच तनाव को कम करना, आपसी विवादों को बातचीत से सुलझाना और भविष्य में युद्ध जैसी स्थिति से बचना। शिमला समझौते में ये तय किया गया कि भारत और पाकिस्तान अपने मतभेद किसी तीसरे देश की मध्यस्थता के बिना आपस में बातचीत के जरिए हल करेंगे। साथ ही सीमा पर शांति बनाए रखने और अच्छे संबंध बनाने पर भी जोर दिया जाएगा।
0: 1971 का युद्ध दक्षिण एशिया के इतिहास का एक बड़ा अध्याय माना जाता है। इस युद्ध के बाद बांग्लादेश का गठन हुआ था। युद्ध के बाद हालत काफी संवेदनशील थे, इसलिए शिमला समझौता दोनों देशों के लिए एक नई शुरुआत की तरह देखा गया।
3: और साथियों, इस समझौते का एक महत्वपूर्ण पहलू ये भी था कि सीज फायर लाइन को नया नाम देकर लाइन ऑफ कंट्रोल यानी कि LOC कहा गया। इसका उद्देश्य सीमा पर स्थिरता बनाए रखना था। हालांकि आने वाले वर्षों में भारत और पाकिस्तान के बीच कई बार तनाव और संघर्ष देखने को मिला, लेकिन शिमला समझौता आज भी दोनों देशों के संबंधों में एक महत्वपूर्ण आधार माना जाता है।
0: राजनीतिक विशेषज्ञ मानते हैं कि यह समझौता केवल दो देशों के बीच का दस्तावेज नहीं था, बल्कि यह बातचीत, धैर्य और कूटनीति की ताकत का उदाहरण भी था। युद्ध के बाद भी शांति की उम्मीद जिंदा रखी जा सकती है, यह संदेश शिमला समझौते ने पूरी दुनिया को दिया।
3: तो दोस्तों, शिमला समझौते की वर्षगांठ पर यह समझना जरूरी है कि किसी भी विवाद का सबसे बेहतर समाधान बातचीत और समझदारी से ही निकलता है।
0: शांति, सहयोग और आपसी सम्मान ही किसी भी क्षेत्र की स्थिरता और विकास की असली पहचान होती है।
3: साथियों, आज का दिन और भी खास है। आज विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाया जा रहा है। हर साल 2 जुलाई को ये दिन उन पत्रकारों को समर्पित किया जाता है जो खेल जगत की हर छोटी बड़ी खबरों को लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं। मैदान में खिलाड़ियों का प्रदर्शन हो, किसी टीम की जीत हो, हार हो या फिर खेल से जुड़ी प्रेरणादायक कहानियां, खेल पत्रकार हर पल दर्शकों को खेल से जोड़कर रखते हैं।
0: विश्व खेल पत्रकार दिवस की शुरुआत साल 1994 में इंटरनेशनल स्पोर्ट्स प्रेस एसोसिएशन यानी AIPS की स्थापना दिवस के अवसर पर की गई थी। इसका उद्देश्य खेल पत्रकारों के योगदान को सम्मान देना और खेल पत्रकारिता के महत्व को दुनिया के सामने लाना था।
3: साथियों, आज के दौर में खेल सिर्फ मनोरंजन का माध्यम नहीं रह गए, बल्कि ये करोड़ों लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ क्षेत्र बन चुके हैं। ऐसे में खेल पत्रकारों की जिम्मेदारी भी काफी बढ़ गई है। एक खेल पत्रकार केवल मैच का स्कोर नहीं बताते, बल्कि खिलाड़ियों की मेहनत, संघर्ष और उनके सफर को भी लोगों तक पहुँचाते हैं।
0: खेल पत्रकारों ने समय के साथ काफी बदलाव देखा। पहले जहां अखबार और रेडियो ही मुख्य माध्यम थे, वहीं आज डिजिटल मीडिया, लाइव अपडेट्स और सोशल मीडिया ने इस क्षेत्र को और तेजी और व्यापक बना दिया। अब दर्शक हर मैच की जानकारी पल पल में अपने मोबाइल तक पा लेते हैं।
3: साथियों, हालांकि खेल पत्रकारिता आसान काम नहीं है। पत्रकारों को लगातार यात्रा करनी पड़ती है, मैचों की गहराई से जानकारी रखनी होती है और कई बार दबाव में भी निष्पक्ष रिपोर्टिंग करनी पड़ती है। फिर भी खेल पत्रकार अपने काम के जरिए खिलाड़ियों और दर्शकों के बीच एक मजबूत पुल का काम करते हैं।
4: भारत में भी खेल पत्रकारिता का दायरा तेजी से बढ़ रहा है। क्रिकेट के साथ साथ अब हॉकी, बैडमिंटन, कबड्डी, एथलेटिक्स और अन्य खेलों को भी मीडिया में अच्छी जगह मिलने लगी है। इससे नए खिलाड़ियों को पहचान मिल रही है और खेलों के प्रति युवाओं का उत्साह भी बढ़ रहा है।
3: दोस्तों, विश्व खेल पत्रकार दिवस हमें याद दिलाता है कि खेलों की चमक के पीछे उन पत्रकारों की मेहनत भी शामिल होती है जो हर खबर को पूरी जिम्मेदारी और ईमानदारी के साथ लोगों तक पहुंचाते हैं।
4: तो साथियों, आज का ये दिन सभी खेल पत्रकारों को उनके समर्पण, मेहनत और निष्पक्ष पत्रकारिता के लिए सम्मान देती है।
0: दोस्तों, कुछ खास है आज में बस इतना ही।
1: कुछ ख्वाबों की बात,
2: कुछ अपनों का साथ,
1: नरम धागे से बंधे कुछ पन्ने
2: और उन पर नीली स्याही से लिखे हुए कुछ नगमे
1: कह रहे हैं बहुत कुछ आज।
2: वाकई कुछ खास है आज,
1: कुछ खास है आज।

0: दोस्तों, जून जुलाई की ये तपती धूप भले ही हमें थोड़ा परेशान करती है, लेकिन इसी मौसम में कुदरत की एक ऐसी सौगात मिलती है जिसके बिना हमारी गर्मियाँ बिल्कुल अधूरी हैं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही समझे आप। हम बात कर रहे हैं फलों के राजा आम की, और इसीलिए आज का हमारा यह स्पेशल सेगमेंट बेहद रसीला होने वाला है, क्योंकि हमारे आज के फेसबुक लाइव का टॉपिक रहने वाला है मौसमे आम, रसीली यादों और मीठे किस्सों का कारवां। साथियों, आज बात सिर्फ आम के स्वाद की नहीं होगी, आज बात होगी बचपन की उन सुनहरी यादों की, जब तपती दोपहरी में घर वालों से छुपकर बागों से आम तोड़ने का काम किसी बड़े मिशन से कम नहीं होता था। बात होगी उस पानी से भरी ठंडी बाल्टी की, जिसमें डूबते तैरते आमों को देखकर मुंह में पानी आ जाता था। दशहरी, लंगड़ा, चौसा, हर नाम के साथ जुड़ी है एक अनोखी कहानी और एक मीठा सा किस्सा।
1: तो देर किस बात की है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आइए और हमारे साथ साझा कीजिए आम से जुड़ा अपना वो सबसे मीठा किस्सा जो आज भी आपके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान ले आता है।
0: साथियों, हमें पहला कमेंट आया है लाल मोहम्मद अंसारी, ग्राम करेली पुरानी मस्जिद बरेली से। ये लिखते हैं, आम को फलों का राजा कहा जाता है। आम एक स्वादिष्ट और मज़ेदार फल है। इसे खाने का मज़ा अलग है। मौसम के हिसाब से बरसात की ऋतु में इसे आनंद लिया जाता है। गर्मी में कच्चे आम का पन

इसी क्रम में हमें दूसरा कमेंट लिख भेजा है उदय सिंह ठाकुर जी ने, और ये हमसे कहते हैं, सोचिए गर्मियों की इस कड़कड़ाती धूप में आखिर ऐसा क्या है जो हमें इतना सुकून देता है। और उसका जवाब है आम का मौसम। यह सिर्फ एक फल का आना नहीं है, बल्कि कुदरत का हमें ज़िंदगी जीने का एक बहुत बड़ा सबक सिखाना है। पूरे एक साल के लंबे इंतज़ार के बाद जब पेड़ों पर पीले रसीले आम लटकते हैं, तो वह हमें याद दिलाते हैं कि सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। आज की इस भागदौड़ भरी ज़िंदगी में हम बहुत जल्दी हिम्मत हार जाते हैं, लेकिन ज़रा इस आम के सफ़र को देखिए। इस मिठास को समेटने के लिए पेड़ों में महीनों तक लटकती धूप झेलते हैं, लू के थप्पड़ सहते हैं और मौसम की हर शक्ति का सामना किया है, जब जाकर इसके अंदर वो असली स्वाद और मिठास घुली है। हमारी ज़िंदगी में तो बिल्कुल ऐसा ही है। आज अगर हमारे हिस्से में मुश्किल हैं, कड़े इम्तिहान हैं या हालातों की थोड़ी तपश है, तो घबराइए मत, सब्र रखिए और अपनी कोशिश जारी रखिए, क्योंकि इस कड़े वक्त से गुजरने के बाद आपकी ज़िंदगी में सफलता का जो फल आएगा वो इस आम से भी कहीं ज़्यादा मीठा होगा। वैसे भी आम कभी अकेला खाकर मज़ा नहीं देता, इसका असली स्वाद तो तभी आता है जब पूरा परिवार यार दोस्त साथ बैठे हों, हाथ और मुंह आम के रस से सने हों और ठहाके गूंज रहे हों। यह फल हमें अपनों के करीब लाना और खुशियां बांटना सिखाता है। तो चलिए इस मौसम में ना सिर्फ आम का स्वाद का मज़ा लेते हैं, बल्कि अपने स्वभाव में थोड़ी सी मिठास घोलते हैं। परिस्थितियां चाहे कितनी भी गर्म कठिन क्यों ना हो, अपनी मुस्कुराहट और अच्छाई को कभी कम मत होने देना। आपको और आपके पूरे परिवार को आम के इस खूबसूरत मिठास मौसम के दिल से शुभकामनाएँ।

साथियों, हमें इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट्स का। हमारे साथ साझा करिए अपने मीठी रसभरी कहानियाँ आम से जुड़ी हुई। तब तक के लिए रुकते हैं एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के लिए।

0: साथियों, हमें अगला कमेंट आया है राजवीर सिंह यादव जी की ओर से, बीजापुर मुरादाबाद से। कुणाल यादव, हर्ष यादव, मनीषा यादव, आकांक्षा यादव, यूनुस खान, सोफिया खान लिखते हैं, आज का विषय बहुत अच्छा है, मौसम आम, रसीली यादों और मीठे किस्सों का कारवां। वाकई हम सबको हमारे बचपन के उन बेफिक्र दिनों में ले गया है, वो तपती दोपहरी, बाल्टी के ठंडे पानी में तैरते आम, गुठली और छिलकों के लिए भाई बहन की वो मीठी जंग, और आम खाते हुए रस का कोनियों तक बह जाना। ये सिर्फ एक फल का स्वाद नहीं, बल्कि हमारे परिवार का प्यार है, जिसकी मिठास हर साल इसी तरह से नई होकर लौट आती है।
1: इसी क्रम में हमें अगला कमेंट लिख भेजा है अखिलेश सक्सेना जी ने, और ये कहते हैं, हमें आम बहुत पसंद है, सिर्फ स्वाद में ही बढ़िया नहीं, बल्कि यह सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद होते हैं। इसमें विटामिन ए और सी भरपूर मात्रा में होते हैं, जो हमारी आँखें और त्वचा के लिए बहुत अच्छे होते हैं। साथ ही यह पाचन शक्ति को भी बेहतर बनाते हैं। दोस्तों, यहीं रुकते हैं, पर आपका कमेंट का सिलसिला रुकना नहीं चाहिए। आपको सुनवाते हैं ये एक प्यारा सा गीत।
2: एक लड़की थी दीवानी सी, एक लड़के पे वो मरती थी, नजरें झुका के शर्मा के गलियों से गुजरती थी, चोरी चोरी चुपके चुपके चिट्ठियां लिखा करती थी। कुछ कहना था शायद उसको, जाने किससे डरती थी। जब भी मिलती थी मुझसे, मुझसे पूछा करती थी, प्यार कैसे होता है, ये प्यार कैसे होता है, और मैं सिर्फ यही कह पाता था।

0: दोस्तों, इसी क्रम में हमें अगला कमेंट लिख भेजा है प्रवीण चौहान जी ने, और ये कहते हैं, मुझे आम बहुत पसंद है। आम रस में दूध और थोड़ी शक्कर मिलाकर पानी में बहुत आनंद आता है। हमारे घर के पास ही आम का पेड़ था, तो हम अपने घर की खिड़की और छत से ही आम तोड़ लेते थे।
1: साथियों, हमें अगला कमेंट लिख भेजा है वीके आइडल जी ने। लिखते हैं, प्रोग्राम पेश करने वाले को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मौसम आम सिर्फ एक मौसम नहीं, बल्कि रसीली यादों और मीठे किस्सों का एक ऐसा कारवा है जो हर दिल को बचपन की उन गलियों तक ले जाता है। आम की मिठास और यादों की खुशबू का ये संगम सच में लाजवाब है। गर्मी हो, प्यास हो या बचपन की याद, आम हर बार दिल को खुश कर देता है। साथियों, हमें इंतज़ार है आपके और भी कमेंट्स का, तो अपनी यादें हमारे साथ साझा करिए फेसबुक कमेंट बॉक्स में। तब तक के लिए रुकते हैं एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के लिए।

0: दोस्तों, इसी क्रम में हमें अगला कमेंट लिख भेजा है बनवारी जयपाल जी ने, और ये कहते हैं, आम को फलों का राजा कहते हैं, परंतु कच्चे आम को केमिकल इस्तेमाल कर पकाया जाता है और कुछ को में इंजेक्शन लगाकर जहरीली दवाइयों से हरे को पीला कर बाजार में बेच दिया जाता है। मीठा जहर है, स्वास्थ्य से खिलवाड़ किया जा रहा है, इन पर सख्त कार्रवाई होना चाहिए। धन्यवाद। साथियों, हमारे स्पेशल सेगमेंट फेसबुक लाइव को अब यहीं विराम देते हैं और बढ़ते हैं प्रोग्राम के आखिरी पड़ाव पर, यानी कि आज के सवाल के जवाब की ओर। और साथियों, हमने आपसे सवाल किया था, हाल ही में भारत के 97वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, और इसका सही जवाब है हर्षवर्धन जीबी, और सही जवाब देने वाले हमारे श्रोता साथी हैं आप सभी,
1: जॉन डी कास्ट्रो, अजीत कसाना, पुंजाजी नवाकर, भगवती चौबे लाडला जी, हीरामणि वर्मा, इकरम अली, नरेन नेतम, दिग्दर्शन गौण, नंद कुमार ठाकुर, मिजवा शमसी, राजेश खोवार खाड़े, अशोक सिंह, मोहम्मद दिनेश सिद्दीकी, शाहजी वोटके, तुलसी मस्केन, राजू मिगलानी, मीरा सिंह, मसरूर हुसैन, राम कुमार रेवार, सिद्धार्थ गोंडे, बबलेश पवार, गुरमीत सिंह मीता, दीपेश वर्मा, संजय ढींगिया, कमल सिंह, सोहन जोशी, विठल सुरोशे, राष्ट्रपाल गजभैये, लालगिरी गोस्वामी रघुनाथपुरा, आकाश रस्तोगी, विजय सुरालकर, धर्मेंद्र छिपा, उदयवन पाल, एमडी यासिन अंजान, धीरज भाई रवारी, महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, प्रवीण चौहान, सुरेश गगनेजा, एम अफजल ताज, शिखा मूसा, निसार सलमानी, शकील अहमद इदरीसी, चौधरी राजवीर सिंह, नवी हुसैन अब्बासी, आर्यन राज, सुरेश जायसवाल, मुजफ्फर अली खान, राधेश्याम शर्मा, मोहम्मद आमिर अंसारी, गजानन एले, मोहम्मद यासीन, राधेश्याम पांडे, आसिफ चौधरी, राजवीर सिंह यादव, सत्येंद्र चौलसिया पैजनिया, हुकुम करमारकर, विनोद मूनत, श्री कृष्ण बाठे, लाल मोहम्मद अंसारी, बीपी गौतम, सुदर्शन शाह, नरेंद्र शर्मा जैतलिया, मोहम्मद जाहिद अली, उदार दिवाकर, रवि रस्तोगी, गंगा सिंह रावत, देव शंकर तैमूरिया, अरविंद कुमार, शमशुल इकरम राही, जगदीश धाकड़, रामशरण, अफ्ताब अंसारी, बी एल धाकड़, शारून नूर अंसारी, भाई रफत साहब, फागुराम यादव, जाकिर मंसूरी, इरशाद अहमद, विमल सक्सेना भारती, भाई रफत साहब, अनोखे लाल, रियासत हुसैन सिद्दीकी, मोहम्मद आसिद अब्बासी, दुर्गा राम साहू, अब्दुल गफ्फार कुरैशी, अनोखे लाल। आप सभी श्रोता साथियों ने दिए हैं इस सवाल के सही जवाब।

0: दोस्तों, अब वक्त है आपसे विदा लेने का। आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा हमें बताना ना भूलें हमारे इस पते पर। हमारा पता है, कार्यक्रम चिट्ठी आई है, युववाणी अनुभाग द्वारा, केंद्र निदेशक, आकाशवाणी रामपुर। पिन संख्या है 244901। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है patramila@rampur.gmail.com। साथियों, इसके अलावा आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से मैसेज भी कर सकते हैं और बता सकते हैं हमारे प्रोग्राम के बारे में। हमारा नंबर नोट कर लीजिएगा साथियों, नंबर है 9410087876। नंबर एक बार फिर से सुन लीजिए साथियों, 9410087876। दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नए विषय, एक नई आवाज़ और एक नई उमंग के साथ। तब तक के लिए दीजिए अपनी रेडियो साथी नव्या अग्रवाल
1: और भारती को इजाजत।
0: आप सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार।
2: अभी युवा साथी सुन रहे थे अपना दैनिक कार्यक्रम युववाणी। हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। संध्या के 6 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप समाचार सुनेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची ने आज नई दिल्ली में वार्ता के दौरान कई क्षेत्रों में आपसी संबंध मजबूत करने पर विचार विमर्श किया। नई दिल्ली में विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कहा कि दोनों नेताओं ने यह स्वीकार किया कि ये विश्वास का रिश्ता है और बातचीत में ये विश्वास स्पष्ट रूप से दिखाई दिया। उन्होंने कहा कि आज की बातचीत में ऊर्जा और आर्थिक सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में अच्छे परिणाम प्राप्त हुए। विदेश सचिव ने कहा कि वार्षिक शिखर सम्मेलन में आर्थिक सुरक्षा से संबंधित कई निर्णयों को अंतिम रूप दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत जापान संबंध बहुत विशेष हैं और आर्थिक साझेदारी की सफलता के कई शानदार उदाहरण मौजूद हैं। नई दिल्ली में आज भारत जापान संयुक्त आर्थिक मंच में श्री मोदी ने कहा कि जापान की विशेषज्ञता और निवेश तथा भारत की गति और व्यापकता के एक साथ मिलने पर पूरी दुनिया को लाभ होता है।
1: भारत जापान संबंध वाकई बहुत स्पेशल है। हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की सफलता के कई उज्जवल उदाहरण है। अभी अभी हमने हरियाणा के खरखोदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट का उद्घाटन किया। आज पूरे विश्व में सुजुकी की दो तिहाई कार्स भारत में बनती हैं और 100 से अधिक देशों को एक्सपोर्ट होने जा रही है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और जापान ने

0: आर्थिक सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रक्षा और स्वास्थ्य जैसे कई क्षेत्रों में समझौते किए हैं। ये समझौते दोनों देशों की साझेदारी को भविष्य के अनुकूल और असीमित बनाएंगे। श्री मोदी ने कहा कि आर्थिक जगत इस समय आपूर्ति श्रृंखला अड़चनों, व्यापार अनिश्चितता और वैश्विक मांग में गिरावट से जूझ रहा है। उन्होंने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है।
1: आज आर्थिक दुनिया सप्लाई चेन में रुकावटें, ट्रेड में अनिश्चितता और ग्लोबल डिमांड में गिरावट से जूझ रही है, लेकिन जैसे कहा जाता है, व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट गोइंग। भारत विश्व की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। पिछले फाइनेंशियल ईयर में भारत की जीडीपी ग्रोथ 7.7% रही। इतना ही नहीं, पिछले 12 वर्षों में हम भारत में काइजन फिलोसॉफी यानी कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट अपनाते हुए अपनी इकोनॉमिक डीएनए को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं।
0: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि भारत अपनी रिफाइनरी क्षमता का तेजी से विस्तार कर रहा है। नई दिल्ली में श्री पुरी ने बताया कि अगले 6 से 12 महीनों में देश की रिफाइनिंग क्षमता को 30 करोड़ मीट्रिक टन प्रतिवर्ष तक बढ़ाया जाएगा। त्रिपुरा के अगरतला में आज राज्य स्तरीय विकसित भारत जी राम जी का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर त्रिपुरा के श्रम मंत्री टिंकू रॉय ने कहा कि नई योजना प्रत्येक पात्र ग्रामीण परिवार को प्रतिवर्ष 125 दिन के रोजगार की गारंटी देती है। योजना के अंतर्गत दैनिक मजदूरी 256 रुपए से बढ़ाकर 300 रुपए कर दी गई है। अयोध्या विकास प्राधिकरण ने राम मंदिर चंदा घोटाला मामले में आरोपी लवकुश मिश्रा से जुड़ी एक निर्माणाधीन संपत्ति पर नोटिस जारी किया है। प्राधिकरण के सचिव ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि भवन निर्माण नियमों के संदिग्ध उल्लंघन के कारण ये नोटिस जारी किया गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कल कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिन के विधायी और संसदीय प्रणाली से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य नवनिर्वाचित सदस्यों को संसदीय और विधायी कार्यप्रणाली के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराना है। बिहार के राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश मामलों की राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा कल ईरान के सर्वोच्च नेता ग्रैंड आयतुल्लाह सैयद अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि समारोह में उच्च स्तरीय उपस्थित दोनों देशों के बीच सभ्यतागत संबंधों के महत्व को रेखांकित करती है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 मैच में आज रात इंगलवुड में स्पेन का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा, वहीं टोरंटो में पुर्तगाल का मुकाबला क्रोएशिया से होगा। कल सुबह वैंकूवर में स्विट्जरलैंड और अल्जीरिया आमने सामने होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: मैं प्लास्टिक, चलन में आई लकड़ी और कागज के बेहतर, सस्ते और टिकाऊ विकल्प के रूप में,
4: और खतरनाक साबित हुई पर्यावरण और जीवन के लिए।
3: हाँ, लेकिन मैंने बनाई तुम्हारी जिंदगी आसान, खर्चा भी कम, हमेशा रहते मेरे निशान।
4: तुम बनी हो जहरीले रसायनों से, ना क्षय होता है तुम्हारा और ना अपघटन, तभी तो तुम्हारी

0: निस्तारण को लेकर परेशान है भारत का जन जन।
1: जलाओ तो निकले जहरीली गैस, जमीन में गाढ़ो तो प्रदूषित हो माटी के अवशेष। हम सब मिलकर कदम बढ़ाएं, प्लास्टिक मुक्त भारत बनाएं।
0: करें उचित प्लास्टिक कचरा प्रबंधन, रखें सुरक्षित पर्यावरण और जीवन।
2: से नो टू प्लास्टिक।
0: श्रोताओं, इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रामपुर के कार्यक्रम। लीजिए अब सुनिए अगली प्रस्तुति।
3: पानी, पानी
4: कहाँ से लाऊं? पानी,
3: पानी
4: एक बूंद भी पानी नसीब नहीं।
3: पानी,
4: कई दिन हो गए पानी हलक से नहीं उतरा।
3: पानी, पानी।
0: ये तस्वीर है आने वाले कल की।
3: पानी,
0: अगर अब भी नहीं सोचा तो बहुत देर ना हो जाए। पानी बचाने के प्रयास आज से, अभी से शुरू कीजिए।

में गीत सुनना हुआ अब और भी आसान। ईमेल के साथ साथ व्हाट्सएप के भी संग हर रोज शामिल हो जाइए अपने नाम और एड्रेस के साथ दिन में 12:10 पर। हम करेंगे गीत आपके नाम।

0: देश के हो आप किसी भी शहर, गांव या इलाके से, झट उठाइए अपना मोबाइल और टाइप कीजिए अपना नाम और शहर। भेज दीजिए हमारे मेल एड्रेस पर गीत आपके नाम airrampur@gmail.com और व्हाट्सएप वही आपका जाना पहचाना नंबर 9410087876। याद रखिए दिन में 12:10 पर गीत आपके नाम।
1: मीडियम वेव 336.7 मीटर अर्थात 891 किलोहर्ट्ज और FM 102.9 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। संध्या के 6:10 हो चुके हैं। आपके लिए लेकर आए हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत आपकी नजर अरिजीत सिंह और अमाल मलिक की आवाज में। फिल्म का नाम है एयरलिफ्ट।

अभी आप सुन रहे थे चित्रपट संगीत मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलो हर्ट्स और FM 102.9 मेगा हर्ट्स पर हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। संध्या के 6:20 हुए हैं। अब किसान भाई सुनेंगे अपना दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत।

0: कार्यक्रम सुनन बारे सभी किसान साथियों को आपके भैया प्रवीण
1: और आपके भैया अखिलेश की
0: राम राम। और अखिलेश भैया सुनाओ, घर परिवार में सब लोग कैसे हैं?
1: हाँ भैया, ईश्वर की कृपा है और आप सब लोगों की दुआ है। हमारे यहाँ तो सब कुशल मंगल हैं और साथ ही हम आशा करते हैं कि हमारे जो भी सब किसान साथी हैं वो सब कुशलता से होंगे और स्वस्थ होंगे। और भैया आप अपनी सुनाओ।
0: ईश्वर की कृपा से हम भी लोग सब ठीक ठाक हैं और खूब मन लगा के अपनी खेती बाड़ी को काम कर ही रहे हैं। और भैया देखो, खेती बाड़ी को काम तो अभी खूब ज़्यादा है और हमारे सभी किसान भैया धान की रोपाई में लगे हुए हैं। इसके अलावा जो हमारे पशु हैं उनको भी इस समय देखभाल करने की आवश्यकता है, और कुछ काम ऐसे हैं जो जाय समाहित हैं। हाँ। और अगर हम जामा चूक गए तो भैया काफ़ी हमें परेशानी ही सकते हैं।
1: हाँ भैया, जैसे कि बरसात को मौसम चल रहा है और बरसात के मौसम में ऐसे बहुत से संक्रमित रोग हैं जो हमारे पशु में लग जाते हैं,
0: जिसमें भैया देखो गलगा घोटू है, खुरपका मुंहपका है, तो ये बीमारियां अगर ही जाती है ना तो काफ़ी हद तक हमारे पशुओं को परेशान करती हैं और भैया कोई भी अनहोनी भी घट जाती है अगर ज़्यादा समस्या आ जाए।
1: हाँ भैया, और जैसे कि हमारे दुधारू पशु हैं उनमें भैया थनैला रोग की बीमारी है जाता है।
0: हाँ तो भैया देखो, जो आपने कहा ना संक्रमण बीमारी की बात करें तो गलाघोटू है और लंगड़िया बुखार भी आता है, इसके साथ साथ जो खुरपका मुंहपका है, तो इसमें होता है कि अगर हमारे पशु को एक बार ही जाए तो वो पशु जो है दूध काफ़ी कम कर देते हैं और इस समय दूध वैसे ही कम देते हैं पशु। और तो ऐसे में हमें करने का है कि हमें समय रहते अपने इन बीमारियों से बचाव के लिए टीकाकरण को काम करना चाहिए।
1: हाँ भैया, और जाके लिए हमारे जो स्वास्थ्य पशु चिकित्सा विभाग के कर्मचारी हैं, डॉक्टर हैं, वो भैया गांव-गांव में निःशुल्क जो है टीकाकरण की व्यवस्था कर रहे हैं।
0: भैया देखो, वे तो कर ही रहे हैं, लेकिन हमारो कर्तव्य जो बनता है कि हमें भी उनसे संपर्क करना चाहिए और जो है अपने पशुओं को टीका जरूर लगवाना चाहिए।
1: हाँ भैया, हमें जो इंतजार ना करना चाहिए, जो भी हमारे पशुपालक भाई हैं, कि हमारे पशु को अगर कोई संक्रमण रोग हो तभी हम टीका लगवाएं। समय रहते अगर काऊ चीज को उपचार पहले ही कर लेंगे ना, बचाव कर लेंगे, तो भैया बात है हमारे पशुपालक भाई को कोई परेशानी ना हो।
0: भैया देखो, एक कहावत हुआ ना, इलाज से बेहतर है बचाव। अगर हम बचाव कर लेंगे तो हमें इलाज कराने की जरूरत ही ना पड़ेगी। और जो टीका जो है भैया हमारी सरकार द्वारा निशुल्क हमारे पशुओं को लगाए जाते हैं, बस हमें खुद को जागरूक रखने हैं। और अगर बाय द वे कोई डॉक्टर्स हमारे पशुओं में टीकाकरण कर ना आ पा रहे हो तो आप जो है जो पास में ही पशु चिकित्सालय हो वहाँ जाकर संपर्क कर सकते हैं और वहाँ जाने के बाद में आप अपने पशुओं को टीकाकरण जरूर करावें।
1: हाँ भैया, और टीका कराने के बाद भी अगर ऐसी कोई समस्या हमारे पशु में आ जाता है भैया, तो उन्हें जरूर एकदम पशु चिकित्सक को बुला के उनका इलाज करवाएं और साथ ही और जो हमारे पशु हैं, जो स्वस्थ पशु हैं, उनसे उन्हें अलग रखें।
0: हाँ, इसके साथ साथ हम अपने किसान भाइयों से ये भी कहते रहते हैं कि किसान भाई जो टीका लगवा रहे हैं, लेकिन लगवाने से पहले हमें अपने पशु की पूरी सही जानकारी होना चाहिए और बाको जो है जब टीका लगाए तो बाद से पहले जो है टीका लगाने वाले को बता देना चाहिए। जैसे अगर हमारा पशु गाभिन है, कितने महीना को है, जब बात की जानकारी हमें होनी चाहिए, जैसे पहले कब बुखार आओ जाओ बताना चाहिए या कब ब्याह हो जाओ बताना चाहिए, जिससे कि सही जानकारी जब डॉक्टर्स को होगी तो वो भाई के हिसाब से टीकाकरण को काम कर सकेंगे।
1: कहने को मतलब आपको जो है हमारे पशुपालक भाइयों को अपने पशुओं को हर चीज को लेखा जोखा रखना चाहिए।
0: हाँ भैया देखो, अगर लेखा जोखा होगा कि हमने जैसे पहले कब कीड़ा मान की दवा दी, जिसे हम डीवर्मिंग कहते हैं, क्योंकि समय समय पर हमें ये दवा खिलानी रहनी चाहिए, क्योंकि अगर पेट में कीड़े हो जाते हैं तो समस्या जो है बहुत ज़्यादा हो जाती है, दूध हमारे पशु बहुत कम कर देते हैं, चारा कम खाते हैं। और ऐसे ही टीकाकरण की बात करें तो टीकाकरण देखो अब होता है तो एक जान के समय जाकर होते हैं, तो अगर हमें हमारे पास जाकर लिखो वो ब्यौरा होगा तो हम आसानी से अपने डॉक्टर्स को पूरी बात बता सकते हैं और उनको समझा सकते हैं कि भाई जे समस्या हमारे पशु को आती है तो इलाज करने में बहुत ही आसानी रहती है।
1: तो भैया हमारे पशुपालक भाई ध्यान रखें, समय रहे तो अपने पशुओं को टीकाकरण जरूर कराएं और साथ ही भैया पशुओं को संक्रमित रोगों से बचान के लिए साफ सफाई को पशुशाला में विशेष ध्यान रखें।
0: भैया देखो, जा तो रही बात पशुपालन में अब जो काम होने के, लेकिन भैया देखो आपने देखी होगी ना, अब जो है हर जगह जय बात आती है कि भैया डिजिटल इंडिया है, डिजिटल इंडिया है ना है। तो आखिर जब डिजिटल इंडिया का है जब बारे में तो थोड़ी बात कर ली जाए, किसान भाइयों के मन में जब आता तो ही।
1: हाँ भैया, कृषि में डिजिटल इंडिया का उद्देश्य आधुनिक तकनीकों जैसे AI, ड्रोन और डेटा का उपयोग करके किसानों की आय बढ़ाना और खेती को स्मार्ट बनाना है।
0: भैया देखो होत का है ना कि जब कोई चीज डिजिटल होती है तो जानकारी प्राप्त करना और कोई काम करना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। और इसीलिए AI और ड्रोन होत का है कि अब आप ड्रोन की बात करें तो ड्रोन जो है बहुत कम समय में हमारे खेत में स्प्रे समान रूप से कर देते हैं। और अगर हम ड्रोन के माध्यम से अगर हम अपनी फसलों में स्प्रे कराते हैं तो भैया काफी हद तक हमें कीड़े या खरपतवार नाशी को आसानी से नियंत्रण ही जाते हैं। इसके अलावा हम जो है स्मार्ट के साथ साथ जो है अगर हमें खेती करनी है तो मौसम की जानकारी हमें होनी चाहिए, बीज के बारे में सही जानकारी होनी चाहिए, बाजार भाव की सटीक जानकारी हमें जो है डिजिटल इंडिया के माध्यम से हमें प्राप्त होती रहती है। और इसके अलावा जो सरकारी योजनाएं चल रही हैं उनको सीधे लाभ जो है हमें इनसे माध्यम से मिल जाते हैं।
1: हाँ भैया, और फसल नियोजन, सटीक खेती और फसल ट्रेनिंग के लिए भी नए स्टार्टअप अप्स का विकास किया जा रहा है।
0: तो भैया देखो हम तो अपने किसान साथियों से यही कहते हैं कि आप जो है सटीक जानकारी रखने के लिए एग्री स्टार्टअप को बढ़ावा दो, फसल नियोजन, सटीक खेती और फसल ट्रैकिंग के लिए नए स्मार्ट एप्स का विकास करो जा रहा है, इनको इस्तेमाल करो और अपने घर बैठे ही खेती बाड़ी की अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त कर सको। तो भैया देखो इस

0: की भरपाई करी जा सकती है।
1: कहने को मतलब जो है डिजिटल इंडिया से हमारी जो खेती बाड़ी के काम है वो बहुत आसानी से और अच्छे तरीके से सब सटीक जानकारी हमारे किसान साथियों को प्राप्त हो जाती है
0: भैया। और जाके साथ साथ एक बहुत बड़ी योजना जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना चल रही है ना, बाको सीधे सीधे लाभ हमारे किसान भाई के खाते में पैसा पहुंच रहा है, ये भी एक डिजिटल इंडिया की ही पहल है।
1: हाँ, और भैया अब जैसे खाद और उर्वरक जो हमारे किसान साथियों को फार्मर एसटी के माध्यम से मिलेंगे तो वो भैया डिजिटल इंडिया से जुड़ो वो काम
0: भैया जाके संग संग बाकेला एक ऐप भी जारी कर दोगे। ऐप से आप जब बुक करोगे तो आपको पता होगी कि आपके आसपास में जो भी दुकान है खाद की, किन दुकान के पास कौन कौन सा खाद है, आप जब बुक करोगे तो वो जान ना कह सकते कि हमारे धोरे खाद ना है। तो ये भी एक डिजिटल इंडिया की ही पहल है और डिजिटल इंडिया की ही पहचान है और हमारा देश जो है डिजिटल इंडिया बहुत ही आगे बढ़ रहा है। तो भैया देखो इस तरीके से हम तो किसान भाइयों से कहेंगे कि आप भी डिजिटल खेती करें, यानी कि भैया स्मार्ट खेती करेंगे तभी जो है आपको जो है अच्छा मुनाफा मिल सकेगा। और भैया देखो आज दिन का है पता है आपको?
1: हाँ भैया आज दिन है गुरुवार।
0: और महीना के पहले गुरुवार को हम अपने किसान साथियों को सुनवाते हैं आकाशवाणी गांव में जो कि क्षेत्र संकलित कार्यक्रम होते हैं ग्राम पंचायत संकलन विशेष। और जय क्रम में आज आप गए ग्राम खिरका ब्लॉक शाहबाद और तहसील शाहबाद जनपद रामपुर के गांव में, तो आपने वहां किसान बहन से का बात करी, तो आप आओ तो हम अपने किसान बहन को सुनवा देना।
1: हाँ भैया नेकी और पूछ पूछ।
0: तो भैया आओ सुन लेते हैं आकाशवाणी गांव में कार्यक्रम।
1: हाँ जी आपका परिचय?
2: मेरा नाम खेमपाल सिंह है, ग्राम खिरका पोस्ट नारगा तहसील शाहबाद ब्लॉक शाहबाद।
1: जैसे कि अगर आपकी एजुकेशन की बात करें तो आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ तक?
2: मैंने इंटर कर रखा है।
1: अच्छा इंटर आर्ट साइड से या साइंस साइड से?
2: मैंने साइंस साइड से कर रखा है।
1: अच्छा तो इस समय आप क्या करते हैं?
2: इस समय हम खेती बाड़ी कर रहे हैं।
1: अच्छा जैसे आपने इंटर कर रखा है तो आपने कुछ उसके बाद जॉब वगैरह के बारे में नहीं सोचा?
2: नहीं जॉब वगैरह के बारे में सोचा, जॉब मिल नहीं पा रही है इस टाइम, ठीक है बेरोजगारी ज्यादा है इसलिए खेती बाड़ी में रह रहे हैं।
1: तो लगभग कितने समय से आप खेती बाड़ी कर?
2: लगभग हो गए हमें 7-8 साल।
1: तो आपके क्षेत्र में ज्यादातर कौन सी फसलें उगाई जाती हैं?
2: हमारे क्षेत्र में ज्यादातर है आपकी गेहूं की है, उड़द है और आपके चारा ज्वार बाजरा वगैरह सभी होती है, मूंगफली वगैरह सब होती है।
1: अच्छा अगर धान की बात करें, धान नहीं होता?
2: धान होता है, बहुत कम होता है।
1: इस समय आपने अपने खेत में कौन सी फसल लगा रखी है?
2: इस टाइम अब हमारे कुछ में धान है और कुछ में उड़द वगैरह।
1: अच्छा तो धान आपने लगा दिए या लगाने की तैयारी?
2: नहीं लगाने की तैयारी चल रही है।
1: अच्छा तो धान अगर हम लगाने की बात करें तो धान लगाने के लिए हम खेत की किस तरीके से तैयारी करें जो हमें अपनी धान की फसल से अच्छी पैदावार मिल सके?
2: धान की अब इस टाइम तो जुताई गुड़ाई तो होनी होती है, प्लस दूसरी बात अपने की देसी खाद डालिए, गोबर वाली घास जो खाद होती है उसमें डालिए।
1: अच्छा
2: और प्लस उसमें धान लगाने के लिए फिर धान लगाइए, फिर घास वाली दवाई डालिए, बाकी फिर तो जो चलती रहती है खाद वगैरह तो वैसे ही कम मिल रहा है इस टाइम, तो गोबर उससे ही चल रही है ज्यादातर।
1: अच्छा तो जैसे आपने खाद कम मिल रहा है, खाद की बात करी तो ये खाद जो कम मिल रहा है इससे किसानों को परेशानी आ रही है?
2: बहुत बड़ी परेशानी आई, दिक्कत है इस टाइम।
1: अच्छा दिक्कत क्यों? मतलब उसका रास्ता तो जैसे फार्मरिस्ट्री है?
2: नहीं फार्मरिस्ट्री अब किसी के पास तो 2 बीघा जमीन है, उसे नहीं मिले, एकड़ में 3 कट्टे दे रखे तो एकड़ नहीं है, हर एक के पास तो एकड़ नहीं है, 3 बीघा भी है 2 बीघा भी है।
1: अब खाद जो मिलेगा वो जमीन के हिसाब से ही तो?
2: जमीन के हिसाब से मिलेगा, कभी ठेके में भी चल रही है तो उसको कहाँ से देगा?
1: अच्छा
2: अब इसके बाद 3 बीघा अब नाम भी नहीं आई है वो भी तो है।
1: आजकल हमारी जो सरकार जो जोर दे रही है कि जैविक खेती करो, तो कुछ आपने जैविक खेती अपनाई अभी तक? नहीं
2: जैविक खेती अपनाएगा सब किसान सब अपनाएंगे, लेकिन या तो यूरिया ये डाया बिल्कुल ही बंद कर दिया जाए तब तो अपनाएगा बंदा, जब तक इसका भी मिलता तब कोई नहीं अपनाएगा।
1: नहीं अब कोई चीज है जैसे आप इससे पहले पुराने जमाने में ज्यादा खाद और उर्वरकों का चलन नहीं था, रासायनिक खादों का, तो जैविक तरीके से खेती होती थी।
2: हाँ।
1: तो अब जब हम खाद और उर्वरकों पे आए थे तो हल्के हल्के आए थे ना, तो इसी तरीके से एकदम आप खोल देंगे अगर इनको रासायनिक उर्वरकों को तो आपको अपनी फसल से अच्छी पैदावार नहीं मिलेगी। तो कहने का मतलब ये हल्के हल्के इसको कम करो और जैविक खेती को बढ़ावा।
2: अभी तो देखिए इसी के लालच है अभी तो किसान को जो भी है अभी इसी के ऊपर डिपेंड है, अभी तो एकदम धीरे धीरे ना तो ये बोन पाएगा, लेकिन ये सरकार ही चलाएगी मतलब तभी काम बनेगा, वरना इससे किसान एकदम नहीं हो पाएगा, अपने पास बना नहीं पाएगा।
1: नहीं सरकार तो अपनी सबसे पूरी सी कोशिश कर रही है, प्रचार भी कर रही है, प्रसार भी कर रही है और किसानों को कृषि विभाग की गोष्ठियां जो होती हैं उनके माध्यम से किसानों तक ये जानकारी पहुंचाई जा रही है कि आप प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दें।
2: हाँ लेकिन ये इसमें जो ये है कि सरकार अगर कर रही है तो लागू कर दे, इस चीज को बंद कर दे तभी अच्छा रहेगा, या तो पूर्ण से बंद कर दे तो फायदा है इसमें।
1: जैसे कि आपने अभी बीमारी की बात करी, आपको भी ऐसा लगता है कि ये रासायनिक खाद और
2: हाँ,
1: जो हम प्रयोग
2: बीमारी की जड़
1: है? बीमारी की जड़
2: बीमारी 60% बीमारी इसी से बन रही है।
1: अच्छा जैसे आपने धान की फसल लगाई है तो कौन सा धान आपने बोया है?
2: इस टाइम सरबत।
1: सरबत तो उसके अलावा और आपके क्षेत्र में सरबती के अलावा?
2: हाँ 26 भी लगता है।
1: अच्छा यहीं पे एक बात और जानना चाहेंगे, अब धान की बुवाई के नया तरीका भी एक आया है वो

0: मशीन द्वारा बुआई?
1: हाँ मशीन द्वारा चल रहा है।
0: तो क्या आपके क्षेत्र में मशीन द्वारा बुआई
1: नहीं
0: हुई है?
1: अभी हमारी तरफ नहीं, इधर है।
0: अच्छा
1: उत्तराखंड में है?
0: अच्छा
1: हाँ
0: नहीं उत्तराखंड में है, पटवाई साइड में भी
1: इक्का लगे हैं, आए गए फार्म इक्का दुक्का, लेकिन अभी ज़्यादा नहीं आए, साल है, पहला साल है।
0: तो खेती बाड़ी के साथ साथ और क्या इनकम का जरिया है आपके पास?
1: इनकम जरिया क्या, बाकी तो अपने करना खाना है, बाकी चले जाओ कहीं कर लो तो मिल जाता है, वरना तो खेती किसानी है और क्या।
0: अगर पशुपालन की बात करें तो पशु आपने पाल रखे हैं? नहीं
1: नहीं पशुपालन नहीं पाल।
0: अच्छा तो खेती बाड़ी के साथ साथ पशुपालन करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसे जैविक खेती अगर हम करेंगे तो हमें देसी खाद तभी तो उपलब्ध होगा जब हम जानवर पालेंगे।
1: हाँ तब तो करना पड़ेगा ना।
0: हाँ हाँ
1: तो करना जरूरी है।
0: तो पशुपालन शुरू से ही नहीं करा है? अब नहीं
1: शुरू से करा था, बंद कर दिया दो चार साल।
0: तो उसका बंद करने का क्या कारण है? पशुपालन
1: मतलब करने के लिए आदमी, इसमें आदमी भी चाहिए ना, बंदे भी चाहिए ना करने के लिए।
0: अच्छा मतलब आदमी
1: चारा भी है, देखो हर चीज होती है।
0: चलिए आपने बहुत अच्छी बात बताई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: अच्छा, यही पर अगर हम बात करें, जैसे आप गांव में रह रहे हैं तो आपके गांव से शहर की दूरी कितनी है?
1: पटवाई है कि सब आदमी को जाते किलोमीटर तो हमने ना पीना है। पहले कोच चले करती है अंजाद से, अब चलना है किलोमीटर, समझ गए? अब किलोमीटर को भाई हमें कोई ज्ञान ना है।
0: मतलब शहर से संबंधी अगर कोई सुविधा आपको लेनी हो तो पहले की अपेक्षा अब आसान है?
1: हाँ, अब आसान है,
0: क्योंकि अब गांव में वाहन भी हो गए हैं।
1: हाँ, रोड भी है,
0: रोड भी अच्छे हैं, तो इसलिए वाहन भी चल पड़े हैं।
1: हाँ,
0: और पहले जो है ज्यादातर भैंसा बुग्गी से जाना पड़ता था।
1: हाँ, भैंसा बुग्गी से जाने पड़ते, वही जो है खार खड्डा ही रास्ता में।
0: मतलब पहले का 2 घंटे का रास्ता

0: जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: आपका परिचय?
2: सचिन प्रताप सिंह, ग्राम प्रका।
1: आपकी अगर हम एजुकेशन की बात करें तो आपने कहाँ तक पढ़ाई लिखाई करी है?
2: हाई स्कूल का रखा है।
1: हाई स्कूल के बाद आपने आगे पढ़ने की रुचि नहीं थी या मतलब कोई वैसी दिक्कत जिस वजह से आप ना पढ़ पाए?
2: परेशानियां थी साथ में, इसलिए पढ़ नहीं पाए थे हम ज्यादा।
1: अच्छा, मतलब घरेलू परिस्थिति की वजह से आपने जो है पढ़ाई छोड़ दी। तो इस समय आप क्या कर रहे हैं?
2: तो मैं खेती कर रहा
1: हूँ। अच्छा,
2: पशु पाल रहे हैं।
1: अच्छा, तो अगर हम पशुपालन की बात करें तो आपने कितने पशु पाल रहे हैं?
2: 4 पशु हैं अपने पास।
1: अच्छा, तो क्या है, भैंसे हैं या मतलब?
2: 2 भैंसे हैं, 2 गाय।
1: तो उनसे अच्छा दुग्ध उत्पादन लेने के लिए आप क्या उन्हें खिलाते हैं, क्या पिलाते हैं, क्या साफ सफाई का ध्यान रखते हैं?
2: उससे जैसे ये है कि अपना जो है खेती में लेटा उटा कर तो उसकी जो है मतलब जो है खल भी खिला रहे हैं, चोकर भी खिला रहे हैं, और तुम्हारे दलिया भी खिला रहे हैं, और बाकी अपना चारा वो लेते हैं, हरा चारा बोते हैं, बरसीन करते हैं।
1: अच्छा अच्छा,
2: सेव भी कर लेते हैं, बाकी उससे जो अपना पशु का जो है साधारण चलते हैं।
1: अच्छा, जैसे इस समय गर्मी का मौसम चल रहा है, बरसात का भी मौसम आएगा है, तो इस समय हमें अपने पशुओं को स्वस्थ रखने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
2: पशुओं के लिए स्वस्थ करने के लिए हमने जो है एक अपना जो है मोटर का जो है पानी यूज़ करते हैं, लगा रखा है समरसेबल, और पंखे उनखे भी लगा रखे हैं गर्मी के लिए।
1: अच्छा अच्छा,
2: हाँ। बाकी जो अब वो जो मशीन जो आ रही है मोटर वाली मशीन भी लगा रही है, उससे जो है अपने चारा उरा जो है काट लेते हैं।
1: अच्छा,
2: बाकी कोई अब पालने में वैसी कोई विशेष दिक्कत नहीं है।
1: और अगर पशुशाला की साफ सफाई की बात करें तो किस तरीके से आप पशुशाला को साफ रखते हैं, क्या क्या?
2: उससे पशुशाला के लिए वो जो है पाइप चला देते हैं, जो भी जितनी भी गंदगी होती है वो सब पाइप से साफ कर देते हैं। बाकी कुछ बाकी तो सफाई वफाई तो हम रखते ही हैं उसमें।
1: और बाकी जैसे बरसात का मौसम आता है तो पशुओं में हमारे बहुत से संक्रमित रोग लगने की संभावना रहती है, जैसे खुरपका, भूपका, थनेला है,
2: उसके लिए हमारे जो है बीच में कुछ डॉक्टर मतलब संपर्क में हैं। बाकी कोई अगर दिक्कत परेशानी आती है तो उनको हम जो है सूचित करते हैं और उनको जो है टाइम से बुला लेते हैं और समस्या हल हो जाती है।
1: टीकाकरण वगैरह
2: वो समय समय पे लगते रहते हैं टीकाकरण।
1: जैसे इस समय बरसात का मौसम है तो सभी जगहों पे जो है पशुपालन विभाग की तरफ से निःशुल्क जो है टीके लगाए जा रहे हैं, तो वो आपने अपने पशुओं को लगवा लिए?
2: तो हमने जो है सब लगवा लिए, उसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। बाकी टीके पीके हमारे सब लगे हुए हैं जानवरों के, ऐसी कोई विशेष दिक्कत ना है।
1: अच्छा, तो मैं आपके खेतों में कौन कौन सी फसलें खड़ी हैं?
2: इस समय गन्ना भी खड़ा है अपना, और बाकी जो है धान की कुछ तैयारी कर रहे हैं, धान लगाएंगे कुछ।
1: अच्छा, तो अगर हम गन्ने की बात करें तो इस समय हमें अपने गन्ने से पैदावार लेने के लिए क्या क्या कृषि कार्य उसमें करने चाहिए जो हमें अपनी गन्ने की फसल से अच्छी पैदावार मिल सके?
2: ऐसा है, गन्ना में जो है अपना जो है

0: समय से अगर हम गन्ना बोएंगे तो उसमें समय से अगर हम उसमें जो है पानी की सिंचाई करेंगे, खाद लगाएंगे, बाकी अगर कोई बीमारी लगती है उसमें तो उसमें अगर हम अगर स्प्रे नहीं करते हैं तो गन्ना हमारी फसल खराब हो जाती है, तो इसलिए जो उसमें विशेष ध्यान देते हैं हम तो उसमें स्प्रे भी करते हैं।
1: अच्छा, जैसे गन्ने में अगर बीमारी की हम बात करें तो कौन कौन सी बीमारी लगने का इस समय खतरा है?
0: बीमारी गन्ने में असल में जो है कई सारी बीमारी चल रही हैं, एक सूख की बीमारी बहुत चल रही है हमारे यहाँ, तो उसका हम जो है बहुत ध्यान रखते हैं, इसीलिए उसको जो है पहले से उसकी जो है हम जो है दवाई डालते हैं ताकि कोई रोग नहीं आए गन्ने में, तो उसका हम ध्यान रखते हैं ताकि बाकी हमें जो है गन्ना की पैदावार अच्छी मिले।
1: अगर जैसे अगर हम बात करें बधाई उधाई की, तो गन्ने की बधाई उधाई का क्या समय उचित रहता है जो गन्ना हमारा गिरेना, और क्या फायदे हैं गन्ना
0: हमारा जो है अगर ज्यादा लंबाई पकड़ता है तो हमें उसकी जो है बंधाई करवानी पड़ती है, लगभग जो है अक्टूबर के महीने में हम जो है उसकी बंधाई करवाते।
1: तो अगर हम बात करें पैदावार की, तो गन्ने की फसल से आप कितनी पैदावार ले रहे हैं?
0: गन्ने की फसल से हम पैदावार लगभग जो है लगभग बीघे में 60 से 70 क्विंटल बीघे का गन्ना जो है हम निकाल लेते हैं।
1: अच्छा, अगर यहीं पे बिक्री की बात करें, आपके लोकल में ही मिल है या कहीं आपको दूर जाना पड़ता है या सेंटर वगैरह पे आप डालते हैं?
0: तो हम जो है मिल पे गन्ना ज्यादातर डालते हैं और मिल हमारे यहाँ से जरा मतलब दूरी पे काफी है, मैं कुछ खर्चा ज्यादा आ जाता है।
1: फिर भी आपके हिसाब से जो गन्ने की खेतीबाड़ी है वो एक मजबूत खेतीबाड़ी है,
0: इसमें कोई हमारा जो है इसमें कोई परेशानी नहीं आती है।
1: चलिए, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: आपका परिचय?
3: अशोक राम खिरका, तहसील सावाद, ब्लॉक सावाद।
2: अशोक जी, आप क्या करते हैं?
3: मिर्ची खेती करते हैं।
2: अच्छा, मतलब यानी कि बरियाने वाली खेती?
3: बरियाने वाली, हाँ, लौकी मिर्च।
2: अच्छा, तो अगर हम मिर्च की खेती की बात करें तो हम इसके लिए कैसे खेत का चुनाव करें, कैसे खेतों में इसकी जो है मिर्च की पैदावार अच्छी रहती है?
3: बुकास खेत में अच्छी रहती है।
2: अच्छा, बुकास यानी कि जो थोड़ा रेता हो,
3: हाँ, बुकास।
2: और अगर हम बात करें जमीन ऊंची या नीची या पानी की कोई समस्या, पानी से
3: ऊंची जमीन होनी चाहिए,
2: मतलब मिर्च की खेती कर रहे हैं तो
3: ऊंची जमीन
2: ध्यान रखना चाहिए, एक तो जमीन
3: ऊंची होनी चाहिए
2: और थोड़ी सी रेतीली जमीन
3: बुकास होनी चाहिए।
2: तो कितने साल से आप ये मिर्च की खेती कर रहे हैं?
3: 4-5 साल से कर रहे हैं।
2: अच्छा, अगर खेत की तैयारी की बात करें तो मिर्च की खेती के लिए हमें किस तरीके से खेत की तैयारी करनी पड़ती है?
3: लगभग 5-6 बार लगेंगे जुताई।
2: अच्छा, 5-6 बार जुताई
3: डेली नहीं होनी चाहिए।
2: अच्छा, और अगर हम इसकी बुवाई के समय की बात करें तो किस समय इसकी बुवाई की जाती है मिर्च की?
3: दीपावली पे।
2: दीपावली यानी कि अक्टूबर नवंबर के समय।
3: समय,
2: तो इसकी सीधी बुवाई करी जाती है या पौध डाली जाती है?
3: पौध डाली जाती है।
2: तो पौध की अगर हम बात करें, पौध कब डाली जाती है?
3: पौध पड़ेगी अक्टूबर में।
2: अक्टूबर में, यानी कि अक्टूबर में पौध पड़ेगी और नवंबर में
3: लगा दी जाएगी।
2: कई दिन में पौध तैयार हो जाती
3: है?
2: अच्छा, जैसे धान की पौध 20 दिन में तैयार हो जाती है, वैसे तो फिर रुपाई का क्या तरीका होता है, किस तरीके से रुपाई करते हैं इसकी?
3: इसकी घास होगी, घास निराई होगी, दवा लगेगी, लगाएंगे हम, दवा लगानी पड़ती है।
2: अच्छा,
3: खराब नहीं हो।
2: अच्छा,
3: वगैरह के लिए
2: नहीं, जैसे इसकी नालियां बनानी पड़ती हैं? हाँ, या
3: नाली बनानी पड़ती है।
2: अच्छा, मतलब खेत की पहले अच्छी तरीके से
3: जुताई होगी,
2: फिर उसमें जो है
3: नाली बनानी पड़ेगी।
2: नाली बना ली, तो नालियों के ऊपर लगती है या
3: साइड में?
2: साइड में। अच्छा, इसके साथ अगर हम कोई मिर्च के साथ और कोई फसल लेना चाहें?
3: लहसुन लग जाएगा, प्याज लग जाएगी।
2: अच्छा,
3: बीन लग जाएगी।
2: अच्छा, तो वो किस समय लगता है?
3: लगभग मिर्च के आसपास मिर्च से 2 दिन पहले लहसुन लगेगा।
2: मिर्च की जो हम रोपाई कर देंगे,
3: हाँ,
2: उससे पहले?
3: हाँ, डोल चढ़ेंगे मिट्टी की, नाली बनेंगे, उसकी नाली ऊपर लग जाएगा लहसुन।
2: अच्छा,
3: साइड में लग जाएगी।
2: अच्छा, तो अगर इसमें हम बीमारियों की बात करें तो इसमें बीमारियाँ
3: आती हैं?
2: अच्छा,
3: माऊ लगती है, मदाई की दवा लगती है।
2: अच्छा,
3: माल फूल की दवा लगती है, जौन सा मर जाता है उसकी दवा लगती है।
2: अच्छा, तो इससे लमसम मिर्च से कितनी पैदावार ले लेते हैं आप?
3: मिर्च से लगभग पड़ जाता है 1.5 लाख रुपए बीघा के हिसाब से।
2: अच्छा, एक बीघे में 1.5 लाख रुपए
3: माल निकलता है।
2: और यहीं पर अगर हम लागत की बात करें तो लागत कितनी आती है एक बीघे में?
3: 25,000 रुपये।
2: 25,000 रुपये लागत, यानी कि लागत भी अच्छी है और
3: पैदावार
2: मुनाफा भी अच्छा है। मतलब आपका कहने का मतलब यह है, जैसे अगर हमारे जो बहुत से किसान ऐसे हैं जिन पे जमीनें कम हैं, तो वो बरियाने वाली खेती करें,
3: जैसे अच्छा
2: मिर्च है, गोभी है,
3: गोभी है,
2: तो उन्हें अच्छा मुनाफा
3: अच्छा मिल सकेगा। मिर्ची चलती है, गोभी लग जाएगी।
2: अच्छा, तो यहीं पे आप हमारे किसानों से क्या कहना चाहेंगे खेती बाड़ी के संबंध में?
3: यही है, मिर्च करो, अच्छा मुनाफा मिलता है इससे।
2: चलिए, आपने बहुत अच्छी बात बताई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
4: किसान भाइयों, अभी आपने आकाशवाणी गांव में क्षेत्र संगीत कार्यक्रम सुनो, जो कि ग्राम खिरका, ब्लॉक सावाद, जनपद रामपुर

0: ये स्थल रिकॉर्डिंग पर आधारित कार्यक्रम हो।
1: हम उम्मीद करते हैं हमारे किसान साथी ने यह कार्यक्रम बहुत अच्छी तरीके से और बहुत ध्यान से सुने हो और जब कार्यक्रम सुन के वे लाभान्वित भए होंगे।
0: और भैया देखो अब समय ही चलो है किसान भाई इनके लिए मनोरंजन को, तो अब सुन लेते हैं जो प्यारो सो लोकगीत जिसे आवाज दी है कनक सक्सेना ने।

0: अभी हमारे किसान साथी कनक सक्सेना जी की आवाज़ में सुन रहे थे जो बढ़िया सुन लोकगीत। और हम उम्मीद करते हैं कि जो लोकगीत सुन के हमारे किसान साथी इनको मनोरंजन है वो भरपूर और जो उनकी पूरे दिन की थकान है वो है गई होगी दूर।
1: और भैया देखो, मनोरंजन के बाद अब बात कर लेते हैं थोड़ी खेतीबाड़ी की। और खेतीबाड़ी में अब आप देख रहे हो कि धान की रोपाई को काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। और धान की फसल एक ऐसी फसल है जिसमें हमारे सभी किसान भाई जा कहते हैं कि जहाँ में लागत ज़्यादा आती है, कीड़े बीमारियाँ ज़्यादा लगते हैं और जहाँ वैसे हमें लाभ थोड़ा कम मिलते हैं।
0: हाँ भैया, और जहाँ समय आप देख ही रहे हो बरसा भरपूर है भैया, तो ज़्यादातर हमारे लगभग सभी किसान साथी जिनकी भैया पौध तैयार है ना, वो अपने खेतन में धान की जो है रोपाई कर रहे हैं।
1: भैया देखो, छोटी छोटी बातें ऐसी हैं ना, अगर उनको हमारे किसान भैया ध्यान में रख के धान की फसल से अपनी जो उत्पादन क्षमता है ना वो बढ़ा सकते हैं और लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
0: वो का बातें हैं भैया?
1: भैया देखो, सबसे मुख्य बात तो जाती है कि इस समय हमारे किसान भैया जो धान की रोपाई करा रहे हैं समय रहते देखभाल करते रहे, क्योंकि जो लेबर होता है ना जो ठेका में लगाते हैं ज्यादातर, तो बालक छोटे छोटे लगाते हैं तो होता है कि वे कभी कभी जो पीछे रह जाता बालक वो भैया दूर दूर पौधा लगा देते हैं, जिससे जो है हमारी जो पौधों की संख्या है वो कम रह जाती है।
0: तो जाले हमारे किसान साथी ध्यान रखें कि पौध लगाते समय विशेष ध्यान रखें कि पौधा हमारे कितनी दूरी पे लग रहा है, और साथ ही जो ना कि भैया एक ही पौधा एक जगह लगाएं, दो या तीन पौधा होने जरूरी है।
1: इसके अलावा जो बात को ध्यान रखें कि पौधा जो है ज्यादा गहराई में न लगावे, ज्यादा गहराई में अगर लगा देते हैं तो जो है भैया कल्ले बनने की क्षमता है ना वो थोड़ी कम हो जाती है। इसके साथ साथ सबसे मुख्य बात जाती है कि खरपतवार जो हमारे खेत में होते हैं, क्योंकि बरसात ज्यादा पड़ती है खरपतवारों की समस्या काफी रहती है, तो उसके रोकथाम हमारे किसान भैया किस तरीके से करें, जो बारे में हमारे किसान भाई को समय रहते सोचना पड़ेगा।
0: हाँ भैया, धान की फसल ऐसी है कि जहाँ में भैया खरपतवार की समस्या जो है बहुत होते हैं।
1: अब देखो भैया, खरपतवार नाशी जो है हमें लगाने हैं तो जाके लिए हमारे किसान भाई को सबसे पहले तो रोपाई सही तरह से करनी है। रोपाई में हमें मुख्य बात ज्यादा ध्यान रखनी है कि एक वर्ग मीटर में 45 पौधा करीब 50 पौधा होना चाहिए। इसके बाद में हम जब रोपाई करने के बाद में घास की जो दवा लगाएंगे तो वह घास की दवा को जब आपको ध्यान रखनी है कि में पानी होना चाहिए जब हम दवा लगा रहे हैं।
0: अच्छा, तो भैया जो धान की रोपाई के कितने समय बाद हम जो है खरपतवार की दवा घास वाली दवा जो है अपने खेत में लगाएंगे?
1: जैसे आज आपने धान लगा दे तो कल शाम तक आप दवा लगा दो ज्यादा अच्छा रहता है।
0: अच्छा,
1: वैसे परसों लगाएंगे तब भी दवा काम करेगी, लेकिन कल शाम तक अगर हम दवा लगाते हैं तो ज्यादा अच्छा रहता है। और पानी जो है भरपूर होना चाहिए, और पानी जब बाव में भरपूर होगा तब जो है हमारे किसान भैया जो ब्यूटाक्लोर नाम की दवा जो आती है जाको इस्तेमाल करके जो है खरपतवार नाशी को और आराम से जो है घास की रोकथाम ही जाती है। लेकिन देखने में जब भी आती है कि हमारे किसान भैया से हम जाओ कहते रहते हैं कि भैया एक ही दवा को बार बार प्रयोग ना करना चाहिए।
0: तो भैया जाके अलावा और कौन कौन सी ऐसी दवा है जैसे हम अपने धान के खरपतवार को नियंत्रण कर सकें?
1: भैया देखो, अगर पिछली बार किसान भाई ने ब्यूटाक्लोर नाम की दवा लगाई तो अब के से जो है वे प्रीटिलाक्लोर नाम की दवा लगा सकते हैं, जाके 400 से 500 ml मात्रा जो है एक एकड़ खेत के लिए पर्याप्त होती है। और जाओ को जय विधि है कि आप जो है एक दिन बाद जो है पानी भर के जाके इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन पानी भरन दवा लगाने के बाद पानी जो है 24 घंटे तक खेत में रहना चाहिए। ऐसा ना है कि भैया सुबह तक पानी खत्म ही हो तो दवा को असर जो है ज्यादा अच्छा ना आते।
0: तो भैया जय तो बात रही हमारे उन किसान साथियों की जो धान रोपाई के माध्यम से लगा रहे हैं उनके खरपतवार नियंत्रण की, और बहुत से हमारे किसान साथी ऐसे हैं जिनने जो सीड ड्रिल आई है, मशीन आई है, बागे द्वारा बुवाई करी है, तो बामे हम अपने धान की फसल में खरपतवार को नियंत्रण कैसे करें?
1: भैया देखो, उनने जो है जब धान की बुवाई करी होगी तब जो है जो पेंडामेथिल नाम की दवा जो आती है बाको प्रयोग जो बुवाई करने के बाद पानी लगाने के बाद में बाको प्रयोग करो तो काफी हद तक जो है खरपतवार कम ही गए होंगे। लेकिन इसमें होता है कि हमें पानी बार बार लगाने पड़ता है तो फिर भी घास जो है जमाती है, तो बाके लिए बिस पायरी बैग सोडियम नाम की दवा जो आती है उसका इस्तेमाल हमारे किसान भैया कर सकते हैं। लेकिन जब आपको हमारे किसान भैया को ध्यान रखने जब जो है आपके खरपतवारों

0: जो पत्तों की संख्या है वो जब 3-4 ही जाए ये लगभग 20 से 25 दिन की अवस्था में आती है, तो उस समय जो है हमें ये दवा लगानी है और 80 से 100 ml दवा प्रति एकड़ के हिसाब से हमें प्रयोग करनी है। सही तरह से पूरे खेत को स्प्रे से हमें करने हैं जिससे कि सारे पौधा भेज जाएं और जब जो पौधा खरपतवार को होएगो वो भैया सूख जाएगा, खत्म ही जाएगा।
1: तो भैया जाको स्प्रे करने से पहले खेत में हमें पानी लगाना है या बाद में?
0: भैया देखो जामे पानी की कोई ज्यादा बात ना है क्योंकि नमी तो खेत में रहती है, हल्की नमी होनी चाहिए, अगर पानी है तब भी कोई दिक्कत ना है और अगर नमी है तब भी कोई दिक्कत ना है। इसके अलावा जो धान हम अब जो लगा रहे हैं जिसको हम कहते हैं रोपाई कर रहे हैं, बामे भी अगर बाद में खरपतवार रह जाएं और 25 दिन की जब फसल ली जाए और बामे देखें आप खरपतवार दिखाई दे रहे हैं तो उसमें भी आप जो है बिसपायरीबैक सोडियम नाम की दवा जो आती है इसकी 80 से 100 ml मात्रा को प्रति एकड़ के हिसाब से अगर हमारे किसान भैया खेत में स्प्रे करेंगे तो जो है इस खरपतवारों की समस्या खत्म हो जाएगी। लेकिन हम जो बता दें किसान भाई को कि अगर भैया थोड़े बहुत खरपतवार दिख रहे हैं रोपाई बारी फसल में तो जो है जब दवा को इस्तेमाल ना करें, भैया घूम फिर के वो थोड़ो खरपतवार निकाल दें।
1: हाँ भैया कहने को मतलब आपको जो है निराई करके खरपतवार नियंत्रण कर लें। तो भैया ये तो बात रही धान में खरपतवार नियंत्रण।
0: और भैया देखो अब चलते चलते किसान भाई को बता देंगे कल हमारी फसल जो कार्यक्रम है बामे का होएगा।
1: कल भैया अपने किसान साथियों को हम सुनवाएंगे एक चर्चा बीमीराम योजना व बरसात में सब्जियों की देखभाल,
0: और कल आपको मनपसंद कार्यक्रम लोक मंजरी होएगा जो कि फरमाइशी लोकगीतों पर आधारित कार्यक्रम होएगा,
1: और साथ ही कृषि संकेत कार्यक्रम में गन्ने की बधाई एवं मिट्टी चढ़ाई का कार्य जा संबंध में जानकारी दिलवाई जाएगी
0: और मौसम की जानकारी भी कल को दी जाएगी। लेकिन आज के मौसम की जानकारी हम किसान भाई को दे रहे हैं कि कल को मौसम कैसा रहेगा। कल अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। वायुमंडल में आर्द्रता 68% रहने की उम्मीद जताई गई है। हवा दक्षिण और पश्चिम दिशा से 11 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है, और भैया हवा के साथ साथ ना वर्षा भी पड़ने की संभावना है जो कि 60% होने की उम्मीद जताई जा रही है।
1: और भैया अब समय इजाजत ना दे रहे हो कि अपने किसान साथियों से और ज्यादा आगे बातचीत कर सकें, तो क्यों ना अगले कार्यक्रम तक अपने भैया अखिलेश
0: और प्रवीण कुमार को दे अनुमति।
1: राम राम, राम।

0: अभी किसान भाई सुन रहे थे अपना दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत। मीडियम वेव 336.7 मीटर पर हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। संध्या के 7 बजे हैं, आपके लिए लेकर आए हैं कार्यक्रम विविधा। इसके अंतर्गत आपको सुनवा रहे हैं श्री महिपाल सिंह की वार्ता, जिसका विषय है सहकारिता में सहयोग की शक्ति।
1: वैश्विक पटल पर जब जब मानवता ने अपनी सबसे बड़ी उपलब्धियों को दर्ज किया है, उसके मूल में सामूहिक प्रयास और साझा संकल्प की शक्ति ही रही है। आज जब संपूर्ण विश्व अत्यधिक व्यक्तिवाद, अनियंत्रित व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा और बाजारवाद की अंधी दौड़ में शामिल है, तब समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के आर्थिक और सामाजिक उत्थान के लिए सहकारिता एक विकल्प नहीं बल्कि एक अनिवार्य आवश्यकता बनकर उभरी है। इसी संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस केवल एक औपचारिक आयोजन या कैलेंडर की एक तिथि मात्र नहीं है, बल्कि यह सामूहिक चेतना के वैचारिक पुनर्जागरण का एक पावन अवसर है। सहकारिता को केवल एक कानूनी संस्था, समिति या व्यावसायिक ढांचे के रूप में देखना इसकी मूल भावनाओं को सीमित करना होगा, क्योंकि वास्तव में जब सहकारिता का एक उत्कृष्ट जीवन दृष्टि और मानवीय दर्शन है जो इस उदात्त विचार पर टिकित ही है कि मेरी उन्नति तभी सच्ची और स्थायी है जब मेरे साथ चलने वाले मेरे पूरे समाज की भी उन्नति हो। एक प्रसिद्ध अफ्रीकी कहावत है कि यदि आपको अकेले जाना है तो आप जल्दी पहुंच सकते हैं, लेकिन यदि आपको बहुत दूर तक जाना है तो साथ चलना अनिवार्य होगा। और यह एक साधारण सा वाक्य सहकारिता के संपूर्ण दर्शन को पूरी गहराई से परिभाषित कर देता है। अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन ICA के अनुसार सहकारी संस्था वास्तव में एक ऐसी संस्था होती है जो स्वेच्छा से एकजुट हुए व्यक्तियों द्वारा संचालित की जाती है, जो अपनी आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक आवश्यकताओं तथा आकांक्षाओं की पूर्ति सामूहिक स्वामित्व और लोकतांत्रिक रूप से नियंत्रित उद्यम के माध्यम से करते हैं। सहकारिता का यह विशाल ढांचा जिन 7

मूल सिद्धांतों पर टिका हुआ है वे इसके नैतिक संविधान की तरह काम करते हैं, जिसमें सबसे पहला सिद्धांत स्वैच्छिक और खुली सदस्यता का है, जो किसी भी जाति, वर्ग या लिंग के भेदभाव के बिना सबको समान अवसर देता है, और इसके बाद लोकतांत्रिक सदस्य नियंत्रण, सदस्यों की आर्थिक भागीदारी, स्वायत्तता और स्वतंत्रता, शिक्षा, प्रशिक्षण और सूचना का प्रसार, सहकारी संस्थाओं के बीच पारस्परिक सहयोग तथा अंत में समुदाय के प्रति सरोकार शामिल है, जो व्यापार में मानवीय मूल्यों को जीवित रखते हैं। यदि हम सहकारिता की वैश्विक और राष्ट्रीय ताकत को आंकड़ों के झरोके से देखें तो यह स्पष्ट हो जाता है कि यह दुनिया की कितनी बड़ी आर्थिक महाशक्ति बन चुकी है, क्योंकि आज वैश्विक परिदृश्य पर 30 लाख से अधिक सहकारी संस्थाएं पूरी सक्रियता के साथ कार्य कर रही हैं, जिनसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दुनिया के 1.2 अरब से अधिक लोग जुड़े हुए हैं, जिसका सीधा अर्थ यह हुआ कि इस धरती का हर सातवां इंसान किसी न किसी रूप में सहकारी आंदोलन का हिस्सा है। और विश्व के शीर्ष 300 सहकारी संस्थाओं का सामूहिक वार्षिक कारोबार ही $25 ट्रिलियन से अधिक है। यदि हम भारत के संदर्भ में बात करें तो हमारे देश में सहकारिता का इतिहास और वर्तमान दोनों ही अत्यंत गौरवशाली हैं। जहां वर्तमान में भारत में 8 लाख से अधिक सहकारी समितियां कार्यरत हैं, जिनसे लगभग 29 करोड़ से अधिक सदस्य जुड़े हुए हैं, क्योंकि भारत में सहकारिता कोई पश्चिम से आयातित या थोपा गया विचार नहीं है, बल्कि यह हमारी संस्कृति के DNA में रचा बसा है। जहां प्राचीन काल से चली आ रही हमारी ग्राम सभाएं, पारंपरिक पंचायतें, बावड़ियों का सामूहिक निर्माण और सामूहिक खेती जैसे उपक्रम वास्तव में सहकारिता के ही देशज रूप थे। देश की स्वतंत्रता के बाद लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बहुत सटीक ढंग से कहा था कि सहकारिता के बिना भारत का किसान और भारत का मजदूर कभी भी सही मायनों में आत्मनिर्भर नहीं हो सकता, और इसी दूरदर्शी सोच को धरातल पर उतारने के लिए वर्तमान भारत सरकार ने एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए सहकारिता मंत्रालय की स्थापना की है, जिसने यह स्पष्ट संदेश दे दिया है कि सहकारिता अब देश की मुख्य आर्थिक नीतियों के केंद्र में है। सहकार से समृद्धि के संकल्प के साथ आज प्राथमिक कृषि ऋण समितियां का बड़ा पैमाने पर कंप्यूटरीकरण किया जा रहा है, ताकि पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके। नैनो यूरिया जैसी अत्याधुनिक तकनीक सहकारी क्षेत्र के माध्यम से सीधे किसानों तक पहुंच रही है, और मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट में किए गए संशोधनों में इस क्षेत्र को और अधिक स्वायत्तता प्रदान की है, जिसके परिणाम स्वरूप ही वर्ष 2025 को संपूर्ण विश्व और भारत में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के रूप में बेहद रणनीतिक तरीके से मनाया गया है। सहकारिता की व्यावहारिक सफलता को समझने के लिए हमें उन 3 बड़े आंदोलनों को देखना होगा जिन्होंने जमीन से उठकर इतिहास रच दिया। 1946 में गुजरात के आणंद में स्थानीय किसानों को बिचौलियों के भयंकर शोषण का सामना करना पड़ता था। बड़ा उदाहरण इफको का है, जो वर्तमान में विश्व की सबसे बड़ी उर्वरक सहकारी संस्था के रूप में स्थापित है, और देश के करोड़ों से किसानों को बेहद किफायती दरों पर उच्च गुणवत्ता वाली खाद, उन्नत बीज और आधुनिक कृषि तकनीक उपलब्ध कराकर भारत की हरित क्रांति की मजबूत रीढ़ बनी है। जबकि उदाहरण कुटुंब श्री केरल का है, जहां महिला सशक्तिकरण और गरीबी उन्मूलन के इस आंदोलन से आज लगभग 45 लाख से अधिक महिलाएं जुड़कर आत्मनिर्भर बन चुकी हैं, और इस सामुदायिक मॉडल की सराहना संयुक्त राष्ट्र संघ तक ने की है। जहां सरकार की प्रशासनिक पहुंच सीमित हो जाती है और जहां अनियंत्रित बाजार आम जनता का आर्थिक शोषण करने लगता है, वहां सहकारिता हमेशा एक कल्याणकारी तीसरे रास्ते के रूप में सामने आती है। परंतु इस उज्ज्वल भव पक्ष के साथ ही सहकारिता के समक्ष वर्तमान में कई गंभीर चुनौतियां भी मुंह बाई खड़ी हैं। आधुनिक व्यावसायिक दृष्टिकोण व पेशेवर प्रबंधन की कमी के कारण ये संस्थाएं निजी कंपनियों की तुलना में अपनी दक्षता खो देती हैं। साथ ही वर्तमान पीढ़ी यानी युवाओं में सहकारिता को लेकर दिखाई जाने वाली उदासीनता इसके भविष्य को अनिश्चित बनाती है, और ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल साक्षरता का अभाव इन्हें नई डिजिटल अर्थव्यवस्था की दौड़ में पीछे धकेल रहा है। इन तमाम चुनौतियों से पार पाने के लिए हमें पारदर्शिता, तकनीक और प्रशिक्षण के 3 मूल मंत्रों को अपनाना होगा, और 21वीं सदी की आवश्यकताओं के अनुसार हमें सहकारिता के पारंपरिक ढांचे को नए रूप में ढालना होगा, जिसमें राइड शेयरिंग, फ्रीलांसिंग और ई कॉमर्स जैसे आधुनिक क्षेत्रों में कॉरपोरेट एकाधिकार को खत्म करने के लिए डिजिटल कोऑपरेटिव मंच तैयार करना और सौर ऊर्जा, जल संरक्षण, अवशिष्ट प्रबंधन और जैविक खेती के क्षेत्र में हरित सहकारिता के माध्यम से सामूहिक निवेश को बढ़ावा देना, और देश के स्टार्टअप कल्चर को
सहकारी ढांचे में ढालना शामिल है।

ताकि व्यापार का मुनाफा कुछ गिने चुने हाथों में केंद्रित होने के बजाय समाज के सभी हिस्सेदारों में समान रूप से वितरित हो सके। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने एक बार बहुत ही मार्मिक बात कही थी कि इस पृथ्वी के पास हर इंसान की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध हैं, लेकिन यह किसी भी इंसान के लालच को पूरा नहीं कर सकती। और सहकारिता वास्तव में गांधी जी के इसी उदात्त विचार का सबसे व्यवहारिक और आर्थिक उत्तर है, क्योंकि जब हम मिलकर खेतों में बीज बोते हैं तो फसल काटने का आनंद भी सामूहिक ही होता है, और जब हम सामूहिक रूप से व्यावसायिक जोखिम उठाते हैं तो मिलने वाली सफलता का स्वाद भी पूरा समाज चखता है। इसलिए सहयोग कभी भी किसी समाज की कमजोरी नहीं हो सकता, बल्कि यह उसकी सबसे बड़ी सामूहिक ताकत है, जिसके लिए इस अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस के अवसर पर हम सबको यह सामूहिक संकल्प लेना होगा कि हम न केवल अपने आसपास की सहकारी संस्थाओं को मजबूत और पारदर्शी बनाएंगे, बल्कि सहयोग और सहअस्तित्व की पवित्र भावना को अपने दैनिक जीवन का मुख्य ध्येय बनाएंगे। सहकारिता में सहयोग की शक्ति मात्र एक नारा नहीं, बल्कि ग्रामीण और शहरी अर्थव्यवस्था को स्वावलंबन के अटूट सूत्र में पिरोने वाला एक जीवंत दर्शन है। जब समाज का हर वर्ग अपने व्यक्तिगत हितों से ऊपर उठकर एक साझा लक्ष्य के लिए अपने संसाधनों, श्रम और प्रयासों को मिला देता है, तो बड़े से बड़ा आर्थिक और सामाजिक संकट भी बोना साबित हो जाता है। विशेष दिन पर देश के जाने माने सहकारिता विशेषज्ञों, अर्थशास्त्रियों और जमीनी स्तर पर बदलाव लाने वाले नीति निर्माताओं के सैद्धांतिक विचारों पर गौर करें, जो यह दर्शाते हैं कि कैसे एक दूसरे का हाथ थामकर विकास की एक नई और समावेशी इबारत लिखी जा रही है। आज के अत्यधिक आधुनिक तकनीकी और कारपोरेट प्रतियोगिता वाले दौर में सहकारिता का मूल सिद्धांत कितना प्रासंगिक है, तो इसका सीधा सा जवाब है कि सहकारिता की नींव ही निस्वार्थ सहयोग और मानवीय संवेदनाओं पर टिकी है। जहां पूंजीवाद व्यवस्था में केवल व्यक्तिगत लाभ और अधिकतम मुनाफे को ही सर्वोपरि माना जाता है, वहीं सहकारिता एक सबके लिए और सब एक के लिए के शाश्वत मंत्र पर काम करती है। छोटे और किसानों, बुनकरों, स्थानीय कारीगरों तथा लघु उद्यमियों के पास व्यक्तिगत रूप से इतनी बड़ी पूंजी या वैश्विक बाजार तक सीधी पहुंच नहीं होती कि वे बड़े कारपोरेट दिग्गजों का डटकर मुकाबला कर सकें, लेकिन जब यही छोटे छोटे उत्पादक एक सहकारी समिति के रूप में संगठित होते हैं तो उनकी सामूहिक शक्ति और मोल तोल करने की क्षमता उन्हें बाजार में एक अत्यंत मजबूत और सम्मानित हितधारक बना देती है। सहयोग की इस असीम शक्ति को हम देश के डेयरी उद्योग, कृषि साख समितियों, उपभोक्ता भंडारों और महिला स्वयं सहायता समूहों की अभूतपूर्व सफलता के रूप में साक्षात देख सकते हैं। यह दृढ़ विश्वास के साथ कहा जा सकता है कि सहकारिता ने न केवल लोगों को उनके घर के पास ही सम्मानजनक रोजगार दिया है, बल्कि उनमें लोकतांत्रिक मूल्यों, नेतृत्व क्षमता और सामूहिक निर्णय लेने की शक्ति का भी अभूतपूर्व विकास किया है। किसी भी सहकारी समिति में पूंजी की मात्रा के बजाय हर सदस्य का वोट समान होता है, जिससे समाज में सामाजिक और आर्थिक समानता की भावना सुदृढ़ होती है और समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को भी यह एहसास होता है कि देश के विकास में उसकी आवाज का भी उतना ही मूल्य है। बदलते वैश्विक परिदृश्य के साथ सहकारिता के क्षेत्र में आधुनिक तकनीक, डिजिटल साक्षरता और नवीन प्रबंधन पद्धतियों का समावेश भी बेहद जरूरी हो गया है। आज की सहकारिता को केवल पारंपरिक तरीकों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि इसे AI से लेकर डिजिटल प्लेटफॉर्म, ई कॉमर्स और उन्नत आपूर्ति श्रृंखलाओं को पूरी तत्परता से अपनाना होगा। जब ग्रामीण स्तर की प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां सीधे डिजिटल माध्यमों से जुड़ती हैं, तो बिचौलियों और बिचौलियों के शोषण की भूमिका स्वतः समाप्त हो जाती है, जिससे वास्तविक उत्पादकों को उनके कड़े श्रम का सीधा, पारदर्शी और उचित मूल्य मिल पाता है। देश के युवाओं और महिला उद्यमियों को इस आंदोलन से जोड़ना एक अन्य सबसे महत्वपूर्ण पहलू है, क्योंकि नई पीढ़ी के पास नए विचार, वैश्विक दृष्टि और बेहतरीन तकनीकी समझ है, जो पारंपरिक सहकारी ढांचे को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और ऊर्जावान बना सकती है। सहकारिता के समक्ष आने वाली चुनौतियों का मुकाबला करने में वित्तीय प्रबंधन की कमी, प्रशासनिक जटिलताएं जैसी प्रमुख बाधाएं, जिन्हें समय रहते दूर किया जाना अति आवश्यक है, समय की मांग है। इन तमाम चुनौतियों से निपटने के लिए सहकारी समितियों के भीतर पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा दिया जाना चाहिए और सदस्यों के निरंतर प्रशिक्षण और शिक्षा की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। जब तक प्रत्येक सदस्य अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति पूरी तरह जागरूक नहीं होगा, तब तक सहकारिता की वास्तविक शक्ति को धरातल पर पूरी तरह नहीं उतारा जा सकता। सरकार द्वारा हाल के वर्षों में सहकारिता के लिए अलग मंत्रालय के गठन और प्राथमिक समिति

0: के कंप्यूटरीकरण जैसे सराहनीय प्रयासों के साथ नियमों को और अधिक सरल तथा सुगम बनाने की आवश्यकता है ताकि जमीनी स्तर पर काम करने वाले लोगों को लाल पीताशाही से मुक्ति मिल सके। अंततः अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस हमें यह वैश्विक संदेश देता है कि गरीबी, भुखमरी, आर्थिक असमानता और जलवायु परिवर्तन जैसी विशाल चुनौतियों का सामना कोई भी व्यक्ति या राष्ट्र अकेले नहीं कर सकता, बल्कि मिलकर ही इनका स्थायी समाधान खोजा जा सकता है। सहकारिता में निहित सहयोग की शक्ति ही वह माध्यम है जिससे हम एक ऐसे समावेशी, न्याय संगत और मानवीय समाज का निर्माण कर सकते हैं जहां विकास का लाभ किसी एक विशेष वर्ग या कारपोरेट घराने तक सीमित न रहकर समाज के हर छोटे बड़े व्यक्ति तक समान रूप से पहुंचे। इस महान और पवित्र आंदोलन को और अधिक मजबूत बनाने के लिए आज यह आवश्यक है कि सरकारें अनुकूल नीतियां बनाएं, वित्तीय सहायता प्रदान करें और आम जनता में इसके प्रति विश्वास और जागरूकता बढ़ाएं ताकि सहयोग की यह अविरल धारा भविष्य में भी हमारे समाज को सींचती रहे और वैश्विक पटल पर आत्मनिर्भरता के सपने को पूरी तरह साकार करती रहे।
1: सहकारिता में सहयोग की शक्ति, इस विषय पर अभी आप सुन रहे थे वार्ता। वार्ताकार थे श्री महिपाल सिंह। इसी के साथ विविधा कार्यक्रम समाप्त हुआ।
2: ऐसी महबूबा समाने में कहाँ मिलती है।

0: आजादी भारत की अलामत है, अपना तिरंगा भी अहिंसा की निशान में। उर्दू हो वो हिंदी हो वो इंग्लिश हो कि संस्कृत, कोई भी नहीं गैर मोहब्बत की ज़बान में।
1: आइए हिफाजत करें अपनी विरासत की
0: और मोहब्बत करें अपने वतन से।

0: फूलों का कुंज दिलकश भारत में एक बनाएं, हुब्बे वतन के पौधे इसमें नए लगाएं।
1: मिल मिल के हम तराने हुब्बे वतन के गाएं, बुलबुल हैं जिस चमन के गीत उस चमन के गाएं।
0: हम सब भी मिलकर गीत गाएं
1: अमन के भाईचारे के।

0: ऐ काश मेरे मुल्क की ऐसी फिजा बने, मंदिर गिरे तो रंज मुसलमान को भी हो, पामाल हो न जाए मस्जिद की आबरू, ये फिक्र मंदिरों के निगहबान को भी हो।
1: आइए हम सब मिलकर राष्ट्रीयता के पथ पर सांप्रदायिक सद्भाव, शांति और समरसता के फूल खिलाएं।

0: अपनाई है एक नई संस्कृति, उपयोग करो और फेंक दो।
1: सामने है इस संस्कृति के विनाशकारी परिणाम, प्लास्टिक कचरे और पॉलीथीन के बड़े बड़े ढेर।
2: रेलवे लाइन हो या सड़क का किनारा, हर जगह प्लास्टिक कचरे का नजारा।
1: ये प्लास्टिक कचरा खासकर पॉलीथीन पैदा करता है नालियों और डिस्पोजल पाइपों में अवरोध।
0: और हमें अब भी नहीं हो रहा आने वाले संकट का बोध।
1: जागिए और जगाइए,
2: पहले तो कभी न नष्ट होने वाली प्लास्टिक को अपनी जिंदगी से हटाइए
0: और फिर प्लास्टिक कचरा प्रबंधन की समुचित तकनीक अपनाइए।
1: हर परिवार को लेना होगा संकल्प, पॉलीथीन का छोड़ना होगा विकल्प।
3: से नो टू प्लास्टिक।
4: श्रोताओं, इस समय आप हैं आकाशवाणी रामपुर के साथ और सुन रहे हैं हमारी दूसरी सभा के प्रसारण।

हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्ज और FM 102.9 मेगाहर्ट्ज पर संध्या के 7:18 होने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

0: प्रीमियम ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही आरपीएलआई इससे बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस आरपीएलआई की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: महात्मा गांधी ने कहा था, स्वयं के साक्षात्कार का अनुपम रास्ता है दूसरों की सेवा में स्वयं को होम कर देना। स्वामी विवेकानंद के अनुसार संसार एक बड़ी व्यायामशाला है जहां हम स्वयं को मजबूत बनाकर निखारते हैं।
3: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

0: मुख्य समाचार। अयोध्या के श्री राम मंदिर चढ़ावा मामले में जांच के लिए एसआईटी आज दोबारा पहुंची अयोध्या। बार एसोसिएशन ने ट्रस्ट के पदाधिकारियों के खिलाफ दी तहरीर। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने प्रयागराज में वीबीजी रामजी अधिनियम के शुभारंभ कार्यक्रम को किया संबोधित। कहा, ग्रामीण भारत में श्रम को सम्मान और गांवों के विकास को रफ्तार देने का माध्यम बनेगी योजना। शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टीईटी का पहला दिन आज शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न। 60 जिलों में 955 परीक्षा केंद्रों पर अगले दो दिनों तक होगी परीक्षा। और प्रदेश में मॉनसून ने लोगों को भीषण गर्मी से दी राहत। मौसम विभाग ने अगले तीन दिनों में प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में बारिश का जताया अनुमान। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं तनवीर फातिमा, और अब समाचार विस्तार से। अयोध्या के श्रीराम मंदिर चढ़ावा मामले की जांच के सिलसिले में आज एक बार फिर एसआईटी की टीम अयोध्या पहुंची। जांच को आगे बढ़ाते हुए टीम विभिन्न बिंदुओं पर पड़ताल कर रही है। मामले की जांच अवधि 15 जुलाई तक बढ़ा दी गई है। अयोध्या विकास प्राधिकरण ने राम मंदिर चढ़ावा मामले में आरोपी लवकुश मिश्रा से जुड़ी एक निर्माणाधीन संपत्ति पर नोटिस जारी किया है। एडीए के सचिव ने बताया कि भवन निर्माण नियमों के संदिग्ध उल्लंघन के कारण नोटिस जारी किया गया है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: एडीए की ओर से नोटिस जिस निर्माणाधीन संपत्ति को दिया गया है, वह लवकुश मिश्रा की पत्नी सुप्रिया मिश्रा के नाम दर्ज है। नोटिस में एक सप्ताह के भीतर जवाब देने और यह बताने को कहा गया है कि भवन का नक्शा प्राधिकरण से स्वीकृत है या नहीं। उधर अयोध्या अधिवक्ता संघ ने चौकी सिविल लाइन में ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, ट्रस्टी अनिल मिश्रा, गोपाल राव समेत अन्य के खिलाफ तहरीर दी है। अधिवक्ता संघ का कहना है कि दस्तावेजों की जांच के आधार पर नामों में बदलाव भी किया जा सकता है।
2: अभी एफआईआर लिखने की बात चल रही है। आंदोलन के लिए मीटिंग होगी, आंदोलन स्थगित करने लायक होगा तो स्थगित होगा, अगर कॉपी नहीं मिलेगी तो आगे बढ़ेगा।
1: तन्मय सोनी, आकाशवाणी समाचार, अयोध्या।
0: केंद्रीय ग्रामीण विकास, कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण, विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025

0: देश में रोजगार सुनिश्चित करने, ग्रामीण आजीविका को मजबूत करने और गांवों के विकास में तेजी लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। श्री चौहान ने आज तिरुपति में विकसित भारत जीरामजी अधिनियम 2025 का शुभारंभ किया। सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि योजना का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि कोई भी गरीब मजदूर बेरोजगार न रहे और सभी को रोजगार मिले।
1: मनरेगा में केवल 100 दिन रोजगार मिलता था, विकसित भारत जीरामजी योजना में पूरे 125 दिन मजदूर को रोजगार मिलेगा। और रोजगार देने की बात प्रधानमंत्री ऐसे नहीं कह रहे, पहले साल ही विकसित भारत जीरामजी योजना में केंद्र ने जो अपना पैसा दिया है वो है 95,600 करोड़ रुपया और राज्यों का 40% शेयर मिलेगा, तो एक साल में ही खर्च होंगे 1,51,282 करोड़ रुपया।
0: इसी क्रम में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने प्रयागराज में विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण योजना के शुभारंभ के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि वीबीजी रामजी योजना ग्रामीण भारत में श्रम को सम्मान, गरीब को संबल और गांवों के सतत विकास को नई रफ्तार देने का सशक्त माध्यम बनेगी और पारदर्शिता को सुनिश्चित करेगी।
2: पहले वर्ष में 100 दिन रोजगार की गारंटी होती, लेकिन विकसित भारत जी रामजी में 125 दिन रोजगार की गारंटी देने का काम किया। देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि हम विकसित भारत बनाएंगे और हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हम आपको आश्वस्त करते हैं कि हम विकसित उत्तर प्रदेश भी बनाएंगे। लेकिन विकसित उत्तर प्रदेश के साथ साथ हम आप सबको आश्वस्त करना चाहते हैं कि ये जो विकसित भारत जी रामजी के रूप में आपके गांव के विकास के लिए भारत सरकार बहुत आगामी योजना, अब आपका विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश और विकसित ग्राम सभा बने।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित होने वाले 3 दिवसीय उत्तर प्रदेश आम महोत्सव 2026 का शुभारंभ करेंगे। महोत्सव में 7 श्रेणियों और 56 वर्गों में लगभग 800 से अधिक आम की प्रजातियों का प्रदर्शन किया जाएगा। इसकी जानकारी देते हुए प्रदेश के उद्यान, कृषि विपणन राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने बताया कि 4 जुलाई को जनभवन लखनऊ में आम क्रेता विक्रेता सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। उद्यान मंत्री ने बताया कि महोत्सव में मेजबान उत्तर प्रदेश के अलावा मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र के उद्यान विभाग के प्रतिनिधि, प्रगतिशील बागवान और निर्यातक हिस्सा लेंगे।
3: यह महोत्सव राज्य भर के किसानों को, देश के विभिन्न राज्यों के किसानों को और दुनिया के बहुत सारे लोगों को आमंत्रित करके इस लखनऊ की पावन भूमि पर दुनिया में आम के ग्रोवर्स क्या क्या काम कर रहे हैं हमारे राज्य के किसानों को पता चलेगा। भारत के भीतर दूसरे राज्य के किसान आम को बेहतर तरीके से क्या क्या प्रसंस्करण कर रहे हैं ये पता चलेगा।
0: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की ओर से आयोजित हो रही शिक्षक पात्रता परीक्षा UPTET 2026 का आज पहला दिन शांतिपूर्वक संपन्न हो गया। परीक्षा के दूसरे दिन कल प्रथम पाली में उच्च प्राथमिक स्तर के अभ्यर्थियों की परीक्षा होगी, जबकि दूसरी पाली और 4 जुलाई की प्रथम पाली में प्राथमिक स्तर के अभ्यर्थियों की परीक्षा होगी। आयोग के अध्यक्ष डॉ. प्रशांत कुमार ने बताया कि लखनऊ, कानपुर, जौनपुर सहित प्रदेश के 60 जिलों में 955 परीक्षा केंद्र पर परीक्षाएं हो रही हैं। अध्यक्ष ने कहा कि शासन और आयोग इस परीक्षा को पूरी तरह से पारदर्शी, निष्पक्ष तथा शुचितापूर्ण ढंग से कराने के लिए संकल्पित हैं। सभी परीक्षा केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है और CCTV कैमरे लगाए गए हैं। केंद्र सरकार ने भारत में व्हाट्सएप पर यूजर नेम फीचर की शुरुआत करने के मामले में मेटा को नोटिस जारी किया है। सरकार ने विस्तृत जानकारी 3 दिन के भीतर उपलब्ध कराने को कहा है।
4: सूत्रों के अनुसार मंत्रालय ने मेटा को यह भी निर्देश दिया है कि इस मामले पर परामर्श पूरा होने तक यूजर नेम फीचर शुरू न किया जाए। मंत्रालय ने व्हाट्सएप द्वारा की गई एक सार्वजनिक घोषणा पर संज्ञान लिया है। इस घोषणा में व्हाट्सएप ने भारत सहित वैश्विक स्तर पर चरणबद्ध तरीके से अपने यूजर नेम फीचर को लागू करने की बात कही थी। व्हाट्सएप ने बताया कि एक बार ये फीचर सक्रिय हो जाने पर पहली बार

0: मॉनसून के आगमन से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है और राज्य के लगभग सभी हिस्सों में बारिश हुई है। मौसम विभाग ने आगामी 3 दिनों में प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी संभाग में बारिश का अनुमान जताया है। एक रिपोर्ट।
1: दक्षिण पश्चिम मानसून मंगलवार से ही आधिकारिक तौर पर प्रदेश में दाखिल हो चुका है और ट्रफ लाइन आजमगढ़, बरेली और अयोध्या जिलों से होकर गुजर रही है। राज्य के कई हिस्सों में पिछले 24 घंटों में मध्यम से भारी बारिश दर्ज की गई, जिससे लोगों को लंबे वक्त से पड़ रही भीषण गर्मी से राहत मिली। मौसम विभाग ने कई जिलों में भारी बारिश का पूर्वानुमान लगाया है।
2: दक्षिण पश्चिम मानसून ने आज आगे बढ़ने के साथ ही संपूर्ण उत्तर प्रदेश को आच्छादित कर लिया है। अगले 2-3 दिनों के दौरान प्रदेश के दक्षिणी भाग में हल्की से मध्यम वर्षा के साथ साथ कहीं कहीं भारी वर्षा होने की संभावना है।
1: ये बारिश किसानों के लिए बड़ी राहत लेकर आई है, जो धान की बुआई में देरी के कारण बेसब्री से मानसून का इंतजार कर रहे थे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अयोध्या के श्रीराम मंदिर चढ़ावा मामले में जांच के लिए एसआईटी आज दोबारा पहुंची अयोध्या। बार एसोसिएशन ने ट्रस्ट के पदाधिकारियों के खिलाफ दी तहरीर। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने प्रयागराज में वीबीजी रामजी अधिनियम के शुभारंभ कार्यक्रम को किया संबोधित। कहा, ग्रामीण भारत में श्रम को सम्मान और गांवों के विकास को रफ्तार देने का माध्यम बनेगी योजना। शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपीटीईटी का पहला दिन आज शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न। 60 जिलों में 955 परीक्षा केंद्रों पर अगले 2 दिनों तक होगी परीक्षा। और प्रदेश में मॉनसून ने लोगों को भीषण गर्मी से दी राहत। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों में प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में बारिश का जताया अनुमान। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
3: डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, किसी भी समाज की उन्नति का पैमाना मैं इस बात को मानता हूँ कि उस समाज में स्त्री ने कितना विकास किया है।
4: मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्ज़ और FM 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। संध्या के 7:31 हो चुके हैं। आपके लिए लेकर आए हैं कार्यक्रम सुगम संगीत। आज इस कार्यक्रम में कलाकार हैं क्षमा जौहरी।

अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत, कलाकार थी क्षमा जौहरी। मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्ज और FM 102.9 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8 बजे हैं। अब आपके लिए लेकर आए हैं फरमाइशी नगमों का कार्यक्रम गीत गाता चल।

गीत गाता चल कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को शहजी आगा का प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। श्रोताओं, संगीत तो वो जादू है जो दिलों को जोड़ता है, यादों को ताजा करता है और हर पल को खास बना देता है। आपके भेजे हुए संदेश, आपकी भेजी हुई फरमाइशें और आपके भेजे हुए प्यार को हम संगीत की माला में पिरोकर आप तक पहुंचाते हैं। तो कार्यक्रम का आगाज करते हैं आप सभी श्रोताओं की फरमाइशों के साथ। देखते हैं हमसे हमारे कौन से पहले श्रोता जुड़े हैं। स्टेशन रोड जमशेदपुर से पूरे परिवार के साथ नमस्कार पेश कर रहे हैं और नाम है हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, सोनू भाटिया, पप्पी भाटिया। काला दंतरेगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरामणि वर्मा, पारसमणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा, नोखेलाल वर्मा और आपके परिवार के समस्त लोग। सबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव, ओजस्वी यादव,

मोहल्ला हलवाइयान शेरकोट जिला बिजनौर से मोहम्मद वकार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया साजदारानी, हिना कौसर, बागरी मोहल्ला रटलाई जिला झालावाड़ राजस्थान से हर्षिता रामेश्वर, परमेश्वर, मीनाक्षी, श्रीमती मनोहर बाई बागरी, प्रभुलाल बागरी, लाल माता सुदामा नगर रटलाई जिला झालावाड़ राजस्थान से हमारे श्रोता हैं। मेरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता गौड़, रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, वार्ड नंबर एक पोफाली जिला यवतमाल से जयराम सिंगड़कर, दिशांत कुमार सिंगड़कर और अर्पिता जी,

हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी वोट के, श्रीमती नंदा वोट के, हनुमान वोट के उत्तम जमदाड़े। राजद्वारा कोठी अफसर आला से रूमा खान, बॉबी खान, मदीहा खान, सुभान खान, शबनम अब्बासी, गुलफशा, जीनत अमान और शमा मेकी। महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, जोगीशपुरी ट्विंकल, डिंपल, मीनाक्षी, निशा तुलसी और दिशा गोस्वामी, यह है नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से। आप सब ने सुना चाहा है अलका याग्निक, उदित नारायण और सोनू निगम को। फिल्म का नाम है मेरे यार की शादी है।

श्रोताओं, इस समय आप हैं आकाशवाणी रामपुर के साथ और सुन रहे हैं फरमाइशी नामों का कार्यक्रम गीत गाता चल चैसी आगा के साथ। कार्यक्रम की अगली फरमाइश हमारे आप सभी श्रोताओं की कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश रॉय, श्रीमती उषा रॉय, अमित कुमार रॉय, हैप्पी रॉय, दोबिहा निवादा जिला गाजीपुर से प्रतीक रॉय, श्रीमती रोशनी रॉय और प्रांजल रॉय, एयरपोर्ट रोड वंदना नगर इंदौर मध्य प्रदेश से नारायण खड़से, ललिता खड़से, गणेश खड़से, कार्तिक खड़से, वरी खड़से, स्वाति प्रयाग चौधरी, कुमारी देविका चौधरी, लड्डू चौधरी और आपके परिवार के समस्त लोग, जिला मुरादाबाद ग्राम दुलापुर उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल पंकज, काजल सीमा, मानवी तनवीर, लक्ष्य सोनी, मोहिनी ऋतिक, बलवीर सिंह, कबीर रेडियो श्रोता संघ डोंडी लोहारा बालौद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामोरिया, अजय देव तामोरिया, तुषार देव तामोरिया, डॉली बेबी पूजा तामोरिया, राधिका और प्रभा देवी तामोरिया और पोता मास्टर अलकबीर।

और पुणे से हमारी श्रोता हैं पंकज वडोदे, आर्य प्रियंका बीटी वडोदे, आपके परिवार के समस्त लोग। जरूर व रूट से बाबा साहब वडोदे, मीनाक्षी चरपे, रजनी कनीरे और आपका समस्त परिवार। विजय सुरलकर, रतनमाला सुरलकर, गौरी सुरलकर, सुरलकर मोताला महाराष्ट्र से। बोरखेड़ा पीतरामल जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से विनोद मूनत, नेहा जैन, दीपक मयंक मूनत, चेतन नहाटा, दीक्षा कुश मूनत। दादरी गेट भिवानी से कृष्ण मेहरा, कोमल मेहरा, किरण कपिल, कुणाल मेहरा,

ग्राम पंचायत कालेगांव जाफराबाद से श्री सुधाकर राजे जाधव, श्री प्रशांत राजे, कुमार संचित वयाल, कुमार प्रथमेश देशमुख, कुमार सर्वत देशमुख, कुमारी प्रणाली देशमुख और सानवी देशमुख, कल्पना देशमुख, मोहल्ला बारादरी महमूद खान रामपुर से भाई रफा साहब, सईद भाई मंसूरी, राशिद भाई मंसूरी, असद भाई बहन फिरोजा मुस्कान और अफसर अली नकमा नाज मंसूरी, गांव लोहगढ़ ठाकुरा वाला से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरलाल सिंह, अविराज सिंह और पोतरे गुरनूर सिंह और शुभदीप सिंह। मुंबई से अनु बड़जातिया, शमशुल खान, अनुराग बेनारा, चकला बाजार समाना शहर पंजाब से पप्पू राजा खुशदिल, संगीता रानी जिंदल, पप्पू मह खुशदिल, सुनीता रानी, आरजू हसमुख लाल जिंदल, बुलबुल शक्ति, संजीव बंटी और पूरा खुशदिल परिवार। मोहल्ला बारादरी महमूद खान रामपुर से भाई रफत साहब, सईद भाई मंसूरी, राशिद भाई मंसूरी, असद भाई, फिरोजा मुस्कान और आपके परिवार के समस्त लोग। बिस्मिल्ला मस्जिद रामपुर से फौजिया रोशनी, शायना काजल और भाई शहजाद अली। मोहल्ला मजार चांद शामिया रामपुर से मोहम्मद रमजान साहब, अदनान अली मंसूरी, अरमान अली मंसूरी, रायना चांदनी, अनमता और आशु भाई। वांगीट खेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा। और फरमाइश करता है पाकिजा रेडियो श्रोता संघ वैष्णव कॉलोनी सनावत से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा कतरी, मोहम्मद अलतमश कतरी, रमेश गौड़, मोहम्मद शादाब कतरी। और जामा मस्जिद रोड गोगावा से हाजी इसहाक लोलामानी, मोहम्मद उमर कासमी, हाजी अयूब शेरी। आप सब ने सुनना चाहा है उदित नारायण अलका याग्निक को, फिल्म का नाम है हम आपके दिल में रहते हैं।

कार्यक्रम की अगली फरमाइश हमारे आप सभी श्रोताओं की। करूला मुरादाबाद से युफानी रमगुड़िया शेख खान नावेद खान, सिंधौली मीरगंज बरेली से जीशान वारसी, स्टेशन रोड जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, सोनू भाटिया, पप्पे भाटिया। नूरमहल महसूल सीतामढ़ी बिहार से मुसर्र जहानस, तलत जहां, फरहत रिफत, नुजहत साजिया, शाहीन नाज और नाजिया नूरी। बटिंडा रोड मंडी डब्बावली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित लकी, तानिया नारंग। छत्तीसगढ़ चूड़ी लाइन मुंगेली से मोहम्मद इसहाक, खतीजा बेगम, मोहम्मद अशफाक, आफरीन बेगम, मोहम्मद अल्ताफ और नीलूफर फातिमा। सब्जी मंडी कस्बा उसावा वार्ड नंबर 1 जिला बदायूं से धर्मवीर कश्यप, उषा कश्यप, ध्यानपाल कश्यप, संजय अनमोल, अंश कुमारी करिश्मा और मुस्कान कश्यप। ईदगाह गेट मुरादाबाद से शफी अहमद अंसारी, रईस दुल अंसारी और आपके परिवार के समस्त लोग।

मेहरनगर उमेड़ खेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गेवानकर राही और आपके समस्त दोस्त ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती महाराष्ट्र से सिद्धार्थ गोंडाने अर्चना गोंडाने पुणे प्रणय प्रसिद्धि हेरामणि शेंडे फरमाइश करता है आजाद रोड सनावत से मोहम्मद आलम कतरी मोहम्मद सिद्दीकी मोहम्मद फारूक आफिया राफिया मोहम्मद अदनान कतरी दुर्गा चौक जूना पानी सनावत मध्य प्रदेश से कालू सिंह वडोले सीताराम हीरालाल वडोले साहिल सुमन वडोले विशाल हरिओम अवना वडोले बांसुरी नगरी जिला पीलीभीत ग्राम ढकिया केसरपुर से हमारे श्रोता हैं एके राजपूत अनिल कुमार राजपूत भगवान दास राजपूत मदन लाल रवि कुमार नवनीत किरण संतोषी प्रिया और छोटी गुड़िया चंचल चौखोटी बुलंदशहर से सईद टपारिया निघत शाहनवाज और आपकी पूरी फैमिली नई बस्ती गंगडवारा से मोहम्मद यासीन हाशमी नाजमा बेगम तौसीफ तैमूर कलीम अंसारी

मथुरा वृंदावन से हमारी श्रोता है मीरा सिंह, आर्यन, कृति, ब्रजेश, ब्रजेंद्र, गुणवंत श्रीवास, बोधराज खरेवाल, मिंटू थॉमस, दाताराम सिंह शेखावत, ओम प्रकाश रॉय, प्रतीक रॉय, सैयद मसरूर जी, राशिद हुसैन अंसारी, लक्ष्मण राव लोखंडे, फनीश कुमार, चंदन, योगेंद्र नायक, सुरेश चौरसिया, बिट्टू भैया, बिट्टू भाटिया, नरेश मल्होत्रा, पीयूष सिक्का, संजनी इंगिया, कमल बालूजा, उमंग मलिक, मुरलीधर साहू, परम सिंह जोड़ा, आरसी कांबड़े, राज शर्मा जी, रामशरण विश्वकर्मा, राधे कुमार विद्यार्थी, बालकरण वर्मा, प्रकाश वर्मा जी, चौधरी महेंद्र सिंह जी और मित्र पूरा परिवार, सतेंद्र कुमार संजोलिया, ठिठुल राव, सरस्वत भानु प्रताप, कोमल मास्टर, सोनिया अजय, किशोर हिवराले, दिग्दर्शन गौड़, प्रमोद कुमार साहू, रिजवान खान, कमलकांत गुप्ता जी, किशन सपकाल, सोपान तायड़े, वसंत राव भोजने, राजेश सांबले पाटिल, पी एस नेवाकर, रायन इंगले, आशीष मोहरेकर, टी डी मल्होत्रा, जयवीर सिंह, शुभचंद्र बजाज, डॉक्टर सुरेश जाधव, विजय सुरलकर, आफ्ताब अंसारी, हीरामणि वर्मा, फागुराम यादव, सतीश अनेजा, गंगाधर सनावर, सावनकर, राष्ट्रपाल गजबीय, संजय पाटिल, निर्वति शिरसागर, मुकेश शर्मा, राम कुमार रेवाड़, तुलसी मिस्किन, राहुल खुराना, उत्तम सिंह जेंदले, शरफुद्दीन अंसारी, श्रीराम गोंदली, संतोष नामदेव, हरजिंदर सिंह भाटिया, सीताराम कांगड़ा और सुरेश गंगनीजा, महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, राहुल मवनर मनवर जी, संतोष खटसे, माखन वर्मा, नरेश नरेंद्र शर्मा, सुरेंद्र सुदर्शन शाहजी, प्रकाश जैन, राजेश सैन, आप सबकी फरमाइश पर उदित कुमार, उदित नारायण की आवाज़ में साया फिल्म का ये गीत आपके रेडियो सेट पर।

और अब कार्यक्रम की अगली फरमाइश के साथ हमसे हमारे श्रोता जुड़े हैं। अनारकली बाजार जगराऊ पंजाब से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गाविया मल्होत्रा और भाई सच्चा सिंह पाठक, विनोदपुरी, जयपाल यादव और आपके परिवार के समस्त लोग लिसनर्स, जिला मुरादाबाद, ग्राम दुल्हापुर, उत्तर प्रदेश से मोहम्मद फरमान, सलमान, इरफान, इसरार, नरगिस खातून, परिमहल कासगंज से आबाद खान, नबील खान, आरफा खान, इल्मा खान, एम असलम सैफी, मास्टर जाहिद अली, मीरा सराय बदायूं से आफरीन खान, जमीर खान और आपके परिवार के समस्त लोग, नाज रेडियो क्लब करेली से निसार अहमद अंसारी, महजबी निसार अंसारी, बेटी नुसरत फातिमा, अबरार अहमद अंसारी, इसरार अहमद अंसारी, इकबाल अहमद अंसारी और तस्लीम रजा और पप्पू भाई अंसारी, बन्ने बुजुर्ग पलेरा टिक्का टिकमगढ़ मध्य प्रदेश से ब्रजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी विश्वकर्मा, सोनाली सोनम और आशीष विश्वकर्मा, ग्राम आनंद गांव जिला जालना से हमारे श्रोता हैं परमेश्वर शिंदे, कावेरी शिंदे, प्रहलाद शिंदे, स्वाति शिंदे, वैष्णवी शिंदे, समस्त शिंदे परिवार,

करणवीर हाउस बुचो कैनोचिया बटिंडा पंजाब से परम सिंह जोड़ा मनजीत गौड़ कौर जोड़ा करणवीर करण दपिंदर वरिंदर कुलदीप सिमू एकम दमन अभिजोत रेलवे कॉलोनी हनुमानगढ़ जंक्शन राजस्थान से जगमाल सिंह डागला हैप्पी डागला जेएस नायक शोभा नायक समस्त डागला परिवार राजद्वारा कोठी अफसर आला से रुमा खान बॉबी खान मदिया खान सुभान खान शबनम अब्बासी गुलफशाह जीनत अमान शमा मिक्की नाज रेडियो क्लब करीली से निसार अहमद अंसारी महजबी निसार अंसारी बेटी नुसरत फातिमा अमरार अहमद अंसारी और इकबाल अहमद अंसारी ज़िला मुरादाबाद ग्राम महेशपुर खेम से तौफीक अहमद सिद्दीकी अतीक अहमद सिद्दीकी मोहम्मद अनिस सिद्दीकी हमसा सिद्दीकी गुलशन साहिबा पेशे आप सब की फरमाइश पर रूप कुमार राठौर की आवाज़ में रब ने बना दी जोड़ी इस फिल्म का ये गीत आपकी नज़र है।

खाकी, ये नाम है उस फिल्म का जिसका गीत आपके लिए लेकर आए हैं अर्णव चक्रवर्ती की आवाज में। सुनने की ख्वाहिश हमारे आप सभी श्रोताओं की। बाबा कुटीर रायगढ़ से शिव कुमार चौहान, संक्रांति रितेश, रितेश कुमार, राजेश्वरी चौहान, उत्कर्ष चौहान, ग्राम पोस्ट हरहरपुर मटकली जिला बरेली से शारून नूर अंसारी, फरियाद हुसैन अंसारी, शकील अहमद इदरीसी, मोइन अंसारी, तस्लीम अंसारी और डीजे प्रधान। ग्राम करेली पुरानी मस्जिद बरेली से लाल मोहम्मद अंसारी, लाल मिस्त्री अंसारी, मोहम्मद मुनाजिर अंसारी, अवरार हुसैन अंसारी, मुन्ना भाई निशा परवीन तमन्ना और आशिक हुसैन अंसारी। बेडी से राजेश सोनी, कंचन सोनी, गायत्री डोमने, वैष्णवी डोमने, चंचल डोमने, अर्जुन गवनेरकर, धीरज सबशेरे, हिंगोली महाराष्ट्र से शाजी वोट के, श्रीमती नंदा वोट के, हनुमान वोट के, उत्तम जमदाड़े, बीजना मुरादाबाद से राजवीर सिंह यादव, कुणाल यादव, हर्ष यादव और मनीष यादव, अंशिका यादव, यूनुस खान, सोफिया खान, मंजनू, कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा और ये हैं सतना मध्य प्रदेश से उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक और माही मलिक। मनकारा मंदिर बीडिया कॉलोनी करगेना बरेली से विनी सिंह सागर, पनीलाल सागर, आशीष कुमार सागर, अमर सिंह, हितेश सागर उर्फ बंटी, राजेश कुमार वर्मा, रूबी भारती, एकता भारती, दिव्या भारती, रचना भारती, श्रीमती ओमवती भारती, कनक, शगुन, सारांश, आयांश, अदिति वर्मा और शिवांश प्रथव सिंह। जिला छत्रपति संभाजीनगर महाराष्ट्र से अनिल कुमार घोटके, वैशाली अनिल, प्रजक्ता घोटके, वैष्णवी गायत्री घोटके, यजीश घोटके और पीलीभीत दूधपुर से धर्मेंद्र कुमार, राम खिलावन, बाबूराम राजपूत, दिव्यांशी, काव्या, शनि, अनीता पाना और हिमांशु वर्मा। आप सबकी फरमाइश पर खाकी फिल्म का ये गीत आपकी नजर।

श्रोताओं, इसी गीत के साथ आज का गीत गाता चल कार्यक्रम समाप्त करने की शहजी आगा को दीजिए इजाज़त इस वादे के साथ की होगी आपसे फिर मुलाकात। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे फरमाइशी नगमों का कार्यक्रम गीत गाता चल। हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्ज़ और FM 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 8:45 होने को है, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार संध्या।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत के विकास की गति और जापान की विशेषज्ञता वैश्विक आर्थिक वृद्धि के लिए प्रेरक शक्ति का काम करेगी। श्री मोदी ने नई दिल्ली में जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के साथ वार्ता की। भारत और जापान ने रणनीतिक तेल भंडार को बढ़ाने और समुद्री परिवहन सुगम बनाने के लिए ऊर्जा साझेदारी की घोषणा की। पश्चिम एशिया संकट के बीच सरकार अगले एक वर्ष में तेल शोधन क्षमता बढ़ाकर सालाना 30 करोड़ मीट्रिक टन करेगी। केंद्र ने देशभर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर इबोला स्वास्थ्य जांच के लिए एयर सुविधा 2.0 पोर्टल शुरू किया। मौसम विभाग ने पश्चिमी और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में अगले 2 से 3 दिन के लिए मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया और फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 मुकाबले में स्पेन और ऑस्ट्रिया होंगे आमने सामने। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत जापान संबंध बहुत विशेष हैं और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी की सफलता के कई शानदार उदाहरण मौजूद हैं। नई दिल्ली में आज भारत जापान संयुक्त आर्थिक मंच में श्री मोदी ने कहा कि जापान की विशेषज्ञता और निवेश तथा भारत की गति और व्यापकता के एक साथ मिलने पर पूरी दुनिया को लाभ होता है।
2: भारत जापान संबंध वाकई बहुत स्पेशल है। हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की सफलता के कई उज्जवल उदाहरण है। अभी अभी हमने हरियाणा के खरखोदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट का उद्घाटन किया। आज पूरे विश्व में सुजुकी की 2/3 कार्स भारत में बनती है और 100 से अधिक देशों को एक्सपोर्ट होने जा रही है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और जापान ने आर्थिक सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रक्षा और स्वास्थ्य जैसे कई क्षेत्रों पर समझौते किए हैं। ये समझौते दोनों देशों की साझेदारी को भविष्य के अनुकूल और असीमित बनाएंगे। श्री मोदी ने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है।
2: आज आर्थिक दुनिया सप्लाई चेन में रुकावटें, ट्रेड में अनिश्चितता और ग्लोबल डिमांड में गिरावट से जूझ रही है, लेकिन जैसे कहा जाता है, व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट गोइंग। भारत विश्व की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। पिछले फाइनेंशियल ईयर में भारत की जीडीपी ग्रोथ 7.7% रही। इतना ही नहीं, पिछले 12 वर्षों में हम भारत में काइजन फिलोसॉफी यानी कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट अपनाते हुए अपनी इकोनॉमिक डीएनए को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज के समय में सामूहिक विश्वास सबसे बड़ी संपत्ति है और भारत जापान की द्विपक्षीय साझेदारी समय की कसौटी पर खरी उतरी है। श्री मोदी ने कहा कि जापान की सटीक प्रौद्योगिकी और भारत की सॉफ्टवेयर क्षमताओं का संगम वैश्विक एआई विकास को नई गति और शक्ति प्रदान करेगा।
2: प्रधानमंत्री ताकाइची और मेरा विश्वास है कि टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप हमारे सहयोग का सबसे मजबूत स्तंभ बनेगी। इसी विजन को साकार करने के लिए आज एआई के क्षेत्र में हमने ज्वाइंट स्टेटमेंट भी जारी किया है। भारतीय एआई इकोसिस्टम के कई प्रमुख संस्थानों में भी आज अपने जापानीज पार्टनर के साथ एग्रीमेंट्स किए हैं।
1: भारत और जापान ने रणनीतिक तेल भंडार को बढ़ाने और समुद्री परिवहन सुगम बनाने के लिए ऊर्जा साझेदारी की घोषणा की है। दोनों देशों ने एशिया में जिम्मेदार शक्तियों और प्रमुख ऊर्जा

0: उपभोक्ता के रूप में ऊर्जा सुगमता को संयुक्त रूप से मजबूत करने के लिए मिलकर काम करने की साझा इच्छा व्यक्त की। भारत का पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा जापान का अर्थव्यवस्था, व्यापार और उद्योग मंत्रालय विभिन्न पहलों पर सहयोग करेंगे। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने संवाददाता सम्मेलन में बताया कि वार्षिक शिखर सम्मेलन में आर्थिक सुरक्षा से संबंधित कई निर्णयों को अंतिम रूप दिया गया। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष के वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद से 120 से अधिक बिजनेस टू बिजनेस समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
1: नेताओं ने व्यापार और निवेश, आर्थिक सुरक्षा, रक्षा, सप्लाई चेन की मजबूती, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और लोगों के बीच आपसी आदान प्रदान जैसे कई क्षेत्रों में हमारे द्विपक्षीय संबंधों की मजबूत नींव पर चर्चा की। साथ ही दोनों नेताओं ने हिंद प्रशांत क्षेत्र और उससे अलग शांति, समृद्धि और स्थिरता सुनिश्चित करने में विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी की भूमिका को स्वीकार किया।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि निवेश भारत और जापान की रणनीतिक साझेदारी का एक प्रमुख संचालक बनकर उभरा है। वे आज एक निजी टेलीविजन चैनल द्वारा आयोजित एशियाई सदी को आकार देने संबंधी विषय पर भारत जापान रणनीतिक संवाद को संबोधित कर रहे थे।
2: ट्रेड ऑल्सो इज एन इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ दिस पार्टनरशिप।
3: भारत के कुशल कार्यबल के लिए अवसर खुल रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार का ध्यान सभी के लिए समान विकास सुनिश्चित करने पर केंद्रित है। निवेश भारत और जापान की रणनीतिक साझेदारी का एक प्रमुख संचालक बनकर उभरा है और इससे द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूती मिलने की उम्मीद है।
2: ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट डायमेंशन।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि भारत अपनी रिफाइनरी क्षमता का तेजी से विस्तार कर रहा है। नई दिल्ली में श्री पुरी ने बताया कि अगले 6 से 12 महीनों में देश की तेल शोधन क्षमता को 30 करोड़ मीट्रिक टन प्रतिवर्ष तक बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि पश्चिम एशिया संघर्ष की स्थिति से निपटने के लिए सरकार ने लंबे समय तक पेट्रोल और डीजल की कीमतों को नियंत्रित किया। श्री पुरी ने कहा कि पिछले 4 वर्षों में पेट्रोल की कीमत में केवल 5.58% और डीजल की कीमतों में 6.23% की ही वृद्धि हुई है। नागर विमानन मंत्रालय ने देशभर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर इबोला स्वास्थ्य जांच के लिए एयर सुविधा 2.0 पोर्टल का शुभारंभ किया। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय और दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड के सहयोग से इस उन्नत डिजिटल प्लेटफॉर्म का उद्देश्य स्वास्थ्य, आव्रजन और निगरानी एजेंसियों के बीच समन्वय के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की स्वास्थ्य निगरानी को मजबूत करना है, ताकि जोखिम वाले यात्रियों का शीघ्र पता लगाया जा सके। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कल कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिन के विधायी और संसदीय प्रणाली से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य नवनिर्वाचित सदस्यों को संसदीय और विधायी कार्य प्रणाली के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराना है। भारतीय रेलवे ने इस वर्ष जून में पिछले वर्ष इसी महीने की तुलना में माल ढुलाई में 4% की वृद्धि दर्ज की है। रेल मंत्रालय ने बताया कि रेलवे ने पिछले महीने 142 करोड़ टन से अधिक माल की ढुलाई की। इस वर्ष जून में यात्री आवागमन में भी लगातार वृद्धि दर्ज की गई है। पंचायती राज मंत्रालय कल नई दिल्ली में विभिन्न राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित करेगा। इसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार विमर्श किया जाएगा। कोयला मंत्रालय ने कोयला खंड आवंटियों को अधिक वित्तीय सुविधा प्रदान करने और कोयला क्षेत्र में व्यापार को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण सुधार प्रस्तुत किया है। कोयला खंड आवंटन संशोधन नियम 2026 के अंतर्गत मंत्रालय ने कोयला खंड और खनिज विकास तथा विनियमन अधिनियम 1957 के अंतर्गत आवंटित कोयला खंडों के लिए निष्पादन बैंक गारंटी के स्थान पर बीमा गारंटी बॉन्ड के उपयोग को सक्षम बनाया है। बिहार के राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश मामलों के राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरिटा कल ईरान के सर्वोच्च नेता ग्रैंड आयतुल्ला सैयद अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि समारोह में उच्च स्तरीय उपस्थिति दोनों देशों के बीच सभ्यतागत संबंधों के महत्व को रेखांकित करती है। केरल में शिक्षण संस्थानों को निशाना बनाने वाले नशीले पदार्थों के गिरोहों पर राज्य पुलिस की कार्रवाई में 30 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की अवैध दवाएं जब्त की गई हैं। केरलम पुलिस के अनुसार अधिकारियों ने राज्य में 5,353 मामले दर्ज किए हैं और 5,736 लोगों को गिरफ्तार किया। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए नामांकन आमंत्रित किए हैं। नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 5 से 18 वर्ष के बच्चों की असाधारण उपलब्धियों के लिए प्रदान किए जाते हैं। मध्य प्रदेश के खंडवा नगर निगम ने स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए एक अनूठा अभियान शुरू किया है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2026-27 के अंतर्गत खंडवा नगर निगम ने पॉलीथीन लाओ चाय पाओ नाम की एक पहल शुरू की है। नगर निगम के अधिकारियों ने बताया कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य लोगों को एक बार इस्तेमाल होने वाली प्लास्टिक के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूक बनाना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। जम्मू कश्मीर में श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए तीर्थ यात्रियों का पहला जत्था आज कड़ी सुरक्षा के बीच अनंतनाग जिले के पहलगाम क्षेत्र में नुनवान और गांदरबल जिले के बालताल स्थित दोहरे शिविरों में पहुंचा। एक रिपोर्ट।
0: यात्रियों का पहला जत्था आज दोपहर कड़ी सुरक्षा के बीच कश्मीर घाटी पहुंचा। पहले जत्थे में 4,822 यात्री शामिल हैं। इसमें से 2,510 यात्री पहलगाम के रास्ते से यात्रा करेंगे, जबकि 2,312 यात्री बालतल से होते हुए बाबा बर्फानी की गुफा का रुख करेंगे। नुनवन और बालतल कैंप पहुंचते ही प्रशासन ने यात्रियों का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। यात्रा के मद्देनजर दोनों रास्तों पर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। दोनों रास्तों पर पुलिस, अर्धसैनिक बलों और आर्मी जवानों की बड़ी संख्या में तैनाती की गई है। इसके अलावा चिकित्सा सुविधाएं, मौसम की जानकारी के लिए प्रणाली, अहम जगहों पर क्विक रेस्पॉन्स टीमें, बड़े पैमाने पर सीसीटीवी निगरानी और आरएफआईडी आधारित प्रणाली भी लगाई गई है। आकाशवाणी समाचार के लिए श्रीनगर से मैं इश्फाक शाह।
3: अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा है कि राज्य में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जमीनी आकलन जारी है और इसके पूरा होने पर केंद्र सरकार को एक विस्तृत रिपोर्ट सौंपी जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य आपदा मोचन बल SDRF और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF के मानदंडों के अनुसार राहत सहायता प्रदान की जाएगी। मौसम विभाग ने पश्चिमी और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में अगले 2 से 3 दिन के लिए मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है।
4: विभाग ने अगले 2-3 दिनों में गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में भारी से बहुत भारी वर्षा का अनुमान लगाया है। इसी दौरान छत्तीसगढ़, तटीय कर्नाटक, राजस्थान, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, केरल, माहे, उत्तराखंड और विदर्भ में भी मौसम की ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। मौसम विभाग ने बताया कि अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में मौसम गर्म और उमस भरा रहेगा। हालांकि दिल्ली में अगले 24 घंटों के दौरान आसमान में बादल छाए रहने और हल्की बारिश होने की संभावना है। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
3: और अब कुछ खेल खबरें। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 के मैच में आज रात इंगलवुड के लॉस एंजल्स स्टेडियम में स्पेन का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा। वहीं टोरंटो में पुर्तगाल का मुकाबला क्रोएशिया से होगा। कल सुबह वैंकूवर में स्विट्जरलैंड और अल्जीरिया आमने सामने होंगे। स्क्वाश में विल्वन सेंथिल कुमार और तन्वी खन्ना ने मुंबई में PSA चैलेंजर टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। सेंथिल कुमार ने मिस्र के अब्दुल्ला हाफिज और को, जबकि तन्वी ने जापान की जोई फू को हराया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत के विकास की गति और जापान की विशेषज्ञता वैश्विक आर्थिक वृद्धि के लिए प्रेरक शक्ति का काम करेगी। श्री मोदी ने नई दिल्ली में जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के साथ वार्ता की। भारत और जापान ने रणनीतिक तेल भंडार को बढ़ाने और समुद्री परिवहन सुगम बनाने के लिए ऊर्जा साझेदारी की घोषणा की। पश्चिम एशिया संकट के बीच सरकार अगले एक वर्ष में तेल शोधन क्षमता बढ़ाकर सालाना 30 करोड़ मीट्रिक टन करेगी। केंद्र ने देश भर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर इबोला स्वास्थ्य जांच के लिए एयर सुविधा 2.0 पोर्टल शुरू किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम अनुजा कुमार विद द न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi says India's speed and Japan's expertise will work as driving force for global growth, holds talks with Japanese counterpart Sanae Takaichi in New Delhi. India and Japan announced energy partnership to strengthen strategic oil reserves and maritime transport resilience. Government to expand oil refining capacity to 300 million metric tons per annum in next 1 year amid West Asia crisis. Center launches Air Suvidha 2.0 portal for Ebola health screening at entry points of international airports across the country. IMD issues red alert for heavy rainfall in parts of western and central India for next 2 to 3 days. And in FIFA World Cup, Spain to take on Austria in round of 32 match in Los Angeles tonight. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has said that India-Japan relations are truly very special and there are many shining examples of the success of the economic partnership. Addressing the India-Japan Joint Economic Forum in New Delhi this evening, Mr. Modi said, when Japan's expertise and investment combined with India's speed and scale, the entire world benefits. He said both sides today decided to make the partnership even more dynamic and profound. The Prime Minister said India and Japan today reached agreements on several areas such as economic security, AI, defense and health that will make the partnership futuristic and limitless.
6: जो नए साथी इस फोरम के साथ जुड़ रहे हैं मैं उन्हें भारत जापान सक्सेस स्टोरी का भाग बनने पर हार्दिक बधाई देता हूं फ्रेंड्स भारत जापान संबंध वाकई बहुत स्पेशल है हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की सफलता के कई उज्जवल उदाहरण है अभी अभी हमने हरियाणा के खरखोदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट का उद्घाटन किया जब जापान की एक्सपर्टीज और इन्वेस्टमेंट भारत के स्पीड और स्केल के साथ जुड़ती है तो पूरी दुनिया को फायदा होता है
5: In her address, Prime Minister of Japan, Sanae Takaichi, said, among the many areas of cooperation, energy security is one of the most important areas. Ms. Takaichi said, through the Power Asia Initiative, it is working to translate this vision into a concrete action. On the occasion, both Prime Ministers jointly inaugurated Maruti Suzuki's fourth vehicle manufacturing facility at Kharkhoda in Haryana. Earlier, India and Japan today exchanged agreements in different fields, including economic and energy security, pharmaceuticals and AI. Prime Minister Narendra Modi held annual summit-level talks with his Japanese counterpart Sanae Takaichi in New Delhi this afternoon. Addressing the joint press meet following the talks, Prime Minister Modi said, "Trust is the biggest asset in today's time, and the India and Japan bilateral partnership has stood the test of time." He highlighted that India and Japan are among the world's biggest economies today, and a free and open Indo-Pacific is a shared priority for both the countries.
6: आज भारत और जापान दोनों ही विश्व की सबसे बड़ी इकोनॉमीज में से हैं एक फ्री प्रॉस्परस और रूल्स बेस्ड इंडो पैसिफिक हमारी साझा प्राथमिकता है क्षेत्र की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक और मार्केट इकोनॉमीज के रूप में आज हमने कई महत्वपूर्ण पहल की हैं इनसे हम मिलकर पूरे क्षेत्र में शांति स्थिरता और प्रगति का मार्ग प्रशस्त करेंगे

0: लिमिटेड DIAL के इश्तराक से तैयार किया गया है। इसका मकसद सेहत, इमिग्रेशन और निगरानी करने वाले इदारों के दरमियान बरवक्त राब्ता कायम करके खतरे से दो चार मुसाफिरों की फौरी शिनाख्त करना और बैनुल अक्वामी मुसाफिरों की सेहत की निगरानी को मजीद मौसर बनाना है। एयर सुविधा 2.0 में मुकम्मल तौर पर कागज से मुबर्रा और बगैर जिस्मानी राब्ते के सेहत से मुतालिक खुद ऐलानिया निजाम मुतारिफ कराया गया है। नए निजाम के तहत बैनुल अक्वामी मुसाफिर अपनी आमद से 24 घंटे पहले ऑनलाइन तरीके से सेहत से मुतालिक खुद ऐलानिया फॉर्म जमा करा सकेंगे, जिससे इमिग्रेशन की कार्रवाई तेज होगी और हवाई अड्डों पर सेहत की जांच भी आसान और मौसर तरीके से अंजाम दी जा सकेगी। अमला, अवामी शिकायत और पेंशन के मरकजी वजीर मुमलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि मसनूई जहानत अब सिर्फ एक मुतबादल नहीं रह गई है बल्कि ये अच्छी हुक्मरानी का एक अहम सुतून है। उन्होंने दानिशमंदी के साथ AI के जिम्मेदाराना इस्तेमाल की अहमियत पर जोर दिया। आज से पहर जयपुर में 29वीं कौमी ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस के इख्तितामी इजलास से खिताब करते हुए जनाब सिंह ने कहा कि विकसित भारत 2047 के विजन को हासिल करने के लिए इंतजामी सोच में बुनियादी तब्दीली की जरूरत है। जम्मू कश्मीर में श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए अकीदतमंदों का पहला जत्था सख्त हिफाजती इंतजाम के साथ जिला अनंतनाग के पहलगाम इलाके में वाके नुनवान और जिला गांधरबल के बालतल बेस कैंप से कैंप पहुंच गया है। जम्मू से पवित्र गुफा के दर्शन के लिए इस 57 रोजा यात्रा को लेफ्टिनेंट मनोज सिन्हा ने सुबह सवेरे झंडी दिखाकर रवाना किया। यात्रा का बाजाब्ता आगाज कल से होगा और ये 28 अगस्त को इख्तिताम पजीर होगी। पेश है एक रिपोर्ट।
1: भगवती नगर जम्मू के यात्री निवास से आज अल सुबह रवाना हुआ श्री अमरनाथ जी यात्रियों का पहला काफिला सख्त सिक्योरिटी के बीच आज दोपहर वादी पहुंच गया। ये काफिला 4,822 यात्रियों पर मुश्तमिल है। इनमें 2,510 यात्री पहलगाम जबकि 2,312 यात्री बालतल के रास्ते कल सुबह पवित्र गुफा की तरफ रवाना होंगे। बेस कैंप पहुँचते ही इंतजामिया के अफसरान और मकामी लोगों ने यात्रियों का वालेहाना इस्तकबाल किया। यात्रा के ऐसे इनेकाद के लिए दोनों रास्तों पर सिक्योरिटी के माकूल इंतजाम किए गए हैं। यात्रा के पूरे रास्ते पर पुलिस, नीम फौजी दस्तों और फौज के इजाफी एहलकारों को तैनात किया गया है। इसके अलावा तिब्बी खदमात की फराहमी, मौसमी हालात की निगरानी की सहूलियात के अलावा हसास मकाम पर क्विक रेस्पॉन्स टीम्स को भी मामूर किया गया है। अलावा अजी यात्रा के रूट्स पर CCTV कैमरे और यात्रियों नीज गाड़ियों के लिए RFID ट्रैकिंग निजाम भी नस्ब किया गया है। उर्दू खबरों के लिए श्रीनगर से मैं इश्फाक शाह।
0: उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में लगातार हो रही बारिश के पेश नजर इंतजामिया ने आदि कैलाश ओम पर्वत यात्रा के लिए इनर लाइन परमिट जारी करने मंसूख कर दिए हैं ताकि यात्रियों के तहफ्फुज को यकीनी बनाया जा सके। धारचूला के सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट आशीष जोशी ने कहा कि इंतजामिया मौसम के हालात का जायजा लेकर परमिट फिर से जारी करने पर गौर करेगा। भारतीय महकमा मौसमियात IMD ने कहा है कि जुनूब मगरबी मानसून मजीद आगे बढ़ते हुए पूरी दिल्ली, गुजरात के मजीद इलाकों, उत्तर प्रदेश के बाकी हिस्सों, मध्य प्रदेश के बेशतर इलाकों, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के कुछ हिस्सों तक पहुंच गया है। मौसमियात के महकमे ने मुल्क के मगरबी और वसी इलाकों में अगले 2 से 3 दिन के दौरान शदीद बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। इसी दौरान आंध्र प्रदेश, मगरबी बंगाल के गंगा के मैदानी इलाके, गुजरात, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, वस्ती महाराष्ट्र, पंजाब और राजस्थान में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश की पेशगोई की गई है। IMD के मुताबिक अरुणाचल प्रदेश, आसाम और मेघालय में गर्म और हब्स वाला मौसम बरकरार रहने का इम्कान है। गुजरात में मानसून ने शिद्दत इख्तियार कर ली है जिसकी वजह से 109 तालुका में तेज बारिश हो रही है। खास तौर पर सौराष्ट्र और जुनूबी गुजरात में जूनागढ़ जिले के मंगरौल में आज रियासत भर की सबसे ज्यादा 8 इंच तक की बारिश रिकॉर्ड की गई है। शदीद बारिश की वजह से सौराष्ट्र और जुनूबी गुजरात खित्ते के नशेबी इलाकों में जगह जगह पानी भर गया है। फीफा वर्ल्ड कप में आज रात इंग्लवुड के लॉस एंजलिस स्टेडियम में राउंड ऑफ 32 के एक मैच में स्पेन का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। राउंड ऑफ 32 के दीगर मैचों में टोरंटो में पुर्तगाल का सामना क्रोशिया से होगा जबकि कल सुबह वैंकूवर में स्विट्जरलैंड और अल्जीरिया आमने सामने होंगे। इससे कबल आज सुबह बेल्जियम सेनेगल को 2 के मुकाबले 3 गोल से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया। आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की

मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। रात्रि के 9:30 हुए हैं। आपके लिए लेकर आए हैं लोकगीतों पर आधारित कार्यक्रम सबरस। आज इस कार्यक्रम में कलाकार हैं रुचि गुप्ता, ढोलक पर संगत है रवि बाबू और हारमोनियम पर संगत करता है सरन बाबू वाल्मीकि।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सबरस। इसमें आप सुन रहे थे रुचि गुप्ता के स्वर में कुछ लोकगीत। ढोलक पर संगत थी रवि बाबू की और हारमोनियम पे संगत कर रहे थे सरन बाबू वाल्मीकि। हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 10 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे क्षेत्रीय लोक एवं सुगम संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: traditional folk and light music, we bring you a Chakyar Kuta by Shri Margi Madhu and Party.
1: Shri Margi Madhu, Koodiyattam ke agrani kalakaron mein se ek hai. Koodiyattam, Kerala ki prachin Sanskrit rangmanch parampara hai, jise UNESCO ne manavata ki maukhik evam amurt sanskritik dharohar ki utkrisht कृति के रूप में मान्यता प्रदान की है। 19 मई 1966 को जन्मे मार्गी मधु पद्मश्री मूरिकुलम कोच्चुकुटन चाक्यार के पुत्र तथा पद्मभूषण अमनूर माधव चाक्यार के भांजे हैं। उन्होंने अमनूर माधव चाक्यार, मूरिकुलम कोच्चुकुटन चाक्यार, पीके नारायणन नंबियार और एम माधवनुनि जैसे महान आचार्यों के मार्गदर्शन में पारंपरिक गुरुकुल से प्रशिक्षण प्राप्त किया है। श्री शंकराचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय में उन्होंने लगभग 3 दशकों तक अध्यापन किया तथा राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय और भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान में अतिथि अध्यापक के रूप में भी सेवाएं दी। कूड़ियाट्टम के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें संस्कृति राष्ट्रीय पुरस्कार, केरल कलामंडलम पुरस्कार, केरल संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार तथा प्रतिष्ठित केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार सहित अनेक सम्मानों से सम्मानित किया गया है। वर्तमान में वे मूरिकुलम स्थित नेपथ्य कूड़ियाट्टम केंद्र के कलात्मक निदेशक के रूप में कार्यरत है।
0: श्री मार्गी मधु इज वन ऑफ द फोरमोस्ट एक्सपोनेंट्स ऑफ कूड़ियाट्टम, द एंशिएंट सांस्कृत थिएटर ट्रेडिशन ऑफ केरला, रिकॉग्नाइज्ड बाय यूनेस्को एज अ मास्टरपीस ऑफ ओरल एंड इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। Born on 19 May 1966, he is a son and disciple of Padma Shri Moorikulam Kochukuttan Chakyar and nephew and disciple of the legendary Padma Bhushan Ammanur Madhava Chakyar. Trained under eminent masters including Ammanur Madhava Chakyar, Moorikulam Kochukuttan Chakyar, P.K. Narayanan Nambiar and M. Madhavanunni, he completed traditional Gurukula training. He has served for nearly 3 decades as lecturer and assistant professor in the Department of Theatre at Sri Shankaracharya University of Sanskrit. He has also served as guest faculty at the National School of Drama and Film and Television Institute of India. His contributions have been recognized with numerous honors, including the Sanskriti National Award, Kerala Kalamandalam Award, Kerala Sangeetha Nadaga Academy Award, and the prestigious Sangeet Nadaga Academy Award. He currently serves as Artistic Director of Moorikulam Nepathya Koodiyattam Center.
1: Margi Madhu Dwara Prastut Chakyar Kutka Katha Sandarb Is Prakar Hai. Kiratam Rajanakar मेलपतूर नारायण भट्टदिरी। कथा संदर्भ: दिव्य पाशुपतास्त्र की प्राप्ति के लिए पांडवों में अर्जुन भगवान शिव की कठोर तपस्या और आराधना करते हैं। अर्जुन के अहंकार का नाश करने के उद्देश्य से भगवान शिव किरात का वेश धारण कर उनके सामने प्रकट होते हैं। उसी समय अर्जुन का वध करने के लिए मूकासुर जंगली सुअर का रूप धारण करके आता है। अर्जुन और किरात रूपधारी भगवान शिव दोनों उसके ऊपर बाण चलाते हैं और उसका वध कर देते हैं। इसके बाद यह विवाद उत्पन्न होता है कि सुअर को किसने मारा। इसी विवाद के परिणाम स्वरूप अर्जुन और भगवान शिव के बीच युद्ध होता है।
0: We shall now present the story background of the Chakyar Kuta performed by Shri Margi Madhu. किरातम